0: मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का सम्मान, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे कलाकार, इको फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी डिमांड। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, शिमला में जारी है बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें केवल अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचो समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली का है, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को जूता मारकर भाग गया। क्या है इसकी सच्चाई, आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए असम की बाढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: एक पुलिस वाले को जूते से मारकर भागते लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च का है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया, क्या सच और झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में जानिए।
3: कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांग मान लेने के बाद विरोध प्रदर्शन और धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है और नए शिक्षा मंत्री का प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। इन सब के बीच एक पुलिस वाले को जूते से मारकर सरपट भागते लड़के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे कांग्रेस जनता पार्टी के हालिया संसद मार्च के संदर्भ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो में किसी सड़क पर खूब भीड़ दिख रही है और आपाधापी का माहौल है। एक पुलिस वाला सड़क पर गिरे हुए एक लड़के को लात मार देता है, लेकिन अगले ही पल लड़का फुर्ती से उठता है और पुलिस वाले के मुंह पर जूता मारकर भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भागता दिखता है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और एक्स तक हर जगह ये वीडियो कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च का बताकर खूब शेयर किया जा रहा है। जहां कई लोग इसे जेन जी की हरकत बताते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने पहले लड़के को लात मारी, इसलिए लड़के की हरकत सही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में युवक एक पुलिसकर्मी को जूते से मारकर भागते हुए नजर आ रहा है, और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का वीडियो है, जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने हालिया संसद मार्च में शामिल एक लड़का पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वायरल वीडियो में एक जगह STET और बिहार लिखा हुआ है। ये देखकर हमें लगा कि ये बिहार में STET यानी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े किसी प्रदर्शन से संबंधित हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम की नजर वीडियो में दिख रहे पुलिस वाले की वर्दी के बैच पर भी गई। जब हमने इसे

0: घूम करके देखा तो इस पर बिहार पुलिस लिखा हुआ था। इससे ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो बिहार का ही है। इसके अलावा सर्च के दौरान भी हमें ऐसी कोई हाल फिलहाल की प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर वाकई दिल्ली का ये वीडियो होता तो फिर ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में जरूर होती खबर, लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला जहां इसे 16 अगस्त 2025 को पोस्ट किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये पटना में हुए एसटीईटी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। जनसुराज पार्टी ने भी 7 अगस्त 2026 को ये वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में लिखा हुआ था कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने से रोकना है तो जनता को नीतीश बीजेपी को सबक सिखाना होगा। सर्च के दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 7 अगस्त 2025 की छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो पटना के जेपी गोलंबर इलाके का है जहां सैकड़ों अभ्यर्थी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से पहले स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस वजह से इलाके में जाम लग गया था। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि ये वीडियो ना तो हाल फिलहाल का है और न ही दिल्ली का है। ये बिहार की राजधानी पटना का अगस्त 2025 का वीडियो है जब विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा था। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: असम में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और इसी से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को बाढ़ में डूबी हुई और टूटी हुई मस्जिद पर खड़ा हुए देखा जा सकता है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि असम का है जहां एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर अजान दिया। क्या इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: असम में मॉनसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य के 5 प्रमुख जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और चराईदेव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। इस सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, एक मीनार और गुंबद बचा हुआ है। इसी मीनार के पास खड़े होकर एक शख्स अजान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को असम का बताकर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भीषण बाढ़ में एक मस्जिद बह जाने की कगार पर है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ अजान जारी है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ से मुतासर एक मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जा रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो असम का है जहां पर बाढ़ में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मस्जिद के एक शख्स अजान देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हाँ, ये बात सच है कि असम में मानसूनी सीजन में कई दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण जिले के कई इलाकों में भयानक बाढ़ आई हुई है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और नगांव जिले में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई लोगों की जान भी चली गई है, तो वहीं हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीडियो वायरल हुआ। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में कई ऐसी गलतियां हमें नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो की असलियत पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर बाढ़ के पानी में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है। वीडियो का हर फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यह हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है, सही है, तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 20 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इस पोस्ट में AI का लेबल लगा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के ऊपर गूगल जेमिनी का एक वाटर मार्क भी नजर आ रहा है। ये वाटर मार्क उन वीडियो या तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल AI के जरिए बनाया या एडिट किया जाता है। इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 99% संभावना बताई। साफ है वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ। ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में।
3: आज की फ्लाइट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों, देखो फिर
4: चलें, फिर लेट नहीं हो सकते आज।
2: एक बेटे ने अपनी माँ के लिए ऐसा खास सरप्राइज तैयार किया जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। माँ के चेहरे की खुशी और बेटे की आंखों में दिखता गर्व लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल वीडियो में एयर इंडिया के पायलट तनिष अरोड़ा अपनी जिंदगी का एक यादगार पल शेयर करते नजर आते हैं।
3: बचपन में इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था।
2: उन्होंने पहली बार अपनी माँ को उसी विमान में सफर कराया जिसकी कमान खुद उनके हाथों में थी।
5: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रही हूं। पहली बार
3: आगे हजारों पैसेंजर्स को उड़ाऊंगा अपने साथ, बट मेरी फेवरेट यात्री तो यही रहेंगी।
2: यह अनुभव केवल एक उड़ान नहीं बल्कि माँ के वर्षों के त्याग और बेटे की मेहनत का खूबसूरत संगम बन गया। वीडियो की शुरुआत तनिष्क के पायलट की वर्दी पहनने से होती है। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। पूरे रास्ते माँ के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई देता है। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद दोनों साथ साथ बोर्डिंग गेट तक जाते हैं। उड़ान शुरू होने से पहले तनिष्क अपनी माँ से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे। इस पर माँ का जवाब बेहद सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला होता है।
5: आराम से फ्लाई
2: करना। वह कहती हैं, सुरक्षित उड़ान भरना और अपना ध्यान रखना। माँ के इन शब्दों में चिंता, प्यार और आशीर्वाद तीनों साफ झलकते हैं। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उसे प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है। इन दोनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसमें नन्ना बच्चा जापानी लाइन मेथड की मदद से बेहद आसान तरीके से गुड़ा का सवाल हल करता दिखाई देता है। उसकी समझ, आत्मविश्वास और सवाल हल करने का अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में बच्चा अपनी कॉपी पर 234×2 का गुणा करता नजर आता है। पहली नजर में ये नॉर्मल मैथ्स के सवाल जैसा लगता है लेकिन इसे हल करने का तरीका हर किसी को चौंका देता है।
5: 234×2 2 टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू टू ट
6: बच्चा ना तो क्लासिक तरीके से मल्टीप्लाई करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेता है। वह रंग बिरंगे स्केच पेन निकालता है और सबसे पहले पहली संख्या के हर रंग के हिसाब से सीधी लाइनें बनाना शुरू करता है। पहले दो लाइनें, फिर तीन और आखिर में चार लाइनें खींचता है। इसके बाद वह दूसरी संख्या यानी दो के अनुसार दो आड़ी लाइनें बनाता है। यह आड़ी लाइनें पहले से बनी सभी सीधी लाइनों को काटती हुई गुजरती हैं। जब पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है तब बच्चा उन सभी जगहों को गिनना शुरू करता है। जहाँ लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है यानी वे इंटरसेक्शन की संख्या के आधार पर उत्तर निकालता है। गिनती पूरी होते ही वे क्रम से अंक लिखता है और कुछ ही पलों में कॉपी पर 468 लिख देता है। यही इस सवाल का सही उत्तर भी है। वीडियो देखने वाले कई लोग इस अनोखे तरीके को देखकर हैरान रह गए।
7: 4, 6, 8
8: गुड बाय।
6: इस बच्ची की वायरल तस्वीर बता रही है कि आत्मविश्वास कितना जरूरी है। क्रिकेट खेल रही इस बच्ची की शुरुआत की चार बॉल्स तो मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर वो खेल में कमबैक करती है और हर बॉल को उसके मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेती है। दरअसल बच्ची की चार बॉल मिस हो जाने के बाद भी उसकी गिव अप ना करने की हैबिट और उसका कंपोज व्यवहार सबको अट्रैक्ट कर रहा है। इस छोटी बच्ची का कूल व्यक्तित्व सबको लुभा रहा है और यूजर्स उसमें भविष्य का क्रिकेटर देख रहे हैं।

0: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने अपनी अनोखी सोच और बच्चों के प्रति सम्मान भरे व्यवहार से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल हो रहा ये वीडियो तंजानिया के बुईगिरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड का बताया जा रहा है। स्कूल में नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक वाक्ती जोसेफ कलोंडा हर सुबह अपने छात्रों का स्वागत एक ऐसे अंदाज में करते हैं जिसे देखकर हर कोई भावुक हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे धूल भरे रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर आते हैं शिक्षक उनके सामने झुक जाते हैं और एक कपड़े से उनके जूतों की धूल साफ करने लगते हैं। इसके बाद वे हर बच्चे से मुस्कुराकर बात करते हैं और उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा लगता है कि स्कूल में दिन की शुरुआत ही सकारात्मक सोच और सम्मान के साथ होती है। यही वजह है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग शिक्षक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: जी, इसके पहले कभी भी जीवन में समुद्र नहीं देखे हैं और मैं समुद्र तट पे लेकर आया उनको। बाबूजी का पहला रिएक्शन देखते हैं।
0: एक बुजुर्ग के पहली बार समंदर के किनारे पर घूमने के वीडियो ने इंटरनेट की जनता को एक ही पल में भावुक और खुश कर दिया है। दोनों इमोशन महसूस करा दिए हैं। बेटा अपने पिता को उड़ीसा के कोनार के चंद्रभागा बीच लेकर पहुँचता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर समंदर को नमन करते नजर आते हैं।
1: ठीक है हम लोग।
0: जब पानी बुजुर्ग शख्स के पैर को पहली बार छूता है तब उनका भूलापन देखने को मिलता है। वे झुककर पानी को अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस बीच जब पानी लगातार उनके पाँव को छू रहा होता है तो उनके खुलकर हंसने की आवाज़ सुनने को मिलती है।
1: देखना रह गया था।
2: सपना देखी कभी नहीं हम देखे।
1: चंद्रभागा बीच कोणार्क में और बाबूजी अनुभव ले रहे हैं पहली बार समुद्र के पास। पानी आ गया। पानी।
0: उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं कि जुनून भी खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने बास्केटबॉल कोर्ट पर ऐसा कमाल दिखाया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनका शानदार अंदाज और गजब का कॉन्फिडेंस अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बास्केटबॉल दादाजी के हाथों में पहुंचती है उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है वह सचमुच देखने लायक होता है। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बास्केटबॉल को शानदार तरीके से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बॉडी पोस्चर और ड्रिबलिंग स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बरसों के अनुभवी बास्केटबॉल प्लेयर हों। जैसे ही वे बास्केट नेट के पास पहुंचते हैं वे बिना एक पल गवाए गेंद को बास्केट की ओर उछाल देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। पहले तो गेंद बास्केट नेट के रिम पर जाकर टकराती है और फिर वह वहां से बाउंस बैक होकर ठीक दूसरी तरफ लगे बास्केट नेट में जाकर सीधे गोल हो जाती है। इस असंभव से दिखने वाले और बेहद यूनिक शॉट को देख कोर्ट पर मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले दर्शक हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर एक साधारण इंतजार का पल एक यादगार पल में बदल गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉबी सलादी नाम का एक आर्टिस्ट एयरपोर्ट पर बैठी एक अनजान महिला का चित्र चुपचाप बना रहा है। स्केच पूरा होने पर कलाकार उसे महिला के बगल में बैठे पुरुष को सौंप देता है जो उसे महिला को दे देता है। अपने चित्र को देखकर वो मुस्कुराते हुए कलाकार को थैंक यू बोलती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अब उन पदक वीरों की बात करेंगे जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शान बढ़ाई। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल जीतने वाले इन एथलीट्स की भारत वापसी हुई तो उन चैंपियंस का दिल्ली में भव्य स्वागत देखने को मिला।

0: ग्लासगो में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं। अपने दमखम से दुनिया भर में देश का झंडा बुलंद करने वाले इन पदक वीरों ने जब अपने देश में कदम रखा तो स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे, मालाएं पहनाकर, फूल देकर, ढोल बजाकर उनका शानदार स्वागत हुआ। चेहरे बता रहे हैं ग्लासगो में मिली कामयाबी का जश्न तो अब पूरा हुआ है। अपनों के बीच आकर
1: ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना चल रहा है, इतने आप सब लोग आए हो हमारे स्वागत के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है, और ये वेलकम देखकर तो और अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे आगे अच्छा अच्छा परफॉर्म करें और इंडिया हमें ऐसे ही सपोर्ट करे।
1: काफी अच्छा लग रहा है, हमारे मतलब सब भिवानी से भी आए, हमारी फैमिली भी आई, कोचीज आए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आए, आर्मी से आए, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, कोचीज को, फैमिली को और गाँव वालों को इतना अच्छा स्वागत करने के लिए।
0: इन खिलाड़ियों ने बताया कि देश के लिए कुछ करने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है जब पोडियम में आप सबसे ऊपर खड़े होते हैं और आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं रह जाती, देश से जुड़ जाती है।
4: वो फीलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि वो हर एक स्पोर्ट्समैन को पता है कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लाना है,
5: ये इसी के लिए तो हम जाते हैं खेलने के लिए, और जो देश का झंडा बजता है तो फिर दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अभी एशियन गेम है, उसमें गोल्ड लेके आना है।
6: पहली बार कॉमनवेल्थ में मैंने 100 मीटर किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया और गेम रिकॉर्ड बनाया उधर 100 मीटर में, तो गोल्ड मेडल जीत कर और अपने देश का तिरंगा लहरा कर बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जिनके मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है, वो मार्गदर्शक, उनके कोच भी खुश हैं, सीना गर्व से चौड़ा हुआ है।
7: पैरालंपिक का इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये आगे आने वाला कॉमनवेल्थ हम इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत सक्सेसफुल भी हम कर सकते हैं। एंड अगेन, ये इतना मेडल कभी हमारे को आया नहीं था, इतना 20 साल में हमारा को मिला था टोटल 5 मेडल, इस सिर्फ एक ही कॉमनवेल्थ में हम 7 मेडल जीत लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग एशियन गेम्स में मोर देन 100 मेडल जीतने के लिए प्लान कर रहा है। 100 मेडल हम जीतेगा, ये अक्टूबर में जापान में होने वाला पैरा एशियन गेम्स में हम लोग मोर देन 100 मेडल जीतेगा।
0: देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों का सम्मान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी किया। केंद्रीय मंत्री ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के वेटलिफ्टिंग पदक विजेताओं और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का चेक और बुके देकर सम्मानित किया।
8: कॉमनवेल्थ पूरा होने के बाद सब खिलाड़ी लौट रहे हैं, सब वापस आ जाएंगे, उनके बाद मेरा विचार है आप सब लोगों को स्कूल में भेजना है, कॉलेज में भेजना है। जैसा यहां से कार्यक्रम आए और आपको कहा जाए कि ये कॉलेज में आपको जाना है, वहां आपका सम्मान स्वागत करा जाएगा, वहां आपको देश की न्यू जनरेशन को स्पोर्ट्स में के लिए जागरूक करना है। आपको कैसे अवसर मिला, आप कैसे यहां तक पहुंचे, हमारे और एथलीट को बताना है, तब जाके देश आने वाले दिनों में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में दुनिया में पहचान पाए।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू अपनी प्यारी मुस्कान और विनम्रता से भी सबका दिल जीत रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने आवास पर वेटलिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू से मुलाकात की और उन्हें बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मुलाकात से जहां मीराबाई चानू बेहद खुश नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स चैंपियंस की अगली पीढ़ी तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया। ग्लासगो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ से आती हैं। ऐसे में वहां के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उन्हें सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
9: ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए, और इस अवसर पर हम आज पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई के पद पर ज्ञानेश्वरी कार्यरत हैं। इनको आने वाले समय में हम डीएसपी बनाएंगे, सरकार इनको डीएसपी बनाएगी और साथ में 30 लाख रुपया इनको प्रोत्साहन स्वरूप इनको देंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे और आगे बढ़े।
0: जश्न का ये रंग, स्वागत का ये अंदाज, शुभकामनाओं का सिलसिला खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है, देश के लिए एक और मेडल लाने का संकल्प दृढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
11: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है, और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
13: हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोल बम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। दिल्ली एनसीआर में राहत की फुहार से लोगों को मिली गर्मी से राहत, हवा की गुणवत्ता में भी सुधार लेकिन उमस अभी भी बरकरार। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक की स्कूल्स और आंगनवाड़ी बंद रखने के आदेश। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, डीए बढ़कर 38% हुआ है, 1 अक्टूबर से खाते में आएगा ज्यादा पैसा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

बसदेव जी और नंद बाबा मिले तो दोनों दुखी हुए। बस नंद बाबा, इधर राजा कंस ने भगवान को मारने के लिए पूतना को बुलाया। इधर आओ पूतना। हाँ महाराज, सुनो, ब्रज में जितने भी नवजन्मित बच्चे हैं उन्हें तुम मार सकती हो। पूतना बोली, मार सकते, हम खा सकते, हमारा नाम ही है पूतना। और पूतना का अर्थ है पूतना, ना पूत, पूतना। तो आप चिंता ना करो, आज्ञा दो, निपटा देंगे। जाओ ब्रज में जितने भी 4-5-6 महीने के बच्चे हैं सब निपटाओ, क्योंकि आकाश में जो कन्या गई थी जिसे कंस मारना चाह रहा था, उस कन्या ने यही कहा था, उस देवी ने, महामाया ने, हे राजा कंस तू हमें क्या मारता है, तेरा मारने वाला पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुका है। तो राजा कंस को वही टेंशन है कि वो है कहां, बालकाल में ही निपटा दे। अब पूतना मौसी चली, मारने का उपाय क्या निकाला, अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा लिया, जहर, और गई। जितने नवजन्मित बच्चे थे सबको मारना प्रारंभ कर दिया, रूप बदल कर जा रही, सबको मारना प्रारंभ किया पूतना मौसी ने, और धीरे से गोकुल पहुंच गई। और गोकुल में जाते ही अपना रूप इतना सुंदर कर लिया मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो। इस बात पे हम एक बात और कहना चाह रहे, पूछो क्या, पूछो, किसी प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया हो तो ज्यादा भरोसा नहीं कर लेना चाहिए कि अंदर का, अंदर की जो वस्तु है वो भी क्वालिटी वाली होगी। पूतना मौसी ज्यादा मेकअप वेकअप लगा के गई पर अंदर राक्षसनी थी, बाहर से देवी दिख रही थी। बात समझ आई है? अरे बोलो, बात समझ आई? तो जरूरी नहीं जिस सामान की, वस्तु की पैकिंग ठीक हो वो वस्तु अथवा सामग्री बेहतर क्वालिटी की, देखकर भरोसा करना चाहिए। बहुत बार गलत को छिपाने के लिए बहुत अच्छी पैकिंग की जाती है, हाँ, खराब चीज के लिए। कई बार तुमने, आप लोगों ने पता नहीं ऐसा किया कि नहीं, हमने तो ऐसा किया गरीबी में, कई बार अच्छा वाला कुर्ता जब हमारा फट जाता था और दूसरा कुर्ता खरीदने की तो हिम्मत रहती नहीं थी, तो हम क्या करते थे, नामदेव दर्जी के पास जाकर फटे हुए जो सुराग रहता था वहां पर रफू करवा के फूल बनवा लेते थे, गमला का, गुलाब का, या मुगदर बनवा लेते थे, अथवा राम लिखवा लेते थे। लोगों को लगता था वाह क्या डिजाइन है, बड़ा डिजाइन का कुर्ता पहन रखा, तो उनसे तो यही कहते थे हाँ डिजाइन ही है, पर असलियत में हमें पता था कि ये डिजाइन थी नहीं, फटे के चक्कर में हो गई। थी नहीं, हो गई। ऐसे ही व्यक्ति होता है, कई बार बहुत मीठा बन जाता है। बुरा ना मानना, जो ज्यादा मीठा होता ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, ऐसे आदमी से बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। आओ, आओ, आओ। ये चुगलखोर बड़े खतरनाक होते हैं, बोलो सीताराम, बोलो बोलो बोलो। तो हम बता रहे थे मीठे आदमी से दूर रहो,
क्योंकि जो ज्यादा मीठा बोले समझ जाना दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली। हाँ, हाँ। और कई लोग हमने देखे बड़े विनम्र, अरे महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज करते करते ऐसी जेब काट के जाते। एक हमारा चेला था, जिंदा तो अभी भी है पर पास नहीं है किस्मत से, इतना मीठा बदमाश। जैसे ही हम देखे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी, हमें लगे बड़ा भक्त है, हमको देखते ही गुरुजी गुरुजी चिल्लाने लगता, बड़ा अच्छा भक्त है। तो हमने भी उसे जैसे ही मिले है सो लाड़ प्यार से, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बस बस बस रोते नहीं, खुश रहो खुश रहो, आशीर्वाद है आशीर्वाद। अच्छा वो ऐसा कर करके खिंचवाए फोटो, और फिर फोटो दिखा दिखा हमारे ही चेलों के घर जाके कहे कि गुरुजी ने भेजा है तुम्हारी पूजा करने को, 50,000 की पूजा करे यार, 50,000। और कई जगह चूना लगाया और हर 2-3 महीना में आके हमें 10,000-11,000 रुपया चढ़ाए, और बढ़िया दूर से ही देख के हाथ जोड़ गुरुजी। हमें लगे यार बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ा सीधा है। लेकिन जब हमने वो गुरुजी जो हमारे गुरु हैं वो हमसे बोले अरे इसके चक्कर में मत पड़ो, मीठा बदमाश है, कहां पड़े हो, जहर है जहर। हाँ तब तो हमने पहले दिन कहा था गांव बदलकर शहर हो रहे हैं, आदमी बदलकर जहर हो रहे हैं। और ज्यादा मीठा तो वैसे ही जहर होता है, ज्यादा मीठा खा लो शुगर हो जाएगी, शुगर होगी शरीर खोखला हो जाएगा, अच्छा खासा आदमी बर्बाद हो जाता। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। तो कोई बिना बात की तुम्हारी तारीफ करने लगे समझ जाना खतरा है, और ज्यादा तारीफ करने लगे तो समझ जाना और ज्यादा खतरा है, और कोई एकदम मीठी मीठी बातें बोले समझ जाना गड़बड़ नहीं है, महा गड़बड़ है। हाँ इसलिए हम गुरु जरूर हैं, हो सकता हमारी बहुत सी बातें कई लोगों को कड़वी लगती पर बुरा न मानना, कभी भी मीठी दवा कभी भी मीठी शहद किसी रोग को ठीक नहीं कर सकती है, जब तक कड़वी दवा ना पिलाई जाए तब तक रोग ठीक नहीं होता है। ऐसी बातें हैं सब मीठी मीठी सुनाई जाए तो तुम्हें लगेगी तो अच्छी, लेकिन बीमार हो जाओगे बीमार। अच्छी बातें सुनने, अच्छा आदमी तारीफ सुनने का बड़ा वो रहता है, सो भी रहा हो ना और सोते समय आधी नींदियों कोई तारीफ करे, भाई तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है तो लड़की बहुत अच्छी, तो पड़े ही पड़े कान ऐसे खुश हो जाते आहा। और आजकल के जमाने में तारीफ बहुत सस्ती हो गई है, इसलिए मेरे पागलो जो तारीफ करे ना उससे ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि ये नहीं करता कि तुम अच्छे हो, वो तारीफ इसलिए करता है उसे अपना काम तुमसे निकलवाना है। समझ गए, बोलो बोलो। इसलिए जिसकी पैकिंग बहुत बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा करना। हाँ, हाँ, हाँ। जिसकी पैकिंग बहुत बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा करना, क्योंकि बढ़िया पैकिंग में कई बार घटिया वस्तु हुआ करती है। बोलो सीताराम। अब हम किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे वरना आप लोगों को बुरा लग जाएगा, पर कह रहे कि भाई सावधान रहना चाहिए, ज्यादा चमक धमक भी अच्छी नहीं होती, थोड़ी बोड़ी तो ठीक है पर ज्यादा एकदम चमकी चमक धमकी धमक, समझ जाना चमकी धमक है अंदर कुछ भी धमक नहीं है, सब बाहर की चमक धमक है। बोलो सीताराम। और आदमी का चित्र कितना भी सुंदर हो, चरित्र सुंदर ना हो तो क्या काम का, बोलो हाँ या ना। अब पूतना मौसी ऐसी बनकर आई मानो लक्ष्मी जी लग रही हो, बढ़िया फाउंडेशन लगाए, मेकअप किए, सिंगार किए, नक्शे सिख तक। पूतना मौसी आई यशोदा मैया से बोली, अरे मैया बहन राम राम राम राम राम राम, राम।
यशोदा मैया बोली तो हमारी बहन कहां से लगती? अरे हम तुम्हारी दूर के बहन ही हैं, बहन हैं, हमें तो आज तक नहीं दिखी। अब वो क्या है कि हम बाहर गए थे तो शादी में आ नहीं पाए, बाद में हमारी भी व्यस्तता रही, तुम्हारी भी व्यस्तता रही, और हम तुम्हारी दूर की रिश्तेदारनी बहन ही लगे। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी आ गई, बताओ क्या आज्ञा है? नहीं आज्ञा नहीं है, हमने सुना तुम्हारे घर पे जाऊं उम्र में भी छोड़ा हुआ है, बधाई देने आए हैं। बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है साहब, भगवान की कृपा है, छोरा हो गया, भगवान की दया है। अच्छा जरा लाला को मुंह दिखा दे, जरा हम बधाई दे दे। देख बहन, अभी अभी हमने पालने में ठाकुर जी को सुलाया है, अपने लाला को सुलाया है, तू एक काम कर, दोबारा कभी आना, फिर दर्शन कर लेना। ना मैया तू चिंता मत कर बहन, तू अपना काम कर, मैं दूर से ही देख के चली जाऊंगी। बेचारी जसोदा मैया बातों में आ गई। अब जैसे ही यशोदा मैया काम में व्यस्त भई, सोई पूतना मौसी भगवान के पास पहुंच गई। तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, मौसी जी को देखते ही आंखें बंद कर ली। तो भाई भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले संत बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, और हमारी मौसी पहले ही जहर पिला रही, इसलिए आंखें बंद कर लो, चलो मंगलाचरण शुरू करें। तो मंगलाचरण जब होता है तो आंखें बंद कर ली जाती, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोलो सीताराम। भगवान ने आंखें क्यों बंद की पूतना मौसी को देखकर? दूसरा कारण सुनो, भगवान ने सोचा जब राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध किया था चाची ताण का, और कृष्ण अवतार में आए अब भी एक स्त्री का वध करना है मौसी पूतना, तो सोचा वेला और अब का सेम सेम ही है, चलो ध्यान कर लिया जाए, गणेश जी को बुला लिया जाए और मौसी जी का गोविंदाए नमो नमा कर दिया जाए। अथवा तीसरा कारण, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले भैया भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने, मौसी जी पिला रही हैं जहर, और जहर पीने का अनुभव है भोले बाबा, उनका ध्यान कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। चौथा कारण क्या है भगवान की आंख, भगवान आंख क्यों बंद करते हैं? भैया चौथा कारण है कि भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा लोग कहते हमारी आंखों में जादू है। क्या है? बोलो बोलो बोलो, जादू है, और कहीं हम देखते रहे अब मौसी जी हमारी तरफ देखती नहीं, कहीं ऐसा ना हो मारने आई हो दिल लगा बैठे, हाँ हमारी हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मौसी जी बच जाएंगी, हम तो ना मरेंगे पर ना जाने ये कितने बच्चों को निपटा देगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो सीताराम। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? पांचवा कारण सुनो, पूछो क्या? अरे जोर से बोलो। पांचवा कारण ये है भगवान की आंख बंद करने का, भगवान ने सोचा लोग हमको मायापति कहते हैं। क्या कहते हैं? और पूतना मौसी कौन सा रूप बना के आई? माया का, और हम हैं मायापति, हमारे सामने इसकी माया चलेगी नहीं, हम जैसे ही इसकी तरफ देखेंगे इसका असली रूप सामने आ जाएगा, नकली भग जाएगा, हमारी माताजी डर जाएंगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना मौसी भगवान के पास आई, भगवान को गोद में लिया, अपना स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान पहले तो दूध पीने लगे, दूध पीते पीते प्राणों को पीने लगे, और जैसे ही प्राणों को पीने लगे सोई पूतना मौसी छटपटाई, ना पूत ना पूत ना पूत, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले काओ मौसी जी अब कैसे छोड़ दे, हमारी एक आदत है। क्या मौसी? एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। अब पूतना मौसी भागी मथुरा की तरफ, हे भगवान ये लाला तो मार ही डालेगा। भागी भागी पूतना मौसी असली शरीर में आ गई, और जैसे ही थोड़ी दूर गोकुल से गई सोई भगवान ने सोचा ज्यादा दूर हो जाएंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, मौसी जी को जल्दी निपटाओ। सोई भगवान ने पूरे प्राणों को खींच लिया, और जहां प्राणों को खींचा भारी शरीर लेकर भैया 6 कोस का शरीर लेकर पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और

पांव फटकार कर खेलने लगे और मौसी जी से पूछने लगे, कहो मौसी जी कैसी रही। अब मौसी जी तो पड़ी है इधर। जसोदा मैया ने थोड़ी देर बाद देखा कि चलो पल्ला में देख लिया जाए लाला कहाँ गया। तो जैसे ही पल्ले में देखा, ठाकुर जी गायब। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, ठाकुर जी गायब। ठाकुर जी जैसे ही गायब हुए, यशोदा मैया देखने लगी, इधर उधर रोने लगी, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। सब गोपियां आ गई, गोप ग्वाल आ गए, क्या हुआ मैया क्यों रो रही है। अरे आज क्या बताएं, हमारा लाला ही गायब हो गया। लाला कहाँ गया? बोले अभी अभी तो पल्ला में लिटाया था। एक हमारी रिश्तेदारनी आई थी दूर की, पहचानते तो है नहीं पर वो आई थी, लगता है वही। इसलिए दूर की रिश्तेदारी कई बार बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, वो एक पुरानी कहावत है ना, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, वो कई बार बड़ी खतरनाक होती है। दूर की रिश्तेदारी में ही लफड़ा हो गया। अब यशोदा मैया रोने लगी, गोप ग्वाल बोले चिंता मत करो अभी खोज के लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते आए, मैया मैया मैया लाला मिल गया, लाला मिल गया। कहाँ है? भारी भरे शरीर के ऊपर पड़ा हुआ है। यशोदा मैया सब भागी भागी गई, ब्रज की गोपियां गोप ग्वाल भागे भागे गए। ठाकुर जी पहले तो खेल रहे थे, हंस रहे थे, मौसी को देख कर कहो मौसी जी और दूध पिलाओ, उठो जगो मौसी जी जाग जाओ। मौसी जी तो गई, बोलो सीताराम, बोलो बोलो। इधर यशोदा मैया भागी भागी आई, ठाकुर जी को देखा, लाला अरे ओ लाला, और पुकारती भागी भागी आई और पूतना मौसी के शरीर से उठाकर झटक कर गले में लगाए। तो पहले तो ठाकुर जी हंस रहे थे, मैया को देखते ही रोने लगे। नाटक पूरा करना पड़ेगा ना, रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, सोई यशोदा मैया, अरे राम राम, बताओ तो जी राक्षसनी, इतनी भारी बड़ी राक्षसनी हमारे बेटा को कहाँ लेके जा रही होगी। हे भगवान बड़ी कृपा कर दीजिए, गिर गई मर गई, बड़ी कृपा भाई, वरना आज हमारो लाला पता नहीं कहाँ गायब हो जातो। बताओ ये राक्षसनी को हमारो ही बेटा मिलो। तो तरह तरह की बातें सुनाने लगी। इतने में तुरंत एक गाय को मंगाया, जल्दी से गाय लाओ। क्यों? लाला को नजर लग गई, भूतनी चिपक गई, इसीलिए तो रो रहा है। गाय बुलाई, गाय की पूंछ पकड़ी और ठाकुर जी को झाड़ा लगाने लगी। जैसे हम झाड़ा लगाते ना, वैसे यशोदा मैया झाड़ा लगाने लगी। हे सुदर्शन चक्रधारी भगवान, हे नारायण, हे क्षीर सागर वाले भगवान, हमारे लाला की रक्षा करना। अब भगवान हंस रहे, क्यों हंस रहे? भगवान इस बात पे हंस रहे कि बताओ हमारे ही नाम से मैया हमको ही झाड़ा लगा रहे। हमारा ही नाम चक्र सुदर्शन धारी है और हम ही क्षीर सागर वाले हैं और हमको ही झाड़ा लगा रही। बोलो राधे राधे राधे राधे। अब यशोदा मैया बाकी ब्रज की गोप गोली ग्वाल वाल नहीं सोचने लगी कि जे बताओ भैया इतनी बड़ी राक्षसनी मरे कैसी, कैसे मर गई। तो किसी ने कहा हार्ट अटैक आ गया, किसी ने कहा कि भाई हार्ट अटैक भले ही आया पर इतनी भारी राक्षसनी अटैक से तो नहीं मर सकती। तो किसी ने कहा नहीं नहीं ब्रेन हेमरेज हो गया। भाई ब्रेन हेमरेज हुआ होगा तो कम से कम एक घंटा तो जिंदा रहती या तो बिल्कुल ही निपट गई। तो किसी ने कहा क्या हो सकता, बोले कोई बोला भाई लगता है गिर पड़ी चक्कर आ गए। बोले चक्कर आए तो जिंदा तो होती, कम से कम ऑक्सीजन ना मिलती, फड़फड़ाती तो। फिर हुआ क्या? छोटे छोटे बच्चे बोले मैया बुरा ना मानो तो हम बताएं। बोले हाँ बताओ। मैया मैया ये अपने लाला को लेके जा रही होगी जंगल, बाई समय पे जाने लगाई होगी दौड़, दौड़ लगाते समय जाके पैर में अटक गो होएगो पत्थर और पत्थर में फंस के गिर गई होगी, सो मर गई राण पूतना, ऐसे मरी। यशोदा मैया बोली कहूं इतनी भारी राक्षसनी वो चट्टा खा के थोड़ी मरेगी, कोई और कारण है, बेफिजूली की बातें मत करो, चलो भगो। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से वापस। बाबा बाबा बाबा तुम ठीक आ गए, क्या हुआ? एक भारी बड़ी राक्षसनी मर गई, मरी कैसे जे पता नहीं पर अपने लाला को लेके जा रही थी सो मर गई। नंद बाबा बोले अब हम समझ गए। क्या? बोले हमको मथुरा में वसुदेव जी ने कह दिया था कि तुम्हारे छोरा के ऊपर विपत्ति आने वाली है, हमें ये सुनते ही डर लगने लगा सो हम भागे, पर रास्ते में हमने हनुमान जी का नाम ले लिया कि हे हनुमान जी
हमारे छोरा की रक्षा करना। जे राक्षसनी हमारे छोरा को लेके जा रही होगी, हमने हनुमान जी को पुकार दिया, सो हनुमान जी ने एक मुक्का बना करके मुंह में दे दिया होगा, सो मर गई राण पूतना। बोले हाँ भाई हाँ, ये जरूर कारण हो सकता है पूतना मौसी के मरने का। बोलो वृंदावन बिहारी, मौसी जी निपट गए। पर भैया जब मौसी जी को जलाया गया तो पूतना मौसी के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। क्यों? बोले भैया जिसे भगवान स्पर्श कर ले पर वो पापी नहीं बचता है, वो फिर भगवान का हो जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान जिसको स्पर्श कर ले वो पापी थोड़ी रहेगा। गंगा जी में नहाने वाला पे पापी थोड़ी बचता है। ऐसे ही भगवान जिसको छू ले वो पापी थोड़ी रहेगा। थी पापनी, पर भगवान ने छू लिया, पाप खत्म। बोलो जय सियाराम।

0: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है? बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है? और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है? क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। दिल्ली एनसीआर में राहत की फुहार से लोगों को मिली गर्मी से राहत, हवा की गुणवत्ता में भी सुधार लेकिन उमस अभी भी बरकरार। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के आदेश। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, डीए बढ़कर 38% हुआ, 1 अक्टूबर से खाते में आएगा ज्यादा पैसा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: हरिद्वार की हर की पौड़ी में उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, गंगा स्नान और जल भरने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। हर की पौड़ी में बढ़ती भीड़ को संभालने में जुटी पुलिस और प्रशासन, लोगों से नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा इलाका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का किया सम्मान, फूलों के साथ किया स्वागत। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रियों के पैर धोए और खाना भी परोसा। सीएम धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हेल्थ कैंप का किया शुभारंभ, कांवड़ियों की हर सहूलियत का रखा जा रहा है ख्याल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ कांवड़ यात्रा में लगे पुलिस के जवानों को भी किया सम्मानित। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत वाली बारिश, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में हुई बारिश से लुढ़का पारा, हवा की गुणवत्ता में भी हुआ सुधार। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर के जिलाधिकारी ने एहतियातन 5 अगस्त को 12वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी को बंद रखने का जारी किया आदेश।

तौर पर किया गया ये भव्य आयोजन। मैसूर के अवधूत दत्त पीठम के पीठाधीश श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी की मौजूदगी में कार्यक्रम अमेरिका में आध्यात्मिक मिशन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजन। कार्यक्रम में 18 देशों के 10,000 से अधिक श्रद्धालु और हजारों छात्र हुए शामिल। विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना और श्रीमद् भगवत पारायण का किया गया पाठ। वसुधैव कुटुंबकम था कार्यक्रम का मुख्य विषय। सैकड़ों प्रशिक्षित बच्चों ने बिना देखे सभी 700 श्लोकों का किया सस्वर पाठ। श्लोक पाठ ने पूरे ऑडिटोरियम में भरी दिव्य ऊर्जा।

पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम यात्रा का उत्साह बरकरार। उफनती अलकनंदा नदी के बीच भी जारी है पवित्र यात्रा। मौसम की चुनौतियों के बावजूद सुचारू रूप से जारी है बद्रीनाथ धाम यात्रा। अब तक 15,57,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी पूरे जोश से जारी है श्रद्धालुओं का आना। अब तक 2,25,000 से अधिक श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था। पुंछ में श्रद्धालुओं ने शुरू की अराई शिव मंदिर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा। पिछले 5 साल से लगातार हो रही है पैदल यात्रा। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भक्तों के साथ कर रहे हैं कदम ताल। सावन में महीने में दिख रहे हैं कावड़ के अजब अनोखे रंग। मुजफ्फरनगर में गहनों से लदे शिव भक्त और भोलेनाथ की कावड़ देखकर सब हैरान। गोल्ड प्लेटेड है भगवान शंकर और कावड़िये के धारण किए गए गहने। तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है इनकी कीमत। हरिद्वार से सोनीपत तक तकरीबन 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं रोहित शर्मा। अपने कंधे पर बाबा भोलेनाथ को बैठाकर प्रतिदिन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी करते हैं तय। कावड़ यात्रा में दिख रहे हैं हर उम्र वर्ग के कावड़िये। हरिद्वार से जल लेकर यात्रा करती दिखी बच्चों की टोली। 5 बच्चों की इस टोली में 9 से 13 साल के बच्चे कर रहे हैं यात्रा। लगभग 50 दिन से कावड़ यात्रा में है फरीदाबाद के दो भाई। एक भाई ने उठाया है 110 लीटर जल, दूसरा 81 लीटर गंगा जल के साथ कर रहा है कावड़ यात्रा। हास्य और शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आया धनबाद। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर बनारस से आए आचार्यों ने संपन्न कराई दिव्य शव गंगा महाआरती। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र सरोवर में आयोजित हुई भव्य शिव महाआरती। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में हुए शामिल। सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रखा गया ये धार्मिक आयोजन। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाना था महाआरती का उद्देश्य। सवाईमाधोपुर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सालाना भव्य महा भगवा कावड़ यात्रा का हुआ आयोजन। शहर के रामद्वारा से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए दंडवीर बालाजी मंदिर में हुई संपन्न। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ हुआ कावड़ यात्रा का स्वागत। सावन के महीने में अलग अलग कावड़ यात्रा खींच रहे हैं लोगों का ध्यान। सहारनपुर में निकली बाहुबली वाली कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। 9 फीट ऊंची है श्री हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कावड़। बजरंगबली के साथ अगड़नाथ जी की आकृतियां भी है मौजूद। भगवान शिव की विशाल आकृति वाली सुनहरी कावड़ भी लोगों के बीच हुई लोकप्रिय। भोलेनाथ की प्रतिमा के दोनों ओर बनाए गए हैं सुंदर मोर। बिजनौर के एक कावड़ ने पेश की सेवा भाव की मिसाल। एक तरफ 90 साल की दादी और दूसरी तरफ गंगा जल लेकर कावड़ यात्रा को निकला पोता। हरिद्वार से हापुड़ लेकर सोनू कर रहे हैं 250

0: लीटर से ज्यादा की यात्रा, रोज लगभग 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं सोनू, दादी की कांवड़ यात्रा की इच्छा पूरी करना है उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी, 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा, 9 अगस्त को बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ, 10 अगस्त को गाजियाबाद, हापुड़ा, बुलंदशहर से हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे फूल। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलर्ट मोड पर रेलवे, दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन ने बनाया नया वॉर रूम, तमाम स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरेज। कांवड़ियों और आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ अतिरिक्त रेल कर्मियों की तैनाती, बड़ी संख्या में बैद्यनाथ धाम की तरफ रवाना होते हैं भक्त। सुरक्षा के साथ कांवड़ियों के आराम का भी रखा जा रहा है ख्याल, स्टेशन पर सात्विक भोजन और मेडिकल टीम की भी व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के गंजम जिले में स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां कंधुनी देवी मंदिर के साथ साथ तप्त पानी स्थित नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में की शीश नवाया और देश की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया, इस मौके पर कलाकारों ने ओडिशा के पारंपरिक नृत्य की भी झलक पेश की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत के लिए आई छात्राओं से मुलाकात भी की और छात्राओं को चॉकलेट भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए, दर्शन के बाद बोले, पवित्र सावन के महीने में कृष्ण मंदिर में शीश नवाया मेरा सौभाग्य है। बिहार के दरभंगा और आसपास के हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दरभंगा हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग को मिली इजाजत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी, दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द शुरू हो सकती है रात में उड़ान और लैंडिंग। सड़क सुरक्षा और बीमा नियमों को सख्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश, बिना बीमा गाड़ी चलाना पड़ सकता है महंगा। बिना बीमा के चल रही गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गाड़ी का बीमा नहीं तो तेल नहीं अभियान चलाने का दिया सुझाव। भारत के लकी रावत समेत दुनिया के मेधावी युवा पहुंचेंगे नॉर्थ पोल, रूस की आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज पहल के तहत एक खास आर्कटिक अभियान का बने हिस्सा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: बेलपत्र के प्रयोग से कैसे शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, बेलपत्र के प्रयोग से कैसे धन का लाभ हो सकता है और बेलपत्र के प्रयोग से कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। आज आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल तथा बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम सावन में शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव जी की पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं और जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना पूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान या विधान पाया जाता है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ये शिवलिंग अपने आप धरती के अंदर से प्रकट होते हैं, इनको स्वयंभू मानते हैं और स्वयंभू मान करके इनकी पूजा की जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जब भी आप शिवलिंग पर कोई वस्तु, जल, दूध ये अर्पित करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर अगर आप जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, लिक्विड चीज अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ जैसे फल, बेलपत्र आदि अर्पित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा।
और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए और मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से शिवलिंग की पूजा ना करें। जब आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो उस समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सामान्यतः जब रुद्राभिषेक किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक होता है, तो रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। अगर आप ये ना कर सकें तो एक विशेष मंत्र पढ़िए और शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करिएगा। मंत्र होगा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं या आप निरंतर नमः शिवाय का जप करते जाएं और शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करें, शिवलिंग का अभिषेक करते जाएं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज अर्पित करने से किस तरह का लाभ होता है। अगर आप शिवलिंग पर घी की धारा अर्पित करते हैं तो इससे आपके वंश का विस्तार होता है। इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के दुर्योग, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अगर आप अभिषेक करें तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग का अभिषेक शहद से करें तो पुरानी से पुरानी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। जल में शक्कर मिला करके शक्कर मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करें तो संतान प्राप्ति आसानी से होती है। शिवलिंग का भस्म से भी अभिषेक होता है और भस्म से अभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है, सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जल से अभिषेक करना।
शास्त्र कहता है कि शिव जी जल से, सूर्य देव नमस्कार से और भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप शिवलिंग पर कुछ अर्पित कर सकें या ना कर सकें, नियमित रूप से जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में किसी तरह का शस्त्र, चाकू, पिस्तौल आदि या नुकीली चीजें मत रखिए। अगर अपने बेडरूम में कोई शस्त्र रखेंगे, नुकीली चीज रखेंगे, तो वैवाहिक जीवन में विवाद और हिंसा आपके बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोल बम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। दिल्ली NCR में राहत की बुहार से लोगों को मिली गर्मी से राहत, हवा की गुणवत्ता में भी सुधार लेकिन उमस अभी भी बरकरार। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक की स्कूल्स और आंगनवाड़ी बंद रखने के आदेश। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, डीए बढ़कर 38% हुआ है, 1 अक्टूबर से खाते में आएगा ज्यादा पैसा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेलपत्र के बारे में। जी हां, सावन का पावन महीना चल रहा है और शिवजी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है बेलपत्र, और शिवजी की पूजा भी जब हम करते हैं तो बेलपत्र का उसमें उपयोग करते हैं। तो क्या है बेलपत्र की महिमा और क्या है इसके अद्भुत प्रयोग, इस पर पंडित जी से करेंगे हम विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
4: देखिए, सावन में चांदी का एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए, किसी भी दिन शिव जी को अर्पित करिएगा, और इसके बाद उस चांदी के बेलपत्र को अपने धन स्थान पर लाकर रख दीजिएगा। अगर आप सावन में ऐसा करते हैं तो सामान्यतः आपको धन की समस्या नहीं होगी।
3: और आइए अब जान लेते हैं 5 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि क्या है बेलपत्र और क्या है इसकी महिमा।
4: देखिए, आज हम आपको बताएंगे बेल पत्र के बारे में। बेल पत्र का शिव जी की पूजा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बेल पत्र है क्या और इसकी महिमा क्या है? देखिए, बेल नाम के वृक्ष की पत्तियों को बेल पत्र कहा जाता है या बिल्व पत्र कहते हैं। तीन पत्तियां एक प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता एक बेल पत्र मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं और सामान्यतः बिना बेल पत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेल पत्र के दैवीय प्रयोग तो होते ही हैं, इसके अलावा इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं और बेल पत्र के प्रयोग से तमाम बीमारियां बड़ी आसानी से गायब की जा सकती हैं। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के साथ करें तो आपको चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। बेलपत्र के बारे में कहा गया, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी एक बेल का पत्र अगर आप भाव से श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके तीन जन्म के पापों का नाश हो जाता है। यानी छोटा सा बेलपत्र आपकी कामनाओं को पूरा करता है और आपके पापों का नाश करता है।
3: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पहली तीन राशियों के बारे में, यानी कि मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में।
4: मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जान लेते हैं कि बेलपत्र का चुनाव कैसे करें और इसके प्रयोग की सावधानियां क्या क्या हैं।
0: जब आप पूजा के लिए बेलपत्र लेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह का बेलपत्र पूजा में प्रयोग करेंगे वो भी जानते हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, एक ऊपर और 2 अगल बगल। पत्तियां टूटी हुई ना हो और पत्तियों में छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करेंगे चिकनी तरफ से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं और बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। वैसे तो एक ही बेलपत्र आप जल से धो करके बार बार चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार में अगर 9 बेलपत्र चढ़ाएं और उसके बाद जल चढ़ाएं तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे।
1: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बारे में।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा पर जा सकते हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न अनमोल कुमार यादव जी ने हमें नेपाल से लिखा है। 7 मार्च 2006 का जन्म है, 8:15 रात को नेपाल। ये कह रहे हैं कि मैंने 12वीं पास कर ली है, क्या मैं आगे ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, विदेश जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनमोल आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपको अभी अपने मैनेजमेंट की, अपने फाइनेंस की पढ़ाई नेपाल या भारत से करनी चाहिए, अभी आपको विदेश जाने की सलाह नहीं देंगे। पढ़ाई करने के बाद लगभग 6 वर्षों के बाद अगर आप विदेश जाना चाहें तब आप विदेश जाकर ही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, 2027 के अप्रैल तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: अगला प्रश्न श्रीमती मुन्नी गुप्ता ने हमें लिखा है, असम से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 25 जुलाई 1996, 10:45 रात को कोकराझाड़ आसाम। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन बहुत खराब है, क्या शादी आगे चल सकेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। मुन्नी जी आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मेष लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा राहु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से ये जो उनका पहला विवाह है इसके चलने की संभावना नहीं लग रही है, अगले 10 से 11 महीने में ये शादी ब्रेक होगी, आपकी बेटी को कष्ट से और विवाह से मुक्ति मिलेगी ऐसा लग रहा है। साल 2028 में इनका दूसरा विवाह होगा और दूसरा विवाह इनके लिए कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। एक इनको माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाएं और इनसे बोलें कि रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके विवाह में काफी विलंब हो रहा हो तो कैसे करें बेलपत्र का उपयोग और प्रयोग, आइए जानते हैं पंडित जी से।
0: अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी शादी होने में काफी देरी हो रही है तो बेलपत्र के प्रयोग से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या उपाय करें? अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 35 साल है तो 35 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिए और इसके बाद एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए। हर बेलपत्र के साथ कहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और जब सारे बेलपत्र चढ़ा लें तो उसके बाद जल चढ़ाइए और फिर शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। वैसे तो ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन अगर सावन में ये प्रयोग करें तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे।
1: अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो रही हो, आप लगातार बीमार पड़ रहे हो, तो बेलपत्र का कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, आइए जानते हैं।
0: अगर आपको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या है या परिवार में किसी को स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र ले लीजिएगा। एक कटोरी में चंदन का इत्र ले लीजिएगा। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठिए, एक एक बेलपत्र चंदन के इत्र में डुबाते जाइए और वन बाय वन शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे ओम हों जूं सह, ओम हों जूं सह। इसके बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप किसी और के लिए भी ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर ये प्रयोग आप सावन में एक बार भी करते हैं तो गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी, आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर संतान होने में कष्ट हो रहा हो, आपकी संतान ना हो पा रही हो, तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करें, चलिए जान लेते हैं।
0: अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो बेलपत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? पति और पत्नी दोनों ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करेंगे। उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक कटोरी में दूध ले लीजिए, एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए। हर बेलपत्र को अर्पित करने के साथ कहेंगे, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ये मंत्र कहते जाएंगे और इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन अगर आप करें, पति भी करें पत्नी भी करें, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी।
1: तो बेलपत्र के तमाम प्रयोगों के बारे में हमने जाना। आप जानते हैं कि बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोग क्या है?
0: अब आपको बताते हैं बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में। लेकिन अगर किसी वैद्य से, आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर ये प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए बेल के पत्तों का रस आंखों में सुबह के समय टपकाने से राहत मिलती है। कफ से अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो बेल के पत्तों को उबाल कर उसमें शहद मिलाएं, बेल के पत्तों का काढ़ा पिएं, आपको कफ से राहत मिलेगी। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकाल कर सुबह सुबह खाली पेट पीने से कितना ही पुराना सरदर्द क्यों ना हो, सरदर्द ठीक हो जाता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: अगला प्रश्न अश्लेषा ने हमें लिखा है, नासिक महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। पिता की जन्म तारीख है 11 जनवरी 1962, 5 बजे प्रातः, जलगांव महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की शारीरिक मानसिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और आने वाले समय में उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अश्लेषा, आपके पिताजी की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके पिताजी के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अभी मध्यम समय चल रहा है, थोड़ा सुधार अक्टूबर 2026 के बाद होगा, लेकिन पूरी तरह से जिंदगी रास्ते पे आएगी नवंबर 2027 के बाद। आपके पिताजी का आने वाला समय ठीक है, भविष्य में उन्नति करेंगे, नवंबर 27 के बाद उनका बेहतर समय आ रहा है। अपने पिताजी को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और अपने पिताजी से कहें कि रोज सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से ही आज का अंतिम और चौथा प्रश्न, वो किसका लेने

0: प्रश्न हमें कामिनी अग्रवाल ने लिखा है और कामिनी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1980, शाम के 6 बजे, जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं वाराणसी से। कामिनी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ लगी रहती है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा? कामिनी जी, आपकी कुंडली में केवल आपको अपने डाइजेशन का, अपने पेट का ध्यान देना है, बाकी मामले इतने गंभीर नहीं हैं, और बेवजह की चिंता करने से बचना है। वैसे कुल मिला के फरवरी 2027 तक थोड़ा सावधानी रखिए, उसके बाद से स्थितियां आपकी बेहतर दिख रही हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बेलपत्र के बारे में, तो हमें पता है कि बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है, तो हम शिव जी की पूजा के वक्त बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो क्या बेलपत्र का किसी और देवी देवता से भी कोई संबंध है?
0: जी देखिए, ये हम सब जानते हैं कि शिव जी की पूजा में बेलपत्र का सर्वाधिक प्रयोग होता है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि बेलपत्र का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, और बेलपत्र को लक्ष्मी यानी समृद्धि देने वाला माना जाता है। हर शुक्रवार को शाम के समय अगर आप माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके उनकी पूजा करें, तो आपको जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त होगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 5 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह के मामलों में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गले में माला पहन करके सोना चाहिए, सो सकते हैं? देखिए, माला धारण करने के पहले उसको अभिमंत्रित कर लिया जाता है, और आप कोई भी माला पहनते हो, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, इस माला को रात को सोने के पहले उतार देना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दोबारा इस माला को धारण कर लेना चाहिए।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज के शुभ पहर यानी कि 5 अगस्त 2026 बुधवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करेंगे। आपकी संतान और विवाह संबंधी समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 अगस्त बुधवार शाम को 7

0: के 30 मिनट से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और अब जानेंगे आज की गुडलक राशि क्या है, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना चाहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये प्रयोग सावन में शुरू करके लगातार 9 दिन तक करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और इसके बाद शिवलिंग पर दोनों हाथों से चंदन लगाइएगा और इसके बाद सुखद वैवाहिक जीवन की, अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करिएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से आपने महा उपाय तो जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और अगली खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी। राजस्थान की पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाकघर में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम, मोली, मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री किसी विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि अनुभव से मिलती है। दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाले असलम इसकी जीती जागती मिसाल है। असलम रिक्शा चलाते हैं, लेकिन हुनर ऐसा कि विदेशी पर्यटकों से उनकी अपनी भाषा में बात करते हैं। वो फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी पर्यटकों से बातचीत करने का असलम हुनर रखते हैं। अपनी इस आर्ट से वो सोशल मीडिया पर भी लोगों का दिल जीत रहे हैं।
3: चांदनी चौक, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये इलाका ऐतिहासिक धरोहरों, चहल पहल भरे बाजारों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। इस इलाके की तंग गलियों में एक ऐसा आदमी भी है जिसने अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई है। इनका नाम है असलम। असलम पेशे से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अंदाज ऐसा कि पर्यटक उन्हें चलता फिरता लैंग्वेज गाइड कहते हैं।
4: दिल्ली के चांदनी चौक की गलियां अपने खाने और शादी ब्याह की मार्केटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन आजकल चांदनी चौक की गलियां एक इंसान की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं, जिनका नाम है असलम। असलम यूं तो चांदनी चौक के आसपास रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वो कई भाषाएं बोल लेते हैं। जर्मन बोल लेते हैं, इटालियन बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, और इसी वजह से आजकल वो बहुत वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम भी चांदनी चौक पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे असलम से और जानेंगे कि जितना वीडियो में बोलते हैं उतना ही है या फिर कुछ आगे का भी ज्ञान वो ले रहे हैं।
3: असलम की अंग्रेजी पर शानदार पकड़ है और वो जर्मन, फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में पर्यटकों से अच्छे बात भी कर लेते हैं। यही खासियत उन्हें चांदनी चौक की भीड़ में सबसे अलग पहचान दिला रही है।
5: सर, आई एम रिक्शा ड्राइवर असलम रिक्शा वाला, ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक। So, and Spice Market is very famous, the all of the Asia number one, and Chandni Chowk, the Moonlight Street, and Shahjahanabad, and also different even market, the street, and the old Delhi, in the Wedding Street, Sari Street, Silver Street, and so many narrow line, the small street, and also very beautiful, the temples, so Jain temples, Hindu temple, and the Sikh temple, and also big mosque, biggest mosque to India, and Jama Masjid, and also this Central Christian Puppet Church.
3: असलम विदेशी मेहमानों से बेझिझक उनकी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। उन्हें चांदनी चौक की गलियों से लेकर दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत तक का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
5: ओल्ड दिल्ली रिक्शा इज मच बेटर, यूर वॉकिंग अलोन, नेवर आइडिया, आई नो वेरी वेल योर होम, आई नो वेरी वेल आई एम दिल्ली, सो रिक्शा इज मच बेटर स्पीकिंग एंड ड्राइवर ऑल टुगेदर, सो यू आर हैप्पी, सो आई एम हैप्पी सर, यू आर माई गेस्ट।
3: कहते हैं कि अगर सीखने की लगन हो तो जिंदगी खुद सबसे बड़ी पाठशाला बन जाती है। न कोई बड़ी डिग्री, न किसी महंगे संस्थान की ट्रेनिंग, सिर्फ जिज्ञासा, मेहनत और सीखने का जुनून। यही कहानी है चांदनी चौक के असलम की।
5: हम जो है फॉरनर के साथ जो है हम सीखे हैं और उन्हीं में ढल गए, इसलिए हमें थोड़ा बोलना सीखना आ गया, पढ़ने लिखने नहीं आता है।
3: आज यही मेहनत और सीखने का जुनून उन्हें आम रिक्शा चलाने वालों से अलग पहचान दिला रहा है।
5: आई एम बिचकले ड्राइवर, सो बिचकलेता एंड रिक्शा बोलते हैं रिक्शा को, सो बिचकलेता एंड 220 दिल्ली, ऑल इज द ओल्ड मरकातो, मरकातो स्पाइसिया, मरकातो प्लाटा, मरकातो सारी, आला मिस्किता, टेम्पलो जैन, टेम्पलो हिंदू, एंड ऑल्सो पिकोलो पिकोलो बाजार, सो इटालियन सो इज द स्पीक।
3: असलम की ये यात्रा संदेश दे रही है कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना एक मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवा रही है। करीब एक महीने तक चलने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में गुरेज के करीब 15 गांव के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। लड़कों के साथ साथ इस इवेंट में लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस इवेंट का मकसद नौजवानों की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें सही राह दिखाना भी है।

0: होरेस की खूबसूरत वादियों में ये खेल प्रतियोगिता सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने की कोशिश है। गुरेज के हाई ग्राउंड बकतूर में इस इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भारतीय सेना की राणा बटालियन ने किया। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: ये नामी के राणा बटालियन ने यहाँ पे जो ब्लॉक बकतूर है उसमें एक इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें तकरीबन पूरे ब्लॉक के 15 गांव हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ खेलों में, जैसा कि वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, सभी प्रकार की खेल में हिस्सा ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों के बराबर लड़कियां भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। ये एक नेक शगुन है यहाँ के लिए कि लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर में अभी खेल रही है।
0: मैच फुटबॉल का हो या वॉलीबॉल का, हर खेल में नौजवानों का उत्साह देखने लायक था। वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट में स्थानीय गांव की लड़कियों ने भी खेल में अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
2: इंडियन आर्मी के बहुत ही मशहूर हैं, जिन्होंने यहां पे इंटर विलेज सपोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का इनका जो 16 जुलाई से किया था, उसमें बहुत सारी गेमें कराई गई, जिसमें बॉयज़ का फुटबॉल, गर्ल्स का बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो आज बॉयज़ का इज़मरक वर्सेस झिलंडोरा के माबेन वॉलीबॉल खेला गया, तो उसमें इज़मरक ने विन दर्ज की। तो इससे यही दर्शाता है कि यहाँ के बॉयज़ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को आगे लाने के लिए, और इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की ओर न जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो गेम्स में हिस्सा लें।
0: गुरेज में एक महीने तक चलने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी। अब 15 अगस्त के मौके पर इस स्पोर्ट्स इवेंट का भव्य समापन होगा। इस इवेंट में 15 गांव के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी टीम वर्क को और मजबूत करना है। खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ ये फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है। फेस्टिवल के दौरान सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले गांव और सबसे ज्यादा साफ सफाई रखने वाले गांव को भी सम्मानित किया जाएगा।
3: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा पर गुरेज घाटी में बकतूर गांव में विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नियंत्रण रेखा पर रहने वाले गांव के बच्चों और बच्चों ने इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लिया। दरअसल ये एक पहल है नशा मुक्त भारत बनाने की, जिसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही किया था। अशरफानी, श्रीनगर।
4: चीन की मशहूर चाका सॉल्ट लेक इन दिनों अपने अद्भुत नजारों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। डूबता सूरज, उगता चांद, चमकती झील और उसके बीच से गुजरती ट्रेन, हर दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। प्रकृति ने ऐसा नजारा रचा है कि हर देखने वाला ठहर गया। दरअसल ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, बल्कि चीन की चाका सॉल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा हुआ है।
5: कभी कभी प्रकृति ऐसी तस्वीर बनाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक तरफ डूबता सूरज, दूसरी तरफ उगता पूरा चांद, बीच में आईने की तरह चमकती झील और उस पर तैरती हुई सी गुजरती एक ट्रेन। ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं, बल्कि चीन की चाका साल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। उत्तर पश्चिम चीन के किंघाई प्रांत में स्थित चाका साल्ट लेक को मिरर ऑफ द स्काई यानी आसमान का आईना कहा जाता है। चाका साल्ट लेक अपनी मोटी नमक की परत और आईने जैसी सतह के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साफ मौसम में ये झील इतनी साफ तस्वीर बनाती है कि इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत साल्ट लेक्स में गिना जाता है। यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक इस जादुई नजारे को अपनी आँखों में कैद करने यहाँ आते हैं। प्रकृति जब अपने रंग बिखेरती है तो शब्द भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। चीन की चाका साल्ट लेक का ये नजारा भी कुछ ऐसा ही है, जहां कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है कि आसमान और धरती के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड टुडे।
4: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
6: इस वायरल तस्वीर में दो रंग हैं। बरसात में एक माँ बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही है। सड़क पर एक जगह पानी भरा देख बालमन उस पानी में खेलने लगता है, लेकिन माँ को रहती है उसके स्वास्थ्य की चिंता, तो वो उसे खींच खींच कर पानी से वापस लाती है। और वहीं उसी जगह जब बच्चा पिता के साथ होता है, पिता भी उसके साथ बच्चा बनकर छपाक्षाई करने लगते हैं। लोगों को तस्वीर के ये दो रंग बेहद भा रहे हैं। ये तस्वीर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगी। इस वीडियो में बच्चे अपनी परछाई को देख अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। धूप में बनी अपनी ही शैडो को देख एक बच्चा जहां उसके साथ खेलता है, तो वहीं दूसरे बच्चे उसकी परछाई को देख डर जाते हैं और रोने भी लगते हैं। इन तस्वीरों को देख सबको बेहद हंसी आ रही है और अपना बचपन भी याद आ रहा है। जाहिर है ये बच्चे जब भी अपना ये वीडियो बड़ा होकर देखेंगे तो मुस्कुराएंगे ही।

0: इन तस्वीरों को देख पहले तो आपको भरोसा नहीं होगा कि किसी कलाबाज की तरह सड़क पर साड़ी पहने जो स्केटिंग का धमाल दिखा रही हैं, वो कोई दादी हैं। सड़क पर दादी का ये कमाल देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। पहले तो लोगों को यही भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई उम्रदराज, वो भी महिला, इस तरह स्केटिंग कर सकती है। ये तस्वीरें जबरदस्त वायरल हैं और सबका जोश बढ़ा रही है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। दिल्ली NCR में राहत की फुहार से लोगों को मिली गर्मी से राहत, हवा की गुणवत्ता में भी आया सुधार, लेकिन उमस अभी भी बरकरार। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने का आदेश। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, DA बढ़कर 38% हुआ, 1 अक्टूबर से खाते में आएगा ज्यादा पैसा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी। उम्मीदों भरे पहर की खुशी भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: शुभ समाचार की शुरुआत मौसम के साथ होगी, सावन में भदरा झूम रहे हैं, देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी बादलों ने डेरा जमाया हुआ है, कई जगह बारिश भी हुई जिससे गर्मी और उमस से राहत भी मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, तो कहां कहां होगी बारिश बताएंगे आपको विस्तार से।
4: और इसी के साथ बात सावन में कांवड़ के रंगों की भी होगी, हर जगह अपार आस्था और उमंग की कांवड़ नजर आ रही है, सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखी कांवड़ देखने को मिल रही है, पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी हुई है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़ियों का जोश भी भरपूर नजर आ रहा है, तो इन नन्हे कांवड़ियों से भी आपको मिलवाएंगे।
3: तो बप्पा की मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है, कुछ ही दिनों में गणपति बप्पा हर घर और हर पंडाल में विराजमान होने वाले हैं, ऐसे में तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही हैं, मूर्तिकार दिन रात एक कर मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो बप्पा का ये स्वरूप भी आगे हम आपको दिखाएंगे।
4: इधर दिल्ली वालों को जल्द मिलेगी सौगात, 11 साल का इंतजार खत्म होने वाला है, पूर्वी दिल्ली को साउथ दिल्ली से जोड़ने वाला 12 पुला Phase 3 एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो चुका है और अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है। आपको बता दें ये 1,330 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ राजधानी का सबसे अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इस एलिवेटेड कॉरिडोर के इसी महीने शुरू होने की संभावना है। कहां से कहां तक बना है ये 12 पुला बताएंगे आगे।
3: इसके अलावा बात मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी होगी, जिनकी शादी का इंतजार अब खत्म हो सकता है, खबर है कि रोनाल्डो अपनी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेस के साथ इसी शनिवार को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शादी की तैयारियां एक तरह से पूरी हो चुकी हैं, तो इस बारे में भी आपको विस्तार से हम देंगे आगे जानकारी, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौगढ़ न्यूज का।
4: अमेरिका के टेक्सास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ किया, विदेशी धरती पर सनातन संस्कृति के प्रति ये समर्पण इस बात का प्रमाण है कि भारतीय आध्यात्मिक विरासत सीमाओं की मोहताज नहीं है, और यही वजह है कि टेक्सास का ये आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव और उसके बढ़ते विस्तार का एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया।
3: उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों का शानदार स्वागत किया गया, वहां पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, वहीं CM धामी ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। जहां उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोए, वहीं कांवड़ियों ने भी भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया।
4: सावन मास के दौरान हरिद्वार की प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर लाखों शिव भक्तों और कांवड़ियों का भारी सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु पावन गंगा नदी में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कांवड़ में पवित्र गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं।
3: पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच बद्रीनाथ धाम यात्रा का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु तमाम मुश्किलों के बाद भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उफनती अलकनंदा नदी के बीच और मौसम की चुनौतियों के बावजूद पवित्र बद्रीनाथ धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 15,57,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं।
4: नागपुर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। भगवान बप्पा की मूर्तियां इको फ्रेंडली बनाई जा रही हैं और इस बार गणेशोत्सव में महाकाल और बाबा खाटू श्याम की भी मूर्ति नजर आएगी। वहीं ओमान और रशिया की बप्पा की मूर्तियां भेजी गई हैं। नागपुर के मूर्तिकार राजेश चौराई की मूर्तियां बनाई है।
3: बिहार के भोजपुर के रहने वाले सरकारी शिक्षक रवि कुमार ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर धमाल मचा दिया। वो सिर्फ 9.15 सेकंड में ए से जेड लिखकर बने दुनिया के सबसे तेज अल्फाबेट राइटर। रवि कुमार ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में फास्टेस्ट टू राइट इंग्लिश अल्फाबेट्स इन अपर केस में रवि कुमार ने नाम दर्ज कराकर देश, राज्य, जिले और परिवार का नाम रोशन किया है।
4: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर स्वदेश लौटे वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। अमृतसर हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। जीत पर परिवार और गांव वालों ने भांगड़ा करके खुशियां मनाई। वहीं लवप्रीत बोले, अब गोल्ड मेडल जीतना लक्ष्य। इस मौके पर सरपंच ने होनहार बच्चे का खर्च उठाने का ऐलान किया।
3: उत्तर प्रदेश में आगरा के कांस्टेबल संदीप यादव ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में परचम लहराया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में हुई 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में संदीप ने उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए पिंचिक सिलाट, जो कि इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है, इसके रेगु इवेंट में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया।
4: फिल्म मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नंबरी अब रिलीज हो चुका है, जो फिल्म का माहौल बनाता है। अब धन्ना न्योलवी वाला के गाए और कंपोज किए गए और लिखे गए इस जबरदस्त गाने के साथ एक्सल म्यूजिक की पहली रिलीज और धन्ना का बॉलीवुड डेब्यू हुआ है। फिल्म के 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले इसका ऑफिशियल ट्रेलर 11 अगस्त को जारी किया जाएगा।

0: और अशुभ समाचार की शुरुआत सावन के साथ करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सावन के खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं। आसमान में घने बादलों का डेरा है और कई इलाकों में रुक रुक कर तो कहीं लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं खेत खलिहानों में भी जान फूंक दी है। सावन की बुहारों से प्रकृति का सौंदर्य निखर उठा है और हरियाली चारों ओर छा गई है। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक दिल्ली NCR में फिलहाल सुहाना मौसम बने रहने की उम्मीद है और 10 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बुधवार 5 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी कर अगले 6 दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं पहाड़ों पर भी बारिश से रौनक बदल गई है, पहाड़ों की हरियाली देखते ही बन रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला चल रहा है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में 9 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, हर तरफ सावन का रंग आपको देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश जो है वो कल से हो रही है और इसी के साथ दिल्ली NCR को गर्मी से राहत मिली है। लगातार कई दिनों से उमस भरी गर्मी से दिल्ली और NCR वालों को जूझना पड़ रहा था, लेकिन इस बारिश की फुहारों ने सबको राहत दी है।
1: देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला सा है। कहीं बादलों ने डेरा जमा रखा है तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है।
2: धूप, बादल, फिर बारिश और फिर से धूप, लगातार मौसम का यही चक्र 3-4 दिन से चलता आ रहा है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली NCR के लिए ऐसे ही मौसम की भविष्यवाणी कर रखी है। कहा गया है कि 8 अगस्त तक दिल्ली NCR में ऐसे ही मौसम बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, हल्की से मध्यम के बीच में। 8 अगस्त तक मौसम ऐसे ही लुका छिपी खेलता रहेगा।
1: मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक दिल्ली NCR में फिलहाल सुहावना मौसम बने रहने की उम्मीद है और 10 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बुधवार 5 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी कर अगले 6 दिन हल्की बारिश का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है।
3: मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट बारिश को देखते हुए इशू किया है।
4: इस समय आप देख सकते हैं कि देश भर में बारिश को लेकर क्या हालात हो रखे हैं। ज्यादातर इलाकों में आप देख सकते हैं कि येलो अलर्ट है, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर इशू किया गया है। यानी कि पूरे देश में हर कोने में आप देख सकते हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो या चाहे ईस्ट और वेस्ट इंडिया हो, आप देख सकते हैं कि हर कहीं येलो और ऑरेंज अलर्ट आपको नजर आएगा। मतलब हर कहीं इस समय देश में बारिश के जो हालात हैं वो बने हुए।
1: देश में 2 सप्ताह तक मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इसको लेकर पॉजिटिव हालात हैं। उत्तर भारत में मॉनसून फिर से जोर पकड़ रहा है और कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला चल रहा है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में 9 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
5: 7 अगस्त तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। साथ में 8 और 9 अगस्त को जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मैरान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मानसून का जो बारिश है वो जारी रहेगी। तो ओवरऑल अभी मानसून 5-6 दिन तक सक्रिय रहेगा। इसी दौरान अगर बात करें, देखिए अलर्ट्स की बात करें पहले, तो ओवरऑल अभी भी संभावना है कि कुछ एक स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। हालांकि ये जो अलर्ट है ये हैवी रेनफॉल का येलो कैटेगरी में। अगर इसमें डे वाइज अगर बात करें तो आज 3 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर के लिए हैवी रेनफॉल हो सकता है। 5 अगस्त को कांगड़ा और मंडी के लिए हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। 6 अगस्त को इसमें डिस्ट्रिक्ट में पूरे मतलब जिसमें बात करें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलह, सिरमौर यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। और 7 अगस्त को कांगड़ा, चंबा और मंडी में हैवी रेनफॉल। तो ओवरऑल बात करें तो रुक रुक के बारिशों का दौर प्रदेश में देखने को मिलेगा, कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।
1: इसके अलावा देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। यूपी में 6 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। देश के कई हिस्सों में बुधवार 5 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। असम और मेघालय के अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल से लेकर कर्नाटक तक भारी बारिश का अनुमान है। हरियाणा और पंजाब में भी सुहावना मौसम बना हुआ है, कई जगहों पर बारिश हुई भी है। इन दोनों ही राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली से अनमोल नाथ वाली और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: वहीं केरलम के अलपुजा में कुछ जगहों पर बाढ़ का पानी घुसने से वहां पर नाव चलानी पड़ रही है। आपको बता दें आलम यह है कि वहां के कुछ इलाकों में 90% तक मकान पानी से डूब चुके हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रिलीफ कैंप्स में लोगों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन लोग लगातार यहां पर जूझ रहे हैं। 90% से ज्यादा मकान यहां पर पानी में डूब चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कुछ इस तरह से लोगों को बाहर निकालना पड़ रहा है इन ग्रस्त इलाकों से। तो बारिश से देश के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। असम से केरलम तक के कई इलाकों को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुका है। इन राज्यों में सरकारी स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, तो लोग भी मददगार बन रहे हैं। वहीं कई जगहों पर बारिश और बाढ़ के पानी में फंसे इंसान से लेकर बेजुबान तक को बचाने में लोग अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं।

0: लगातार हो रही बारिश से देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं और लोगों के सामने मुश्किल हालात बन गए। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। इस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस से लेकर सेना तक जुटी हुई है। इन सब के अलावा जगह जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें लोग अपने स्तर पर भी मदद करते नजर आ रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा की ये तस्वीरें देखिए, जहां नेपाल से लौट रहे 11 श्रद्धालु तमसा नदी में फंस गए। तो वहां कुछ युवा इन श्रद्धालुओं की मदद के लिए पहुंच गए और फिर मानव श्रृंखला बनाकर उन युवाओं ने 3 बच्चों समेत सभी 11 श्रद्धालुओं को एक एक कर सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। अब पंजाब के फजिलका की सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर देखिए, जहां बारिश के पानी से लबालब सड़क से गुजर रहे 2 बाइक सवार गड्ढे में जा गिरे। आसपास के दुकानदारों ने तेजी दिखाते हुए दौड़कर दोनों युवाओं को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सड़क धस जाने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि दुकानदारों की मदद से दोनों बाइक सवारों को बचा लिया गया। बारिश की वजह से इंसान से लेकर बेजुबान तक के सैलाब में फंसने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। राजौरी में मनावर नदी के तेज बहाव में कई पालतू पशु को बहता देख आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाई और पानी के तेज बहाव के बीच से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए।
1: यहाँ पर जो जानवर जो बह रहे थे नदी में, और लोगों ने अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने उन जानवरों को बचाया। लोग नदी नालों से दूर रहे क्योंकि लगातार राजौरी में हो रही बारिश भयंकर रूप अख्तियार कर रही है।
0: इन जगहों के अलावा असम से लेकर केरलम तक के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया, जहां उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई। असम में शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित 7 जिलों में जिंदगी बचाने का अभियान बीते कई दिनों से जारी है।
2: जो हम लोग यहाँ पर मुश्किल वक्त आया है, तो वो सेम सर ने थोड़ा कुछ हम लोग को हेल्प कर देगा।
3: हमारी किताब वगैरह सब खत्म हो चुका है, घर तो है ही नहीं। उनके बारे में बात किया है हमने उनसे, मतलब तो उन्होंने बोला है कि हम देंगे, तो उनके ऊपर ही भरोसा है।
4: रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो मैं सीएम सर को यही बोलूंगी कि हम लोग को थोड़ा सा लाइक घर बना दीजिए, थोड़ा वही चाहिए। अब वही तो राशन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन बनाने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है।
0: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुद लगातार हालात पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लगातार हालात का जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं।
5: बीते 2 दिन में शिवसागर सरायदेव जिला में ही है, बांध में जो बाढ़ आया लोगों को काफी क्षतिग्रस्त किया। हम एक बार जायजा भी ले रहा हूँ, कैसे किसको कैसे कुछ हम लोग मदद कर सकता हूँ, साथ में कैसे ये समस्या को हल भी कर सकता हूँ। मैंने खुद देखा और जो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा हम लोग करेगा।
0: उधर केरलम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी राहत और बचाव के काम में टीमें जुटी नजर आई।
6: हेवी रेनफॉल हैज डिक्रीज, नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल।
0: बारिश और बाढ़ के बीच जगह जगह राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, ताकि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। बगहा से अभिषेक पांडे और राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो वहीं गुजरात के गिर और आसपास के इलाकों में अब सड़क पर शेरों का दिखना कोई नई बात नहीं रही। आए दिन शेर सड़क पर नजर आते हैं और इनके वीडियोस जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हैं। हाल ही में ऐसे ही दो वीडियो सामने आए हैं जिनमें गिर में शेरों की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, गुजरात के सोमनाथ कॉरिडोर फोर लेन हाईवे की बताई जा रही है। यहां पर सुबह करीब 4 बजे 4 युवा शेर सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिए, तो वहीं शेरों को सड़क पर देखकर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। वहां से गुजर रहे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा में शेरों को कैद करना शुरू कर दिया और अब ये वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। दूसरे वीडियो में एक शेरनी अपने 3 शावकों के साथ सड़क को पार करती हुई नजर आ रही है और दावा किया जा रहा है कि वीडियो वेरावल तहसील के मंडोर और भोरला गांव के आसपास का है।
8: और चलिए अब बात कर लेते हैं कावड़ के रंगों की।

सावन का एक रंग महादेव की भक्ति भी है। देवघर से लेकर काशी तक, हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक, पूरा देश इन दिनों शिवमय नजर आ रहा है। कहीं बोल बम के जय घोष से वातावरण गूंज रहा है, तो कहीं कावड़ यात्रा में आस्था के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। सावन में चारों ओर शिव भक्ति का रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पावन महीना है। यही वजह है कि देश भर में सावन के महीने में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। गंगा जल लेकर कांवड़िए बोलबम के जय घोष के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।

तो सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। सावन में देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। भगवान महाकाल के दिव्य धामों में भी इन दिनों आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। महाकाल धाम में ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु लंबी कतार में लगे हुए हैं और यहाँ पर महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन जारी है और आज भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें दिखाई दी है। तो देखिए सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कावड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कावड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी हुई है। बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कावड़ियों का जोश भी भरपूर नजर आ रहा है।

0: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कंधे पर कांवड़। सावन के पावन माह में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन माह की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है, तो कहीं बजरंगबली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है, तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नरसिंह के अवतार की झलक मिल रही है, तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानंद ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
1: इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
2: पहले भी आ चुके हो?
1: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
2: मांगा था जो पूरा हुआ है?
1: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
0: कुछ कांवड़ झांकियों में शिव परिवार सजा है, तो कुछ कांवड़ झांकियों में पूरे शिवालय की झलक मिल रही है, तो कुछ कांवड़ झांकियों में पूरे शिव परिवार की झलक मिल रही है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के जोश के साथ भी भगवान शिव के अटूट आस्था की तस्वीर दिख रही है। फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसे ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है, तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है।
3: महादेव के पक्के वाले भक्त। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हमें कई सारे कांवड़िए रास्ते में मिल रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के शनिदेव मंदिर पर हैं और यहाँ पर भी एक शिविर बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए आकर विश्राम कर रहे हैं, वापस से अपने शरीर की ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दो भाई मिले हैं, दोनों कज़िन हैं और दोनों ही महादेव के पक्के वाले भक्त हैं। हरिद्वार से जल लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, नोएडा तक पहुँच गए हैं।
0: नंदगांव से पहली बार कांवड़ लेकर आए इन दो भाइयों के कांवड़ पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर है। ये दोनों जल उस नंदगांव के शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, जहां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए महादेव ने तप किया था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन माह में उनके लिए भगवान की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
4: अमरनाथ यात्रा के साथ अब बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। आपको बता दें, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 16 अगस्त को इस यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा इंतजाम कर लिया है। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं।

0: भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है घाटियां। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू पवित्र गुफा की यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है भक्तों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा में जुलाई और अगस्त के महीने में मौसम एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। खराब मौसम की वजह से कई बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन मौसम ठीक होते ही ये यात्रा फिर शुरू हो जाती है और भक्तों का जोश बरकरार रहता है। अमरनाथ यात्रा के उत्साह के साथ ही अब बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। इस महीने की 16 तारीख को बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा। इस यात्रा के लिए रजौरी और पुंछ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
1: बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है वो अगर देखें जो हमारा जो दो डिस्ट्रिक्ट है रजौरी पुंछ ये सुंदरबनी से शुरू होके तो बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा जो है वो मंडी में ख़त्म होती है। तो पूरे रूट में हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है, जो हाई जो रिजिज हैं वहाँ पे डोमिनेशन प्रॉपर होती है, जहाँ पे लंगर लगते हैं, जहाँ पे लॉजमेंट सेंटर्स हैं, तो हर जगह पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है, सीआरपी की रहती है, आर्मी की रहती है, तो सभी फोर्सेज जो हैं मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में रह के पूरी अच्छे ढंग से जो सिक्योरिटी है वो हम दे

0: व्यापक स्तर पर नाकेबंदी रहेगी। यात्रा रूट पर गश्त और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ प्राचीर शिव मंदिर में दर्शन को अमरनाथ यात्रा जितना ही पवित्र माना जाता है, ऐसे भी मान्यता है कि बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के साथ ही अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होती है। हर साल की तरह इस साल भी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि जिस तरह से सुरक्षित वातावरण में अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसी तरह बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी शांतिपूर्ण माहौल में पूरी सहूलियत के साथ पूरी हो। जम्मू से राही कपूर, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सोशल मीडिया पर छाया है रोनाल्डो की शादी का किस्सा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: हरिद्वार में अर्की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। दिल्ली एनसीआर में राहत की फुहार से लोगों को मिली गर्मी से राहत, हवा की गुणवत्ता में भी आया सुधार लेकिन उमस अभी भी बरकरार। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के आदेश। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, डीए बढ़कर 38% हुआ, 1 अक्टूबर से खाते में आएगा ज्यादा पैसा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: तो ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। अब हम कामयाबी के वो किस्से बयां करने जा रहे हैं जिनकी चर्चा लंबे वक्त तक होती रहेगी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया, पहली बार भारतीय बॉक्सर्स ने एक ही संस्करण में 7 गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया और इसमें महिला बॉक्सर्स की अहम भूमिका रही। आपको बता दें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 मेडल्स जीते जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं। भारत की इन गोल्डन गर्ल्स ने GNT से खास बातचीत की और कामयाबी के किस्से बयां किए हैं, सुनिए।
3: साक्षी, जैस्मिन, प्रिया, अरुंधति, प्रीति, ईच वन ऑफ देम have lived with struggle, hardship, hard work, but a determination. 5 gold medals for India in CWG 2026 in Glasgow in boxing. Not easy. We've often heard it from men getting us boxing medals, 5 young women. Sakshi, main aapse sabse pehle shuru karti hu. Aapke liye isliye easy nahi tha kyunki jab main research kar rahi thi mujhe pata chala aapko kitna manage karna padta hai jab in terms of your own weight aur जब दूसरों से भी कंपटीशन करना पड़ता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे रहता है एक यंग लड़की में जो कहती है बॉक्सिंग भी करनी है, दूसरों को डिफीट भी करना है और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है?
4: जी, मैंने पहले 54 kg खेलती थी, हाँ। तो भी मैंने कट करके 51 में खेल रही हूँ मैं, तो एक यही स्ट्रगल है कि वेट को मेंटेन करके रखना, भूखे प्यासे, मतलब अगले दिन फाइट होती है तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, उससे पहले वाली जो दिन होता है, फिर पूरी रात प्यासा रहना पड़ता है और फिर मॉर्निंग में बाउट हम खेलते हैं और उसके बाद फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रेशर था, एक जो हम खेलने जाते हैं तो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अलग होता है।
3: जैस्मिन का बहुत इंटरेस्टिंग है, जैस्मिन 40 डेज पहले आई थिंक जो बाउट के आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो क्या आपको एक पॉइंट पे लगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो गया हाथ से?
4: मैम, मेरी तबीयत मतलब 20-25 दिन तक ऐसे खराब कंटिन्यू चल रही।
3: बट क्या हुआ था, मतलब कि
4: स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल रहा था, डेली फीवर आ रहा है 102-103 और टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट लेके ठीक हो जा रहा है, फिर 2-3 घंटे असर है जो टैबलेट का ठीक है, वापस फिर से ऐसे ही आ जा रहा है, तो 1 वीक तो हमने उसी में निकाल दिया कि चलो ठीक है ठीक है। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, फिर मतलब हम ये कोशिश कर रहे थे सभी डॉक्टर्स की हो क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली है क्या,
3: फिर कैसे कैसे टीम ने
4: हमने मतलब इसी में 20-25 दिन ऐसे ही निकल गए ऐसे, फिर हमने हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया अच्छे से और फिर वहां पे एक टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
3: प्रिया, आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया और कैसे अपने आप को कॉन्स्टेंटली आप बूस्ट करते रहे कि जहां लेजेंड्स हैं हमारे, मुझे अपना भी नाम उसमें दर्ज करना है? कौन सी एज में स्टार्ट किया आपने प्रिया, और कब आपको लगा कि अब मुझे भी लेजेंड्स में अपना जो है नाम दर्ज करना है?
5: मैंने 10 साल की एज में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, तो उस समय मैं बहुत शरारती थी, तो ऐसे होता था कि कोई गेम कर ले, मेरे घर को मुझे गेम्स में डाल दिया, शरारती है।
3: तो गेम्स तो बहुत थी, बॉक्सिंग में कहाँ से आ गई?
5: तो लड़ाई तो बॉक्सिंग में होती है।
3: हाँ, तो उसका जोश था,
5: उसका जोश था। फिर बाद में ऐसे ही विजेंदर बॉक्सर हैं, उनका नाम सुनने में आया कि वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि हमें विदेश के लिए मेडल लेकर आना।
3: वेल डन अरुंधति, आप तो कोटा से आ रहे हो, यू शुड हैव बीन डूइंग एन आईआईटी और सम इंजीनियरिंग कोर्स और समथिंग एल्स, या कोचिंग सेंटर में स्क्रू आप लगे हुए होते। व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे हटना है बाबा मम्मी, मुझे कुछ और करना है, और प्रॉब्लम हुई क्या उसमें?
6: नहीं, सेम था कि स्कूल में जैसे बॉयज को साथ लड़ाई करना, पीट के आना, और फिर प्रिंसिपल का घर पे फोन आना कि वी आर सस्पेंडेड फॉर वन वीक बिकॉज ये बहुत मस्ती करती है। तो पापा तो चाहते ही थे कि हाँ आईआईटी करूँ, लेकिन फिर मेरा जो नेचर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है, चूज अ सोलो गेम वे यू कैन परफॉर्म बाय योरसेल्फ। तो फिर उन्होंने गेम बताया दो तीन, जिसमें मुझे बॉक्सिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा सिर्फ सुनने में, और उसी की वजह से।
3: प्रीति, ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस आप पांचों में मैं देख रही हूँ, 2024 में आपकी भी तबियत बहुत खराब हुई थी, कुछ इवेंट्स भी आपने मिस किए थे, तो जब दूसरे प्लेयर्स को आप देखते हो इवेंट्स मिस हो, वो जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, कैसे अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन कहता है कि नहीं मैं बाउंस बैक करूंगी?
7: इट्स डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग रहता है, कोई भी फेज, वो इंजरी फेज है या हम बीमार हैं जस्ट बिफोर कंपटीशन, और इतना बड़ा कंपटीशन जाने से पहले अगर हम अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है। बट आई थिंक मेंटली हमें उस चीज़ को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए उस टाइम पे। अगर हम उन चीज़ों को मेंटली ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लेते हैं फिजिकली एट द एंड। और ओलंपिक में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं थोड़ा बीमार थी, बट मेंटली मैं अपना पूरा ट्रेनिंग कर रही थी।
3: गए थे,
7: यस डेफिनेटली।
3: क्या वो मोमेंट जो होता है जब आपको पता है मैं जीत गई हूँ, ये गोल्ड मिल गया मुझे, वो मोमेंट कैसा था? वो क्या आप उसमें मतलब खुद कूदते हो या आपको रिस्ट्रेन करना होता है कि नहीं कीप योरसेल्फ काम, अनाउंस होने दो?
6: रैंडम इमोशंस निकलता है, मतलब खुद भी नहीं पता होता है कि अभी कैसा इमोशन निकलने वाला है, अपना आप आ जाता है।
3: थैंक यू वेरी मच गोल्डन गर्ल्स, एंड दे हैव शोन अस गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और चलिए अब देखिए चैंपियन के स्वागत की भव्य तस्वीरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत कर लौटे पंजाब के वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह का अमृतसर में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, भांगड़ा और फूल मालाओं के साथ परिवार और स्थानीय लोगों ने उनकी कामयाबी का जश्न मनाया। लवप्रीत ने सफलता का श्रेय अपने कोच, परिवार और समर्थकों को दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में लवप्रीत ने सिल्वर मेडल हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार दो बार तमगा जीतकर लवप्रीत ने देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवप्रीत का कहना है कि अब उनका अलग अलग लक्ष्य एक एशियन गेम्स है जहां वो गोल्ड जीतकर तिरंगा लहराना चाहते हैं। और अब बदलते हुए भारत की नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत की नारी अब हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान गढ़ रही है। कभी खेल के मैदान में अपने दमदार पंच और शानदार किक से विरोधियों को मात दे रही है, तो कभी रेलवे जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारियां पूरी दक्षता के साथ संभाल रही है। हरियाणा की बॉक्सिंग रिंग से लेकर श्रीनगर की टाइक्वांडो अकेडमी और गोरखपुर के डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन तक देश की बेटियां आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की नई मिसाल को पेश कर रही हैं। कश्मीर घाटी में भी बदलाव की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। आपको बता दें श्रीनगर में टाइक्वांडो युवाओं के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है और बड़ी संख्या में लड़कियां इस मार्शल आर्ट से जुड़ रही हैं। अब आपको बता दें मुक्कों की ताकत हो या फिर टाइक्वांडो की किक हो या फिर रेलवे स्टेशन के संचालन जैसी बड़ी जिम्मेदारी, देश की बेटियां हर मोर्चे पर अपनी नई पहचान बना रही हैं। वे सिर्फ अपने सपनों को साकार नहीं कर रही बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बन रही हैं।
2: सपना एक है, कोई 20 किलोमीटर तो कोई 25 किलोमीटर का सफर तय करके रोजाना बॉक्सिंग के रिंग में पसीना बहाने पहुंच रही है। बॉक्सिंग के प्रति बेमिसाल जोश और जुनून को बयां करती ये तस्वीरें करनाल की हैं। इनमें से कई खिलाड़ी नेशनल भी खेल चुकी हैं। मुक्केबाजी की इस नर्सरी में बड़ी संख्या में बच्चियां पहुंच रही हैं और बॉक्सिंग के हुनर सीख रही हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। हरियाणा के एथलीट्स ने कुल 11 मेडल जीते। यहां के खिलाड़ियों के इसी जोश और जुनून की तस्वीरें करनाल से आई हैं, जहां दूर दराज इलाकों से बच्चियां बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहाने आती हैं ताकि एक दिन अपने पंच के दम पर देश के लिए मेडल जीत सके।
8: में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है, बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है।
9: यहाँ सुविधाएं सारी अच्छी मिलती है, मतलब सरकार काफी सपोर्ट कर रही है। मैं अपना भविष्य यही देखती हूँ कि मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूंगी आने वाले टूर्नामेंट्स में।
2: तो वहीं श्रीनगर में युवाओं के बीच टाइकोंडो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में घाटी के युवा, खासकर लड़कियां, इस खेल से जुड़ रही हैं और जाहिर है ये मार्शल आर्ट अब केवल एक खेल नहीं बल्कि घाटी के युवाओं के लिए करियर, आत्मरक्षा और मानसिक अनुशासन का जरिया भी बन चुका है। इस खेल के प्रति बढ़ती हुई रुचि की वजह से घाटी में कई अकेडमीज भी डेवलप हुई हैं और इस स्पोर्ट्स में घाटी के युवा देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
10: तो एक लड़की के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम भी चाहते हैं हम अपना करियर इसमें आगे बनाएं।
11: क्या क्या आपको यहाँ सिखाया जा रहा
10: है? सेल्फ डिफेंस होता है, पुमसे क्लास अलग होती है और बेसिक किकिंग, टाइकोंडो की जो पंचिंग होती है वो सब होता है यहाँ पे। पैशन है और हम आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे।
12: मैं यहाँ पे टाइकोंडो खेलती हूँ बहुत टाइम से, तो मैं चाहती हूँ कि आगे, मतलब हमारी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, मैं चाहती हूँ बाकी सब गर्ल्स भी यहाँ आए, पार्टिसिपेट करें, वो देखें बाहर का माहौल आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं चाहती हूँ कि वो गर्ल्स अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए टाइकोंडो सीखें। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है हमारी, पुमसे क्लासेस होते हैं हमारे, पंचिंग्स वगैरह होता है, ब्लॉकिंग होती है हमारी, फाइट्स स्पारिंग्स होती हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है।
2: नारी सशक्तिकरण की तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल से सामने आई है। यहां के डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संभाला जा रहा है। अब ये एक मॉडल स्टेशन बन चुका है। स्टेशन पर टिकट बुकिंग से लेकर यात्री सहायता, स्टेशन प्रबंधन, सूचना व्यवस्था और दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी तरह से महिला कर्मचारी संभाल रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी का इंतजार अब खत्म हो सकता है। खबरें हैं कि रोनाल्डो अपनी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ इसी शनिवार शादी के बंधन में बन सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में।

0: फुटबॉल के मैदान पर गोल की बरसात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी शुरू करने की तैयारी में है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो और उनकी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज इस शनिवार शादी कर रहे हैं। आधिकारिक ऐलान और बयान भले ही न हो, लेकिन इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में है। बताया जा रहा है कि पुर्तगाल के मरीदा द्वीप में मौजूद ऐतिहासिक फुंचाल कैथेड्रल को शादी के लिए बुक किया गया है। खबरों में किया गया दावा अगर सही साबित होता है तो ये ऐतिहासिक चर्च दुनिया के सबसे मशहूर कपल्स में से एक रोनाल्डो जॉर्जिना की शादी का गवाह बन सकता है। मरीदा सिर्फ एक खूबसूरत द्वीप नहीं है, यही रोनाल्डो की जन्मभूमि है। यही उन्होंने अपने बचपन के सपनों को उड़ान दी थी। अब खबर है कि उसी मिट्टी से जहां से उनका सफर शुरू हुआ, वहीं उनकी नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 500 साल पुराने फुंचाल कैथेड्रल में वहां के समय के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 3 बजे शादी की रस्में हो सकती हैं। शादी सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रहेगी। खबर है कि जश्न के लिए पास के 5 सितारा सेवोय पैलेस होटल में भी खास इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के 2 फ्लोर और कई बार एरिया सिर्फ शादी के मेहमानों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। यानी तैयारियां ऐसी जिन्हें देखकर लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। रोनाल्डो और जॉर्जिना की मुलाकात साल 2016 में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों दुनिया के सबसे चर्चित कपल में शामिल हो गए। अगस्त 2025 में दोनों ने सगाई की थी। आज दोनों मिलकर 5 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बाद शादी की चर्चा पहले भी हुई थी, लेकिन तब ये खबर सच नहीं निकली। अब एक बार फिर शादी की अटकलें तेज हैं। हालांकि रोनाल्डो और जॉर्जिना ने अभी तक शादी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिलहाल दुनिया भर के करोड़ों फैंस की नजरें इस शनिवार पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि ये इंतजार सच में खत्म होता है या फिर शादी की खबरें सिर्फ अटकलें साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चाइना की मशहूर चाका सॉल्ट लेक इन दिनों अपने अद्भुत नजारों से दुनिया का ध्यान खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, डूबता सूरज, उगता चांद, चमकती हुई झील और उसके बीच से गुजरती हुई ट्रेन, हर दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं है और प्रकृति का ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि हर देखने वाला ठहर गया। दरअसल ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, बल्कि चाइना का चाका सॉल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा हुआ है। आप भी देखिए।
2: कभी कभी प्रकृति ऐसी तस्वीर बनाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक तरफ डूबता सूरज, दूसरी तरफ उगता पूरा चांद, बीच में आईने की तरह चमकती झील और उस पर तैरती हुई सी गुजरती एक ट्रेन। ये किसी कलाकार की कल्पना नहीं, बल्कि चीन की चाका साल्ट लेक का वो नजारा है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। उत्तर पश्चिम चीन के किंघाई प्रांत में स्थित चाका साल्ट लेक को मिरर ऑफ द स्काई यानी आसमान का आईना कहा जाता है। चाका साल्ट लेक अपनी मोटी नमक की परत और आईने जैसी सतह के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साफ मौसम में ये झील इतनी साफ तस्वीर बनाती है कि इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत साल्ट लेक्स में गिना जाता है। यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक इस जादुई नजारे को अपनी आँखों में कैद करने यहाँ आते हैं। प्रकृति जब अपने रंग बिखेरती है तो शब्द भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह बयान नहीं कर पाते। चीन की चाका साल्ट लेक का ये नजारा भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है कि आसमान और धरती के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और चलिए इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया पर फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए विकास ग्रोवर की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है, तो आप लोग से गुजारिश है कि इसको लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट का भी बोलो।
5: आपका नाम क्या है?
6: तड़का। तुम्हारा?
5: अजीब है।
6: तुम्हारा नाम अजीब है?
5: नहीं, तुम्हारा नाम अजीब है।
6: मेरा नाम तो तड़का है।
5: मेरा नाम आलोक है।
7: आपको फादर साइड वाले रिश्तेदार पसंद है या मदर साइड वाले रिश्तेदार पसंद है?
8: रिश्तेदार वाला जो लफ्ज है ना, वो जहाँ भी आ जाए ना, मुझे पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं।

0: इंसान भी नहीं।
1: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। सावन में दिख रहे हैं बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों में बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के आदेश। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, डीए बढ़कर 38% हुआ, 1 अक्टूबर से खाते में आएंगे ज्यादा पैसे। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अगर आपको ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने का मौका मिल जाए तो सावन सफल होगा, भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर बैठे बैठे ही, घर पर रह कर के ही ज्योतिर्लिंगों की उपासना कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अगस्त 2026, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:42 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:18 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल तथा बुध फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं और इनकी उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में, निराकार स्वरूप में सबसे ज्यादा होती है। जहां इस लिंग स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना अधिक उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर रोज सवेरे
केवल इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यानी इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा इतनी ज्यादा है कि इनका स्मरण करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इन ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनका चित्र लगाकर, इनकी प्रतिकृति लगाकर आप इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। ज्योतिर्लिंगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है।

कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा पर जा सकते हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप अपने घर में शिव जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाना चाहते हैं तो उसके नियम क्या हैं? भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का चित्र पूरब या पश्चिम की दीवार पर लगाइएगा और एक ही ज्योतिर्लिंग का बड़ा सा चित्र लगाएं, एक साथ सभी ज्योतिर्लिंग का चित्र न लगाएं। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप ज्योतिर्लिंग का चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगाएं या सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि को लगा सकते हैं। जहां पर, जिस दीवार पर इस ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, बेहतर होगा कि वहां पर कोई और चित्र या देवी देवता का चित्र स्थापित ना करें। एक दीवार पर एक ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं और पूरे सावन में या सामान्यतः हर सोमवार को इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ज्योतिर्लिंग की घर में पूजा कैसे करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है,

वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने अपने घर की एक दीवार पर ज्योतिर्लिंग का एक बड़ा सा चित्र लगा लिया। अब इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा उपासना कैसे की जाएगी? ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखें, बड़ा सा भगोना या बड़ा सा टब। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें, इसके बाद उसी पात्र में बेलपत्र, फल, फूल, धूप आदि अर्पित करें और ये भावना करें कि आप बेलपत्र, फल, फूल, धूप उसी ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालें और मन में ये भाव रखें कि आप ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का 3 माला नमः शिवाय का या 11 माला जप करिएगा और जप के बाद भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे अंत में पूजा के समापन पर 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेंगे और तब क्षमा प्रार्थना आप करेंगे और जो टब में सामान इकट्ठा हुआ है, जल, दूध, फल, फूल, ये सब ले जाके जल में प्रवाहित कर दें या पौधों की क्यारी में डाल दें। इस प्रकार से आप सावन में या जब भी चाहें किसी भी सोमवार को ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, काम की अधिकता रहेगी, आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर में अपनी आलमारियों को और जूते कपड़ों को अस्त व्यस्त ना रखें। अगर आप जूते कपड़े आलमारी अस्त व्यस्त रखेंगे तो आपको अनावश्यक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूरबा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

बसदेव जी और नंद बाबा मिले तो दोनों दुखी हुए। बस नंद बाबा, इधर राजा कंस ने भगवान को मारने के लिए पूतना को बुलाया। इधर आओ पूतना। हाँ महाराज, सुनो, ब्रज में जितने भी नवजन्मित बच्चे हैं उन्हें तुम मार सकती हो। पूतना बोली, मार सकते, हम खा सकते, हमारा नाम ही है पूतना। और पूतना का अर्थ है पूतना, ना पूत, पूतना। तो आप चिंता ना करो, आज्ञा दो, निपटा देंगे। जाओ ब्रज में जितने भी 4-5-6 महीने के बच्चे हैं सब निपटाओ, क्योंकि आकाश में जो कन्या गई थी जिसे कंस मारना चाह रहा था, उस कन्या ने यही कहा था, उस देवी ने, महामाया ने, हे राजा कंस तू हमें क्या मारता है, तेरा मारने वाला पहले ही ब्रज में प्रकट हो चुका है। तो राजा कंस को वही टेंशन है कि वो है कहां, बाल काल में ही निपटा दे। अब पूतना मौसी चली, मारने का उपाय क्या निकाला, अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा लिया, जहर, और गई। जितने नवजन्मित बच्चे थे सबको मारना प्रारंभ कर दिया, रूप बदल कर जा रही, सबको मारना प्रारंभ किया पूतना मौसी ने, और धीरे से गोकुल पहुंच गई और गोकुल में जाते ही अपना रूप इतना सुंदर कर लिया मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो। इस बात पे हम एक बात और कहना चाह रहे, पूछो क्या, पूछो, किसी प्रोडक्ट की पैकिंग बढ़िया हो तो ज्यादा भरोसा नहीं कर लेना चाहिए कि अंदर का, अंदर की जो वस्तु है वो भी क्वालिटी वाली होगी। पूतना मौसी ज्यादा मेकअप वेकअप लगा के गई और अंदर राक्षसनी थी, बाहर से देवी दिख रही थी। बात समझ आई है? अरे बोलो, बात समझ आई? तो जरूरी नहीं जिस सामान की, वस्तु की पैकिंग ठीक हो वो वस्तु अथवा सामग्री बेहतर क्वालिटी की, देखकर भरोसा करना चाहिए। बहुत बार गलत को छिपाने के लिए बहुत अच्छी पैकिंग की जाती है, हाँ, खराब चीज के लिए। कई बार तुमने, आप लोगों ने पता नहीं ऐसा किया कि नहीं, हमने तो ऐसा किया गरीबी में, कई बार अच्छा वाला कुर्ता जब हमारा फट जाता था और दूसरा कुर्ता खरीदने की तो हिम्मत रहती नहीं थी, तो हम क्या करते थे, नामदेव दर्जी के पास जाकर फटे हुए जो सुराग रहता था वहां पर रफू करवा के फूल बनवा लेते थे, गमला का, गुलाब का, या मुगदर बनवा लेते थे, अथवा राम लिखवा लेते थे। लोगों को लगता था वाह क्या डिजाइन है, बड़ा डिजाइन का कुर्ता पहन रखा, तो उनसे तो यही कहते थे हाँ डिजाइन ही है, पर असलियत में हमें पता था कि ये डिजाइन थी नहीं, फटे के चक्कर में हो गई। थी नहीं, हो गई। ऐसे ही व्यक्ति होता है, कई बार बहुत मीठा बन जाता है, बुरा न मानना, जो ज्यादा मीठा होता ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, ऐसे आदमी से बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। आओ, आओ, आओ। ये चुगलखोर बड़े खतरनाक होते हैं, बोलो सीताराम, बोलो बोलो बोलो। तो हम बता रहे थे मीठे आदमी से दूर रहो,
क्योंकि जो ज्यादा मीठा बोले समझ गया ना, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। हाँ, हाँ। और कई लोग हमने देखे बड़े विनम्र, अरे महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज महाराज करते करते ऐसी जेब काट के जाते। एक हमारा चेला था, जिंदा तो अभी भी है पर पास नहीं है किस्मत से, इतना मीठा बदमाश। जैसे ही हम देखे, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी, हमें लगे बड़ा भक्त है, हमको देखते ही गुरुजी गुरुजी चिल्लाने लगता, बड़ा अच्छा भक्त है। तो हमने भी उसे जैसे ही मिले है सो लाड़ प्यार से, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बस बस बस रोते नहीं, खुश रहो खुश रहो, आशीर्वाद है आशीर्वाद। अच्छा वो ऐसा कर करके खिंचवाए फोटो, और फिर फोटो दिखा दिखा हमारे ही चेलों के घर जाके कहे कि गुरुजी ने भेजा है तुम्हारी पूजा करने को, 50,000 की पूजा करे यार, 50,000। और कई जगह चूना लगाया और हर 2-3 महीना में आके हमें 10,000-11,000 रुपया चढ़ाए, और बढ़िया दूर से ही देख के हाथ जोड़, गुरुजी। हमें लगे यार बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ा सीधा है। लेकिन जब हमने वो गुरुजी जो हमारे गुरु हैं वो हमसे बोले, अरे इसके चक्कर में मत पड़ो, मीठा बदमाश है, कहां पड़े हो, जहर है जहर। हाँ तब तो हमने पहले दिन कहा था, गांव बदलकर शहर हो रहे हैं, आदमी बदलकर जहर हो रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, और ज्यादा मीठा तो वैसे ही जहर होता है, ज्यादा मीठा खा लो शुगर हो जाएगी, शुगर होगी शरीर खोखला हो जाएगा, अच्छा खासा आदमी बर्बाद हो जाता। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। तो कोई बिना बात की तुम्हारी तारीफ करने लगे समझ जाना खतरा है, और ज्यादा तारीफ करने लगे तो समझ जाना और ज्यादा खतरा है, और कोई एकदम मीठी मीठी बातें बोले समझ जाना गड़बड़ नहीं है, महा गड़बड़ है। हाँ इसलिए हम गुरु जरूर हैं, हो सकता हमारी बहुत सी बातें कई लोगों को कड़वी लगती, पर बुरा न मानना, कभी भी मीठी दवा कभी भी मीठी शहद किसी रोग को ठीक नहीं कर सकती है, जब तक कड़वी दवा ना पिलाई जाए तब तक रोग ठीक नहीं होता है। ऐसी बातें हैं, सब मीठी मीठी सुनाई जाए तो तुम्हें लगेगी तो अच्छी, लेकिन बीमार हो जाओगे बीमार। अच्छी बातें सुनने, अच्छा आदमी तारीफ सुनने का बड़ा वो रहता है, सो भी रहा हो ना और सोते समय आधी नींद कोई तारीफ करे, भाई तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है तो लड़की बहुत अच्छी, तो पड़े ही पड़े कान ऐसे खुश हो जाते, आहा। और आजकल के जमाने में तारीफ बहुत सस्ती हो गई है, इसलिए मेरे पागलो जो तारीफ करे ना उससे ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि ये नहीं करता कि तुम अच्छे हो, वो तारीफ इसलिए करता है उसे अपना काम तुमसे निकलवाना है, समझ गए, बोलो बोलो। इसलिए जिसकी पैकिंग बहुत बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा करना, हाँ, हाँ, हाँ। जिसकी पैकिंग बहुत बढ़िया हो उसकी चेकिंग ज्यादा करना, क्योंकि बढ़िया पैकिंग में कई बार घटिया वस्तु हुआ करती है। बोलो सीताराम। अब हम किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे वरना आप लोगों को बुरा लग जाएगा, पर कह रहे कि भाई सावधान रहना चाहिए, ज्यादा चमक धमक भी अच्छी नहीं होती, थोड़ी बोड़ी तो ठीक है पर ज्यादा एकदम चमकी चमक धमकी धमक, समझ जाना चमकी धमक है, अंदर कुछ भी धमक नहीं है, सब बाहर की चमक धमक है। बोलो सीताराम। और आदमी का चित्र कितना भी सुंदर हो, चरित्र सुंदर ना हो तो क्या काम का, बोलो हाँ या ना। अब पूतना मौसी ऐसी बनकर आई मानो लक्ष्मी जी लग रही हो, बढ़िया फाउंडेशन लगाए, मेकअप किए, सिंगार किए, नक्शे सिख तक, पूतना मौसी आई यशोदा मैया से बोली, अरे मैया बहन, राम राम राम राम राम राम,
यशोदा मैया बोली तो हमारी बहन कहां से लगती? अरे हम तुम्हारे दूर के बहन ही हैं, बहन हैं, हमें तो आज तक नहीं दिखी। अब वो क्या है कि हम बाहर गए थे तो शादी में आ नहीं पाए, बाद में हमारी भी व्यस्तता रही, तुम्हारी भी व्यस्तता रही, और हम तुम्हारी दूर के रिश्तेदार नहीं, बहन ही लगे। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी आ गई, बताओ क्या आज्ञा है? नहीं आज्ञा नहीं है, हमने सुना तुम्हारे घर पे जाओ, उम्र में भी छोड़ा हुआ है, बधाई देने आए। बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है साहब, भगवान की कृपा है, छोरा हो गया, भगवान की दया है। अच्छा जरा लाला को मुंह दिखा दे, जरा हम बधाई दे दे। देख बहन, अभी अभी हमने पालने में ठाकुर जी को सुलाया है, अपने लाला को सुलाया है, तू एक काम कर, दोबारा कभी आना, फिर दर्शन कर लेना। ना मैया तू चिंता मत कर बहन, तू अपना काम कर, मैं दूर से ही देख के चली जाऊंगी। बेचारी जसोदा मैया बातों में आ गई। अब जैसे ही यशोदा मैया काम में व्यस्त भई, सोई पूतना मौसी भगवान के पास पहुंच गई। तो पहले तो भगवान जाग रहे थे, मौसी जी को देखते ही आंखें बंद कर ली। तो भाई भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले संत बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, और हमारी मौसी पहले ही जहर पिला रही, इसलिए आंखें बंद कर लो, चलो मंगलाचरण शुरू करें। तो मंगलाचरण जब होता है तो आंखें बंद कर ली जाती, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोलो सीताराम। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? पूतना मौसी को देखकर,

0: कर दिया जाए।
1: अथवा तीसरा कारण, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले भैया, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने, मौसी जी पिला रही हैं जहर, और जहर पीने का अनुभव है भोले बाबा, उनका ध्यान कर लिया जाए,
0: इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली।
1: चौथा कारण क्या है भगवान की आंख, भगवान आंख क्यों बंद करते हैं? भैया चौथा कारण है कि भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा लोग कहते हमारी आंखों में जादू है। क्या है? बोलो बोलो बोलो, जादू है। और कहीं हम देखते रहे और वो मौसी जी हमारी तरफ देखती नहीं, कहीं ऐसा ना हो मारने आई हो दिल लगा बैठे, हाँ हमारी हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मौसी जी बच जाएंगी, हम तो ना मरेंगे पर ना जाने ये कितने बच्चों को निपटा देगी,
0: इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो सीताराम।
1: भगवान ने आंखें क्यों बंद की? पांचवा कारण सुनो, पूछो क्या?
0: अरे जोर से बोलो।
1: पांचवा कारण ये है भगवान की आंख बंद करने का, भगवान ने सोचा लोग हमको मायापति कहते हैं। क्या कहते हैं? और पूतना मौसी कौन सा रूप बना के आई? माया का। और हम हैं मायापति, हमारे सामने इसकी माया चलेगी नहीं, हम जैसे ही इसकी तरफ देखेंगे इसका असली रूप सामने आ जाएगा, नकली भग जाएगा, हमारी माताजी डर जाएंगी,
0: इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पूतना मौसी भगवान के पास आई, भगवान को गोद में लिया, अपना स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान पहले तो दूध पीने लगे, दूध पीते पीते प्राणों को पीने लगे, और जैसे ही प्राणों को पीने लगे सोई पूतना मौसी छटपटाई, ना पूत ना पूत ना पूत, छोड़ दे छोड़ दे।
1: ठाकुर जी बोले काओ मौसी जी अब कैसे छोड़ दे, हमारी एक आदत है। क्या मौसी? एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। अब पूतना मौसी भागी मथुरा की तरफ, हे भगवान ये लाला तो मार ही डालेगा। भागी भागी पूतना मौसी असली शरीर में आ गई, और जैसे ही थोड़ी दूर गोकुल से गई सोई भगवान ने सोचा ज्यादा दूर हो जाएंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, मौसी जी को जल्दी निपटाओ। सोई भगवान ने पूरे प्राणों को खींच लिया, और जहां प्राणों को खींचा भारी शरीर लेकर, भैया 6 कोस का शरीर लेकर पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और हो

हाथ पांव फटकार कर खेलने लगे और मौसी जी से पूछने लगे, कहो मौसी जी कैसी रही। अब मौसी जी तो पड़ी है इधर। जसोदा मैया ने थोड़ी देर बाद देखा कि चलो पल्ला में देख लिया जाए लाला कहाँ गया। तो जैसे ही पल्ले में देखा, ठाकुर जी गायब। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, ठाकुर जी गायब। ठाकुर जी जैसे ही गायब हुए, यशोदा मैया देखने लगी, इधर उधर रोने लगी, लाला कहाँ गया लाला कहाँ गया। सब गोपियां आ गई, गोप ग्वाला गए, क्या हुआ मैया क्यों रो रही है। अरे आज क्या बताएं, हमारा लाला ही गायब हो गया। लाला कहाँ गया? बोले अभी अभी तो पल्ला में लिटाया था। एक हमारी रिश्तेदारनी आई थी दूर की, पहचानते तो है नहीं पर वो आई थी, लगता है वही ले। इसलिए दूर की रिश्तेदारी कई बार बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, वो एक पुरानी कहावत है ना, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, वो कई बार बड़ी खतरनाक होती है। दूर की रिश्तेदारी में ही लफड़ा हो गया। अब यशोदा मैया रोने लगी, गोप ग्वाल बोले चिंता मत करो अभी खोज के लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे दौड़ते दौड़ते आए, मैया मैया मैया लाला मिल गया लाला मिल गया। कहाँ है? भारी भरे शरीर के ऊपर पड़ा हुआ है। यशोदा मैया सब भागी भागी गई, ब्रज की गोपियां गोप ग्वाल भागे भागे गए। ठाकुर जी पहले तो खेल रहे थे, हंस रहे थे मौसी को देख कर, कहो मौसी जी और दूध पिलाओ, उठो जगो मौसी जी जाग जाओ। मौसी जी तो गई, बोलो सीताराम, बोलो बोलो। इधर यशोदा मैया भागी भागी आई, ठाकुर जी को देखा, लाला अरे ओ लाला, और पुकारती हुई पुकारती भागी भागी आई और पूतना मौसी के शरीर से उठाकर झटक कर गले में लगाए। तो पहले तो ठाकुर जी हंस रहे थे, मैया को देखते ही रोने लगे। नाटक पूरा करना पड़ेगा ना।

रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, सोई यशोदा मैया, अरे राम राम, बताओ तो जी राक्षसनी, इतनी भारी बड़ी राक्षसनी हमारे बेटा को कहाँ लेके जा रही होगी। हे भगवान, बड़ी कृपा कर दीजिए, गिर गई मर गई, बड़ी कृपा भाई, वरना आज हमारो लाला पता नहीं कहाँ गायब हो जातो। बताओ ये राक्षसनी को हमारो ही बेटा मिलो। तो तरह तरह की बातें सुनाने लगी। इतने में तुरंत एक गाय को मंगाया, जल्दी से गाय लाओ। क्यों? लाला को नजर लग गई, भूतनी चिपक गई, इसीलिए तो रो रहा है। गाय बुलाई, गाय की पूंछ पकड़ी और ठाकुर जी को झाड़ा लगाने लगी। जैसे हम झाड़ा लगाते ना, वैसे ही यशोदा मैया झाड़ा लगाने लगी। हे सुदर्शन चक्रधारी भगवान, हे नारायण, हे क्षीर सागर वाले भगवान, हमारे लाला की रक्षा करना। अब भगवान हंस रहे। क्यों हंस रहे भगवान? इस बात पे हंस रहे कि बताओ, हमारे ही नाम से मैया हमको ही झाड़ा लगा रहे। हमारा ही नाम चक्र सुदर्शन धारी है और हम ही क्षीर सागर वाले हैं और हमको ही झाड़ा लगा रही। बोलो राधे राधे राधे राधे। अब यशोदा मैया बाकी ब्रज की गोप गोली ग्वाल वाल नहीं सोचने लगी कि जे बताओ भैया, इतनी बड़ी राक्षसनी मरे कैसी, कैसे मर गई? तो किसी ने कहा हार्ट अटैक आ गया। किसी ने कहा कि भाई हार्ट अटैक भले ही आया, पर इतनी भारी राक्षसनी अटैक से तो नहीं मर सकती। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ब्रेन हेमरेज हो गया। भाई ब्रेन हेमरेज हुआ होगा तो कम से कम एक घंटा तो जिंदा रहती, या तो बिल्कुल ही निपट गई। तो किसी ने कहा क्या हो सकता? बोले कोई बोला भाई लगता है गिर पड़ी, चक्कर आ गए। बोले चक्कर आए तो जिंदा तो होती, कम से कम ऑक्सीजन ना मिलती, फड़फड़ाती तो। फिर हुआ क्या? छोटे छोटे बच्चे बोले मैया बुरा ना मानो तो हम बताएं। बोले हाँ बताओ। मैया मैया, ये अपने लाला को लेके जा रही होगी जंगल, बाई समय पे जाने लगाई होगी दौड़, दौड़ लगाते समय जाके पैर में अटक गो होएगो पत्थर, और पत्थर में फंस के गिर गई होगी, सो मर गई राण पूतना, ऐसे मरी। यशोदा मैया बोली कहूं इतनी भारी राक्षसनी उचट्टा खा के थोड़ी मरेगी, कोई और कारण है, बेफिजूली की बातें मत करो, चलो भगो। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से वापस। बाबा बाबा बाबा, तुम ठीक आ गए? क्या हुआ? एक भारी बड़ी राक्षसनी मर गई, मरी कैसे जे पता नहीं, पर अपने लाला को लेके जा रही थी सो मर गई। नंद बाबा बोले अब हम समझ गए। क्या? बोले हमको मथुरा में वसुदेव जी ने कह दिया था कि तुम्हारे छोरा के ऊपर विपत्ति आने वाली है, हमें ये सुनते ही डर लगने लगा, सो हम भागे। पर रास्ते में हमने हनुमान जी का नाम ले लिया कि हे हनुमान जी, हमारे छोरा की रक्षा करना, जे राक्षसनी हमारे छोरा को लेके जा रही होगी। हमने हनुमान जी को पुकार दिया, सो हनुमान जी ने एक मुक्का बना करके मुंह में दे दिया होगा, सो मर गई राण पूतना। बोले हाँ भाई हाँ, ये जरूर कारण हो सकता है पूतना मौसी के मरने का। बोलो वृंदावन बिहारी, मौसी जी निपट गई। पर भैया जब मौसी जी को जलाया गया तो पूतना मौसी के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। क्यों? बोले भैया जिसे भगवान स्पर्श कर ले फिर वो पापी नहीं बचता है, वो फिर भगवान का हो जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान जिसको स्पर्श कर ले वो पापी थोड़ी रहेगा। गंगा जी में नहाने वाला फिर पापी थोड़ी बचता है। ऐसे ही भगवान जिसको छू ले वो पापी थोड़ी रहेगा। थी पापनी, पर भगवान ने छू लिया, पाप खत्म। बोलो जय सिया राम।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
6: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
9: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
10: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आ जाए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
10: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
6: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकते, सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
9: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: और चलिए हम नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
21: मजदूर महिला काम पर बच्चे को साथ लाई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा काम की जगह पर अपनी ही मस्ती में डूबा है, और माँ न सिर्फ काम तल्लीनता से कर रही है बल्कि बच्चे का भी ध्यान रख रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि सिर्फ माँ ही होती है इस दुनिया में जो बिना स्वार्थ के प्यार करती है, और उससे बड़ा योद्धा दुनिया में कोई और नहीं होता। लोग इस वीडियो को खूब देख रहे हैं और मजदूर माँ की तारीफ कर रहे हैं।

0: अब देखिए आस्था और हिम्मत की अद्भुत तस्वीर। ये शख्स दिव्यांग हैं और हरिद्वार से मथुरा तक पैदल कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। महाकाल के इस भक्त का हर कदम महाकाल के नाम पर है और उसकी हर सांस में माँ गंगा का आशीर्वाद है। यही वजह है कि भक्ति और हिम्मत से भरी उसकी ये यात्रा थकान नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जो भी ये वायरल तस्वीरें देख रहा है यही कह रहा है कि महादेव अपने इस भक्त को और हिम्मत बख्शें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
9: राम दरबार दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म, दर्शन व्यवस्था को ज्यादा सरल और सुगम बनाने के मकसद से ट्रस्ट ने लिया फैसला। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोल बम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। सावन में दिख रहे बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों के बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी बंद रखने का आदेश। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, डीए बढ़कर 38% हुआ, 1 अक्टूबर से खाते में आएंगे ज्यादा पैसे। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले शानदार खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था को और ज्यादा सरल बनाते हुए राम दरबार के लिए लागू विशेष पास व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन के लिए अलग से पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु सीधे प्रथम तल में स्थित राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। और अब तक राम दरबार के दर्शन सीमित संख्या में जारी किए जाने वाले विशेष पास के माध्यम से कराए जाते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये प्रक्रिया अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पाएं और उनके दर्शन और ज्यादा सरल बन पाएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है ताकि दर्शन व्यवस्था को और आसान बनाया जा सके। जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए, उनके लिए ये व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले पास लेकर यहां पर दर्शन की अनुमति दी जाती थी। श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन के लिए अलग से पास बनवाने की जरूरत होती थी, जो कि अब समाप्त कर दी गई है।

0: और चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: श्रावण मास में उत्तर भारत में पूरी आस्था के साथ जारी है कांवड़ यात्रा। अलग अलग स्वरूपों और आकार की कांवड़ लेकर कर रहे हैं यात्रा। शिवालयों में भोले शंकर का जलाभिषेक जारी। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और सीएम योगी की अनोखी कांवड़। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगी, इस कांवड़ ने खींचा सभी का ध्यान। बुलंदशहर के 6 शिव भक्तों की एक टोली हरिद्वार से लेकर आ रही है मोदी योगी नाम की एक कांवड़। 2025 में भी ये टोली लेकर आई थी ऐसी ही मोदी योगी के नाम की कांवड़। इस टोली ने गंगा मैया से मांगी है खास मन्नत। 2027 में योगी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने और 2019 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर संभाले देश की कमान। सवाई माधोपुर में उमड़ा श्रद्धा और आस्था का सैलाब। सालाना भव्य महाभगवा कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन। मुंगेर की डमरू रूपी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। लकड़ी और फाइबर से तैयार किया गया है डमरू का पूरा ढांचा। कांवड़ को बनाने में लगी है काफी मेहनत। हाथों के बल पर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं बंगाल के राजकुमार महतो। बिच्छू के आकार में दोनों पैरों को ऊपर कर हाथ पर यात्रा कर रहे हैं राजकुमार। बिच्छू महाराज के नाम से मशहूर हैं। पिछले 2 सालों से पूरे भारत की धार्मिक यात्रा कर रहे हैं राजकुमार। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम और 51 शक्तिपीठों में से 21 शक्तिपीठों के कर चुके हैं दर्शन। बागपत में दिखी रिश्तों की अनोखी कांवड़। सास ससुर को गंगा जल से नहलाने 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर बहू। एक ही कांवड़ उठाए करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला है हरियाणा का ये दंपत्ति। इस गंगा जल से भगवान स्वरूप माता पिता को स्नान कराने की कामना है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। हरिद्वार के हर की पौड़ी में उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। गंगा स्नान और जल भरने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका। भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। हर की पौड़ी में बढ़ती हुई भीड़ को संभालने के लिए जुटी पुलिस और प्रशासन। लोगों से नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा इलाका। सीएम धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया। कांवड़ियों की हर सहूलियत का रखा जा रहा है ध्यान। सीएम धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ कांवड़ यात्रा में लगे पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया। पवित्र यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं सुरक्षा कर्मी। सीएम ने कांवड़ सेवा का भी पुण्य लिया। अपने हाथों से धोए कांवड़ियों के पांव, सेवा की। सीएम धामी ने शिव भक्तों को अपने हाथों से परोसा भोजन। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर हो चुके हैं रवाना। सावन के मास में उज्जैन में रोजाना भोलेनाथ की विशेष आरती। पवित्र महीने में भगवान शिव के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। अयोध्या में आने वाले भक्तों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ी राहत दी। राम दरबार दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म की गई। सामान्य दर्शन कतार में रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु सीधे कर सकेंगे प्रथम तल स्थित राम दरबार के दर्शन। पहले सीमित संख्या में राम दरबार के दर्शन के लिए विशेष पास होते थे जारी। दर्शन व्यवस्था ज्यादा सुगम बनाने के साथ श्रद्धालुओं का समय बचाना है मकसद। नई दर्शन व्यवस्था से सरल होंगे दर्शन। सावन में रामनगरी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ऐसे समय में भक्तों के लिए राहत लेकर आया है ट्रस्ट का ये फैसला। श्रावण मास के अलावा भी रोजाना देश और दुनिया से दर्शनों के लिए आते हैं हजारों लाखों भक्त। सभी के लिए नई दर्शन व्यवस्था एक शानदार पहल। गुरुग्राम में भव्य कलश वंदन यात्रा का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुआ विशाल कार्यक्रम। पवित्र कलश यात्रा को हरियाणा के जिलों के लिए किया गया रवाना। गोवा को मिली विकास की सौगात। सीएम प्रमोद सावंत ने फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन और ई पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उद्घाटन किया। राज्य में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाना और अदालती प्रक्रिया को आसान बनाना है इस नई पहल का उद्देश्य। कानून व्यवस्था बनाने में होगी सहायक। भोपाल में उभरते हुए ज्ञान क्षेत्रों पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव हुए कार्यक्रम में शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उड़ीसा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां कंधुनी देवी मंदिर के साथ साथ तप्त पानी स्थित नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में भी शीश नवाया और देश के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य की भी झलक पेश की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत के लिए आई छात्राओं से मुलाकात भी की और छात्राओं को चॉकलेट्स भी दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वृंदावन में बांके बिहारी के किए दर्शन। दर्शन के बाद बोले, पवित्र सावन महीने में कृष्ण मंदिर में शीश नवाना मेरा सौभाग्य है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाई और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सुरनकंद, यह है सुरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: राम दरबार दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म, दर्शन व्यवस्था को ज्यादा सरल और सुगम बनाने के मकसद से ट्रस्ट ने लिया फैसला। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। सावन में दिख रहे हैं बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों के बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी बंद रखने का आदेश।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी स्पेशल में आज बात कांवड़ की कहानी की। महादेव की भक्ति का पवित्र और पावन महीना सावन जारी है और देश भर में हर तरफ कांवड़ यात्रा के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं कंधों पर सजी हुई कांवड़ है तो कहीं होठों पर बोल भम का जय घोष, पैरों में छाले लेकिन चेहरे पर अटूट आस्था। हर साल सावन आते ही देश की सड़कों पर करोड़ों शिव भक्त एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जो केवल यात्रा नहीं बल्कि तप, त्याग, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? पहली कांवड़ आखिर किसने उठाई थी? आखिर भगवान शिव को जल अर्पित करने की ये परंपरा कब और क्यों शुरू हुई? आज हम अपने स्पेशल शो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और शरीर में तीव्र ताप उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने अलग अलग पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया, मान्यता है कि यही पहला जलाभिषेक था जिसने आगे चलकर कांवड़ यात्रा का स्वरूप लिया। वही एक कहानी भगवान परशुराम से भी जुड़ी है, जिसके मुताबिक परशुराम पहले शिव भक्त थे जिन्होंने पवित्र गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। उन्हें पहला कांवड़िया भी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर उत्तर भारत के शिवलिंगों पर अर्पित किया, जिसके बाद ये परंपरा जन जन तक पहुंच गई थी।
1: सावन के पावन महीने में प्रकृति हरे आंचल का घूंघट काढ़कर जब अपना अनुपम सौंदर्य बिखेरती है तो अनुरागियों का मन उमंग के उल्लास से आनंदित हो उठता है। प्रकृति की मनोरम झांकी देखकर हृदय में उठने वाली आनंद की तरंगे इसके शिल्पकार के प्रति अनायास ही कृतज्ञता का भाव पैदा कर देती है। सावन के शिल्पकार यानी देवों के देव महादेव, जिनका अभिषेक करने के लिए उनके भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं एक कठिन श्रम साध्य आत्म अनुशासन की तीर्थ यात्रा पर। कांवड़ यात्रा यानी आत्म संयम के साथ श्रद्धा और भक्ति की ऐसी तीर्थ यात्रा जिसमें भगवान शिव हर पल के साक्षी होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव के प्रति साक्षी भाव से उत्पत्ति तन की शुद्धि के साथ ही मन को भी निर्मल कर देती है, क्योंकि यात्रा के दौरान कांवड़ियों के मन में ये विश्वास प्रबल हो जाता है कि भगवान शिव उनके मन में उठने वाले भावों के भी साक्षी है। कांवड़ यात्रा के दौरान मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न ना हो, इसके लिए तन के कुछ नियम बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान भोजन सादा और सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा और किसी तरह के व्यसनक से दूर रहना अनिवार्य है। कांवड़ को शिव स्वरूप माना जाता है, इसीलिए उसे जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। यात्रा के दौरान शिव के जयकारे के साथ उनका जाप निरंतर होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। यात्रा के दौरान स्वच्छता और संयम आवश्यक है। मान्यताओं और सनातन विधान के मुताबिक घर का कोई सदस्य जब कांवड़ लेकर निकल जाता है तो उसकी वापसी तक परिजनों को भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है।
2: इस बीच में कुछ विशेष नियम कारण होते हैं, जैसे दाढ़ी आदि नहीं बनाते, किसी प्रकार का नशा आदि नहीं करते, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, कोई स्त्री प्रसंग नहीं करते जो भगवान में श्रद्धा रख के कांवड़ उठाते हैं। इस बीच में जो उनके घर वाले हैं वो भी उसी प्रकार से तपस्यारत रहते हैं। वो व्यक्ति घर में उनके यहाँ प्याज लहसुन नहीं जलता, कई प्रकार के पाक भोजन आदि नहीं बनते, क्योंकि उनका बालक या उनके परिवार का कोई व्यक्ति जल लेने के लिए चला हुआ है। और जब वो जलाभिषेक करके घर आता है तब उसका मंगल तिलक आदि करके तब उसकी है ना यात्रा को संपूर्ण

0: माना जाता है।
1: कांवड़ यात्रा अपने आप में जिस तरह कठिन और मुश्किलों भरी होती है, सामान्य लोगों के लिए सफलतापूर्वक इसे संपन्न कर लेना चमत्कार जैसा लगता है। नंगे पांव 200 से 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा, कंधे पर 10 से 15 से 20 लीटर तक गंगा जल का पवित्र भार, अस्थायी शिविरों में रात्रि में बहज कुछ घंटों का विश्राम, सादा सात्विक भोजन, चिलचिलाती धूप और बारिश का प्रकोप, सचमुच किसी कठोर साधना से कम नहीं है कांवड़ यात्रा। पर ऐसा लगता है कि अपने कांवड़ ये भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है, तभी तो उनके चेहरों पर थकान की जगह मुस्कान पसरी रहती है। वैसे भी भगवान शिव आशुतोष है, भक्ति की जरा सी वेदना से पिघल जाते हैं और जरा सी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सावन में गंगा जल से अभिषेक करने वालों को मन वांछित फल देते हैं।
0: कांवड़ यात्रा का अर्थ है अपने मन की कामना पूर्णता करवाना, पूर्णता करना और भगवान के शिव तत्व को प्राप्त कर लेना।
1: कांवड़ यात्रा न सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान का साधन है, बल्कि सनातन धर्म की सामाजिक समरसता और समावेशी संस्कृति का उद्घोष भी है। भोले का भक्त कांवड़ लेकर एक बार जब घर से निकल जाता है तो वो न किसी जाति विशेष का रह जाता है और न किसी वर्ग विशेष का। सदियों से चली आ रही कांवड़ यात्रा वर्ग भेद को मिटाकर हर कांवड़िए को भोले की संज्ञा से सिंचित कर देती है। साफ है कि सदियों पुरानी कांवड़ यात्रा इस बात की मुनादी करती है कि ऊंच नीच या जात पात का भेदभाव सनातन संस्कृति की तात्विक संरचना का हिस्सा कभी नहीं रहा। कांवड़ियों के परम आराध्य भगवान शिव तो अघरधानी ही कहे जाते हैं। अपनी कृपा करुणा की बरसात करते हुए भगवान भोले भक्ति की सांसारिक या मायाइक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अमायिक स्थिति को आधार बनाते हैं।
0: भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, वो क्षण भर में आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन होने के पश्चात जब हलाहल विष निकला तो भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया था। इस मास में ही भगवान शिव को नीलकंठ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान के शिव के जो विष तत्व को शांति देने वाला जल है, श्रावण मास में वो अपनी मनोकामना भगवान से कहते हैं और पूर्ण होने पर वो जल भगवान को अर्पण करते हैं इच्छित अपने शिव के मंदिरों में। और नहीं तो कोई मनोकामना नहीं भी है, जल उठा के जो आज श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान शिव को उस हलाल विष के होने के कारण से मन में जो पीड़ा होती है वो जल अर्पण करने से उनको शीतलता मिलती है।
1: भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। शायद यही वजह है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले परशुराम की कांवड़ यात्रा का जिक्र अनुश्रुतियों के जरिए मिलता है। परशुराम शिव के अनन्य भक्त थे, लिहाजा ये भी माना जाता है कि वो इस जगत के पहले कांवड़िए थे। जबकि भगवान राम की भी कांवड़ यात्रा के जरिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का संदर्भ मिल जाता है। श्रवण कुमार ने कांवड़ पर बैठा कर अपने प्रख्या चक्षु माता पिता को तीर्थाटन कराया था। हालांकि कांवड़ यात्रा पहली बार कब शुरू हुई और उसके पीछे की क्या ठोस धारणा थी, इसका स्पष्ट संदर्भ हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। समुद्र मंथन और भगवान शिव के हलाहल पीने की घटना में इसका संदर्भ तलाशने की कोशिश जरूर की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट कुटिया टुडे।
2: कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी किसी न किसी रूप में सुनाई और दिखाई दे जाती है, देखिए।

0: ये संभव नहीं कि कावड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण। एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया।
0: इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है, या फिर किसी विशाल कांवड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है। दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सुनंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समय पर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर रहा है।
2: मैं बड़े हरिद्वार से चले हूँ और दिल्ली पहुंचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। शक्ति विमान इसलिए लेके आए भोले क्योंकि कभी कभी शिवजी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली।
0: ये तस्वीरें हर साल कांवड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती है। कांवड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कांवड़िए का मनोरथ एक। बोल बम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

कई युग बीत गए लेकिन आस्था अभी भी वैसी ही है। सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं और महादेव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसता है और जगह जगह पर श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं।

कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ, ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है, मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊपकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्ट कार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी। हर साल सावन के महीने में कावड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कावड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं, और जब अपने खास कावड़ों के साथ ये भोले कावड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं।

ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कावड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची, तो कावड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। शिव शंभू रे, शंभू रे, जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है। तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और ओगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था।

इसी तरह कावड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कावड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कावड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई है। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं।

0: आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजा अधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है।
1: ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कावड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कावड़ को भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कावड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है।
2: आज भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कावड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कावड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
3: कितने लोग आए होते?
2: बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलिया भी है बहुत सारी, 12-13।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे।
5: पहले भी कभी लेके?
4: हाँ पहले भी
2: लेके जाओगे? नहीं बोले अभी तक, कोई कष्ट आया नहीं। बाकी और बाबा जी

हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िए नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: शतरंज की खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए, अब 18 बिज मैचों से खिताब का फैसला। दिल्ली में झूमकर बरसे बादल, लोगों ने लिया बदले मौसम का आनंद, NCR में बादलों का डेरा, कुछ देर में बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन आज 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के आदेश। राम दरबार के दर्शन के लिए पास व्यवस्था हुई खत्म, दर्शन व्यवस्था को ज्यादा सरल और सुगम बनाने के मकसद से ट्रस्ट ने लिया फैसला। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। सावन में दिख रहे बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों के बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, लंच टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा इलाका। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और योगी की अनोखी कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगे इस कांवड़ के नीचे और इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुंगेर की डमरू रूपी कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र, लकड़ी और फाइबर से तैयार किया गया है डमरू का पूरा ढांचा, कावड़ को बनाने में लगी है काफी मेहनत। सावन में दिख रहे भोले बाबा की भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों के बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज। बागपत में दिखी रिश्तों की अनोखी कावड़, सास ससुर को गंगा जल से नहलाने, 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर बहू।
3: अयोध्या में आने वाले भक्तों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी बड़ी राहत, राम दरबार दर्शन के लिए, राम दरबार पहुंचने के लिए पास व्यवस्था हुई खत्म।

0: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वृंदावन में बांके बिहारी के किए दर्शन पूजन। दर्शन के बाद बोले, पवित्र सावन महीने में कृष्ण मंदिर में शीश नवाना मेरा सौभाग्य। गोवा को मिली विकास की सौगात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन पर ई पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उद्घाटन किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत वाली बारिश। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हवा की गुणवत्ता में भी हुआ सुधार। बिहार के दरभंगा और आसपास के हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज। दरभंगा हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की मिली इजाजत। भारत के लकी रावत समेत दुनिया के मेधावी युवा पहुंचे नॉर्थ पोल। रूस की आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज पहल के तहत एक खास आर्कटिक अभियान का बने हिस्सा। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को मिली 9वीं सीड। 17 अगस्त से नई दिल्ली में खेला जाएगा टूर्नामेंट। 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में उतरेंगे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर किया अपने नाम। नागिन बनकर बॉक्स ऑफिस पर छाने की तैयारी में श्रद्धा कपूर। फिल्म की स्क्रिप्ट हुई पूरी, जल्द ही शूटिंग होगी शुरू। श्रद्धा ने इस रोल के लिए जताई खुशी। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नंबरी हुआ रिलीज। 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी फिल्म। जाने तू या जाने ना किसान, फिल्मों में कदम रखने वाले इमरान खान लगभग एक दशक के बाद बड़े पर्दे पर करेंगे वापसी। अधूरे हम अधूरे तुम नाम की एक रोमांटिक कॉमेडी में आएंगे नजर। तबू ने पर्सनालिटी राइट्स मामले में खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा। बिना अनुमति अपने नाम और फोटोज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठाई। टॉम होलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रचा इतिहास। सिर्फ 5 दिन की $1 बिलियन की कमाई। चीनी कंपनी बीवाईडी ने लॉन्च की अपनी पहली ब्राजील में बनी प्लग इन हाइब्रिड फ्लैक्स फ्यूल कार। सॉन्ग प्रो सुपर हाइब्रिडो फ्लैक्स फ्यूल इसे बनाने में लगे हैं 2 साल। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत के आसमान में दिखा शानदार नजारा। हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज पर आयोजित हुआ भव्य ड्रोन शो। हांगकांग में जन्मे जॉइंट पांडा जुड़वा बच्चे जिया जिया और डेडे के दूसरे जन्मदिन के मौके पर शहर में मनाया जा रहा है जश्न। इस खास मौके पर 4 ट्रॉम को इन जुड़वा बच्चों और उनके पांडा परिवार की तस्वीरों से सजाया गया। चीन के लांजू झोंगचुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माउस कैचिंग ऑफिस नाम का कांच का कमरा बना आकर्षण का केंद्र। एयरपोर्ट द्वारा आवारा बिल्लियों के लिए बनाया गया है ये शेल्टर। कजाकिस्तान में उमित नाम के एक मादा आमू टाइगर को इले बलखश नेचर रिजर्व के जंगल में छोड़ा गया। इसे मध्य एशिया में विलुप्त हो चुके कैस्पियन टाइगर को बचाने के लिए खास प्रोजेक्ट का हिस्सा इसे बनाया गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। राम दरबार में अब पास व्यवस्था हुई खत्म। राम भक्तों की सुविधा के लिए ट्रस्ट का बड़ा फैसला आया सामने। सावन के महीने में कांवड़ियों से गुजार है हरिद्वार। बड़ी संख्या में हर की पौड़ी पर गंगा जल लेके उमड़ रहे हैं भक्त। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रुक रुक कर होती रहेगी बारिश, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बड़े पर्दे पर जल्द नागिन अवतार में नजर आएंगी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर। जल्द ही शूटिंग होगी शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द मिलेगी नाइट लैंडिंग की सुविधा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी।

0: और लंच टाइम की करेंगे शुरुआत हमारे चैंपियंस के साथ। बॉक्सिंग की दुनिया में लास वेगास को चैंपियंस की सबसे बड़ी धरती माना जाता है। यहां पहुंचना हर मुक्केबाज का सपना होता है, लेकिन उस सपने की नींव दुनिया की बड़ी रिंग में नहीं बल्कि करनाल जैसी छोटी छोटी बॉक्सिंग एकेडमीज में रखी जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की बेटियों के दमदार प्रदर्शन के बाद अब करनाल की यही रिंग भविष्य के चैंपियन तैयार करने में जुटी है। गुड न्यूज टुडे पर आज हम आपकी मुलाकात उन बॉक्सर बेटियों से भी करवाएंगे जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच कर लौटी हैं। उनकी कामयाबी के किस्से खुद उनकी जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए करनाल की बॉक्सिंग नर्सरी।
1: बॉक्सिंग की दुनिया में लास वेगास को चैंपियंस की धरती कहा जाता है। हर मुक्केबाज के सबसे बड़े सपने की मंजिल माना जाता है, जहां दुनिया के महानतम चैंपियन अपनी पहचान बनाते हैं और इतिहास रचते हैं। ये सच है कि हर विश्व विजेता की शुरुआत किसी छोटे से बॉक्सिंग रिंग से होती है। करनाल की ये रिंग भी ऐसे ही बड़े सपनों को आकार दे रही है। पंचिंग बैग पर लगातार पड़ते मुक्के, गजब का बैलेंस और आंखों में जीत का जुनून, ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि भारत के अगले चैंपियनों की तैयारी है। हर मुक्का एक सपना है, हर पसीने की बूंद देश के नाम है। हरियाणा के करनाल में हर सुबह की शुरुआत देश के लिए मेडल लाने के संकल्प के साथ होती है और युवा बॉक्सर हर दिन इसी जज्बे के साथ रिंग में उतरते हैं।
2: अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन बॉक्सिंग इजी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट फिर उसके बाद आपको इजी लगेगा अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं।
1: इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा साफ देखने को मिला। सबसे ज्यादा स्वर्ण नेम सफलता मुक्केबाजों के हिस्से आई। अब इसी जीत की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी जारी है। करनाल की बॉक्सिंग रिंग में रोज पसीना बहाती ये बेटियां आने वाले वर्षों में भारत के लिए नए पदक जीतने का सपना संजोए हुए हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन और बुलंद हौसलों के साथ ये हर दिन खुद को तराश रही है।
2: काफी हद तक अच्छे मतलब प्लेयर्स निकले हैं और सारा कुछ अच्छा रहा, और मैं अपना भविष्य यही देखती हूँ कि मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूँगी।
1: करनाल की इस बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचने के लिए कई खिलाड़ी रोज कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। कुछ तो सुबह और शाम दोनों वक्त लंबी दूरी तय करके यहां अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। पढ़ाई और प्रैक्टिस के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इन युवा मुक्केबाजों के हौसले हर चुनौती पर भारी पड़ते हैं।
3: मैं चिड़ाऊ गांव से आती हूँ, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सुबह और शाम अप डाउन करती हूँ। बॉक्सिंग में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है, बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है।
1: अनुशासन के साथ सबसे जरूरी होती है सही कोचिंग, जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वजह है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी बॉक्सिंग में रुझान बढ़ता जा रहा है।
4: लड़कियां भी बहुत ज्यादा आ रही है, और करीबन आप मान के चलिए 15 किलोमीटर 20 और 25 किलोमीटर से लड़कियां आ रही है, और सुबह शाम पेरेंट्स भी इनके साथ ही आ रहे हैं। सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे ग्राउंड टाइम है आ रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, लेट तक 8, 9, 10, 10 बजे तक घर पहुंच रहे हैं, और काफी अच्छा रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग रिंग में इस बार हरियाणा की बेटियों का ऐसा दमदार पंच देखने को मिला कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उनकी ये जीत सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं है, ये उस खेल संस्कृति की पहचान है जिसने हरियाणा को देश की सबसे
0: जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं। भारत की इन गोल्डन गर्ल्स ने GNT से खास बातचीत की है और कामयाबी के किस्से बयां किए हैं, सुनिए।
5: फॉर इंडिया इन CWG 2026 इन ग्लासगो in boxing. Not easy. We've often heard it from men getting us boxing medals, 5 young women. Sakshi, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करती हूँ। आपके लिए इसलिए easy नहीं था क्योंकि जब मैं research कर रही थी मुझे पता चला आपको कितना manage करना पड़ता है जब in terms of your own weight और जब दूसरों से भी कंपटीशन करना पड़ता है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे रहता है एक यंग लड़की में जो कहती है बॉक्सिंग भी करनी है, दूसरों को डिफीट भी करना है और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है?
6: जी मैंने पहले 54 केजी खेलती थी, हाँ. तो भी मैंने कट करके 51 में खेल रही हूँ मैं, तो एक यही स्ट्रगल है कि वेट को मेंटेन करता है, फिर पूरी रात प्यासा रहना पड़ता है और फिर मॉर्निंग में बाउट हम खेलते हैं और उसके बाद फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रेशर था, एक जो हम खेलने जाते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग होता है।
5: जैस्मिन का बहुत इंटरेस्टिंग है, जैस्मिन 40 डेज पहले आई थिंक जो बाउट के आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो क्या आपको एक पॉइंट पे लगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो गया हाथ से?
2: मैम मेरी तबीयत मतलब 20-25 दिन तक ऐसे खराब कंटिन्यू चल रही,
5: बट क्या हुआ था मतलब कि
2: स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल रहा था, डेली फीवर आ रहा है 102-103, टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट लेके ठीक हो जा रहा है, फिर 2-3 घंटे

0: सर है जो टेबलेट का, ठीक है वापस फिर से ऐसे ही आ जा रहा है। तो 1 वीक तो हमने उसी में निकाल दिया कि चलो ठीक है ठीक है। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर मतलब हम ये कोशिश कर रहे थे सभी डॉक्टर्स की हो क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली है क्या।
1: फिर कैसे कैसे
0: फिर बाद
1: टीम ने?
0: में हमने मतलब इसी में 20-25 दिन ऐसे ही निकल गए ऐसे ऐसे। फिर हमने हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया
1: ओके
0: अच्छे से, और फिर वहां पे एक टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
1: प्रिया, आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया और कैसे अपने आप को कॉन्स्टेंटली आप बूस्ट करते रहे कि जहां लेजेंड्स हैं हमारे, मुझे अपना भी नाम उसमें दर्ज करना है? कौन सी एज में स्टार्ट किया आपने प्रिया, और कब आपको लगा कि अब मुझे भी लेजेंड्स में अपना जो है नाम दर्ज करना है?
2: मैंने 10 साल की एज में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। तो उस समय मैं बहुत शरारती थी, तो ऐसे होता था कि कोई गेम कर ले, मेरे घर को ने मुझे गेम्स में डाल दिया,
1: हाँ,
2: शरारती है
1: तो गेम्स तो
2: गेम्स
1: बहुत
2: कर
1: थी,
2: लेगी,
1: बॉक्सिंग में कहाँ से आ गई?
2: तो लड़ाई तो बॉक्सिंग में होती है
1: हाँ, तो
2: मैडम
1: उसका जोश
2: तो
1: था।
2: उसका जोश था। फिर बाद में ऐसे ही विजेंदर बॉक्सर रहे, उनका नाम सुनने में आया कि वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि हमें विदेश के लिए मेडल लेकर आना।
1: वेल डन अरुंधति, आप तो कोटा से आ रहे हो, यू शुड हैव बीन डूइंग एन IIT और सम इंजीनियरिंग कोर्स और समथिंग एल्स, या कोचिंग सेंटर में स्क्रूब लगे हुए होते। व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे हटना है बाबा मम्मी, मुझे कुछ और करना है, और प्रॉब्लम हुई क्या उसमें?
3: नहीं, सेम था कि स्कूल में जैसे बॉयज को साथ लड़ाई करना, पीट के आना, और फिर प्रिंसिपल का घर पे फोन आना कि वी आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक बिकॉज ये बहुत मस्ती करती है। तो पापा तो चाहते ही थे कि हाँ IIT करूँ।
1: मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस आप पांचों में मैं देख रही हूँ, 2024 में आपकी भी तबियत बहुत खराब हुई थी, कुछ इवेंट्स भी आपने मिस किए थे, तो जब दूसरे प्लेयर्स को आप देखते हो वो इवेंट्स मिस हो, वो जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, कैसे अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन कहता है कि नहीं मैं बाउंस बैक करूंगी?
4: इट्स डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग रहता है, कोई भी फेज, वो इंजरी फेज है या हम बीमार हैं जस्ट बिफोर कंपटीशन, और इतना बड़ा कंपटीशन जाने से पहले अगर हम अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है। बट आई थिंक मेंटली हमें उस चीज़ को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए उस टाइम पे। अगर हम उन चीज़ों को मेंटली ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लेते हैं फिजिकली एट द एंड। और ओलंपिक में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं थोड़ा बीमार थी बट मेंटली मैं अपना पूरा ट्रेनिंग कर रही
1: के गए
4: थी।
1: थे
4: यस डेफिनेटली।
1: क्या वो मोमेंट जो होता है जब आपको पता है मैं जीत गई हूँ, ये गोल्ड मिल गया मुझे, वो मोमेंट कैसा था? वो क्या आप उसमें मतलब खुद कूदते हो या आपको रिस्ट्रेन करना होता है कि नहीं कीप योरसेल्फ काम, अनाउंस होने दो?
3: रैंडम इमोशंस निकलता है, मतलब खुद भी नहीं पता होता है कि अभी कैसा इमोशन निकलने वाला है, अपने आप आ जाता है।
1: तो उसी इमोशन के साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है अब, ठीक है? अब मैं भी क्योंकि लोगों को बोलूं आई मेट द गोल्डन बॉक्सर गर्ल्स, कोई मुझे अपना फेवरेट पंच थोड़ा टीच करेगा, कौन करेगा? अरुंधति, आप? अरुंधति कम, लेट्स, जो भी आपका फेवरेट पंच हो वो मुझे आप बताओ, एम आई होल्डिंग इट राइट? ठीक है, लेफ्ट हुक। तो अगर मुझे सेल्फ डिफेंस करना है, लड़कियां देख रही हैं कोई लड़का ज्यादा स्मार्ट बन रहा है मेरे साथ, तो मुझे उसको
3: टच करेगा, हाँ, लेफ्ट हुक मारो,
1: तो लेफ्ट हुक ऐसे
3: ऐसे
1: ऐसे,
3: हाँ,
1: ओके,
3: पूरा हिल जाएगा वो,
1: पूरा हिल जाएगा, और कहीं मारने,
3: आप
1: स्टमक
3: पे मार सकते हो, अपरकट
1: ऐसे,
3: हाँ,
1: लाइक दिस
3: ऊपर उठाते हुए
1: रिब केज पे, ओके, एंड जो आप ये सब, ये तो लेग्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, ओनली अपर बॉडी, सो दिस इज ये पार्ट है, एंड नोज, अगर नोज तोड़नी है तो
3: नोज तोड़नी है, स्ट्रेट आप मारो,
1: स्ट्रेट, कैन यू जस्ट शो इट टू मी विदाउट हिटिंग मी?
3: ओके, हुक और दिस,
1: सो इज इट द राइट हैंड और द लेफ्ट हैंड, कौन सा पंच? इट्स माई चॉइस। थैंक यू वेरी मच गोल्डन गर्ल्स, एंड दे हैव शोन अस गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
5: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक चैंपियन के स्वागत की भव्य तस्वीरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे पंजाब के वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह का अमृतसर में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, भांगड़ा और फूलमालाओं के साथ परिवार और स्थानीय लोगों ने उनकी कामयाबी का जश्न मनाया। लवप्रीत ने सफलता का श्रेय अपने कोच, अपने परिवार और समर्थकों को दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में लवप्रीत ने सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 2 बार तमगा जीतकर लवप्रीत ने देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। लवप्रीत का कहना है कि अब उनका अलग लक्ष्य एशियन गेम्स है, जहां वो गोल्ड जीतकर तिरंगा लहराना चाहते हैं।

0: और चलिए बदलते हुए भारत की नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत की नारी अब हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान को गढ़ रही है। कभी खेल के मैदान में अपने दमदार पंच और शानदार किक से विरोधियों को मात दे रही है, तो कभी रेलवे जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारियां पूरी दक्षता के साथ संभाल रही है। हरियाणा की बॉक्सिंग रिंग से लेकर श्रीनगर की टाइकोंडो अकेडमी और गोरखपुर के डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन तक देश की बेटियां आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की नई मिसाल पेश कर रही हैं। कश्मीर घाटी में भी बदलाव की नई तस्वीर नजर आ रही है। श्रीनगर में टाइकोंडो युवाओं के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है और बड़ी संख्या में लड़कियां इस मार्शल आर्ट से जुड़ भी रही हैं। मुक्कों की ताकत हो, टाइकोंडो की किक हो या फिर रेलवे स्टेशन के संचालन जैसी बड़ी जिम्मेदारी, देश की बेटियां हर मोर्चे पर अपनी नई पहचान बना रही हैं। वे सिर्फ अपने सपनों को साकार नहीं कर रही बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी बन रही हैं। और श्रीनगर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। श्रीनगर में युवाओं के बीच टाइकोंडो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में घाटी के युवा, खासकर लड़कियां इस खेल से जुड़ रही हैं। जाहिर है ये मार्शल आर्ट अब केवल एक खेल नहीं बल्कि घाटी के युवाओं के लिए करियर, आत्मरक्षा और मानसिक अनुशासन का जरिया बन चुका है। इस खेल के प्रति बढ़ती रुचि की वजह से घाटी में एक अकेडमी भी डेवलप हुई है और इस स्पोर्ट्स में घाटी के युवा देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं।
1: वो एक लड़की के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम भी चाहते हैं हम अपना करियर इसमें आगे बनाएं।
2: क्या क्या आपको यहाँ सिखाया जा रहा है?
1: सेल्फ डिफेंस होता है, पुम से क्लास अलग होती है और बेसिक किकिंग, टाइकोंडो की जो पंचिंग होती है वो सब होता है यहाँ पे। पैशन है और हम आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे।
3: मैं यहाँ पे टाइकोंडो खेलती हूँ बहुत टाइम से, तो मैं चाहती हूँ कि आगे, मतलब हमारी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, मैं चाहती हूँ बाकी सब गर्ल्स भी यहाँ आए, पार्टिसिपेट करें, वो देखें बाहर का माहौल आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं चाहती हूँ कि वो गर्ल्स अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए टाइकोंडो सीखें। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है हमारी, पुमसे क्लासेस होते हैं हमारे, पंचिंग्स वगैरह होता है, ब्लॉकिंग होती है हमारी, फाइट स्पारिंग्स होती हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं भजन गायिका देवी चित्रलेखा एक्सक्लूसिव। आपको बता दें भजन, कथा, प्रवचन की दुनिया में देवी चित्रलेखा का नाम नया नहीं है। कथावाचक के तीर पर तौर पर अब देश विदेश में अपनी पहचान बना चुकी चित्रलेखा खास तौर पर सरल भाषा में गूढ़ धार्मिक प्रसंगों को आधुनिक उदाहरणों के साथ समझाने के लिए जानी जाती हैं। खासतौर पर श्रीमद् भागवत कथा वाचन के लिए देवी चित्रलेखा देश विदेश में प्रसिद्ध हो गई और अब उनका दिल्ली में एक आध्यात्मिक और भक्ति म्यूजिक कॉन्सर्ट दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। आपको बता दें 27 अगस्त की शाम दिल्ली की यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में उनका कॉन्सर्ट अनंत नाद म्यूजिक फॉर द सोल आयोजित होगा। देवी चित्रलेखा जी की मधुर आवाज में लाइव भजन और श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर प्रस्तुतियां होंगी। आज जीएनटी पर देवी चित्रलेखा खुद मौजूद है, देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।

0: आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी। बात करें भक्ति की, पॉजिटिविटी की या धर्म की, एक नाम जो हमारे जहन में ज़रूर आता है वो है देवी चित्रलेखा जी का। देवी चित्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: आपने इतनी छोटी उम्र में भगवत कथा का प्रचार शुरू कर दिया। जब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, उस वक्त आपके मन में एक आध्यात्मिक लगान किस प्रकार आया?
1: देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, जीना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही भक्ति भी ज़रूरी है। और जो इसको जितना अपने जीवन के अर्ली स्टेज पर समझ जाए उतना बेहतर है, लेकिन ये अपने किसी कोशिश से संभव नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है। तो आई थिंक

0: वो कृपा भगवान ने मुझ पर करी कि एक बहुत कम आयु पर मुझे समझ आ गया कि भक्ति भी जीवन में ज़रूरी है, धर्म क्यों ज़रूरी है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहे, परिवार का जो संस्कारिक माहौल भक्ति में माहौल रहा वो रहा, जिस जगह जन्म हुआ है वहाँ क्षेत्र का, वृंदावन का बहुत बड़ा असर रहा, और गुरु का बहुत बड़ा सानिध्य रहा, क्योंकि I got initiation when I was only 4 years old. Yes. तो 4 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि उसे गुरु क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, लेकिन उस उम्र में दीक्षा हो गई, तो इसका मतलब गुरु की भी एक बहुत बड़ी कृपा रही।
1: जैसे आपने बोला घर में बड़ा सांसारिक माहौल रहता है, हम भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मेरे घर पे ठाकुर जी की सेवा होती है
0: जी।
1: जैसे बट मन में बहुत एक बार प्रश्न आता है कि हम भगवान से प्यार तो बहुत करते हैं, पर इस टाइम पे ना मेरे को लगता है कि भक्ति एक ट्रांजैक्शन बन के रह गई है। अगर मैं भगवान से कुछ मांगूंगी, अगर उन्होंने पूरा कर दिया तो वो अच्छे, और अगर नहीं करा तो वो बुरे हो गए। तो भक्ति कितनी आपको लगता है कि इस बार ट्रांजैक्शन बनती जा रही है?
0: नहीं, ये तो भक्ति है ही नहीं, ये तो डिमांड्स हैं कि आपका कोई इच्छा पूरी करता है तो राधे राधे, नहीं तो फिर दूसरा भगवान ट्राई करो। तो भक्ति का मतलब तो समर्पण होता है। इट डजंट मैटर कि वो आपकी जीवन को इवन टफ भी कर दें, आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा हार्ड कर दें, और भगवान करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति की ओर बढ़ते जाते हैं आपकी परीक्षाएं और टफ होती जाती हैं, लेकिन वो साथ भी देते हैं, ये भी पक्का है। लेकिन भक्ति का मतलब कभी भी ये ना समझें, मुझे लगता है ये एक दुनिया में ही एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि भक्ति करने से भगवान हमारे रोगों को दूर कर देंगे, हमारे परेशानियों को दूर कर देंगे। वो तो ऑलरेडी रहेंगी क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, उसे भगवान नहीं काटेंगे, लेकिन वो इतना आपको मजबूत बना देंगे कि आप उसमें भी खुश रहोगे, उसमें भी प्रसन्न रहोगे कि जीवन है।
1: जैसे ना बीइंग अ जेन ज़ी, आई वुड से, मैंने आपसे पहले भी बोला मेरे कई प्रश्न रहेंगे, और इस टाइम पे जो पहला प्रश्न मैं जेन ज़ी से रिलेटेड ज़रूर आपसे पूछूंगी, अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, हमें भगवान याद आते हैं ताकि भाई वो व्यक्ति हमें मिल जाए, अगर वही व्यक्ति इनकंसिस्टेंसी शो करता है हमें फिर भगवान याद आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वही व्यक्ति हमारा दिल तोड़ दे हमें फिर भगवान याद आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। जो बहुत आम प्रश्न हमारे मन में आता है, वो तो सबके मन में आता है कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर मेरे मन में एक और प्रश्न आता है कि अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं था तो भगवान ने भेजा क्यों, कौन सा ऐसा लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या?
0: लिखा तो था, बिना लिखे तो नहीं आएगा, लेकिन उतने ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखा था। क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि भी, देयर टू टाइप्स ऑफ बुद्धि, कि एक होती है नॉर्मल, एक होती है जिस बुद्धि में विवेक होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड्स। तो वो बुद्धि आपको आध्यात्मिकता देती है, बुद्धि में विवेक आपको आध्यात्मिकता देती है कि आप निर्णय कर पाओ, आप डिसाइड कर पाओ कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कौन व्यक्ति आपके लिए गलत है, क्या सिचुएशन आपके लिए गलत है। तो अगर भगवान ने कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में दी है तो इट्स 100% गारंटीड है कि वो व्यक्ति हमारे लाइफ में पूर्व के कर्मों से लिखा तो गया था।
1: अच्छा।
0: चाहे वो एक ही दिन के लिए लिखा गया था, बट अब उससे आपको जो लेसन है, भगवान ने अगर कुछ ऐसा किया, खैर भगवान भी नहीं करते, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी, हाँ ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम हमेशा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों
1: होता
0: है, ऊपर वाले हमेशा ऊपर उंगली उठाते, जबकि हमें हमेशा उठानी चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि वो मेरे कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट का ही रिजल्ट है जो आज मुझे मिल रहा है। बट इतना ज़रूर है कि थोड़ा भगवान के निर्णयों पर भरोसा रखना चाहिए।
1: जैसे एक और हमारी यंग जनरेशन का सवाल है, हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, पर किसी इंसान ने इतनी पीड़ा पहुंचाई हो, इतना हमें कष्ट दिया हो, उसके वो जानता है कि वो उसे हमें कष्ट दिया, उसके बाद भी वो कुछ ठीक नहीं कर रहा उस चीज़ को लेके, वो तब जो होता है माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरी माने तो, मतलब हम सब यही सोचते हैं। आपके लिए फॉरगिवनेस क्या है, कैसे उस चीज़ को देखा जाए?
0: आई थिंक उसके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी भी यही कि आप, उसने आपके साथ इतना गलत किया और फिर भी आपने कहा कि भगवान इसे क्षमा कर दो, इसे माफ़। आध्यात्मिक मार्ग तो यही कहता है। अगर हम संसारिक दृष्टि से सोचेंगे तो शायद हमें कंपटीशन होगा कि इसने किया, ले हम डबल करें।

0: आध्यात्मिक मार्ग तो यही कहता है। अगर हम संसारिक दृष्टि से सोचेंगे तो शायद हमें कंपटीशन होगा कि इसने किया ले हम डबल हाँ। करेंगे, इसने मारा हम 10 मारेंगे।
1: हाँ,
0: ये तो एक, एक नॉर्मल लाइफ में ये सबकी विचारधारा है, लेकिन जब आध्यात्मिकता आपके भीतर उतर जाती है तब भगवान यही कहते हैं कि आपको इस दुनिया में सबसे टफेस्ट और सबसे सुंदर कोई चीज़ है तो वो क्षमा है, किसी को माफ़ कर देना है।
1: आपकी मैं कॉन्सर्ट के बारे में बात करना चाहूँगी, अनंतनाग 23 अगस्त को है, उसके पीछे ये जो है क्या सोच रही पहले तो ये।
0: आई थिंक आज की दुनिया को देख करके, जो आज के टाइम में स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भाग रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, तो शायद ये जो अनंतनाद है ये उनके जीवन में एक ठहराव का काम करेगा, एक ब्रेक का काम करेगा, एक गंभीरता जो लोगों के जीवन में नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते सबसे ईजीएस्ट है, वन इज़ म्यूज़िक संगीत एंड सेकेंड इज़ भक्ति। तो हमने सोचा कि इन दोनों को एक ही स्टेज पे क्यों ना ला दिया जाए, जहां आज के समय का संगीत भी हो और भक्ति भी हो। तो उसी भाव को मन में रखते हुए, क्योंकि आज तक कथाओं के माध्यम से मैंने लोगों को भगवान से जोड़ा, अब संगीत के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि लोग, युवा जो बच्चे हैं वो सब वर्ग के लोग इस अनंतनाद के माध्यम से भगवान से जुड़ें और अपनी लाइफ के स्ट्रेस से थोड़ा दूर हों। क्योंकि जब वो वहाँ बैठेंगे 2-2.5 घंटे, तो मुझे लगता है कि वहाँ का ऑरा और जिस तरीके से हमने उसको बनाने की कोशिश करी है, मंत्रों के साथ, भजनों के साथ, पदों के साथ, मीराबाई के भावों के साथ, वो बड़ा ही अद्भुत है। वहाँ जो आएगा कुछ समय के लिए वो अपने सारी जिंदगी की परेशानियों को भूल करके वहाँ बैठेगा। तो ये विचार करके हमने अनंतनाद, इसका टैगलाइन भी है म्यूजिक फॉर द सोल, स्वर से ईश्वर की ओर जो ले जाने का काम करता है। तो 23 अगस्त को फर्स्ट इसका ग्रैंड प्रीमियर दिल्ली में यशोभूमि में हमने रखा है। आई होप सब लोग वहां आएंगे और उसका आनंद लेंगे और उससे कुछ ना कुछ अच्छा अपने जीवन में पाके।
1: अपने दर्शकों से जरूर बोलूंगी भाई, जिनको स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए प्लीज कॉन्सर्ट में जाइए जो कि 23 अगस्त को है। चित्रलेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राधे।
2: तो ये थी देवी चित्रलेखा के साथ खास बातचीत। चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे

0: गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: शतरंज की खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए, अब 18 ब्लिट्स मैचों से खिताब का फैसला। महाराष्ट्र में नकली पनीर बेचने पर लगा प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान, जनता की सेहत का खास ख्याल रखते हुए लिया गया है फैसला। दिल्ली में झूम के बरसे बद्रा, लोगों ने लिया बदले मौसम का आनंद, एनसीआर में बादलों का डेरा, कुछ देर में बारिश संभव। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बागेश्वर में एहतियातन, आज 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी बंद रखने का आदेश।

0: राम दरबार दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म। दर्शन व्यवस्था को अधिक सरल और सुगम बनाने के मकसद से ट्रस्ट ने लिया फैसला।
1: सावन में दिख रहे हैं बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग। मुंगेर में हाथों के बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लंच टाइम में। बात सावन की हो रही है। सावन का एक रंग महादेव की भक्ति भी है। देवघर से लेकर काशी तक, हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक, पूरा देश इन दिनों शिवमय नजर आ रहा है। कहीं बोलबम के जय घोष से वातावरण गूंज रहा है, तो कहीं कावड़ यात्रा में आस्था के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। सावन में चारों ओर शिव भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। दरअसल सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पावन महीना है। यही वजह है कि देश भर में सावन के महीने में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। गंगा जल लेकर कांवड़िए बोलबम के जय घोष के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।

तो वहीं सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी हुई है। बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़ियों का जोश भी भरपूर नजर आ रहा है।

0: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कंधे पर कावड़। सावन के पावन माह में पूरे कावड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कावड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कावड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन माह की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कावड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कावड़ियों के साथ साथ कावड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है, तो कहीं बजरंगबली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कावड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है, तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नरसिंह के अवतार की झलक मिल रही है, तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कावड़ में दशानंद ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
1: इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कावड़ लेने।
2: पहले भी आ चुके
1: हो? हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कावड़ है हमारी।
2: कुछ मांगा था जो पूरा हुआ है?
1: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
0: कुछ कावड़ झांकियों में शिव परिवार सजा है, तो कुछ कावड़ झांकियों में पूरे शिवालय की झलक मिल रही है, तो कुछ कावड़ झांकियों में पूरे शिव परिवार की झलक मिल रही है। इस कावड़ यात्रा में कावड़ियों के जोश के साथ भी भगवान शिव के अटूट आस्था की तस्वीर दिख रही है। फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसे ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कावड़ में 110 लीटर जल लिया है, तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है।
3: महादेव के पक्के वाले भक्त। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हमें कई सारे कांवड़िए रास्ते में मिल रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के शनिदेव मंदिर पर हैं और यहाँ पर भी एक शिविर बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए आकर विश्राम कर रहे हैं, वापस से अपने शरीर की ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दो भाई मिले हैं, दोनों कज़िन हैं और दोनों ही महादेव के पक्के वाले भक्त हैं। हरिद्वार से जल लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, नोएडा तक पहुँच गए हैं।
0: नंदगांव से पहली बार कांवड़ लेकर आए इन दो भाइयों के कांवड़ पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर है। ये दोनों जल उस नंदगांव के शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, जहां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए महादेव ने तप किया था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन माह में उनके लिए भगवान की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। हरिद्वार से मदित अग्रवाल के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
4: कावड़ यात्रा के दौरान अलग अलग थीम पर कावड़ देखने को मिल रही हैं। कहीं कावड़ियों ने खास वेशभूषा बना रखी है, तो अलग ही अंदाज की कावड़ लेकर भी कुछ कावड़िए चल रहे हैं। ऐसी ही कुछ खास कावड़ मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की थीम पर इसे तैयार किया गया है। मोदी योगी नाम की एक कावड़ बुलंदशहर के 6 शिव भक्तों की एक टोली हरिद्वार से लेकर आ रही है। 2025 में भी ये टोली ऐसी कावड़ लेकर आई थी। सावन का महीना है, हर तरफ भगवा रंग दिखाई देता है। सड़कें बोलबम के जयकारों से गूंज रही हैं। हजारों कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने घरों की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं हजारों कांवड़ियों के बीच बागपत की सड़क पर गुजर रही एक कांवड़ ऐसी है जिसके पीछे ना कोई मन्नत है ना कोई मनौती। यूपी के बागपत से गुजर रही कांवड़ एक बहू के संस्कार, सेवा और सास ससुर के प्रति सम्मान की मिसाल है। हरियाणा का कपल करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला है। पति पत्नी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए निकले। बहू का ये कहना है कि वो अपने सास ससुर को गंगा जल से स्नान कराने के लिए पति के साथ कांवड़ लेकर चल रही है।

श्रावणी मेले के दौरान मुंगेर में गुजर रहे नए कांवड़िया पैदल पथ पर शिव भक्तों की अनोखी आस्था देखने को मिल रही है। बंगाल के राजकुमार महतो अपनी अनूठी शिव भक्ति के चलते श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजकुमार इस बार अपने हाथों के बल देवघर की यात्रा पर निकल गए हैं। बिच्छू के आकार में दोनों पैरों को ऊपर हाथ से यात्रा कर रहे हैं। वे बिच्छू महाराज के नाम से मशहूर हो गए हैं। पिछले 2 सालों से वो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। सैया घुमाई दे, हाँ घुमाई दे, देवघर के मेले कुछ ही दिनों में गणपति बाबा हर घर और हर पंडाल में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में नागपुर की मशहूर चितार ओली में तैयारियां पूरे जोश खरोश के साथ शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, यहां के मूर्तिकार दिन रात एक करके बप्पा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार महंगाई का असर भी साफ नजर आ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पहले जैसी ही अटूट है। देखिए हमारे संवाददाता योगेश पांडे की एक खास रिपोर्ट।

0: गणपति बप्पा मोरया। बस अब कुछ ही दिनों की बात है और हर घर, हर गली और हर मंडप बप्पा के स्वागत में सज जाएगा। नागपुर के मशहूर चितारोली में इन दिनों यही सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं बप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है। हर मूर्ति में कलाकार अपनी मेहनत के साथ श्रद्धा भी जोड़ रहा है। चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश तक है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं महाराष्ट्र के कई शहरों के साथ साथ दूसरे देशों में भी भेजी जाती हैं।
1: ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
2: कब से वो ऑर्डर देते हैं और कब?
1: ये लोग जून महीने में देते ऑर्डर। जून
2: कब बना के देते आप?
1: हम लोग उन तारीख रहते उनके जब जाने के फ्लाइट की रहती ना, जब वो तारीख देके जाल चले जाते हम लोगों को, एक दो दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: इस बार बप्पा की प्रतिमाओं में खाटू श्याम बाबा और भगवान महाकाल की छवि वाली प्रतिमाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ के मूर्तिकार दिन रात एक करके बप्पा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
3: भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए, तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है, तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं, उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं, इस प्रकार की डिमांड आ रही है।
0: लेकिन इस बार बप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच महंगाई की भी चर्चा है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ीं।
4: इस बार देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है।
0: महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन बप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा हर साल की तरह ही अटूट है। भक्त अभी से अपने पसंद की मूर्तियां बुक करने पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
5: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
6: पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का, जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आँख बनाते हैं, देखो आँख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब है, बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: 14 सितंबर को गणपति बप्पा पूरे देश में अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। उससे पहले नागपुर की चितारोली में हर हाथ सिर्फ एक ही काम में जुटा है, अपने लाडले बप्पा के स्वागत को सबसे सुंदर बनाने में। बप्पा के स्वागत की तैयारी बता रही है कि इस बार भी हर ओर गूंजेगा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और लंच टाइम में वक्त हो गया इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी का इंतजार अब खत्म हो सकता है। खबर है कि रोनाल्डो अपनी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ इसी शनिवार शादी के बंधन में बन सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए।

0: फुटबॉल के मैदान पर गोल की बरसात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी शुरू करने की तैयारी में है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो और उनकी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज इस शनिवार शादी कर रहे हैं। आधिकारिक ऐलान और बयान भले ही न हो, लेकिन इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में है। बताया जा रहा है कि पुर्तगाल के मरीदा द्वीप में मौजूद ऐतिहासिक फुंचाल कैथेड्रल को शादी के लिए बुक किया गया है। खबरों में किया गया दावा अगर सही साबित होता है तो ये ऐतिहासिक चर्च दुनिया के सबसे मशहूर कपल्स में से एक रोनाल्डो जॉर्जिना की शादी का गवाह बन सकता है। मरीदा सिर्फ एक खूबसूरत द्वीप नहीं है, यही रोनाल्डो की जन्मभूमि है। यही उन्होंने अपने बचपन के सपनों को उड़ान दी थी। अब खबर है कि उसी मिट्टी से जहां से उनका सफर शुरू हुआ, वहीं उनकी नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 500 साल पुराने फुंचाल कैथेड्रल में वहां के समय के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 3 बजे शादी की रस्में हो सकती हैं। शादी सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रहेगी। खबर है कि जश्न के लिए पास के 5 सितारा सेवोय पैलेस होटल में भी खास इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के 2 फ्लोर और कई बार एरिया सिर्फ शादी के मेहमानों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। यानी तैयारियां ऐसी जिन्हें देखकर लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। रोनाल्डो और जॉर्जिना की मुलाकात साल 2016 में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों दुनिया के सबसे चर्चित कपल में शामिल हो गए। अगस्त 2025 में दोनों ने सगाई की थी। आज दोनों मिलकर 5 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बाद शादी की चर्चा पहले भी हुई थी, लेकिन तब ये खबर सच नहीं निकली। अब एक बार फिर शादी की अटकलें तेज हैं। हालांकि रोनाल्डो और जॉर्जिना ने अभी तक शादी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिलहाल दुनिया भर के करोड़ों फैंस की नजरें इस शनिवार पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि ये इंतजार सच में खत्म होता है या फिर शादी की खबरें सिर्फ अटकलें साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास, ट्रस्ट ने शुरू की नई व्यवस्था। मंगला श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले, शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर, तो वहीं 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए। अब 18 ब्लिट्ज मैचों से खिताब का फैसला। महाराष्ट्र में नकली पनीर बेचने पर लगा बैन, नियम उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान। जनता की सेहत के ख्याल रखते हुए फैसला लिया गया। दिल्ली में झूम के बरसे बादल, लोगों ने लिया बदले हुए मौसम का आनंद। NCR में बादलों का डेरा, कुछ देर में बारिश की संभावना। सावन में दिख रहे हैं बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग। मुंगेर में हाथों के बल पर खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी जारी। 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। हरिद्वार के हर की पौड़ी में उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, गंगा स्नान और जल भरने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। बोलबम के जयकारों से गूंज उठा पूरा इलाका, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हरिद्वार। हर की पौड़ी में बढ़ती हुई भीड़ को संभालने के लिए जुटी पुलिस और प्रशासन, लोगों से नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा पूरा इलाका।

धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया। कांवड़ियों की हर सहूलियत का रखा जा रहा है ध्यान। सीएम धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ कांवड़ यात्रा में लगे हुए पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया। पवित्र यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं सुरक्षाकर्मी। मुख्यमंत्री ने कांवड़ सेवा का भी पुण्य लिया। अपने हाथों से धोए कांवड़ियों के पांव, सेवा की। सीएम धामी ने शिव भक्तों को अपने हाथों से परोसा भोजन। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर हो चुके हैं रवाना। सावन के महीने में उज्जैन में रोजाना भोलेनाथ की विशेष आरती। पवित्र महीने में भगवान शिव के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं लाखों भक्त।

0: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी एक अनोखा रंग देखने को मिला। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक प्रेमी युगल 111 लीटर गंगाजल पैदल यात्रा करता हुआ नजर आया। इस प्रेमी युगल की भोले शंकर से एक ही कामना, उनकी शादी के लिए राजी हो जाएं दोनों के परिवार। मुजफ्फरनगर पहुंची पीएम मोदी और सीएम योगी की अनोखी कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगी इस कांवड़ ने खींचा सभी का ध्यान। बुलंदशहर के 6 शिव भक्तों की एक टोली हरिद्वार से लेकर आ रही है मोदी योगी नाम की ये कांवड़। 2025 में भी ये टोली लेकर आई थी ऐसी ही मोदी योगी नाम की कांवड़। इस टोली ने गंगा मैया से मांगी है खास मन्नत। योगी के दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम बनने और नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभालने की कामना। मुंगेर की डमरू रूपी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। लकड़ी और फाइबर से तैयार किया गया है डमरू का पूरा ढांचा। कांवड़ को बनाने में लगा है काफी इंतजाम और मेहनत। हाथों के बल पर बाबा धाम की यात्रा पर निकले बंगाल के राजकुमार महतो बिच्छू के आकार में दोनों पैरों को ऊपर कर हाथ पर यात्रा कर रहे हैं राजकुमार। बिच्छू महाराज के नाम से मशहूर है। पिछले 2 सालों में भारत की धार्मिक यात्रा कर रहे हैं राजकुमार। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठों में से 21 शक्तिपीठों का कर चुके हैं दर्शन। बागपत में दिखी रिश्तों की अनोखी कांवड़, सास ससुर को गंगा जल से नहलाने 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर बहू। एक ही कांवड़ उठाए करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला है हरियाणा का ये दंपत्ति। इस गंगा जल से भगवान स्वरूप माता पिता को स्नान कराने की है कामना। अयोध्या में आने वाले भक्तों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ी राहत दी। राम दरबार दर्शन के लिए राम दरबार यहां पर पहुंच रहे हैं भक्त, तो वहीं पास व्यवस्था हुई खत्म। सामान्य दर्शन कतार से रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु सीधे कर सकेंगे प्रथम तल में स्थित राम दरबार के दर्शन। पहले सीमित संख्या में राम दरबार के दर्शन के विशेष पास होते थे जारी। दर्शन व्यवस्था को ज्यादा सुगम बनाने के साथ श्रद्धालुओं का समय बचाना है मकसद। नई दर्शन व्यवस्था से सरल होंगे दर्शन। सावन में रामनगरी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, ऐसे समय में भक्तों के लिए राहत लेकर आया है ट्रस्ट का ये फैसला। श्रावण मास के अलावा भी रोजाना देश और दुनिया से दर्शनों के लिए आते हैं हजारों लाखों भक्त, सभी के लिए नई दर्शन व्यवस्था एक शानदार पहल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के गंजम जिले में स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां कंधुनी देवी मंदिर के साथ साथ तप्तपानी स्थित नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में भी शीश नवाया और देश की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने ओडिशा के पारंपरिक नृत्य की भी झलक पेश की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत के लिए आई छात्राओं से मुलाकात की और छात्राओं को चॉकलेट्स भी बांटी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन की। दर्शन के बाद बोले पवित्र सावन महीने में कृष्ण मंदिर में शीश नवाना मेरा सौभाग्य। जम्मू कश्मीर सरकार ने राजौरी मेडिकल कॉलेज की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया। राजौरी में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई एमबीबीएस की 50 और सीटें। अब जीएमसी कॉलेज में हर साल 100 की जगह 150 छात्र ले सकेंगे दाखिला। राजौरी और पुंछ जिलों के लोगों को मिल सकेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से फिरोजाबाद के कलात्मक कांच उद्योग को मिली नई पहचान। कारोबारियों को कर्ज लेने और व्यवसाय स्थापित करने में मिल रही है मदद। इस उद्योग से जुड़ी हुई महिलाओं को खास तौर पर हो रहा है फायदा। जिले से बाहर काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों का पलायन भी रुका। 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होती है फिरोजाबाद की कांच की अलग अलग वस्तुएं। यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में खासी डिमांड। छब्बीस सितंबर से जोधपुर में गर्जेंगे दुनिया भर के फाइटर जेट। पाकिस्तान बॉर्डर के पास होगी IAF की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ड्रिल तरंग शक्ति 2.0। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस की नेक पहल आई सामने। गुम हुए 200 मोबाइल फोन्स को खोजकर उनके असली मालिकों को वापस किया गया। गुम मोबाइल फोन वापस मिलने पर मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी। 60 लाख रुपए है पुलिस को 200 बरामद मोबाइल फोन्स की कुल कीमत। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा डीए बढ़कर 38% हुआ। 1 अक्टूबर से खाते में ज्यादा पैसे आएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील आई सामने। ट्वीट कर भरी वर्षा के अनुमान के मद्देनजर सावधानी बरतने के लिए कहा। गुरुग्राम में भव्य कलश वदन यात्रा का हुआ आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष में हुआ विशाल कार्यक्रम। पवित्र कलश यात्रा को हरियाणा के जिलों के लिए किया गया रवाना। गोवा को मिली विकास की सौगात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन और ईपेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उद्घाटन किया। राज्य में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाना और अदालती प्रक्रिया को आसान बनाना है इस नई पहल की उद्देश्य। कानून व्यवस्था बनाने में होगी सहायक। भोपाल में उभरते हुए ज्ञान क्षेत्रों पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए कार्यक्रम में शामिल। बिहार के दरभंगा और आसपास का हवाई यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। दरभंगा हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की मिली इजाजत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी। दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द शुरू हो सकती है रात में उड़ान और लैंडिंग। सड़क सुरक्षा और बीमा नियमों को सख्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश आया सामने। बिना बीमा गाड़ी चलाना पड़ सकता है महंगा। बिना बीमा के चल रही गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गाड़ी का बीमा नहीं तो तेल नहीं अभियान चलाने का सुझाव दिया। भारत के लकी रावत समेत दुनिया के मेधावी युवा पहुंचेंगे नॉर्थ पोल। रशिया के आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज पहल के तहत एक खास आर्कटिक अभियान का बने हिस्सा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने असम के शिवसागर के बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित संतक और नेपाली खूंटी इलाकों का दौरा किया तो वहीं जायजा भी लिया। जेपी नड्डा ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। बोले असम के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। राहत और पुनर्वास कार्यों में नहीं होगी कोई कमी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और दूसरे इलाकों में भी बाढ़ बारिश से हालात हुए गंभीर। ईटानगर में हाईवे पानी में डूबे और कट गई हैं कई सड़कें। नवसारी में मूसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान, जलमग्न हुए कई एकड़ खेत। नेपाल में बारिश से उफन पर आई पहाड़ी नदियां, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, इलाके हुए जलमग्न।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्तों की कहानी। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अमरनाथ यात्रा के साथ अब बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। आपको बता दें सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 16 अगस्त को इस यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की पूरी सहूलियत का इंतजाम कर लिया है। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था खासा चाक चौबंद कर दी गई है।

0: भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है घाटियां। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू पवित्र गुफा की यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है भक्तों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा में जुलाई और अगस्त के महीने में मौसम एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। खराब मौसम की वजह से कई बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन मौसम ठीक होते ही ये यात्रा फिर शुरू हो जाती है और भक्तों का जोश बरकरार रहता है। अमरनाथ यात्रा के उत्साह के साथ ही अब बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। इस महीने की 16 तारीख को बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा। इस यात्रा के लिए रजौरी और पुंछ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
1: बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है वो अगर देखें जो हमारा जो दो डिस्ट्रिक्ट है रजौरी पुंछ ये सुंदरबनी से शुरू होके तो बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा जो है वो मंडी में ख़त्म होती है। तो पूरे रूट में हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है, जो हाई जो रिजेज हैं वहाँ पे डोमिनेशन प्रॉपर होती है, जहाँ पे लंगर लगते हैं, जहाँ पे लॉजमेंट सेंटर्स हैं, तो हर जगह पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है, सीआरपी की रहती है, आर्मी की रहती है, तो सभी फोर्सेज जो हैं मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में रह के पूरी अच्छे ढंग से जो सिक्योरिटी है वो हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनको देते हैं।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। यात्रा मार्ग पर एसओजी और सेना के जवानों की भी तैनाती होगी। संवेदनशील इलाकों में व्यापक स्तर पर नाकेबंदी रहेगी। यात्रा रूट पर गश्त और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ प्राचीर शिव मंदिर में दर्शन को अमरनाथ यात्रा जितना ही पवित्र माना जाता है, ऐसे भी मान्यता है कि बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के साथ ही अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होती है। हर साल की तरह इस साल भी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि जिस तरह से सुरक्षित वातावरण में अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसी तरह बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी शांतिपूर्ण माहौल में पूरी सहूलियत के साथ पूरी हो। जम्मू से राही कपूर, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास, ट्रस्ट ने शुरू की नई व्यवस्था, मंगला श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले, तो वही शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए, अब 18 ब्लिट्ज मैचेस से खिताब का फैसला। महाराष्ट्र में नकली पनीर बेचने पर लगा प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान, जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए फैसला लिया गया। दिल्ली में झूम के बरसे बादल, लोगों ने लिया बदले हुए मौसम का आनंद, एनसीआर में बादलों का डेरा, कुछ देर में बारिश होने की संभावना। सावन में दिख रहे बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों के बल पर खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटिया यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। आज सिर्फ मेकअप की बात नहीं होगी, बल्कि मेकअप से जुड़े एक छोटे से साथी की होगी जो हमारे मेकअप को देता है एक फ्लॉलेस लुक। जी हाँ, ये मेकअप ब्लेंडर, जिसके सॉफ्ट ब्रिसल्स का सही इस्तेमाल हमारे मेकअप को देता है एक नेचुरल फिनिश और उसके साथ साथ हमारी स्किन भी हो जाती है खुश। तो आज के इस पूरे एपिसोड में मेकअप ब्लेंडर से जुड़ी कुछ मजेदार बातें, आसान टिप्स और उसके साथ साथ आपके फेवरेट सितारों की हर अच्छी और मजेदार खबर लेकर हम हैं एब्सोल्युटली तैयार। तो क्या आप हैं रेडी? तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
6: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए होगा राधिका और वीर का हाथों में हाथ, फिर एक बार प्यार में खोएंगे वीर। होगी गौतम और रूहानी की सगाई, शुरू होगा नया ड्रामा।

बढ़ेंगी प्रथम और राध्या के बीच की नजदीकियाँ। और ट्विस इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में लगेगा सितारों का मेला, सितारे बिखेरेंगे जलवे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियाँ में।

0: मेकअप इज एन आर्ट और ये सबके बस की बात नहीं है. और मेकअप में बहुत ही जरूरी है कि आप मेकअप टूल्स का सिलेक्शन, जी हाँ, बहुत ही समझदारी से करें. जिस तरह है ये ब्लेंडिंग ब्रश, जिसके यूज से आपका फाउंडेशन एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है और आपका मेकअप लगता है एकदम फ्लॉलेस और नेचुरल. लेकिन क्या यहाँ पति ब्रह्मचारी की कहानी में सब कुछ फ्लॉलेस है? चलिए पता कर आते हैं. लेकर चलते हैं आपको सूरज और ईशा के पास, क्योंकि यहाँ फिर से आया है एक नया ट्विस्ट.
1: तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती.
2: शुरू हुआ ईशा और सूरज का चाय वाला रोमांस. गर्मा गर्म चाय ने बना दी जोड़ी.

0: सकते।
1: रोमांस पर ब्रेक लगाती अवनी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में अपनी ड्यूटी पर जाने को तैयार है ईशा कि तभी वहाँ पर चाय लेकर पहुँच जाते हैं सूरज। भाई पहले तो ईशा सोचती है कि वो सूरज के हाथों की बनी चाय पिए या ना पिए, और ऐसे में मोनिका इन दोनों के मजे ले रही है। और देखिए फाइनली ईशा चाय पी ही लेती है। भाई दोनों में गलत फहमियाँ चाहे कितनी भी हो, लेकिन दोनों प्यार तो एक दूसरे से बेहद करते हैं।
2: आपको क्या लगता है, छुई मुझे चाय पिएगी?

0: लेकिन इनका ये चाय रोमांस जल्द ही खट्टी मीठी नोक झोंक में बदल गया जब सूरज ने ईशा की रिकॉर्डिंग दिखाई जहां पर वो खराटे लेकर सो रही है और ये बात ईशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसे में देखिए कैसे दोनों लड़ रहे हैं।
1: वैसे वो तो सच कुछ नहीं पाई।

0: कैसे किसी लड़की की वीडियो बनाते हो और फिर सबके सामने दिखाते हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
1: वैसे ईशा जी, आज आपने छुट्टी क्यों नहीं ली?
0: आईपीएस तुम्हारी तरह थोड़ी ना।
2: इन दोनों का ये खट्टा मीठा प्यार चल ही रहा होता है कि वहाँ से ताई माँ लड्डू लेकर आती है जो ईशा को काफी पसंद है। लेकिन तभी वहाँ अवनी पहुँचती है और उसे लगता है कि ये लड्डू ताई माँ ने उसके लिए बनाए हैं। ऐसे में सूरज भी अवनी को लड्डू दे देता है। ऐसे में परिवार में अनबन देखने को मिली, क्योंकि कोई भी अवनी को पसंद नहीं करता और सूरज अवनी का पूरा ख्याल रख रहा है। ये बात कहीं ना कहीं ईशा को भी खटक रही है।
1: ये लड्डू इतने प्यार से बनाए हैं, मैं तो देखती हूँ। क्यों ताई माँ?

0: अब शुरू हो चुकी है तैयारी इंडिपेंडेंस डे की, जहां पर मोनिका काफी खुश है क्योंकि ईशा के साथ वो भी इस फंक्शन में जाने वाली है। तभी तो वो ईशा के पास पहुंची है अपनी नई नवेली साड़ी दिखाने, क्योंकि वो तो तैयारी अभी से शुरू कर रही है इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम की।
1: इंडिपेंडेंस डे पे यही वाली साड़ी पहनने वाली।
2: पहली बार आईपीएस का इतने बड़े मौके पे जाने को मिल रहा है।
1: तमीज से तो दिखना बनता है ना। बहुत अच्छी लगती है।
2: जो मुझे आप क्या पहनने वाली है?
1: अभी हम पुलिस ऑफिसर्स ना बड़े खुश नसीब होते हैं क्योंकि हमें उस दिन की वर्दी पहनने का मौका मिला। अभी वर्दी सिर्फ

0: अपनी परीक्षा। अब देखना होगा कि ईशा का क्या फैसला होगा। भाई जो भी हो, उसमें सूरज उसके साथ है।
1: मैं तुम्हें गिरफ्तार कर, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। चुन लो किसे बचाना चाहती है, आईपीएस का फर्ज या सूरज के लिए अपना पत्नी था।
2: ईशा जी, जो आपका फैसला होगा, मैं आपके साथ।
0: अब देखते हैं कि कहानी में आगे और कौन सा नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: इट्स वेरी स्ट्रेंज, ना ही बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दे रही है और इमेज भी बेप नहीं हो रही है।
2: बच्चा ठीक तो है ना डॉक्टर?
4: अवनी, अब मुझे सच सच बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं?
5: अब इश्क हो या मेकअप, दोनों में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, थोड़ा उसे समय दें और धीरे धीरे जो उसकी खूबसूरती निकल के आती है ना, उसका तो मजा ही कुछ और है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आप सबको इश्क जुनूनी के सेट पर और देखते हैं कैसा है यहाँ पर इनके इश्क का जुनून। फिलहाल तो यहाँ पर है ट्विस्ट का जुनून, लेट्स चेक इट आउट।
0: रूहानी और गौतम की सगाई। झूम कर नाची मामी। सगाई की रस्म में तेजुलाई ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गौतम और रूहानी की सगाई होने जा रही है, जिसके लिए देखिए कैसे रूहानी सजी धजी है और सजे धजे हैं बाकी के सभी घर वाले भी। और आज तो इस सगाई की रस्म में खास मेहमान बनकर पहुंच गई है तेजू। और ऐसे में डांस ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो देखिए इस सगाई की रस्म में चार चांद लगाए मामी ने, जो डांस करती नजर आ रही है।

0: गुरु चौधरी और अब रूहानी गौतम सिंह बनने वाले हैं। लेकिन रूहानी के बारे में मुझे एक ऐसा राज पता है जो यहाँ पे किसी को नहीं पता।
1: भाई सगाई में तेजू भी पहुंची है जो आते ही बॉम्ब फोड़ देती है कि वो रूहानी का एक राज जानती है। लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि तेजू कोई खुलासा नहीं कर रही है बल्कि वो तो घर वालों को बताती है कि रूहानी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर डबल सेलिब्रेशन होना तो बनता है और गौतम भी कर देते हैं सेलिब्रेशन का ऐलान।
0: तो वो राज ये है कि कल रूहानी का बर्थडे है।
2: क्या बात है, फिर तो कोई बड़ा धमाका जरूर बनता है।
0: और एक नहीं भैया, डबल धमाका। रूहानी के इस बर्थडे को हम इतना यादगार बना देंगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। ठीक 12 बजे हम रूहानी का बर्थडे केक काटेंगे और उसके बाद आपकी जूटिंग वाली हल्दी इस पे लगे।
3: बर्थडे तो क्या हुआ, इंसिटी कैसे बर्थडे?
4: अरे बाकी अगर आधा रात को हम लोग इसे शादी का रस्म करेंगे तो सो सोएंगे।
5: 12 बजे के बाद होली की रस्म होते हुए आज पहली बार सुन रहे हैं।
0: ओहो दादी, आपको पता नहीं है क्या, जब रूहानी पे बात आती है ना तो भैया ये रस्में रिवाज नहीं मानते हैं। अब देखिए, शादी शुदा लड़की थे, शादी कर रहे हैं, उसके ससुराल में डेरा जमा के बैठे तो हल्दी तो हो ही सकती है, राइट?
6: यार देखो, जिस तरफ पार्टी होती है मामी उस तरफ होती है, तो गौतम और रूहानी की शादी हो रही है। गौतम बाबू ने जिस तरीके से हमारे सिर पर तलवार रखी है, गले पर तलवार रखी है, तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है हमारी। तो जो वो करवा रहे हैं वो हम सब कुछ कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो खुशी खुशी करें, इसके लिए इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे तो म्यूजिक है, सजावट है, खाना पीना है।
1: तो भाई होने जा रही है सगाई की रस्म और ऐसे में जब अंगूठिया आती है जो तेजू लेकर आती है तो देखिए कैसे अंगूठी को छूते ही गौतम को लग जाता है करंट और ऐसे में सगाई पर लग जाता है ब्रेक। भाई ये सारा किया धरा रूहानी का ही है लेकिन बड़ी ही चालाकी से रूहानी तेजू पर इसका इल्जाम डाल देती है।
7: ये घटिया मजाक करने की हिम्मत किसने किया है?

0: निगरानी में होती थी जैसे। शाम तक तो सब ठीक था, फिर तुम आ गई। अरे शादी से कुछ नहीं थी तो फोन पे बता देती, हम बुलाते ही नहीं। मिस्टर जी तो तुम्हारे खिलाफ, पर मैं ही जिद पे अड़ी थी।
1: भैया मैंने कुछ नहीं किया, भैया प्लीज आई प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया है।
2: भाई रूहानी तो चाहती है कि ये सगाई ही ना हो, इसीलिए तो वो ये बात सबके सामने कहती है। लेकिन रूहानी की ये बात उसी पर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि गौतम सगाई तो कैंसिल कर देता है लेकिन ऐलान कर देता है शादी का, वो भी कल के कल, जिसे सुनकर अब रूहानी हैरान और परेशान हो गई है।
3: ये जो आपकी रखिया मुझे सोच है ना, ये आप अपने पास ही रखिए, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। सगाई नहीं हुई तो क्या बात, अब सीधा शादी हो गई, वो भी कल के कल।
4: नहीं, बहुत सारे एहसान फरामोश बैठे हैं चौधरी खानदान में, जो बिल्कुल चाहते नहीं हैं कि नो मेरी शादी हो, एंगेजमेंट हो, तो बस रोड़े अटकाए जा रहे हैं और वही किसी ने खुदाबाद कर दी कि अंगूठियां गर्म कर दी और एंगेजमेंट ख़राब कर दी। इसलिए उसका बर्थडे भी है एंड सेम डे मैंने किया है कि हम शादी भी करेंगे, तो काफ़ी कुछ एक ही दिन पर हो रहा है, तो अब उसमें एक्चुअली राइटर भी बहुत लंबा दिन होने वाला है, बिकॉज ये सब हो रहा है एक साथ हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आएगा सबको देखने में।
2: वहीं दूसरी तरफ रूहानी सोच में पड़ी है कि अब तो शादी होने वाली है और वो इस शादी को कैसे रोके। ऐसे में उसका सहारा बनने और उससे सवाल जवाब करने वहाँ पहुँच जाते हैं रूहानी के भाई।
3: किससे बात कर रही है? तुम दोनों जो भी प्लान कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे निक्की को तो बताओ, ताकि हम दोनों तुम्हारी मदद कर पाए।
2: जहाँ एक तरफ गौतम और रूहानी की जल्द ही शादी होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरु पूरी कोशिश कर रहा है कि शादी रुक जाए। तभी तो वो तलाश कर रहा है पीएम मिश्रा की, जो मरा नहीं जिंदा है। ऐसे में वो ले आया है पीएम मिश्रा की वाइफ अलका को। तो एक तरफ अलका है तो दूसरी तरफ कब्जे में है शिल्पी, जिसने ये सारा प्लान रचा है। हालांकि शिल्पी यहां से भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अलका अब पीएम मिश्रा को यहां बुलाने वाली है। ऐसे में शिल्पी छटपटाती है लेकिन वो भाग नहीं पाती।
5: अरे कुछ नहीं, वो
2: भाई यहां तो उसकी दाल नहीं गली, इसलिए शिल्पी अलका को ही भटकाने की कोशिश कर रही है। तो भाई इन सब के बाद अब क्या गुरु रूहानी और गौतम की शादी रोक पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: जिस तरह रिश्तों में छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं, उसी तरह मेकअप किट में यह छोटा सा ब्लेंडर ब्रश, देखिए इसका भी कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी से तो आपका मेकअप लगता है फ्लॉलेस एंड नेचुरल। और कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी राध्या। वैसे राध्या, आपका लुक भी रहता है फ्लॉलेस, चाहे आपकी जिंदगी में हो आंधी तूफान। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको राध्या और प्रथम के पास उनके शोमान आती सुंदर के सेट पर।
7: तेरी सांसों की सांस में जो तो मैं हूं।
2: प्रथम राध्या की नजदीकियां, कट्टा के निशाने पर प्रथम, कलावंती की धमकी, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या ऊपरवाले का शुक्रिया मना रही है कि उसका प्रथम बाल बाल बच गया है, और आज तो वो अपने प्रथम का बखूबी ख्याल भी रख रही है, और उसका ये ख्याल प्रथम को बहुत पसंद आ रहा है।

फिलहाल तो उस हादसे के बाद प्रथम का आराम करना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रथम आराम तो करता है, लेकिन वहाँ कट्टा पहुँच गया है अपनी बंदूक लेकर। लेकिन इस बार कट्टा प्रथम को गुस्से से नहीं बल्कि अफसोस से देख रहा है, मानो उससे कोई गलती हो गई हो। इसी बीच कट्टा को आ जाता है उसकी बहन का कॉल, और देखिए कैसे खुशी से वो अपनी बहन का कॉल भी उठा लेता है।

0: कैसी हो तुम? इलाज सही से हो रहा है ना?
1: भैया डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन जल्दी करना होगा।
0: तो भरोसा रहे?
1: बस आप दोनों पर ही तो भरोसा है भैया, बस मजबूरी में आकर कोई गलत काम मत कर जाना।
2: भाई कट्टा तो मजबूर है ये सब करने के लिए, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता कलावंती आ जाती है और उसका मोबाइल छीन लेती है। इतना ही नहीं वो तो कट्टा को धमकी भी देती है।
3: मुझे पहले राधे पर नजर रखने के लिए कहा और तू अपनी बहन के साथ गप्पे लड़ा रहा है। एक बात याद रखना, अगर अगले 48 घंटे में वो पेपर नहीं मिला तो तुम दोनों भाइयों की एक लौटी बहन का ऑपरेशन नहीं होगा।
2: भाई अपनी बहन की खातिर कट्टा को वो सब करना होगा जो कलावंती चाहेगी। अब देखना होगा क्या वहाँ नींद में पड़े प्रथम ने ये सारी बातें सुन ली है। वैसे बता दे कि कहीं न कहीं राध्या बेहद परेशान है क्योंकि उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स छिपाने जो हैं, जिसे अब कलावंती ढूंढ रही है। देखना होगा क्या कलावंती अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी।
4: हमें बहुत चिंता हो रही है।
5: रुक जा।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: जिस तरह एक मेकअप ब्लेंडर हर प्रोडक्ट को मिलाकर एक खूबसूरत फिनिश देता है ना, उसी तरह ये जो कहानियों में इमोशंस का ब्लेंड होता है ना, वो लेकर आते हैं हमारे लिए रोजाना अलग अलग ट्विस्ट। अब हम जानते हैं आपके लिए हर कहानी देखना तो पॉसिबल नहीं है, तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ट्विस्ट का ये सिलसिला वो भी एक साथ। सो गेट सेट ट्विस्ट।
2: अनुपमा स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में आज कुकिंग प्रतियोगिता में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेकिन उस वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अनुपमा और प्रेम दोनों को अपनी टीम में से किसी एक को निकालना होगा। ऐसे में अनुपमा ने ईशानी का नाम दे दिया है तो वहीं प्रेम ने मीता काकी को निकाल दिया है और फिर हुई है वाइल्ड कार्ड एंट्री जहां पर अनुपमा की टीम में शामिल हो गई है बा। जरा देखिए कैसे नाचते गाते बा ने एंट्री की है और उन्हें आता देख सभी लोग बहुत खुश हुए हैं।
7: अनुपमा टीम के वाइल्ड कार्ड एंट्री पे सब लोग करेंगे वाह वाह। प्लीज वेलकम द मोस्ट अमेजिंग

0: अनुपमा को तो खुशी मिली ही, वहाँ प्रेम की टीम में आने वाली वाइल्ड कार्ड एंट्री का भी अनाउंसमेंट हो गया और हुई है एंट्री मोटी बाकी। और जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ तो प्रेम और राही दोनों ही बहुत खुश हो गए और देखिए कैसे खुशी से मोटी बा ने भी एंट्री की है।
1: अब होने वाला है पूरा माहौल भारी, क्योंकि प्रेम की वाइल्ड कार्ड एंट्री है वसुंधरा को।

0: अब दोनों टीम में वाइल्ड कार्ड एंट्री तो हो गई है, लेकिन मोटिबा और बा दोनों के बीच हमेशा टशन रहता है और अब ये टशन दुगना होने वाला है क्योंकि कुकिंग प्रतियोगिता है और इसमें जीतना जरूरी है। ऐसे में अगला टास्क होगा इस वाइल्ड कार्ड एंट्री के बीच में जो लाएगा कहानी में ट्विस्ट।
1: ये लंबी सी रस्सी आप दोनों के एक एक हाथ में बांध दी जाएगी।
2: एक साथ बंद कर ये टास्क निभाएंगे वैसे ही जैसे रिश्ते निभाते हैं।

0: ये क्या कर रही है आप बा?
1: जो कुछ भी हुआ जल्दबाजी में हुआ, दोनों की समझ में नहीं आया।
2: तुम्हारी लीला बहन ने जानबूझकर हमारी वसुंधरा जी को गिराया है।
1: तुम तो चुप रहो श्रुति।
0: हम सब ने देखा है कि बारी क्या किया।
3: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पोदार परिवार में सभी सदस्य झूम झूम कर नाच रहे हैं, और नाचे भी क्यों ना, भाई मायरा का जन्मदिन है, ऐसे में मायरा के जन्मदिन पर नाच गाना तो बनता है। जरा देखिए कैसे अरमान, अभीरा, मायरा, मुक्ति और पूरे परिवार वाले एक साथ शामिल हो गए हैं और मिला रहे हैं ताल से ताल।

0: सॉरी नहीं मिली तो क्या, विशेस दे रहा हूँ। द फोटोग्राफर। फिर मुलाकात हुई तो इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।
1: भाई कहीं ना कहीं मायरा को कबीर का ये तोहफा पसंद आया है, लेकिन दोनों के बीच अब टशन शुरू हो गया है और तो और ये टशन दुगना होने वाला है, क्योंकि उसी कॉलेज में कबीर भी आ गया है जिस कॉलेज में मायरा पढ़ती है। और तो और मायरा कबीर को अपने कॉलेज में देखकर हैरान हो रही है।
2: मुझे पता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा।
0: नहीं
2: तो फिर तुमने मेरे गिफ्ट को देख के स्माइल क्यों किया?
0: तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता किया स्माइल?
2: क्यूट, मेरी बातों में फंस के तुम बहुत क्यूट लगती हो। और मेरे गिफ्ट को देख के भी तुमने ऐसा ही क्यूट रिएक्शन दिया होगा। सरप्राइज में तुम्हारी आंखें और बड़ी हुई होंगी और फिर ये बड़ी बड़ी दांतों से तुमने गिलहरी जैसी स्माइल भी दी होगी। अब मैं तुमसे तब बात करूंगा जब तुम मुझे सॉरी बोलोगी। तब तक के लिए बाय मिस गिलहरी, गो नट्स नट्स, क्योंकि यू नो गिलहरियां नट खाती है, डर रहे। चलो बाय बाय। ओए ओए
3: तुम देना साथ मेरा।
1: स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में अपराजिता विवान से बेहद नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर में जो भी ट्विस्ट आए हैं वो विवान की वजह से आए हैं। ऐसे में विवान ने अपराजिता को रोक लिया और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपराजिता की बहन आरू को कॉल लगा दिया, जिसके चलते अपराजिता के सामने सारा सच आ गया है।
4: कब से कॉल कर रहे हो तुम्हें और तुम कॉल इग्नोर किए जा रहे हो?
0: मुझे एक बात बताओ,
4: अगर मेरी मम्मी से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूँ?
0: अरे क्या गलती है उसमें, तुम कम से कम मुझसे बात तो करो।
4: हम सब सॉर्ट कर लेंगे ना। आरू जिद्दी।
5: हाँ दी, तुम्हारी बड़ी बहन इस वक्त वो मेरे सामने है और सब कुछ सुन चुकी है। अब मैं ये फोन रख रहा हूँ और दोबारा कभी भी मुझे कॉल मत करना प्लीज।
1: भाई आरू का सच अपराजिता के सामने आ गया है, लेकिन अपराजिता उसे अब आरू पर आ रहा है बहुत गुस्सा। तभी तो देखिए कैसे गुस्से में अपराजिता घर पहुंच गई है और पहुंचते के साथ ही उसने अपनी बहन आरू के गालों पर जड़ दिया है जोरदार तमाचा, जिसे देखकर खुद आरू हैरान है। कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाभी नर्मदा के कहने पर धीरज पहुंच गया है रसोई में रज्जी से बात करने के लिए। ऐसे में आज धीरज ने रज्जी से अपना हाल दिल बयां कर दिया है। हाल दिल बयां करने के बाद जैसे ही रज्जी ने उसका जवाब हाँ में दिया तो धीरज हैरान रह गया। इतना ही नहीं, वो तो खुश भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही रज्जी ने पलट कर उसे जवाब दिया तो उसके सामने नया ट्विस्ट आ गया।
0: अरे हम तो खुद तुमसे बात कब से करना चाहते थे, लेकिन कर ही नहीं पाए, मौका ही नहीं लगा। लेकिन हम खुद यही सोच रहे हैं बहुत टाइम से।
1: फिलहाल तो रज्जी ने धीरज की कही हुई एक भी बात नहीं सुनी। इसे देखकर न सिर्फ धीरज हैरान है बल्कि नर्मदा भी हैरान है। इसी बीच रज्जी पहुंच गई है अपने कमरे में धीरज से बात करने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया है कि धीरज के दिल में कोई न कोई बात जरूर है। ऐसे में देखिए कैसे वो उसके साथ जबरदस्ती कर रही है सच जानने के लिए, और तभी धीरज ने उसे अपना हाल दिल फिर से बयां कर दिया। धीरज ने तो अपने प्यार का इजहार किया ही, इतना ही नहीं दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि धीरज का ये सपना है।
0: बोलो धीरज।
6: अगर आपका मेकअप ना पैची लगता है तो इसमें गलती मेकअप की नहीं है, ब्लेंडिंग की है। तभी तो कहते हैं कि अपने बेस या फाउंडेशन को बहुत अच्छे से टाइम लेकर प्यार से ब्लेंड करें। वैसे यहाँ हम ब्लेंड करेंगे आपकी जिंदगी में ढेर सारा एंटरटेनमेंट, क्योंकि संभाल कर रखी है हमने ये स्पेशल स्टोरी खास आपके लिए। देखिए इसमें तो है एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।

0: हसीनाओं ने बिखेरा हुस्न का जादू,
1: इन्वेंटरी शॉट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसमें म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे क्लब में जहां होता ढंका क्राउड।
0: सज धज से लगे रेड कार्पेट पर चार चांद,
1: बट आई डाउट मुंडे आधे बल्ले नी तू छड्डे आनी कक जदो संडे मंडे।
0: बीती शाम हुए 12th इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स, जिसमें सितारों का मेला लग गया। भाई आज तो इस शाम के चकाचौंध देखने लायक है, और सितारों के जमी पर उतरते ही रेड कार्पेट पर चार चांद लग गए। सभी सज धज कर पहुँचे हैं इस अवार्ड नाइट को अटेंड करने के लिए, और रेड कार्पेट पर सबने अपना जलवा बिखेरा। क्या हसीनाएं, क्या मुंडे, भाई आज तो सभी लोग दिखा रहे हैं अपना स्वैगर और साथ ही फैशन का टशन भी। तो चलिए एक एक कर देखते हैं आखिरकार इस अवार्ड नाइट में कौन कौन हुआ शामिल।
2: रोमियो रोमियो कल के रोमियो,
0: पहुंची अनुपमा फैमिली यानी कि रूपाली गांगुली, जो यहां पहुंची है प्रोड्यूसर राजन शाही संग।
2: रोमियो रोमियो भाड़ के प्रेमियो, काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियो।
0: साथ है राही यानी कि अद्रिजा रॉय, जो इस अवार्ड नाइट में ब्लैक साड़ी पहनकर पहुंची है। इसके अलावा बाकी के अनुपमा फैमिली के लोग भी है। इसके अलावा कई और सितारे रेड कार्पेट पर पहुंचे, जिन्होंने रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। तो चलिए एक एक कर देखते हैं आखिरकार कौन कौन रेड कार्पेट पर अपने फैशन का टशन दिखाने पहुंचा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हसीनाओं से। भाई यहाँ तो लॉकअप का रीयूनियन सा हो गया। भाई सबसे पहले तो यहाँ नजर आई एकता कपूर, जिनके साथ है विशाल सिंह भी। और इसके अलावा लॉकअप के बाकी के कंटेस्टेंट्स जैसे कि आकांक्षा चमोला और पैमेला, जिन्होंने रेड कार्पेट पर चार चांद लगा दिए। जहां पैमेला ने ये पिंक कलर का आउटफिट चुना, तो वहीं सितारों से भरी ये ड्रेस पहनकर पहुंची आकांक्षा चमोला। इसके अलावा कई और सितारे हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, जैसे कि दीपिका सिंह, जिन्होंने आज की शानदार शाम के लिए चुनी ये ड्रेस, जो कि है लाइट ब्लू गाउन। इसके अलावा यहाँ नजर आई सुनीता आहूजा अपनी बेटी टीना संग। वहीं उषा नाडकर्णी यानी टीवी की आई भी यहां पहुंची। इसके अलावा निहारिका चौकसी यहां नजर आई, यानी कि आप सबकी अनु, जो आज एकदम मॉडर्न अंदाज में है। इन्होंने चुनी है ये ग्रीन ट्यूब ड्रेस।

नई ब्लैक गाउन में पहुंची गौहर खान। इंडियन अटायर में नजर आई संजीदा शेख। तो ही साथ साथ देखा सुनीता और उपासना सिंह का सहेली आना।

इसके अलावा ब्राउन ट्यूब ड्रेस में नजर आई शाइनी दोषी, साथ ही नजर आई अपरा मेहता, मनारा चोपड़ा, सानू बस दस जा तू ना पटोला बखेरा स्वैग सूट पट्टे आला शाही चुन्नी, कृति चौधरी, मुंडे होके पलटे तेनु तक तक के नचे जदो हाथ, स्मृति खन्ना तेरा के, यामिनी मल्होत्रा, डेजी शाह, पहना दो तुझे कंगन हो तैयार घुमा दो तुझे लंदन हाथ में रखू हाथ रखे जिस चीज, अपर्णा दीक्षित।

0: ಹರ ಶಾಮ
1: ಅರ್ಷಿ ಖಾನ್ ವಹ ಬಿಸ್ ದೋರಾಪ್ಸಿ

श्रुतिका और कई और हसीनाएं जिन्होंने रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। बात करें मुंडो की तो यहाँ पर नजर आए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान यानी कि रोहित पुरोहित सूट बूट में, तो वहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ऋतिक यानी कि अमन गांधी जो यहाँ सूट बूट में आए हैं वो भी ब्लिंगी वाले। इसके अलावा यहाँ नजर आए तुषार कपूर, अभिषेक, गौरव बजाज, शाद रंधावा, निशांत मलखानी और बाकी के ये सभी सितारे। भाई बात करें कपल्स की तो यहाँ जोड़ियों में नजर आए करण ग्रोवर अपनी वाइफ संग, तो वहीं सुरभि चांदना अपने हस्बैंड करण संग यहाँ पहुँची है। और उर्वशी वो पहुंची अपने दोनों बेटों संग।

तो देखा आपने कुछ इस तरह 12th इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में इन सितारों ने शामिल होकर इस रेड कार्पेट की शान बढ़ाई और दिखाया इनका अलग ही अंदाज। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: ब्लश हो, फाउंडेशन हो या कंसीलर, हर प्रोडक्ट जब अच्छी तरह से मिक्स होता है ना, तभी देता है वो एक परफेक्ट लुक। और इसी तरह यहाँ भी है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट की खबरों का परफेक्ट मिक्स, जो लेकर आ रहा है आपके लिए मनोरंजन की गुड न्यूज, और जिन्हें लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और बेटा की एयरलाइन। तो आप भी हो जाइए इस पर सवार, लेकर चलते हैं हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
1: ये नजारा है टीवी शो तू ही रे के सेट के, जहाँ पर मनाया जा रहा है संजय का बर्थडे। संजय यानी अबरार काजी रियल लाइफ में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और देखिए पूरी स्टार कास्ट के साथ इन्होंने ये खुशी का दिन सबके साथ बांटा। वही इस मौके पर कास्ट क्रू एक साथ इकट्ठे हुई और सबने अबरार यानी संजय के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर सिमरन यानी स्वाति भी मौजूद थी, जो पर्दे पर उनकी हमसफर है और यहाँ पर भी मौजूद थी। बस कहीं बृंदा नजर नहीं आ रही, शायद वो बिजी होगी। खैर कोई बात नहीं, अबरार को उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई।
2: बीती रात एहसास चन्ना ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है अपने दोस्तों यारों के साथ, और उनके जन्मदिन पर उनके कई करीबी दोस्त पहुंचे हैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देने, वो भी सज धज कर टशन दिखाते हुए। सबसे पहले नाम लेंगे आयशा खान का, जिन्होंने पहनी है ब्लैक स्पेगेटी टॉप और साथ में उसे पेयर किया है डेनिम जीन्स के साथ। साथ ही वहाँ पर नजर आई है पारुल गुलाटी भी, जिन्होंने पहना है रेड जैक स्टाइलिश टॉप और साथ ही उसे पेयर किया है ब्लैक लेदर शॉर्ट्स के साथ। इनके अलावा ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में नजर आई हैं अदिति भी, जो अपनी खास दोस्त के जन्मदिन पर पहुंची हैं। इसी के साथ वहां पर नजर आई कुशा कपिला भी, जिन्होंने पहना है स्काई ब्लू ड्रेस और बिखेर रही हैं अपना जलवा। भाई हसीनाओं ने तो अपना जलवा दिखाया ही, साथ ही वहां पर नजर आए हैं टीवी के मुंडे यानी कि अमोल परासर। समय रायना, दर्शन रावल जो कि पहुंचे हैं अपनी वाइफ के साथ। इसी के साथ दिखे हैं ऋत्विक सहोरे भी।
3: कार बाटी करनी लगातार मेरे यार, दिन चार जिंदगी के तू जी ले।
2: साथ ही नजर आई प्रीत कमानी भी। सभी किरदारों ने किसी न किसी सीरीज में एहसास चन्ना के साथ काम किया है, और काम करते करते इनकी दोस्ती पक्की हो गई है। से एक हुए प्रिया और अंश, साथ में दिखा डायन मोहना का दर्शन। भाई नजर की टीम फिर से साथ में आ गई है। ऑल राइट टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इनकी एक मिनी सीरीज आने वाली है, जिसका नाम है लव टू हेट यू, और बीती रात इस सीरीज का लॉन्च हुआ, जहां पर नियति फतनानी, हर्ष राजपूत और मोनालिसा पहुंचे हैं। और देखिए कैसे जब तीनों मिले तो तीनों ने जमकर की ढेर सारी मस्ती और खिंचवाई, साथ में कई सारी फोटोज, वो भी अपना स्वैग दिखाते हुए।

मेकअप में ना कभी कभी एक छोटा सा टच पूरे लुक को बदल देता है। उसी तरह मनोरंजन की दुनिया में कभी कभी कोई नई खबर आती है ना, बन जाती है सनसनी। तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये एंटरटेनिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज। लेट्स चेक इट आउट।

0: फ्रेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। नजर डालते हैं अनुपमा के बिहाइंड द सीन नजारों पर, जहां टीम अनुपमा मना रही है इस नन्ही परी आध्या का बर्थडे, वो भी सेट पर। देखिए कैसे कास्ट एंड क्रू मिलकर कर रहा है सेलिब्रेशन। देख लीजिए सेलिब्रेशन के ये नज़ारे।
1: थैंक यू राजा अंकल, थैंक यू नानी, थैंक यू इशिका दीदी।

हैरत के सेट से सामने आए हैं ये बीटीएस नज़ारे, जहां पर शादी के सीक्वेंस में देखिए कैसे मन्नत और विक्रांत तस्वीरें खींच रहे हैं।

0: हो गया है बिग बॉस सीजन 20 का आगाज। सामने आ गया है इसका पहला प्रोमो जिसमें नजर आ रहे हैं सलमान खान, और उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि इस सीजन में करण अर्जुन वाला ट्विस्ट होगा। तो क्या होगा बिग बॉस सीजन 20 में खास, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे बिग बॉस का सीजन 20 6 सितंबर से शुरू होने वाला है।
1: जो करण अर्जुन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा। तथास्तु।
0: जल्द होने वाला है लॉकअप सीजन 2 का फिनाले एपिसोड। ऐसे में फिनाले की जंग में पांचों फाइनलिस्ट जुट चुके हैं। साथ ही फिनाले में होगा डांस धमाल, होंगे गेम्स। अब देखना होगा कि कौन होता है लॉकअप सीजन 2 का विनर।
2: वेलकम टू द ब्लफ मास्टर राउंड।
3: सर मेरा दिल रुक गया है अभी।
4: श्रेया मैं तुम्हें बोलूंगा, लोगों ने यहाँ पे विलन बनाया तो यहाँ पे हीरो कोई नहीं है।
5: जिस पोजीशन पर आप बैठी हैं फाइनलिस्ट की वो खैरात में मिली है।
2: आज जूरी अपने वोट्स के जरिए आपको ये डिसाइड करना है कि कौन होगा लॉकअप का अल्टीमेट विनर।
0: इसी के साथ लॉकअप से एविक्ट हो चुके हैं हर्षा चोपड़ा और आकांक्षा चमोला, और जो अलग ही अंदाज में यहाँ नजर आ रहे हैं। फिनाले का सबको वेट है और सबको इस चीज का भी इंतजार है कि कौन होगा लॉकअप सीजन 2 का विजेता। भाई हर्षद तो चाहते हैं कि शिवांगी ही जीते। अब देखना होगा फिनाले की रेस में कौन ट्रॉफी लेकर जाएगा। इसी के साथ वरुण यानी कि लैला एविक्ट होकर बाहर आ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू कहा और वो पहुंचे मंदिर भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए।
6: दिखाया चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई मम्मी हो चाहे कोई भाभी हो। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार दिखाया मैंने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं देखा भाई। थैंक यू सो मच। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या कमाया है। आप सबने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, एंड आई एम सो सॉरी जो आप लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट करा, बस ट्रॉफी नहीं ला पाया, बट स्टिल मैंने जो था मैंने वो दिखाया, अपनी पूरी गेम खेली थी।
0: नजर डाल लीजिए अलायंस के नए प्रोमो पर, जहां पर इस सीजन का फिनाले होने वाला है और साथ ही आ गए हैं ट्रेटर्स शो में नया ट्विस्ट लाने के लिए।
7: दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल चांस टू बिकम फोर्थ एंड लास्ट सेमी फाइनलिस्ट फॉर अलायंस।
8: ऐसे मुझे लगा था ये शो थोड़ा होगा स्ट्रेटर, आज पता चला कि आप में से कोई एक बनेगा ट्रेटर। अब ट्रेटर ने तो मर्डर कर दिया।
9: आई थिंक इट्स अस्लान और बाली, बिकॉज अस्लान वो मुझे करेगा नहीं।
8: अपने कैंप का बंदा करो बाहर और सामने वाले पे ब्लेम करो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम पे शक जाएगा नहीं और तुम आराम से ट्रेटर बन के निकल लोगे।
10: अगर मैं ट्रेटर बनता मैं सीधे कुछ आपको आउट, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहता।
8: सोहेल भाई, फैन फेवरेट तो आप हो।
11: लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट सेमीफाइनल।
12: मिनी लीड आ, मिनी आराम से,
11: मिनी थोड़ा आगे, थोड़ा आगे।
13: सर ने मना किया है, वो नहीं कर रहे भाई। सर मैं हूँ जियो की टीम से।
0: भोजपुरी बवाल का एक नया प्रोमो देख लीजिए, जहाँ पर पवन सिंह हो गए हैं टीम पर गुस्सा। क्या है आखिरकार ये वजह?
13: सर ने मना किया है, वो नहीं कर रहे भाई।
14: सर मैं हूँ जियो की टीम से।
15: एक बार मैंने बोल दिया कि मुझे ये शो नहीं करना है तो नहीं करना। मैं न फेक हूँ और ना ही मुझे फेक पना बर्दाश्त। मैं जो हूँ सो हूँ।
14: सर दूर से ही फॉलो करेंगे।
15: बोल दिया सो बोल दिया। जाइए आप लोग प्लीज, बहुत हुआ।
16: आप लोग बाहर निकलिए, चलिए
15: चल।

अप्सरा प्लस पर जल्द शुरू होने वाला है नया शो जिसका नाम है अप्सरा, जिसमें खबरें हैं कि बनने जा रही है अविका गौर और मनीष राज सिंघानिया की जोड़ी। ऐसे में इसकी कास्ट को ज्वाइन किया है सीनियर एक्ट्रेस प्रियंवदा सिंह ने। सलमान खान और नयनतारा की बन गई है जोड़ी। ये दोनों लेकर आ रहे हैं नई एक्शन फिल्म जिसका टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन खबरों की माने तो इस फिल्म में बतौर विलन नजर आएंगे राहुल देव।

0: लेकर गया। सर पहले इनके मुंह से कैमरा हटाओ, अपने मुंह पे लेके जाओ।
1: खतरों के खिलाड़ी के नए प्रोमो पर नजर डाल लीजिए, जहां पर भारती वीडियो कॉल के जरिए सबको हंसा रही है और ढेर सारी बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव ने सबको बताई अपने दिल की बात।
2: फर्स्ट वाले माने पे गोलियां चली है चाहिए।
3: एक टैग लग गया था सर मेरे पे कि गौरव के शो नहीं चलते। इट्स अ वेरी हैवी टैग फॉर एन एक्टर। गौरव इज अनलकी, गौरव पनौती है, इसको मत लो। जो अपना सब कुछ छोड़ के अकेला मुंबई में रह रहा है, काम ढूंढ रहा है, तो जो भी रीजन था, मतलब जब भी शो चलते थे तो इट वॉज द क्रेडिट ऑफ एवरीबडी एल्स, एंड वेन द शो इज टैंक्ड इट वॉज ऑलवेज लाइक यार गौरव इज अनलकी, गौरव पनौती है, इसको मत लो। वो मेरा एक फियर है, जब भी मैं कोई ऑडिशन देता हूँ, कुछ देता हूँ, मुझे आज भी लगता है कि यार अगर ये शो नहीं चला तो अगेन दैट मेडल दे विल गिव मी कि यार इसके शो नहीं चलते।
1: शुरा खान ने शेयर किया है ये बर्थडे पोस्ट हस्बैंड अरबाज खान के लिए, जिसमें अरबाज देखिए कैसे डांस कर रहे हैं। देख लीजिए इनका ये वीडियो और ये बर्थडे पोस्ट। आने वाली फिल्म खोसला का घोसला का रैप अप हो गया है, ऐसे में सामने आए हैं रैप अप के ये नज़ारे।

0: तो 10 दिन के बाद भी पानी इतना नीज के ऊपर है।
1: रणदीप हुड्डा पहुंच गए हैं आसाम। भाई आसाम में जो फ्लड्स आए हैं वहां पर
0: बहुत लोग हैं।
1: वो हेल्पिंग हैंड बनकर पहुंचे हैं और देखिए कैसे वो पानी में उतरकर सबकी मदद करते नजर आए।
0: अब दूसरा ट्रिप मारेंगे और यहाँ पे हम कुछ तो दे चुके हैं, एक किचन सेट लेके आए हैं, विच इज यहाँ पे राशन काफी पहुंच गया है लोगों को। बहुत लोगों ने मदद की है जिससे एवरीबॉडी इज थैंकफुल। पर बाकी चीजें जो ग्लोबल सिक की टीम ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी हैं, जैसे किचन यूटेंसिल्स, चप्पल, एसेंशियल, डेली एसेंशियल्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने भी आए हैं। कई लोग तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर देने के लिए।

वेटरन एक्टर प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। हमारी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

एक्सेस टीवी पर जल्द नया शो शुरू होने वाला है, जिसमें बतौर फीमेल लीड नजर आएंगी शगुन शर्मा। और अब इस शो की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है एक्टर संदीप मेहता ने, जिन्हें आप ये रिश्ता क्या कहलाता है में देख चुके हैं, और इस शो में वो एक वाइटल रोल निभाने वाले हैं।

0: हफ्ता और इस मंदिर से दूर रहना मेरी बच्ची।
1: आ गई है टीवी की नई नागिन। जी हाँ, सन्नी लेकर आ रहा है नया शो, उसका नाम है राजनंदिनी। ये कहानी है नागिन की। इस शो में नजर आ रही है एक्ट्रेस नेहा सोलंकी। देख लीजिए इसकी पहली झलक।
2: कोई साधारण बच्ची नहीं है, उसकी कुंडली में नागों का वास है जो उसे अपनी ओर खींच रहे हैं।
3: इस सिंहासन की नई नागरानी हमें मिल गई है।
4: इस पद उसे यहाँ लेकर आ रही है।
5: हमें राजनंदिनी से नागमणी हासिल करके उसके फन को कुचलना होगा।
6: यहाँ उसे उसका भाग्य नहीं, काल लेके आया है।
2: यदि उसे रोका नहीं गया तो राजनंदिनी को नागिन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, नहीं।
7: कौन है जी ये राजनंदिनी?

0: आ रही है राजनंदनी। बीवी पगलू, ऑक्यूपेशन बीवी पगलू।
1: देख लीजिए कौन बनेगा करोड़पति का ये नया प्रोमो, जहां कंटेस्टेंट के साथ बिग बी फन बैटर करते नजर आए।
2: हर आदमी सिर्फ अपने बीवी की नौकरी करता है,
3: ये सही बात है। वो मालकिन है सर। हाँ। और हर पति को मान लेना चाहिए,
2: मानना ही चाहिए
3: कि ऐसे ही रहोगे तो जीवित रहोगे, वरना निकाल दिया जाओगे।
4: गंगा भैया अपनी कंपनी में।
1: बरेली के बच्चन में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहां संगम करेगी जिद गंगा की कंपनी में काम करने की। लेकिन गंगा की तो कंपनी है ही नहीं, ऐसे में फंस जाएंगे कृष्णा, अब होगा असली गोलमाल।
4: कृष्णा, गंगा भैया अपनी कंपनी में हमें एक छोटी सी जॉब दे सकते हैं क्या?
5: नौकरी?
4: हाँ, आपने बोला था ना वो आर्किटेक्ट है।
5: क्या
6: बोलो, अब का झूठ बोला तुमने
5: कि आप आर्किटेक्ट हैं? किसी बिल्डर से सिफारिश करके मैडम जी की नौकरी लगवा दो।
1: और हर्ष के शो द इंडियन गेम शो में नजर आए कई सारे सितारे, जो खास मेहमान बनकर आए हैं, जैसे कि दीपिका सिंह, मनीषा रानी, अभिषेक कुमार और प्रिंस नरूला। इसके अलावा सेट के बाहर नजर आए भारती, हर्ष और बाकी के सितारे। साथ ही नजर डाल लीजिए द इंडियन गेम शो के इस नए प्रोमो पर, जहां पर सभी खिलाड़ी गेम खेलते नजर आ रहे हैं और हुई है एंट्री अनिता हसनानी और करण की।
7: क्लियर कट बोला हुआ है, भारती इस राइड से गिरनी चाहिए।
8: सोनी टीवी वो कहावत पूरी करना चाहता है, गई भैंस पानी में।
9: खबरदार अगर किसी ने चाय वाला बोला तो।
7: क्या नहीं बोलना?
10: चाय वाला।
8: सारे बोलो
9: चाय वाला। ना आई एम अ स्टार।
7: चारों पर काजोल की जोड़ी लग रही है। इंडियन प्रेम शो नहीं है, इंडियन गेम शो है।
11: जिस तरह डॉक्टर्स हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किन का ख्याल रखें, तभी तो हमारा लुक होगा एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि अगर आप भी करते हैं मेकअप ब्लेंडर्स, मेकअप ब्रशेस, स्पंजेस का इस्तेमाल, तो आप उन्हें रेगुलरली साफ करें। वैसे हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आरंभी की जिंदगी से भी हो जाए ट्विस्ट की साफ सफाई और इनके चेहरे पर हो एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के सेट पर और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी।
1: के चेहरे पर पुत गई कालिक। आरंभी के ससुर जी के गले में जूतों का हार। टंडन हाउस में सोशल वर्कर्स का बवाल। अवंतिका ने चली इमोशनल चाल।
12: बस हो गया, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के साथ।
1: कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज आरंभी के ससुराल में पहुंच गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता और लगा रहे हैं नारेबाजी। असल में सभी दहेज के खिलाफ इस घर में बवाल मचाने आए हैं और देखिए कैसे उन्हें देखकर घर में सभी बेचैन हो गए हैं। नंदिता, उसने तो कोशिश भी की इन सभी को बाहर निकालने की, लेकिन इन सभी ने ठान रखी है कि वो डिंपल और उसके घर वालों को सबक सिखा के ही मानेंगी।
13: न्योता से नहीं, हम आते अपनी मर्जी से।
14: हाँ, मर्जी से।
15: हम मर्जी के साथ हम
1: बेचारी डॉक्टर आज इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के हद्दे चढ़ गई और इन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डिंपल के चेहरे पर काली पोती और दौर। आरंभी के ससुर जी सुनील के गले में जूतों का हार पहना दिया। ये देखकर विश्वास से रहा ना गया और उसने सभी के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया।
10: ये सब अपलोड होगा YouTube पर, सोशल मीडिया पर जाएगा और जो भी तुम लोगों की बची कुछ इज्जत है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगी।
13: हमारे खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। आप लोग किस बिना पर कह रहे हैं कि हमने दहेज दिया है?
10: सबूत तो था पुलिस के पास, तभी तो तुम सबको गिरफ्तार करके लेके गए, लेकिन वहाँ जाकर तुम लोगों ने सबूत को हटा दिया। ऐसे ही चिल्ला कर अपनी पत्नी और इस घर की बहू आरंभी को चुप कराया था ना? वो तो तारीफ करनी पड़ेगी आरंभी की कि वो घबराई नहीं, टीवी पर लाइव देखा था सबने, दहेज तो तुमने मांगा था पर वो तो सिर्फ आरंभी थी जो इस दहेज के खिलाफ थी। हाँ
14: ओ गॉड, भाभी को जो भाभी का मुंह जो काला किया है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या मतलब उसके लिए मुझे बुरा लगना चाहिए। बट हाँ, सोशल वर्कर्स मोर्चा लेकर आए हैं हमारे घर बिकॉज उन्हें पता चल गया है कि आरंभी के साथ टंडन्स ने क्या किया है, दहेज के लिए परेशान किया है। तो यही सब सीन हो रहा है यहाँ पे और वो तो मतलब मन बना के आए हैं कि डिम्पल का जुलूस निकालेंगे, डिम्पल के मुँह पे काली पोत देंगे और सुनील भाई साहब को भी चप्पल का हार पहनाया। आई मीन बहुत ही बढ़िया सीन है, मतलब ये सीन करने में भी हमें मजा आ रहा है। वैसे तो बुरा तो लग रहा है ऑफ कोर्स बीइंग टंडन, पर हाँ यही है ये सीन।
1: भाई जिस हिसाब से ये सामाजिक कर्ता आरंभी का नाम लेकर आ रहे हैं, इन सभी को आरंभी ने ही भेजा है। और तो और आज इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डिंपल को घर से बाहर घसीटने की कोशिश भी की, लेकिन उनके नारेबाजी पर ब्रेक लगाने के लिए वहां पहुंच गई अवंतिका और देखिए कैसे सभी के सामने करने लगी ड्रामा।
12: खींचना घसीटना ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
10: सही गलत की बात उसे करना चाहिए जिसने कभी गलत ना किया हो। टंडन परिवार ने दहेज दिया है, इस बात की गवाह है टंडन परिवार की बहू। कानून जो मर्जी करे लेकिन लोगों की नजर में तुम लोग ही गुनहगार हो और इसका सबूत है आरंभी जी।
1: अब इस तरह से परिवार वालों के सामने बार बार आरंभी के नाम का आने का मतलब है कि ये सब अवंतिका ने ही किया है, क्योंकि वो आरंभी का नंबर गिराकर अपने नंबर बढ़ाना जो चाहती है। इतना ही नहीं, घर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए अवंतिका तो पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और सभी से गुजारिश करने लगी वहाँ से जाने की।
12: आप लोग को जो करना था आपने वो कर दिया, आप लोग को अपना गुस्सा जाहिर करना था आपने कर दिया, आप लोग को काली पोतनी थी आपने वो भी कर दिया, अंकल सुनील को अपने जूतों का हार भी बना दिया। अब बस और बेइज्जती मत कीजिए, आप ऑलरेडी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे भी डाल दोगे। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग चले जाइए प्लीज।
10: ठीक है, अच्छा है तुम सबको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो तुम सब की करतूत याद दिला के उसकी सजा देने जरूर आएंगे। तो भला हो आरंभी जी का कि उन्होंने तुम सबका असली घिनौना चेहरा हमारे सामने लाया। चलो
14: अब अवंतिका का तो सबको ही पता है कि अवंतिका कुछ भी मतलब उसका तो ऐसा है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं टंडन्स के गुड बुक्स में रहूं। तो टंडन्स के गुड बुक्स में आने के लिए, टंडन्स के दिल में जगह पाने के लिए, घर में जगह पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवंतिका का प्लान भी हो सकता है जो हमें अभी पता नहीं है, बट हो सकता है।
1: अब जिस हिसाब से ये सामाजिक कार्यकर्ता नारे लगाते हुए घर से बाहर जाते हैं और अवंतिका अपना ताव दिखाती है, उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है ये सामाजिक कार्यकर्ता भी अवंतिका के ही बुलाए हुए हैं।

0: I stop.
1: Please stop. I don't think you would just say that. I don't think you would just say that. Please, please, please, please.
2: आरंभी से बदला तो लेना ही पड़ेगा ना. ये भला हो सकता है कि हमारे साथ मतलब टेंडेंस के साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम उसका बदला आरंभी से नहीं लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो ऑफ कोर्स बदला तो लेना बनता है भाई.
3: तुम ना अच्छी पत्नी बन सकी, ना अच्छी बहू और ना ही अच्छी माँ. तुम्हारी जैसी बीमारी का एक ही इलाज है.
4: एक अच्छी माँ होने का सर्टिफिकेट मुझे तुमसे तो नहीं चाहिए विश्वास. विहान को मुझसे कोई अलग

0: आप ज्यादा मेकअप करें, बल्कि सही ब्लेंडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ऐसा ही कह रही हैं हमें लक्ष्मी निवास की लक्ष्मी। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज। वेल, ये कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। लेट्स चेक इट आउट।
1: तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती।
2: राधिका ने पकड़ा वीर का हाथ।
1: घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं।
2: फिर राधिका के प्यार में खोया वीर।
1: तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं।
2: शुरू हुई खट्टी मीठी प्रेम कहानी।
1: सकते किसी के हो नहीं सकते, तो है तो।
2: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में देखिए कैसे आज राधिका खुद वीर का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आ रही है। और आज तो वीर की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, वो तो इस बात से ही खुश है कि राधिका ने उसका हाथ पकड़ा है। और देखिए कैसे वो राधिका के प्यार में खो गया है। लेकिन राधिका तो गुस्से में है, वो यहाँ प्यार जताने नहीं बल्कि वीर को चेतावनी देने आई है कि वो और सभी लोग उसकी बेटी निया से दूर रहे, क्योंकि घर वाले निया के चलते पॉलिटिक्स में उसका यूज कर रहे हैं, जो बात राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ऐसे में देखिए कैसे वीर को वो समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वीर वो तो इसी बात से खुश है कि राधिका ने उसका हाथ पकड़ा है।
3: एग्जैक्टली वो इतना क्यूट मोमेंट नहीं है। राधिका जी बहुत नाराज हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि किडनैपिंग के बाद निया को गजेंद्र चौहान, मतलब हमारे पिताजी ने उनको अपने पॉलिटिक्स का एक जरिया बना लिया था कि ठीक है देखो हम परिवार वाले मुसीबत में साथ में खड़े होते हैं, और हमारे बेटे वीर चौहान ने हम सब ने मिल के निया को बचा लिया। सो एक वो कि हम ऐसे ही शहर की जितनी भी बच्ची हैं सबकी प्रोटेक्शन करेंगे एक्स वाई जेड। तो राधिका जी को यही बुरा लगा कि आप प्रोपेगेंडा में निया को मत डालिए, और इसलिए वो वीर और निया के बीच में वो थोड़ी सी कोशिश कर रही कि वीर निया के ज़्यादा पास ना जाए या फैमिली ज़्यादा निया पे इन्वॉल्व ना हो, निया के साथ इन्वॉल्व ना हो। तो उसी में अब वीर चौहान तो वीर है, वीर तो वीर है, वो राधिका जी उसका गुस्से में हाथ पकड़ लेती, उसमें वो खुश हो जाता है, अरे वाह यार आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वही ऐसा मोमेंट है जो बीच में है, बाकी तो इट्स अ वेरी सीरियस टोन्ड सीक्वेंस।
2: खैर इनका ये क्यूट मोमेंट तो हुआ खत्म, तभी वहाँ पर पहुँच जाती है निया ये बताने कि अब मम्मी का गुस्सा ठंडा हो चुका है, जिस बात से वीर भी काफी खुश है। वैसे दिन पर दिन वीर और निया की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। तभी तो देखिए कैसे निया अपने कमरे में खेल रही होती है कि वीर खाना लेकर पहुंच जाते हैं और शुरू होती है इनकी मस्ती।
4: और हम भी हमारी गुड़िया को खाना खिलाने आए भाई। तुम्हारी मम्मी का वो काम रेडी में तुम बताई, स्ट्रेट आर्डर है कि हमारी गुड़िया को अच्छा और बढ़िया खाना टाइम से खिलाए।
2: भाई पहले तो निया वीर को विश मांगना सिखाती है, और फिर निकलता है ये मैजिक बॉक्स, और वीर निया से कहता है कि वो अपनी विश लिखकर इस बक्से में डाले और परी उसकी विश पूरी कर देंगे। लेकिन निया को ये नहीं पता कि परी कोई और नहीं बल्कि वीर ही है जो निया की सारी विशेस पूरी करता है।

0: भैया ये ऐसा कोई सामाजिक बात नहीं है, ईमा है जादुई शक्ति। ईमा तो चिट्ठी में फिस लिख के डाल दोगी ना तो वो चिट्ठी पहुंचेगी सीधा परियों के पास।
1: नया ट्रैक आया है सो आफ्टर नियाज किडनैपिंग जो भी हाल ही में होगी। अब क्या राधिका जी बड़ी नाराज़ हो गई हैं कि तुम्हारे घर वाले तो निया को भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा या प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो अभी वीर क्या है, चुपके चुपके जब भी उसे ऐसा मौका मिलता है वो निया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अभी वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है कि मैजिक बॉक्स। अब वो मैजिक बॉक्स का खेल क्या है कि निया जब भी उसे कुछ मांगना हो या उसकी कोई विश हो तो एक चिट्ठी में लिख के उस बॉक्स में डाल दे तो परियां उसे पूरा करेंगे। परियां तो नहीं, ये वीर परा पूरा करेगा। तो बड़ी अतरंगी अतरंगी चीज़ मांगी निया ने और वही वो वीर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो यही पूरा ट्रैक है, अच्छा है, अमेजिंग है, क्यूट सा है, आप लोग को देख के बड़ा मजा आएगा।
2: तो भाई निया और वीर का बॉन्ड तो स्ट्रांग होता जा रहा है। अब उम्मीद है कि जल्द ही वीर और राधिका के रिश्ते भी सुधरे और इनमें प्यार ही प्यार हो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कोशिश देना अचानक बन जाते हैं और कभी कभी एक नया मेकअप ब्रश आपका सबसे फेवरेट बन जाता है। जाने अनजाने हम मिले आपकी प्यारी सी जोड़ी रीत और राघव, जिनकी जिंदगी में फिर से आने वाला है एक बहुत बड़ा तूफान। OMG, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।

0: आज की याद में तड़पी रीत।
1: वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था।
0: ओ, बिंदिया की चाल पड़ गई बिंदिया पर भारी।
1: ओ, मेरा वक्त से चुराया था जो।
0: रीत ने ठहराया राघव को जिम्मेदार। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में राघव रीत से बहुत नाराज है, क्योंकि रीत अब भी रियाज के बारे में सच जानने के लिए कोई न कोई हरकतें कर रही है। ऐसे में इससे पहले रीत राघव को समझाती, उनके कमरे में आ जाता है वीरेन, जिसे पता चल गया है कि रियांश रीत और राघव का बच्चा है। ऐसे में वो सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट।
2: बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज ध्यान से सुनो। राघव
3: पीरू जी, पीरू जी, पीयू कहीं नहीं मिल रही है।
2: पीयू?
0: अब ये सब तो शालिनी की चाल है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि रीत और राघव के सामने सच आए। ऐसे में वीरेन को फिर से मौका मिल गया राघव को सच बताने का। इससे पहले कि वीरेन कुछ कह पाता, राघव को कॉल आ जाता है, जिसके चलते राघव के सामने सच आने से रह जाता है। खैर, राघव ने तो फैसला कर लिया है कि वो बिंदिया और उसके बच्चे को इस घर से दूर भेज देगा। ऐसे में वो पहुंच गया है बिंदिया के कमरे में सारा सामान पैक करवाने के लिए। इसी बीच बिंदिया आती है और ये नजारा देखती है तो वो रह जाती है हैरान।
4: राघव जी, आप ये क्या कह रहे हैं? और जो कुछ भी रीत जी की वजह से हुआ है, मैं उसकी सजा आपको नहीं दे सकती। आप मेरा हमेशा मेरा साथ नहीं कर सकती।
0: खैर, ना चाहते हुए भी बिंदिया को जाना पड़ रहा है। राघव ने तो बिंदिया को गेस्ट हाउस में जगह दे दी है। ऐसे में गेस्ट हाउस में पहुंचकर बिंदिया परेशान हो रही है, क्योंकि उसे वापस उस घर में जो जाना है। इसी बीच रियांश फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद जो आ रही है, और उसे रोता देख बिंदिया को आ रहा है गुस्सा। भाई, बिंदिया ने तो दूध की बोतल भी फेंक दी, और बेचारा रियांश फूट फूट कर अपनी माँ को याद कर रहा है। तो वहाँ रीत भी तड़प रही है रियांश के कपड़े देखकर।

0: इसी बीच रीत को बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़कर बाहर जाती है तो देखती है कि पीहू मोबाइल में रियांश का वीडियो देख रही है, जिसे देखकर रीत अपने रियांश को याद करने लगती है।
1: एस

0: खैर रीत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अपने बेटे को अपने से दूर करने का इल्जाम भी रीत ने राघव पर मढ़ दिया है।
1: आपने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था, तो मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था उसे उसे गले लगाने का, उसे वापस पाने का, और आपने वो भी छीन लिया मुझसे। अब क्या उसे लेके चली गई है, पता नहीं मैं उससे कब मिलूंगी। मिलने को उसे संभालना भी नहीं आता, पता नहीं उसने ढूंढ लिया होगा या नहीं, वो सो पा रहा होगा या नहीं, हर पल वो बस मुझे ढूंढ रहा होगा, और मैं यहाँ घड़ी घड़ी कुछ नहीं कर सकती। सब सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आपने मुझसे मेरा बच्चा छीना, मेरी उम्मीद छीनी, मेरा भरोसा छीना, मेरा सब कुछ छीन लिया।
0: अब रीत ने जिस हिसाब से अपनी नाराजगी जताई है, राघव को यकीन हो गया है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। ऐसे में राघव निकलते वक्त दरवाजा बाहर से बंद कर देता है ताकि रीत इस कमरे से बाहर ना निकल सके। अब देखना होगा कि अपने बेटे रियाज से मिलने के लिए रीत और कितने जतन करेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: क्या आप जानते हैं, ब्लेंडर को ना हल्का गीला करके इस्तेमाल करना चाहिए, उससे आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और लुक लगता है एकदम नेचुरल। यहाँ तो शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ कुछ सिंपल ब्लेंडिंग टिप्स, और उसके साथ साथ शेयर कर रहे हैं आपके साथ ये अगली खबर जो जुड़ी है आपकी फेवरेट कहानी से, जहां पर फिर आया है एक नया ड्रामा। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या हो रहा है कहानी में, सो लेट्स चेक इट आउट।
3: आकांक्षा चमोला हुई लॉकअप से बाहर, सीक्रेट से मिली पॉपुलैरिटी, सास बहू और बेटिया में आज हम करेंगे खास मुलाकात लॉकअप फेम आकांक्षा चमोला से, जो फिनाले से कुछ दिन पहले ही शो से बाहर हो चुकी है, और एविक्ट होने के बाद देखिए कैसे वो हमारे साथ कर रही है खास मुलाकात, जिसमें वो बता रही है अपनी जर्नी। भाई आकांक्षा चमोला ने शो में कई रिश्ते बनाए, उनके सीक्रेट्स ने मचाया बवाल, लेकिन फिनाले की रेस से वो बाहर हो चुकी है, वो फाइनलिस्ट बन नहीं पाई। ऐसे में आकांक्षा चमोला से ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसी रही उनकी जर्नी और क्या है उनके प्लान्स।
4: ओके, तो लॉकअप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड थी नेटफ्लिक्स करने के लिए, तो इससे बेटर क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन।
5: ओके, सो मी एंड गौरव आर गेटिंग अ डिवोर्स। We've been separated, living separately for the last 1 year.
4: भाई मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके टीआरपी के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ, और अगर जिनको ये लग रहा है तो फिर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज मेरे घर पे आइए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब जब मैं बाहर भी निकली हूँ तब भी हम यही सारी चीजें सॉर्ट कर रहे हैं, तो लॉकअप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम्स इस बात पे बात कर रही थी, और आप बाहर निकलने के बाद भी हम, इट्स जस्ट दैट यू नो वी जस्ट हैव टू साइन द पेपर्स, बट ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हो चुका है, तो ये कोई टीआरपी के लिए चीज नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हम शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि यू नो हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती नहीं हूँ, मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहां पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ, आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कम्फर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कम्फर्ट जोन नहीं था, मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था, तो उसमें गलत क्या है। आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। आप सबके अपने अपने चॉइसेस है, किसी को अपने बच्चे से प्यारे होते, किसी को जानवर, तो मुझे मेरा जानवर भी उतना प्यारा है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि माँ बाप मेंशन किया है तो अपलोड माँ बाप के लिए भी दो ना, कि गौरव को अभी भी मैंने माँ बाप से कंपेयर किया है, सिर्फ कुत्ते के लिए क्रिटिसाइज मत करो। आई थिंक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा, मेरा श्रेया पे वो वर्ड को लेकर गुस्सा नहीं था, मेरा श्रेया को उसके बिहेवियर को लेकर नाराजगी थी कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि यू नो शी सिंपथाइजिंग विद मी, वो मेरे लिए कुछ कर रही है. एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको काउंटर ये करके बताया था क्योंकि उसने पूरे चार हफ्ते सब लोगों को जाके ये सुनाया था कि मैंने सॉरी तो बोला है, सॉरी तो बोला है. मैं उसको ये रियलाइज करवा रही थी कि बहन तू सॉरी बोल रही है जस्ट फॉर द कैमरा, यू आर नॉट सॉरी फॉर इट. बिकॉज क्योंकि आप सॉरी बोलकर अगर इमीजिएटली 5-6 दिन बाद किसी और के सामने बैठ के मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सॉरी नहीं हो. क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हो आपको वो रियलाइज होता है. आप अगर थोड़ा भी गिल्टी फील करते हो तो बाद में आप उस इंसान के बारे में बिचिंग नहीं करते हो. चुड़ैल मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये शब्द उसने यूज किए थे जो मुझे पता चला, जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट दैट डूड आई नो तू क्या बोल रही है. अब आप उसको कौन सा भी बड़ा मुद्दा बना दो, ना गौरव खन्ना उसमें मुद्दा था ना चुड़ैल वर्ड मुद्दा था. मैं तो खुद को अपने आप को चुड़ैल बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ आई एम अ विच. बट द कॉन्टेक्स्ट वॉज नॉट अबाउट बींग कॉल्ड अ चुड़ैल. द कॉन्टेक्स्ट वॉज कि आप मेरे सामने फेक मत करो, मुझे फेक फ्रेंडशिप मत दिखाओ, मुझे फूल करने की कोशिश मत करो कि भाई देखा मैंने तो तेरे लिए किया. उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो बस अपना गेम खेल रही थी. तो कॉन्टेक्स्ट वो था. देखो अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था. डू आई सपोर्ट हर? नो. डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बींग? नो. एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ. सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था. हाँ एक पॉइंट पे मैं मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना you know, खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है. मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ. वी हैड फिजिकली अनफिट भी थी, मुझे इन्फेक्शन हो गए थे अंदर. तो आई वॉज बैटलिंग माई स्ट्रगल्स विद ऑल साइड्स, लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारे चीजों में मैं बहुत डाउन हो चुकी थी. बट अगर आप डिजर्विंग की बात बोले तो उन मतलब जितने इनमेट्स बाकी थे उनमें से अगर मुझे चूज करना था, आई गेस शिवांगी वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी. बिकॉज मुझे पता था कि लॉकअप में एक पॉइंट के बाद सबको मेरा गेम प्ले वीक लग रहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में. सबका अपना अपना माइंड सेट था. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई वॉन्टेड शिवांगी फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज श्रेया ने, एंड जाते जाते भी आई थिंक मैंने ही श्रेया को सेकेंड फाइनलिस्ट बनाया था. क्योंकि अगर मैं वोट नहीं करती तो शायद सेकेंड फाइनलिस्ट वापस डिसाइड भी नहीं होता. या सभी के सीक्रेट्स हर्टफुल थे. मैं कोई आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू जज कि किसके सीक्रेट्स बेटर थे या किसके ज़्यादा हर्टफुल थे या नहीं थे. सबके ही सीक्रेट्स सबके हिसाब से बहुत हर्टफुल होते हैं. किसी एक इंसान का ट्रॉमा उसके लिए कितना गहरा हो सकता है वो थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है. तो मैं इस चीज़ पे कमेंट तो नहीं करूँगी. अगर आप पूछोगे किसके सीक्रेट सबसे एकदम लल्लू थे तो वो था योगेश. सॉरी वो मैं बता सकती हूँ कि योगेश का जो शॉपलिफ्टिंग वाला था वो हमको सबसे इनवैलिड टाइप लगा कि यार ये कोई सीक्रेट. तब मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा सीक्रेट दे देती, मुझे क्या जरूरत थी इतनी ऑनेस्ट होने की. बट हाँ ठीक है. एंड आई थिंक इवन चौधरी का सीक्रेट, बट उसके ऊपर शायद इतना कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था, वो अंदर रह रहे के मुझे समझ में आ गया. तो मे बी शायद शी इज जस्टिफाइड, बट स्टिल आई थिंक अगर मुझे वो उस हिसाब से अगर रेट करना होगा तो सबसे ओके ओके टाइप्स वॉज योगेश. पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में. मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था. मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी. पैम इज वेरी केयरिंग. उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन यू नो पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं कुछ करते हैं. मैं खाती नहीं थी तो वो मेरे लिए खाना बचा बचा के रखती थी, वो मेरे लिए ऑर्डर करती थी. तो शी वॉज लाइक वो सब कुछ थी मेरे लिए वहां पे. वो मेरी दोस्त भी थी, उसने मेरी you know, बहन जैसा रोल भी प्ले किया है. फिर बाद में उसने मुझसे भी बहुत सारे काम करवाए हैं, तो उसने सब कुछ किया है मेरे लिए. तो पैम के साथ रिलेशन आई होप आगे भी हमारा इतना ही अच्छा रहे. हम ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं दूसरे, दैट्स अबाउट इट. कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला. ये तो सीक्रेट्स मुझे ऑलरेडी पता थे ना कि ये सीक्रेट्स मैं दे रही हूँ, ये आउट होने वाले हैं, ये शो का पार्ट है. तो उसमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है, कोई इम्पैक्ट तो वैसे भी नहीं था. एंड मैं हमेशा से जितना भी टाइम मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अनफिल्टर्ड, आई हैव ऑलवेज बीन अनहिंज्ड, आई हैव ऑलवेज बीन फ्यूरलेस. तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म would have, I mean, there was no other better way for this to come out than Netflix. So I'm happy about it. Obviously, I deserve to win in the show. What a lame question is that? प्लीज जैसे आपने कहा मेरे जो सीक्रेट्स थे वो सबसे ज्यादा वेटेज वाले सीक्रेट्स थे इमोशन सबसे ज्यादा रॉ थे मैं सबसे ज्यादा रियल थी सबसे ज्यादा आई थिंक मैंने डिग्निटी मेंटेन की है शो में टू सम एक्सटेंट ग्लैमर भी बहुत ज्यादा मैंने शो में दिया है तो यार मैं ही डिजर्व करती थी सो दैट्स अबाउट इट
3: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट
2: आज हमने जाना कि ये जो ब्लेंडर है ना ये सिर्फ मेकअप ही नहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी निखारता है और याद रखिए ब्लेंडर को हल्का गीला करके यूज करिए और हाँ हफ्ते में एक बार इसे जरूर साफ करिए और अपने मेकअप टूल्स को दूसरों के साथ शेयर करने से बचें इससे आपकी स्किन भी रहेगी खुश और उसके साथ साथ आपका मेकअप भी रहेगा एब्सोल्युटली परफेक्ट अब लेते हैं आपसे इजाजत मुलाकात होगी आपसे कल जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए मनोरंजन की ढेर सारी खबरें सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास, ट्रस्ट ने शुरू की नई व्यवस्था, मंगला श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले, शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए, अब 18 ब्लिट्स मैचों में खिताब का फैसला। महाराष्ट्र में नकली पनीर बेचने पर लगा प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान, जनता की सेहत का ख्याल करते हुए फैसला। दिल्ली में झूम के बरसे बदरा, लोगों ने लिया बदले मौसम का आनंद, NCR में बादलों का डेरा, कुछ देर में बारिश संभव। सावन में दिख रहे हैं बाबा भोले की भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों के बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, राम दरबार दर्शन करने के लिए विशेष पास व्यवस्था खत्म, जबकि रामलला की आरती करने के लिए अब मिलेगा तत्काल पास। मंगला और श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले मिलेगा पास, जबकि शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। प्रतिदिन रामलला की आरती करने के लिए 45 और राम परिवार की आरती करने के लिए 15 पास किए गए निर्धारित, यात्री सुविधा केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से बनवा सकते हैं पास। दर्शन व्यवस्था अधिक सुगम बनाने के साथ श्रद्धालुओं का समय बचाना मकसद, नई दर्शन व्यवस्था से सरल होंगे दर्शन। श्रावण मास के अलावा भी रोजाना देश दुनिया से दर्शन करने के लिए आते हैं हजारों लाखों भक्त, सभी के लिए नई दर्शन व्यवस्था एक शानदार पहल। कांवड़ यात्रा, बैद्यनाथ धाम जाने वाली कांवड़ियों से भरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर हर महादेव के जयकारे। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुलभ यात्रा करने के लिए प्रशासन ने किए हर संभव इंतजाम, RPF और GRP के हाथों, भारी भीड़ को नियंत्रित करने और सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा। श्रावण मास में उत्तर भारत में पूरी आस्था के साथ जारी है कांवड़ यात्रा, अलग अलग स्वरूपों और आकार की कांवड़ लेकर कर रहे हैं यात्रा। प्रयागराज के घाट पर हर दिन अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं कांवड़िए, पैर में घुंघरू बांधे दशाश्वमेध घाट पहुंचे शिवभक्त। अपनी कांवड़ को खंडित होने से बचाने के लिए सीटी बजाते हुए पैरों में घुंघरू बांधकर चलते हैं कांवड़िए, पिछले 4 सालों से हर साल लगातार ले जा रहे हैं पवित्र कांवड़। श्रावणवास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी एक अनोखा रंग, मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक प्रेमी युगल 111 लीटर गंगाजल पैदल यात्रा करता है नजर। इस प्रेमी युगल की भोले शंकर के प्रति अटूट आस्था है, उनकी शादी के लिए राजी हो जाएं दोनों परिवार। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और योगी की अनोखी कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगी, इस कांवड़ ने खींचा सभी का ध्यान। बुलंदशहर के छह शिवभक्तों की एक टोली हरिद्वार से लेकर आ रही है मोदी योगी नाम की ये कांवड़, 2025 में भी ये टोली लेकर आई थी ऐसी ही मोदी योगी नाम की कांवड़। इस टोली ने गंगा मैया से मांगी है खास मन्नत, योगी के दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने और नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभालने की कामना। मुंगेर की डमरू रूपी कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, लकड़ी और फाइबर से तैयार किया है डमरू का पूरा ढांचा। हाथों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं बंगाल के राजकुमार महतो। पिछले दो सालों से पूरे भारत की धार्मिक यात्रा पर कर रहे हैं राजकुमार, इस दौरान बादाहर ज्योतिर्लिंग और चार धाम और 51 शक्तिपीठों में से 21 शक्तिपीठ कर चुके हैं दर्शन। बागपत में देखिए रिश्तों की अनोखी कांवड़, सास ससुर को गंगा जल से नहलाने 230 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची बहू। एक ही कांवड़ पर उठाए करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला है हरियाणा के ये दांपत्य। उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारियां, 9 और 10 अगस्त को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी योगी सरकार। हरिद्वार के हर की पौड़ी में उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, गंगा स्नान और जल भरने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। बोलबम के अनूठे जयकारों की गूंज, भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए लोग। हर की पौड़ी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन जुटी हुई है, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, भोलेनाथ की जयकारों की गूंज। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हेल्थ कैंप का शुभारंभ कर दिया, कांवड़ियों की हर सहूलियत का रखा जा रहा है ख्याल। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ कांवड़ यात्रा में लगे पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कांवड़ सेवा का भी पुण्य लिया, अपने हाथों से धोए कांवड़ियों के पांव, सेवा की। मुख्यमंत्री धामी ने शिव भक्तों को अपने हाथों से परोसा भोजन, आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर जा चुके हैं। सावन के मास में उज्जैन में रोजाना भोलेनाथ की विशेष आरती, पवित्र महीने में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के गंजम जिले में स्थित मां कुंदरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति मुर्मू ने मां कुंदनी देवी मां का मंदिर के साथ साथ तप्त पानी स्थित नील कंठेश्वर शिव मंदिर में भी शीश नवाया और देश की सुख समृद्धि कल्याण की कामना की। हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया, इस मौके पर कलाकारों ने ओडिशा के पारंपरिक नृत्य की भी झलक पेश की। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वागत के लिए आई छात्राओं से मुलाकात की, छात्राओं को चॉकलेट भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन पूजन किए, दर्शन के बाद बोले पवित्र सावन महीने में कृष्ण मंदिर में शीश नवाना मेरा सौभाग्य। जम्मू कश्मीर सरकार ने राजौरी मेडिकल कॉलेज की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया, राजौरी स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई MBBS की 50 सीट। अब GMC कॉलेज में हर साल 100 की जगह 150 छात्र ले सकेंगे दाखिला। योगी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से फिरोजाबाद के कलात्मक कांच उद्योग को मिली नई पहचान। इस उद्योग से जुड़ी महिलाओं को खासतौर पर फायदा हो रहा है, जिले से बाहर काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों का पलायन भी रुका। 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होता है फिरोजाबाद की कांच की विभिन्न वस्तुएं। 26 सितंबर से जोधपुर में गरजेंगे दुनिया भर के फाइटर जेट, पाकिस्तान बॉर्डर के पास होगी IAF की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ड्रिल तरंग शक्ति 2.0। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस की नेक पहल, गुम हुए 200 मोबाइल को खोजकर उनके असली मालिकों तक पहुंचा है। गुम मोबाइल वापस मिलने पर मोबाइल मालिकों के चेहरे खेले। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, डीए बढ़ाकर 38% कर दिया गया। 1 अक्टूबर से खाते में आएगा ज्यादा पैसा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील, ट्वीट करके भारी वर्षा का अनुमान के मद्देनजर सावधानी बरतने की अपील। गुरुग्राम में भव्य कलश वंदन यात्रा का भव्य आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुआ विशाल कार्यक्रम, पवित्र कलश यात्रा को हरियाणा के जिलों के लिए किया गया रवाना। गोवा को मिली विकास की सौगात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन और ई पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उद्घाटन किया। राज्य में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने और अदालती प्रक्रिया को आसान बनाना इस नई पहल का उद्देश्य, कानून व्यवस्था बनाने में होगी आसानी। भोपाल में बढ़ते ज्ञान क्षेत्रों पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए कार्यक्रम में शामिल। बिहार के दरभंगा और आसपास के हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दरभंगा हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की इजाजत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी, दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द शुरू हो सकती है रात में उड़ान और लैंडिंग। सड़क सुरक्षा और बीमा नियमों को सख्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश, बिना बीमा गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी। बिना बीमा के चल रही गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट रूप में गाड़ी का बीमा नहीं हो तो तेल नहीं अभियान चलाने का सुझाव दिया। भारत के लकी रावत समेत दुनिया के मेधावी युवा पहुंचेंगे नॉर्थ पोल, रूस की आइस ब्रेकर्स ऑफ नॉलेज पहल के तहत एक खास आर्कटिक अभियान बने हिस्सा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने असम के शिवसागर में बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित संतक और नेपाली खुटी इलाकों का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया। नड्डा ने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया, बोले असम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है सरकार, राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद होगी। अरुणाचल की राजधानी और दूसरे इलाकों में भी बाढ़ बारिश से हालात गंभीर, ईटानगर में हाईवे पानी में पूरी तरीके से डूबा। नवसारी में मूसलाधार बारिश से फसलों को भारी नुकसान, जलमग्न हुई कई एकड़ खेत। नेपाल में बारिश से उफनाई पहाड़ी पर नदियां, कई गांवों में घुस गया पहाड़ का पानी, इलाके जलमग्न। मंडी में भारी बारिश से भूस्खलन, मंडी कुल्लू मार्ग प्रभावित। भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग भी बाधित, सड़कों से हटाया जा रहा है मलबा। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, बागेश्वर के जिलाधिकारी ने एहतियातन 5 अगस्त को 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी को बंद रखने का आदेश जारी किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी बारिश, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में हुई बारिश से लुढ़क गया तापमान, हवा की गुणवत्ता में सुधार। प्रयागराज में सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में जलजमाव। देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी घुस गया पानी। हरिद्वार में भारी बारिश, बाजारों में भरा पानी। केरलम के अल्लापुझा में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी। बाढ़ प्रभावित इलाके प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान, अब तक 90% बाढ़ पीड़ितों का राहत शिविरों में किया गया उनको शिफ्ट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है। अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है। जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास। ट्रस्ट ने शुरू की नई व्यवस्था, मंगला श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले, शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए, अब 18 ब्लिट्स मैचों में खिताब का फैसला। महाराष्ट्र में नकली पनीर बेचने पर लगा प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान, जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए फैसला। दिल्ली में झूम के बरसे बादल, लोगों ने लिया बदले मौसम का आनंद, एनसीआर में बादलों का डेरा, कुछ दिन में बारिश संभव। सावन में दिख रहे हैं बाबा भोले के भक्ति के अनूठे रंग, मुंगेर में हाथों के बल खड़े होकर बाबा धाम चले बिच्छू महाराज।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत हैं। अविनाशी शिव की महिमा अपरंपार है। अगर शिव की कृपा मिल जाए तो जीवन की नई आसानी से भवसागर पार लग जाएगी। देखिए, माना जाता है कि भोले भंडारी जलाभिषेक के साथ बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव महापुराण को सबसे कारगर माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि शिव महापुराण के पाठ और पूजन से महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं।

शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के है मन में शिवाला, महादेव की पूजा से होगा महाकल्याण, मनोकामना पूरी करेगा शिव महापुराण। सभी पुराणों में शिव महापुराण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में महाकाल की संपूर्ण शक्ति समाई है। शिव महापुराण के हर श्लोक में शिव की महिमा का बखान है। इसमें अविनाशी शिव के कल्याणकारी स्वरूप के गुणगान समेत उनकी पूजा पद्धतियों का भी वर्णन किया गया है। हम आज शिव के इस अद्भुत और चमत्कारी ग्रंथ की महिमा का बखान करेंगे, तो सबसे पहले एक नजर शिव पुराण से जुड़ी खास बातों पर। शिव पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं। ये श्लोक 7 संहिताओं में बटे हुए हैं। शिव पुराण में शिव की महिमा और उनकी पूजा पद्धति का वर्णन है। शिव पुराण का पाठ करने या सुनने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। शिव पुराण का पाठ करने वालों का भगवान शिव कल्याण करते हैं।

0: कर लिया तो मानो वह शिव के समीप्य कैलाश धाम को प्राप्त करता है, साथ साथ में कल्प वृक्ष के समान मनोभिलषित कामनाओं को संसिद्ध करने के लिए शिवपुराण पर्याप्त है।
1: भगवान शिव से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन शिव महापुराण में भगवान शंकर के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ज्योतिष मानते हैं कि शिव महापुराण को पढ़ने और सुनने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। हम आपको वो नियम और संयम भी बताएंगे, लेकिन पहले महाशिव पुराण की पूजा विधि। पूजा के दिन सुबह स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो जाएं, साफ वस्त्र धारण कर पूजा की तैयारी करें। भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी को पवित्र जल अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भर कर रखें। बेलपत्र, आक और धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल भगवान को चढ़ाएं। यदि शिवालय ना जा पाए तो शुद्ध मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें। इसके बाद शिव महापुराण का पाठ पढ़ें या सुनें। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करें। इसके बाद व्रत को समाप्त करें।
0: विस्तार से विधि ऐसी है कि करालम, महाकाल, कालम, कृपालम, पंचोपचार पूजन है, षोडशोपचार पूजन है, अष्टोपचार पूजन है, जहाँ पर राजसी पूजन है अनेक प्रकार से, यहाँ तक कि आठ आठ प्रकार की आरतियों का विधान है कि आठ टाइम की आरती करिए। ये मंगला आरती है, ये प्रातः काल की आरती है, फिर ये मध्यान्ह काल की आरती है, फिर मध्यान्ह शयन की आरती है, फिर जो है तो सायंकाल की आरती है, रात्रि काल की आरती है। इस प्रकार से आठ प्रकार से राजसोपचार पूजन और षोडशोपचार वर्णन किया गया है।
1: शिव महापुराण अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी है। ये आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। शिव महापुराण को पढ़ने और सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं उन खास नियमों को जिनके पालन में छिपा है आपका सर्व कल्याण। कथा सुनने से पहले बाल, नाखून आदि काटें। शरीर को शुद्ध करके साफ कपड़े पहनें। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखें। किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए व्रत रखें। व्रत के दौरान भूमि पर सोएं। किसी की निंदा, चुगली ना करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। सात्विक भोजन खाएं, तामसिक पदार्थों का त्याग करें। किसी भी तरह का नशा ना करें। कथा पूर्ण होने पर शिव महापुराण और शिव परिवार का पूजन करें।
0: शिव पुराण पढ़ने का सबसे बढ़िया नियम है कि स्नान, ध्यान, शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का ध्यान रखते हुए, और संभव हो तो भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर विश्वयोनि शुचिस्रवाहा, ऐसा विष्णु सहस्र नाम में भी वर्णित है। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा करने का नियम स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, शुद्धता, पवित्रता के साथ साथ में, और जिस प्रकार से, जिस भावना से संभव हो पाए उस प्रकार से करना चाहिए।
1: भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपायों के बारे में शिव पुराण में लिखा है। इन उपायों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: ऐसी मान्यता है कि शिव महापुराण का पाठ कष्टों का समूल नाश करने वाला है। इसमें शिव की संपूर्ण शक्ति समाई हुई है। शिव महापुराण का पाठ हर बाधा को दूर कर सकता है। मान्यता है शिव महापुराण में बताए गए कुछ बेहद सरल और कारगर उपायों को अगर

जिनकी उपासना से छट जाएगी संकट की छाया, जिनके चरणों की धूल से उपजी है संसार की माया।

0: महापुराण के पाठ से होगा कल्याण। शिव महापुराण को भगवान महादेव की संपूर्ण महिमा का बखान माना जाता है। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि शिव महापुराण के पाठ से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
1: ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि भाव ही मेट सकहिं त्रिपुरारी, विधि के विधान को भी मेटने में भगवान शिव सक्षम है, क्योंकि सभी तो देव हैं लेकिन भोले बाबा भगवान शिव देव नहीं है, वो देवों के देव हैं, इसलिए उनका नाम है महादेव। इसलिए हम लोग कहते भी हैं हर हर महादेव। तो भगवान शिव जो है तो ऐसा यदि चाह लें तो ऐसा कोई विधि का विधान नहीं जिसको भगवान मेटने में सक्षम ना हो।
0: भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपायों के बारे में महाशिव पुराण में लिखा है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है और शिव की कृपा पाई जा सकती है। तो आप भी नोट कीजिए शिव महापुराण के बेहद सरल और चमत्कारी उपायों को। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है, जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है, गेहूं चढ़ाने से संतान होती है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में बांट देना चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए भी जल द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से सेहत का वरदान मिलता है।
1: उनको जल आप चढ़ाओगे तो जल से आपको समस्त कामनाओं की प्रतिपूर्ति कर देंगे। अक्षत चढ़ाओगे तो अलंकार को दे देंगे। आप भगवान शिव को जो है तो दूध चढ़ाओगे तो वंश की वृद्धि दे देंगे। तो हर प्रकार से भगवान शिव खुद में ही चमत्कारिक है और उनसे जुड़े हुए सभी चमत्कारिक प्रयोग किए जा सकते हैं। और शिव पुराण का अक्षर अक्षर जो है तो सावर मंत्र है और चमत्कारिक मंत्र है, जिसका प्रयोग करके जीवन में आप जो चाहोगे वो पालोगे, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है।
0: शिव कृपा निधान यानी बेहद करुणा से भरे देवता के रूप में पूजनीय है। धार्मिक आस्था से शिव का करुणा भाव ही सांसारिक जीवन में सुख का कारण है। शिव महापुराण कहता है कि शिव की कृपा पाने का सबसे आसान और सटीक उपाय है पंचाक्षरी मंत्र का जाप। शास्त्रों के मुताबिक पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण व्यक्ति के जीवन में हर काम और मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है। इस मंत्र के ध्यान मात्र से ही शिव भक्त का जीवन कलह मुक्त रहता है।
1: आपने कथाओं के माध्यम से जाना होगा कि मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है, हमारे काशी में मार्कंडेय जी का मंदिर भी है, कि उनको मात्र 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन की आयु मिली थी, लेकिन भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय ऋषि जी चिरंजीव हो गए और अष्ट चिरंजीवियों में उनका नाम भी आ गया। तो भगवान शिव खुद में चमत्कारिक है।
0: शिव महापुराण में पंचाक्षरी मंत्र के जप का विधान बताया गया है। जिनके स्मरण से शीघ्र और मनचाहे नतीजों को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए हमें करना होगा कुछ नियमों का पालन। शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र को गुरु से प्राप्त करें, इससे मंत्र जाप अधिक प्रभावी और मंगलकारी होता है। देवालय, तीर्थ या घर में साफ, शांत व एकांत जगह बैठकर मंत्र जप करें। नमः शिवाय के आगे ओम लगाकर जाप करें। गुरु, पति, माता पिता के प्रति सेवा भाव और सम्मान मंत्र जाप काल के दौरान ना भूलें। पंचाक्षरी मंत्र जाप की अवधि में खान पान, वाणी और इंद्रियों पर पूरा संयम रखें।
1: शिव पुराण के प्रमुख मंत्र जहाँ पर अष्टाक्षर मंत्र का वर्णन आया है और प्रमुख मंत्रों में पंचाक्षर मंत्र जिसे हम लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं, ये भगवान शिव का सर्व प्रधान पंचाक्षर मंत्र है। और भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताया गया है कि शिव जी के जो मंत्र हैं मानो वो मंत्र भाव और आराधना से पर प्रतिपूरक है, और भाव और आराधना के माध्यम से समस्त जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव प्रतिपादित किए जाते हैं।
0: अविनाशी शिव तो दया और करुणा के सागर है। सिर्फ सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग फूलों को अर्पित करने के उपाय बताए गए हैं, वे हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो हम आपको बता रहे हैं शिव महापुराण की महिमा। ज्योतिषी कहते हैं कि शिव महापुराण में बताए गए उपाय आपकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव महापुराण में फूलों का प्रयोग भी बताया गया है। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं फूलों से जुड़े कुछ महाप्रयोग।

0: शिव सृजन करता है तो साथ में संहारक भी है महादेव। माना जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ महादेव की आराधना की जाए तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं।
1: सर्वप्रथम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने आप में सरलता होनी चाहिए। इस विधि से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये जो हमारा शरीर है आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा, वो हमारी आत्मा ही मंदिर है और भगवान शिव उसी मंदिर के अंदर में सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान शिव हमारे हृदय के अरविंद में रहते हैं। और जो आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा, जो उनकी पत्नी है पार्वती मैया, वो मानो हमारी बुद्धि है, मति है। और जो हमारे प्राण धन है वो भगवान के गण हैं। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, यही भावना से, सरल भावना से भगवान शिव की उपासना और आराधना की जा सकती है।
0: माना जाता है कि भोलेनाथ का हृदय फूल जैसा कोमल है, भक्ति की शक्ति से वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। तभी तो वो देवों और दानवों में भेद नहीं करते, सभी को समान रूप से वरदान देते हैं। शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव महापुराण में फूलों के भी कुछ प्रयोग बताए गए हैं। तो आइए ज्योतिष में बताए गए इन पुष्पों के बारे में जानते हैं जिन्हें भगवान शिव को चढ़ाने की मान्यता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से फूल से कृपा पाई जा सकती है। शिव को लाल और सफेद रंग के फूल चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हार सिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में शुभ माना गया है। दूर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु बढ़ती है।
1: शिव पुराण में पूजा की विधि भगवान शिव की तो बताया गया है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म अणतो अणियान महतो महीयान। भगवान शिव जी की पूजा की विधियों में कहा गया है कि जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसी आपकी भक्ति है, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो केवल भगवान शिव जी को एक लोटा जल अर्पित कर देने से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
0: शिव महापुराण के ये सरल और कारगर उपाय आपको भगवान शिव की कृपा का पात्र बना सकते हैं, इसलिए इन उपायों को अपनाएं और महादेव से खुशियों का वरदान पाएं।
2: प्रार्थना हूँ स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

देखिए, सावन का एक रंग महादेव की भक्ति भी है। देवघर से लेकर काशी तक, हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक, पूरा देश इन दिनों शिवमय नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए तमाम, कहीं बोलबम के जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो रहा है तो कहीं पर कांवड़ यात्रा में आस्था के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। सावन में चारों ओर शिव भक्ति का रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और पावन महीना माना जाता है। यही वजह है कि देश भर में सावन के महीने में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा जल से लेकर कांवड़ियां जो है बोल बम के जयघोष के साथ अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी हुई है बड़ी संख्या में, साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़ियों का भी जोश आया है।

0: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कंधे पर कावड़। सावन के पावन माह में पूरे कावड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कावड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कावड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन माह की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कावड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कावड़ियों के साथ साथ कावड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है, तो कहीं बजरंगबली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है, तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नरसिंह के अवतार की झलक मिल रही है, तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानंद ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
1: इच्छा पे आए थे, मन किया था आगे कांवड़ लेने,
2: पहले भी आ चुके।
1: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
2: मांगा था जो पूरा हुआ है,
1: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
0: कुछ कांवड़ झांकियों में शिव परिवार सजा है, तो कुछ कांवड़ झांकियों में पूरे शिवालय की झलक मिल रही है, तो कुछ कांवड़ झांकियों में पूरे शिव परिवार की झलक मिल रही है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के जोश के साथ भी भगवान शिव के अटूट आस्था की तस्वीर दिख रही है। फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसे ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है, तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है।
3: महादेव के पक्के वाले भक्त, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हमें कई सारे कांवड़िए रास्ते में मिल रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के शनिदेव मंदिर पर हैं और यहाँ पर भी एक शिविर बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए आकर विश्राम कर रहे हैं, वापस से अपने शरीर की ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दो भाई मिले हैं, दोनों कज़िन हैं और दोनों ही महादेव के पक्के वाले भक्त हैं। हरिद्वार से जल लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, नोएडा तक पहुंच गए हैं।
0: नंदगांव से पहली बार कांवड़ लेकर आए इन दो भाइयों के कांवड़ पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर है। ये दोनों जल उस नंदगांव के शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, जहां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए महादेव ने तप किया था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन माह में उनके लिए भगवान की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। हरिद्वार से मदित अग्रवाल के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
4: और आइए अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: मजदूर महिला काम पर बच्चे को साथ लाई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा काम की जगह पर अपनी ही मस्ती में डूबा है और मां न सिर्फ काम तल्लीनता से कर रही है बल्कि बच्चे का भी ध्यान रख रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि सिर्फ मां ही होती है इस दुनिया में जो बिना स्वार्थ की प्यार करती है और उससे बड़ा योद्धा दुनिया में कोई और नहीं होता। लोग इस वीडियो को खूब देख रहे हैं और मजदूर मां की तारीफ कर रहे हैं।

0: अब देखिए आस्था और हिम्मत की अद्भुत तस्वीर। ये शख्स दिव्यांग हैं और हरिद्वार से मथुरा तक पैदल कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। महाकाल के इस भक्त का हर कदम महाकाल के नाम पर है और उसकी हर सांस में माँ गंगा का आशीर्वाद है। यही वजह है कि भक्ति और हिम्मत से भरी उसकी ये यात्रा थकान नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जो भी ये वायरल तस्वीरें देख रहा है यही कह रहा है कि महादेव अपने इस भक्त को और हिम्मत बख्शें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा। मुंगेर में 54 किलो चांदी से सजी 54 फीट की कांवड़ बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहा शिव भक्तों का जत्था। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास, ट्रस्ट ने शुरू की नई व्यवस्था। मंगला श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले, शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद सिंह लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए। अब 18 ब्लिट्स मैचों के से खिताब का फैसला। दिल्ली NCR के कई इलाकों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 8 अगस्त तक यूं ही मेहरबान रहेगा मौसम।

0: प्रोटीन ओवरडोज न बन जाए सेहत पर बोझ, आज प्रोटीन को लेकर ही चर्चा करेंगे। चर्चाएं वैसे हर दिन हर जगह पर होती भी हैं, लेकिन क्या है सही मात्रा प्रोटीन की और कैसा प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, आर्टिफिशियल प्रोटीन सही है या नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर आपके घर में आप जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम जाते हैं, हर जगह पर इसको लेकर चर्चा जरूर होती है। लेकिन अब खबर ये आ रही कि क्या ये सेहत पर बोझ बन रहा है, क्या ये इंसान को जल्दी बुजुर्ग बना रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के दौर में ज्यादातर युवा प्रोटीन लेना ही पसंद करते हैं, खास तौर पर अगर आप जिम जा रहे हैं। तमाम जो यंगस्टर्स हैं वो प्रोटीन शेक की बोतल हाथ में पकड़कर पीने को अपने आप में एक रुतबेदार समझते हैं, एक जेंजी स्टाइल भी इसको माना जाता है। तो इसी बीच ज्यादा प्रोटीन पर अलर्ट करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, बॉडी बनाने के चक्कर में क्या सेहत से हो रहा है खिलवाड़, इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ देश के बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। तो प्रोटीन पर कहां क्या रिसर्च हुई है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। प्रोटीन की खुराक लेने पर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। अब रिपोर्ट क्या है एक बार वो भी देखिए। जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि ज्यादा प्रोटीन नुकसानदायक हो सकता है, और इस रिसर्च में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं। ये रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन ने की है, इसमें प्रोफेसर डडली लैमिंग और बेली नोफक शामिल थे, जिन्होंने 350 से ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययनों का विश्लेषण किया, और इसी में पता चला कि बिना कसरत ज्यादा प्रोटीन घातक हो सकता है। रिसर्च ये भी बता रही है कि कम प्रोटीन वाला आहार लेने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सुधरता है, साथ ही साथ कम प्रोटीन से कोशिकाओं की सूजन टूट फूट कम होती है, कम प्रोटीन वाले भोजन से कम उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। और ये पूरी रिसर्च उस सवाल पर भी हुई है कि प्रोटीन कम करने से बुढ़ापे पर क्या असर पड़ता है। पहले चूहों मक्खियों पर भी ट्रायल हो चुका है, अब इंसानों पर ये रिसर्च हुई जिसका विश्लेषण किया गया, और इससे ये साबित हुआ कि प्रोटीन घटाने से चर्बी में कमी आई है। साथ ही साथ रिसर्च ये बताती है कि फास्टिंग ब्लड शुगर में सुधार हुआ है। ये कई दशकों की रिसर्च की समीक्षा है जिसको लेकर दुनिया में लगातार चर्चा हो रही है, और ये रिपोर्ट एक सीख भी देती है।
1: मेरा नाम गौरव सिंह राजपूत है और मैं रेगुलर 1 से 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ, और प्रोटीन इंटेक की अगर बात की जाए तो मैं अपने प्रोटीन इंटेक के लिए अपने रूटीन में होममेड फूड प्लस मैं सप्लीमेंट इंटेक भी करता हूँ, क्योंकि प्रोटीन इंटेक का एक बेसिक कैलकुलेशन ये है कि जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन इंटेक तो आप दिन भर में कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई 70 केजी का इंसान है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक की तो बेसिक सी नीड पड़ेगी। अब उस 70 ग्राम इंटेक करने के लिए आपको मैक्सिमम फोकस तो आपके होममेड फूड पे ही रखना चाहिए कि आप उसको पनीर से या फिर दालों से, फलियों से या एग से या किसी नॉनवेज आइटम से पूरा करने की कोशिश करें।
2: पहले जब मैं जिम जाता था सप्लीमेंट में जरूर लेता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हो गया, जैसे मैंने वर्कआउट छोड़ दिया तो मेरी बॉडी में ना थोड़ा साइड इफेक्ट होने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये सब तो ज्यादा टाइम शायद वर्कआउट और ये सब चीज़ ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने प्रोटीन के लिए जैसे घर में दाल हो गई, दूध हो गए, अंडा हो गया, ये सब चीज़ें मैं खाने लग गया, तो शायद उससे मेरी बॉडी में प्रोटीन इंटेक भी मिलने लग गया। लेकिन हाँ, जब मैं पहले प्रोटीन लेता था तो मैं हमेशा ट्रेनर के कहने पे लेता था, बिना ट्रेनर के मैंने कभी नहीं लिया, और उसके इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं जरूर पढ़ता था।
3: प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, मेरे पेरेंट्स मेक श्योर करता है, मैं 14 इयर्स क्योंकि मेरी डाइट में मतलब प्रोटीन हो ही हो, जैसे पनीर और दो दिन में 2 बार मिल्क देते हैं मुझे सुबह शाम, और वो भी मेक श्योर करते हैं कि उनकी डाइट में भी एक प्रोटीन की चीज़ हो ही हो, क्योंकि प्रोटीन हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
4: प्रोटीन वैसे हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है उसके इनटेक के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटीन जो है उससे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंसी होती है, लेकिन बिना एक्सपर्ट की गाइडेंस के प्रोटीन लेना सही नहीं है, मुझे नहीं लगता। जैसे आजकल वही प्रोटीन चलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स चलते हैं, मुझे नहीं लगता ये चीज़ सही है।
0: चले, कम से कम लोगों की ये राय तो है कि बिना एक्सपर्ट की गाइडेंस से आप प्रोटीन नहीं लीजिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वो एक्सपर्ट आपके आसपास कौन है? क्या आपके जिम ट्रेनर्स हैं और क्या वो इतने एक्सपर्ट हैं जो वो सलाह दे रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं सही, क्या आपके फ्रेंड्स जो सलाह दे रहे हैं या फिर हमें सीधा इसको लेकर न्यूट्रिशनिस्ट या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, हाँ या ना, इसका जवाब एक्सपर्ट से जानिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जयंत कुमार होता, ये नेफ्थोलॉजिस्ट हैं अपोलो अस्पताल से। मीनल पाठक फिटनेस एक्सपर्ट है। मीनल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप फिटनेस एक्सपर्ट भी, अक्सर गुड न्यूज टुडे पर हम सबको योगा भी कराती हैं, सिखाती भी हैं योगा डे पर। शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। मुझे याद है कि एक बार आपके साथ इसी तरह का एक शो हमने किया था, आपने बहुत हिमायत की थी कि प्रोटीन लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन इस नई रिसर्च के बाद आप क्या कहेंगी?
5: ये जो रिसर्च है ये एक तो यूएस बेस्ड रिसर्च है, और इस रिसर्च में अगर उन्होंने प्रोटीन के खिलाफ जो सोर्सेज बोले भी हैं वो है रेड प्रोटीन, और उन्होंने साथ में बोला हाईली प्रोसेस्ड प्रोटीन। तो आप एक बात सोचिए ना, इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेस प्रोटीन हो ही नहीं सकता। इंडिया के जो सिचुएशन है और जिस टाइप से हमारी डाइट में जितना प्रोटीन है, हम हमेशा से डेफिशिएंट ही रहेंगे। एक्सेस प्रोटीन की रेंज तो हमारे लिए बहुत दूर है, बिकॉज अभी भी अगर इतना जितना हम बता रहे हैं, जितना डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं या जितना भी मार्केट में कितना इंफॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी अभी भी जो एक टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट है वो पोहा, उपमा, उत्पम, आलू के परांठे से उभर नहीं पा रहा है। बहुत ही कम ऐसे इंडियन हाउस होल्ड्स हैं जो लिटरली अपनी डाइट में मॉर्निंग में स्प्राउट्स खा रहे हैं या चना खा रहे हैं, ऐसे भीगे हुए अंकुरित अनाज खा रहे हैं, उसके साथ कुछ सत्तू या बेसन या दाल के चीले खा रहे हैं, उसमें टोफू या पनीर या सब्जियां भरकर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस टाइप का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। अभी भी हमारा जो डाइट है वो बहुत ज्यादा कार्ब इंटेंसिव है, उसके कारण अगर आप देखेंगे तो इंडिया में डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्सेस फैट, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लिटरली हमारी डाइट से रिलेटेड है। वर्कआउट तो डेफिनेटली है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत कम मूवमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा बेसिक डाइट है वो इतना हाईली कार्ब इंटेंसिव है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी कम है कि लिटरली मतलब पूरी डाइट में आप दिन में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पाते, जबकि 60-70 केजी अगर आपका वेट है तो आपकी डाइट में मिनिमम, अगर आपका 60 केजी वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन तो आपकी डाइट में चाहिए ही। आप एक बात समझिए नवजोत, कि आपका हर सेल, आपका हर एंजाइम, आपकी हर ग्रोथ हॉर्मोन्स, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी का रिपेयर, आपके स्किन, हेयर, सेल, हर चीज ही प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, और प्रोटीन को डेमोनाइज करना तो बहुत ही गलत सी बात हो जाएगी। हाँ, आइडियली अगर आप ऐसे बात करें तो एक्सेस तो हर चीज की गलत है, मतलब आप एक्सेस में वर्कआउट्स करेंगे वो भी गलत है, एक्सेस में स्लीप भी गलत है, इनफैक्ट एक्सेस में तो वाटर इनटेक भी गलत।
0: मैं जल्दी से छोटा सा जवाब डॉक्टर जैन के पास जाना है। यहाँ पर जिस प्रोटीन की बात हुई है उसमें नेचुरल प्रोटीन ना होकर उसमें जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है, जो अक्सर हम लोग जिम जाने वाले लोग, तमाम लोग लेते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो प्लांट प्रोटीन, किसी भी तरह का प्रोटीन हो, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, उस पर आपकी राय क्या है मीनल?
5: अच्छा, सो सी आई बिलीव कि वो एक बहुत, अगर आप रिसर्च और रिसर्च पेपर्स भी पढ़ें तो जो एब्जॉर्प्शन है ना वे प्रोटीन की, वो सबसे हाई है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर प्रोटीन सोर्सेस। मतलब कि एक बॉडी में जब आप पानी के अंदर वे मिक्स करके पीते हैं तो आपकी बॉडी उसको कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करके यूज करती है, वो सबसे हाईएस्ट होती है वे प्रोटीन में। द पॉइंट हियर इज कि आप वो जो प्रोटीन ले रहे हैं ना वो आप इस हिसाब से लेंगे कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए प्रोडक्ट, लैब टेस्टेड होना चाहिए और किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए।
0: ठीक है, चलिए डॉक्टर जैन मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये रिसर्च आपने अगर देखी हो इस पर आपकी राय क्या है?
6: मैम देखिए, ये रिसर्च अभी बहुत लेटेस्ट है और ऐसे कई सारे हमारे मेडिकल लिटरेचर में, जिसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, कई सारे पुराने स्टडीज हैं और सारे जो इवन अपकमिंग स्टडीज हैं उसको लेके मेटा एनालिसिस करते हैं, सारी स्टडीज का एक वो जिस्ट निकालते हैं, मतलब एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसमें देखिए, जो जिनकी रीनल फंक्शन सही है, मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, आई एम अ किडनी स्पेशलिस्ट, सो हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी की किडनी फंक्शन सही है तो उसमें प्रोटीन इंटेक के लिए बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैम भी कह रही थी कि दैट इज करेक्ट, अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड मीट लेते हैं एस्पेशली रेड मीट, तो उसमें कई सारे इन्फ्लामेटरी मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन क्रिएट करके दैट कैन क्रिएट हेल्थ इश्यूज, जिसमें गट इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। हमारे माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो गट में, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ हमारे बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया को ये लोग आई मीन इफ यू टेक टू मच ऑफ स्पेशली रेड मीट प्रोसेस्ड मीट दे कैन चेंज द माइक्रोफ्लोरा, तो उसमें फिर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर अगर कोई पेशेंट कोई है जो जिनके रीनल फंक्शन सही है तो वो प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं आराम से, और 1 to 1.2 ग्राम पर किलो पर डे हम एलो करते हैं उसमें। पर इसमें देखना ये होता है कि प्रोटीन के साथ आपको अच्छा हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज अगर खाली प्रोटीन कंज्यूम करें और आप हाइड्रेशन सही नहीं है तो उसमें खाली प्रोटीन में क्या होता है आपकी यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ऐसे कई सारे और चीजें हैं जो आपके शरीर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और हाइड्रेशन सही नहीं हो तो ये सारी चीजें फिर किडनी को या अदर ऑर्गन्स को ये इंजरी पहुंचा सकते हैं।
0: ठीक है, चलिए, डॉक्टर शिखा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, ये सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर शिखा, प्रोटीन को लेकर आपकी राय क्या है, किस तरह का प्रोटीन हमें कंज्यूम करना चाहिए? ये रिसर्च भी आपने देखी होगी, इस रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि आपसे पहले हम मीनल से भी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये रिसर्च अमेरिकन पर हुई है, अगर हम भारतीयों की बात करें तो उनके लिए किस तरह का प्रोटीन, क्या नेचुरल प्रोटीन या फिर अगर हम आर्टिफिशियल प्रोटीन भी लेते हैं, क्या वो सही है, गलत है, हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, कितना हानिकारक है, और क्या इससे उम्र जल्दी बढ़ती है?
5: देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर ये लोग सोचे कि हमने प्रोटीन खा लिया और वो ऑटोमेटिकली हमारी मसल इंप्रूव कर रहे हैं या हमारी सेहत इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो गलत है। प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना, शरीर की जो क्षमता होती है प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना, सबसे बड़ी चीज वो है। अगर हम देखें कि तीन कंडीशंस में, पहला कंडीशन कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं और आपका इंटेस्टाइन उस प्रोटीन को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, आपका लिवर उस प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी और वो अननेसेसरीली उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी बॉडी में यूरिक एसिड और ये सब बनाना शुरू करेंगे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें समझना है कि प्रोटीन हर इंसान के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने प्लांट प्रोटीन की बात करी, नाउ प्लांट प्रोटीन में जो एसिड रेजिड्यू होता है जिसको हम कहते हैं लो इन्फ्लेमेटरी होता है, वो उसमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसके अंदर पी प्रोटीन है, राइस प्रोटीन है और सोया प्रोटीन यूज होता है, जो डेयरी का प्रोटीन है जिसमें वे प्रोटीन होता है, तो डेयरी प्रोटीन डिपेंड करता है कि आप उस किस फॉर्म में ले रहे हैं। तो जैसे पनीर के फॉर्म में ले रहे हैं या वे प्रोटीन ले रहे हैं या पाउडर डब्बे ले रहे हैं, तो अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, सिर्फ प्रोटीन खाने से सेहत नहीं बनती है, क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर ठीक नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, पहले आपको उन दोनों को ठीक करना है। सेकेंड थिंग इज कि एज रिलेटेड भी होता है कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी है, आप ग्रोइंग एज में है या आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो क्यों डेफिशिएंसी है, कम खाने से या खराब एब्जॉर्प्शन से। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पूरा प्रोटीन का बास्केट है जिसमें आपका नॉनवेज प्रोटीन है, आपका डेयरी वाला प्रोटीन है इंक्लूडिंग वे और आपका प्लांट प्रोटीन है, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई ये सोचे कि हम सिर्फ अंडा खा के हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और हम दिन में 8 अंडे खाएंगे जो कई बॉडी बिल्डर्स करते हैं, वो गलत है। इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस उसका नतीजा होता है, लिवर और किडनी प्रॉब्लम उसका नतीजा होता है। आज के टाइम सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, प्रोटीन जो अलग अलग टाइप के हैं, प्लांट और डेयरी और नॉनवेज, उनकी वो उसका डिफरेंस ही समझते हैं। उनको लगता है कि बस हमने 8 अंडे खा लिए, 6 अंडे खा लिए, खूब चिकन खा लिया तो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। हर प्रोटीन बराबर नहीं होता और आपको वैरायटी चाहिए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि एक्सेसिव एंड रैंडम इनटेक ऑफ प्रोटीन विदाउट प्रोफेशनल गाइडेंस आपकी बॉडी को हार्म ज्यादा करती है, चाहे वो किडनी है, लिवर है, आर्थराइटिस है या आपकी हार्ट डिजीज है।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़ूं उससे पहले एक और चीज जो आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग प्रोटीन इनटेक में करते हैं, प्रोटीन किस तरीके से लिया जाना चाहिए, मेन वुमेन दोनों की मैं बात करूंगी, आप अपने वेट के हिसाब से ले सकते हैं, कितना लेना चाहिए, उसका समय कोई है या और उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए?
6: ये जैसे बात हो रही थी, जितने भी हमारे मेटा एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस तो एक इनफैक्ट देयर इज वन मेटा एनालिसिस व्हिच वाज ऑब्वियसली पब्लिश्ड फ्रॉम चाइना, तो इतने चाइनीज स्टडीज को इतने वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर आपके प्रोटीन में प्लांट बेस्ड यू नो प्रोटीन्स हैं तो दैट कैन यू नो डिक्रीज द यू नो इन्फ्लामेशन. तो इसमें इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन रिलेटेड अदर इश्यूज जिसमें कि गट के माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, इंटेस्टाइन के हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें से दे आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी. सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर एक्चुअली मोर वेलकम. एंड जो नेगेटिव चीजें जो देखने को मिला है वो प्लांट आई मीन प्रोसेस्ड मीट, स्पेशली रेड मीट. इनफैक्ट देयर इज वन स्टडी फ्रॉम जापान जिसमें वो लोग ज्यादा यूज करते हैं सी फूड, सी फूड बेस्ड प्रोटीन. वो कहा जाता है कि दैट कैन यू नो काइंड ऑफ डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज. हमारे किडनी की बात करें तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन या सी फूड बेस्ड प्रोटीन, तो उसमें प्लस दैट इंक्लूड्स ऑल्सो फिश, तो जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अदर पॉली अनसैचुरेटेड यू नो फैटी एसिड्स जो रहते हैं, तो दे कैन यू नो दे आर लाइट दे कैन इनफैक्ट यू नो डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिसिटी, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड ऑल दोज थिंग्स. तो जो भी इश्यूज आए हैं मोस्टली ये प्रोसेस्ड रेड मीट को लेके ही कंसर्न आया है, क्योंकि उसमें देखा जा रहा है कि उसमें इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जा रहे हैं और हमारे जो इंटेस्टाइन के फ्लोरा को चेंज कर दे रहा है. सो दैट इज लीडिंग टू लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. एंड नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली अगर नॉन प्रेगनेंट सेटिंग में 1 ग्राम पर किलो, अगर कोई प्रेगनेंसी है या चिल्ड्रेन में हम 1.2 ग्राम पर किलो रेकमेंड करते हैं. 1.2 ग्राम मतलब है मोटा मोटा जैसे कोई 50 किलो का इंसान है तो 50 ग्राम करीब रहे, कोई 60-70 किलो का है तो 70 ग्राम करीब लें. तो उसमें जैसे मैम कह रही थी कि उसमें आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, रफली आप ये कर सकते हैं कि भाई 25-30 ग्राम आप प्लांट बेस्ड रख लें, 20-25-30 ग्राम आप एनिमल बेस्ड रख लें, और एनिमल बेस्ड अगर आप हैं नॉन वेजिटेरियन तो आप प्रेफरेबली फिश या कोई सी फूड आप देखें कि क्या पसंद करते हैं, उस हिसाब से कोई सी फूड हो या फिश हो तो बेटर है.
0: ठीक
6: है. एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की बात आती है तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो बेस्ट प्रोटीन माना जाता है वो एग व्हाइट को माना जाता है, क्योंकि एग व्हाइट में हमारे कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं, हमारा देयर आर 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स. टोटल प्रोटीन में देखा जाए तो टोटल देयर आर 20 एमिनो एसिड्स, लेकिन उस 20 में से 8 जो है वो एसेंशियल है. उस 8 में से हम बाकी एमिनो एसिड्स को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस 8 को हम फॉर्म मतलब दीज आर एसेंशियल. तो जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कंपोजिशन देखें तो एग व्हाइट में सबसे अच्छा होता है. तो एग व्हाइट इज टेकन एज अ वेरी गुड प्रोटीन, बट द ओनली थिंग इज बिकॉज इट इज एनिमल बेस्ड सो दैट कैन यू नो दैट अगेन द एनिमल बेस्ड प्रोटीन के थोड़े से वो रहता है टॉक्सिसिटीज की दे कैन चेंज द माइक्रोफ्लोरा और इन्फ्लामेशन के थोड़े से चांसेस होते हैं उसमें. तो प्रोसेस्ड मीट, एक तो जो बॉटम लाइन ये है कि प्रोसेस्ड मीट ना लें और जितना हो सके प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें. तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ये है कि यू नो दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ.
0: बिल्कुल, लौटती हूँ. हमारे साथ इस वक्त कनिका खन्ना भी मौजूद हैं, कनिका डाइटिशियन भी हैं. कनिका, प्रोटीन को लेकर आपकी क्या राय है और ये जो लेटेस्ट रिसर्च आई है इसको लेकर आप क्या कहेंगी?
5: डेफिनेटली एक्सेस प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज अगर एक्सेस प्रोटीन लेंगे तो इट मे लीड टू वेरियस काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन एंड डाइजेस्टिव हेल्थ. तो जो हमें प्रोटीन लेना है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना है विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. इफ देयर इज एनी फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज करें तो उसके हिसाब से हम प्रोटीन को इंक्रीज करें. बट अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एंड आपका वेट भी आइडल है, तो अपने नॉर्मल जो भी आपका वेट है आइडल 0.8-1 ग्राम पर kg आइडल बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन लें. एंड दैट टू बी गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हमें इंक्लूड करने हैं, नॉट द बैड क्वालिटी प्रोटीन. इसमें भी जैसे डॉक्टर ने भी बोला, जितना हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ऐड करेंगे अपनी डाइट में उतना उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है और वो हमारे गट फ्लोरा के लिए भी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट गट के जो गुड बैक्टीरियाज है वो भी इम्प्रूव होंगे उससे. और जो प्रोटीन है, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन में हमारे जो आते हैं जैसे जिसमें कि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हो, तो हमारे जो वीगन सोर्सेस आ गए जिसमें हम नॉर्मली हम लोग आजकल डाइट की वजह से हम दाल चावल नहीं खा रहे हैं, तो हम अगर उनको कंबाइन करके एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं दैट इज ऑल्सो गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम वीगन में चना सत्तू को ऐड करते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. न्यूट्रिशनल ईस्ट है, जितने भी गुड क्वालिटी प्रोटीन है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, न्यूट्रिशनल ईस्ट, वीट, एमरेंथ, किनवा, ये सब हमारे जो ग्रेन्स है दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज अ गुड क्वालिटी प्रोटीन. तो हमें इन सबको अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना चाहिए बट इन अ लिमिटेड अमाउंट. अगर किसी को नहीं पता है हमें कितना प्रोटीन लेना है डाइट में तो बेटर है कि एक डाइटिशियन से सजेशन ले लें और एक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जितनी है वो डाइट चार्ट में ऐड करा लें, उसको फॉलो करते रहें सो दैट एक्सेस प्रोटीन नहीं जाएगा.
0: बिल्कुल मीनल, एक्सरसाइज करने वाले, जिम बनाने वाले, नॉर्मली जो लोग बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं जैसा डॉक्टर शिखा भी बता रही थी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लिए जाते हैं सप्लीमेंट, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन तो वो ले रहे हैं अपनी डाइट में तो वो प्रोटीन ऑलरेडी ले रहे हैं, उसके अलावा जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं जिसमें प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, ऐसे बहुत सारी और चीजें आती हैं, क्या आप उसको रिकमेंड करती हैं?
5: बिल्कुल, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ एडिंग प्रोटीन टू योर डाइट।
0: नहीं, लेकिन वो कितना हेल्दी है?
5: वो बिल्कुल हेल्दी है अगर आप सर्टिफाइड प्रोटीन ले रहे हैं विच इज थर्ड पार्टी टेस्टेड, लैब टेस्टेड, और उसकी क्वालिटी एंश्योर्ड है, तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। एंड इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब आपको सुबह सुबह ऑफिस के लिए रश करना है, इंस्टेड ऑफ यू नो हैविंग अ कॉफी और टी और उसके साथ कुछ ब्रेड टोस्ट या कॉर्नफ्लेक्स, ऐसा कुछ भी क्विक फिक्स खाने से कितना अच्छा है कि आप दो तीन बॉइल्ड एग खा लें, आप अपना एक यू नो एक प्रोटीन का शेक पी लें विच रेडिली गिव्स यू 22-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अलोंग विद द एग्स विच विल अगेन अनदर 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आप दिन में अपना दाल चावल दही सलाद रोटी जो भी खाते हैं वो खाइए, रात को भी लाइटली खाइए, बट आई नीड टू से कि आप अपनी बॉडी का एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच इज 30-40 ग्राम्स अगर आप ये सुबह ले लेंगे, मोस्ट ऑफ द लेडीज हु आर गोइंग थ्रू दिस मेनोपॉज एंड मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स, उनकी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लाइक आई ऑलवेज ऑलरेडी सेड दैट एवरीबडी इज डेफिशियंट इन प्रोटीन, बट एसेंशियली इंडियन वुमेन फ्रॉम 35 to 45 to 50, आप मानेंगे नहीं, वो सड़क पे चल रही होती है उनका पाँव उड़ जाता है, उनका फ्रैक्चर हो जाता है, दैट्स हाउ पुअर बोन डेंसिटी दे हैव, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, उनकी बोन्स में छेद है, यू नो खाली है बोन्स, देयर इज नो बोन डेंसिटी, ऑन दैट देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर इज सो वीक, देयर इज नो मस्कुलर स्ट्रेंथ इन देयर बॉडीज बिकॉज एनर्जी ही नहीं है, वर्कआउट ही नहीं करते। वर्कआउट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि डाइट ही सफिशियंट नहीं है, कार्ब इंटेंसिव डाइट है, एनर्जी ही नहीं रहती है, और थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वी कैन नॉट सर्वाइव, जहाँ पेन है यहाँ पेन है। सो यू सी इट्स अ वीशियस साइकिल एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। मैं लौटती हूं
0: एक बार, डॉक्टर शिखा आपकी राय इस पर क्या है, क्योंकि देखिये बहुत से डॉक्टर्स हैं जो सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट स्पेशली अगर मैं कहूं तो उसको रिकमेंड नहीं करते हैं, और यहां हम कह रहे हैं कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले रहे हैं एक नॉर्मल प्रोटीन तो ठीक है, डाइटिशियन आप लोग सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं नॉर्मल डाइट में प्रोटीन कितना परसेंट होना चाहिए, ये भी बताते जाइएगा कि महिला और पुरुषों के लिए किस हिसाब से प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्स पर आपकी राय क्या है?
7: देखिए सप्लीमेंट्स पे आई थिंक जो मेरी राय वो बहुत सिंपल है कि नेचुरल फूड को कोई सप्लीमेंट बीट नहीं कर सकता। आप सप्लीमेंट में जितने भी इंडस्ट्री हो कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है, कन्वीनियंट प्रोटीन है, कॉन्सेंट्रेटेड और कन्वीनियंट जरूर है बट उसके साथ प्रिजर्वेटिव है, आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो वो सारी चीजों को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, मतलब हाँ कन्वीनियंट जरूर है, कॉन्सेंट्रेटेड जरूर है, बट अगर आप महीनों तक आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल जैसे चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव, तो वो भी आप साथ ले रहे हैं, तो इसलिए यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, मतलब इट्स नॉट लाइक अ रामबान कि आपका इट्स नॉट अ मैजिक बुलेट, नंबर वन। नंबर टू आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एज स्टेज पे लाइफ की बाकी वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब प्रेगनेंसी के दौरान है प्रोटीन के साथ साथ आपकी कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, जो सारे वाइटामिन है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो हाँ जरूर इस डब्बे में आपको केमिकल वाले जो है आर्टिफिशियल वाइटामिन मिलते हैं, बट आर द आर्टिफिशियल वाइटामिन अब्जॉर्ब एज इफेक्टिवली? नॉट एट ऑल। तो इसीलिए आपको एक गुड डाइट तो फॉलो करनी ही पड़ती है। अगेन मेनोपॉज में क्या होता है कि लेडीज की बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग कैल्शियम रिच फूड, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग, दे आर नॉट, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा बढ़ जाती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोल्यूशन देखें तो किसी एक डब्बे से, प्रोटीन के डब्बे से आपकी सारी हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं हो सकती, एंड दिस इज अ मिसकंसेप्शन जो प्रोटीन डब्बे वाले बेचने वाले आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। जो आपकी चॉइसेस हैं हेल्दी, जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे, आप कितने भी सप्लीमेंट खा लीजिए, आप कितना भी प्रोटीन पाउडर खाइए, कोई ज्यादा मेजोरिटी आपका चेंज नहीं होगा। हाँ 10-20% हो सकता है, जैसे जब हम When I was working as an allopath doctor, तो हम pregnant women को iron B complex देते थे, but that was just a very short period thing to get their hemoglobin up. But source of hemoglobin iron की capsule नहीं है, वो आपके healthy diet है। तो जब तक अब ये concept हम society में, schools में, colleges में लेके नहीं आएंगे, तब तक सप्लीमेंट वाली इंडस्ट्री सिर्फ हमारे में फियर डालेगी और कहेगी कि सारी सारी प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन है वो एक सप्लीमेंट है।
0: लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि जो डाइट हम लोग ले रहे हैं, जितनी भी चीजें जिसमें भी प्रोटीन है, अगर हम नेचुरल प्रोटीन की भी बात करें, चाहे वो एग हो या फिर पनीर हो या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही क्यों ना हो, वो कितने हेल्दी हैं? आजकल देखा जाए तो उसमें भी तो मिलावट बहुत ज्यादा है।
7: देखिए, जब आप नेचुरल फूड खाते हैं एटलीस्ट आपको वो दिखता है कि आप क्या खा रहे हैं। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप रॉ मटेरियल को जाके कौन चेक कर रहा है? अल्टीमेटली आप ये देखिए कि अगर आप, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ, टोमेटो केचप की इंडस्ट्री है, वो सबसे फ्रेशेस्ट हेल्दीस्ट टमाटर के नई केचप बनाती, वो खराब और पुराने टमाटर को मिला के उसमें चीनी डाल के प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर डाल के उसका केचप बनाती है। तो इंडस्ट्री हमेशा सस्ता सोल्यूशन ढूंढेगी पब्लिक के लिए ताकि उसमें उसका मुनाफा भी हो। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री में यूज होगा आपको प्रोटीन देने के लिए, तो वो गलत है। दैट इज नॉट रियली ट्रू। एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेस वो यूज करेंगे अच्छे और साइंटिफिक, बट रॉ मटेरियल वो आपको दें कि सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, दैट्स नॉट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स।
0: तो क्या दोनों का बैलेंस बना सकते हैं डॉक्टर शिखा?
7: एब्सोल्युटली। और आज की समय की मांग है, आई अंडरस्टैंड कि भाई लोगों के पास समय नहीं होता एंड दे वांट टू यूज सप्लीमेंट्स। आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज, बट आई एम सेइंग कि उसको आप एक लॉटरी की टिकट मत मानिए कि सिर्फ सप्लीमेंट खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेल्दी चॉइसेस आपको हमेशा लाइफ में करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट।
0: डॉक्टर जयंत, आप इस पर क्या कहेंगे? जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, कई लोगों को जिम इंस्ट्रक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, इस पर आपकी राय क्या है?
6: देखिए, जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया, तो मैं भी मतलब मोर और लेस वही एग्री करूंगा कि देखिए, देयर इज नथिंग लाइक नेचुरल यू नो प्रोटीन। जो भी ये रेडीमेड प्रोटीन पाउडर्स हैं, मोस्टली तो उसमें कई बार ना प्रोटीन, जैसे कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 100 ग्राम के पाउडर में देयर विल बी बेयरली 10 और 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ओके, तो यू एंड अप ईटिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन फॉर विच यू आर बेसिकली टेकिंग। अगर 100 ग्राम में मान लीजिए 70-80 ग्राम प्रोटीन हो तो समझ में आता है, आपने 100 ग्राम में सिर्फ 15 या 20 ग्राम प्रोटीन है तो इसका मतलब है कि बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है उसमें यू नो देयर कैन बी कार्ब्स, देयर कैन बी फैट, देयर कैन बी यू नो अदर थिंग्स, एंड देन वी आर नॉट श्योर अबाउट द एडल्ट्रेशन एंड अदर थिंग्स एंड हाउ गुड बैड दैट इज, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपनी प्रोडक्ट यू आर यूजिंग। तो हम लोग भी तभी रिकमेंड करते हैं जब हमें लगता है कि समबडी लिस्ट से, मैं तो कहूंगा कि मेरे पास पेशेंट्स ही आते हैं, कई बार प्रोटीन हमें देना पड़ता है उनको, अगर हमें लगे कि बहुत ज्यादा प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिटेड है, तो हमें उस कंडीशन में हम देते हैं कि जो एकदम ओरली बिल्कुल इंटेक नहीं है, एपेटाइट नहीं है, बिल्कुल ले नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से भी मैं भी एग्री करूंगा कि दिस कांट बी ए यू नो क्विक फिक्स सॉल्यूशन कि भाई मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, मैं खा लेता हूं, कुछ ले लेता हूं। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा 10 मिनट अपने लिए भी सोचना पड़ेगा। आई नो ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपने लिए भी थोड़ा सा 10 मिनट।
0: और वही जो डॉक्टर शिखा भी कह रही थी, हमें अपनी डाइट हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना होगा। बिल्कुल, असर इसका कितना सेहत पर होता है, क्या सही रेशो है प्रोटीन इनटेक की? मीना लाऊंगी आपके पास, ब्रेक ले रही हूँ छोटा सा, ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास आती हूँ, तमाम सवालों का जवाब इस ब्रेक के बाद।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: प्रोटीन ओवरडोज ना बन जाए सेहत पर बोझ, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स कितने कारगर होते हैं, क्या आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, सही मात्रा उसकी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। मीनल, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपकी राय इसको लेकर।
1: मैं बस ये बात बोल रही थी कि इंडिया में एवरीबॉडी इज वेरी कंफर्टेबल, सड़क के साइड में गोलगप्पे खाना, कुछ के खाना, कोई नहीं देख रहा कैसा पानी यूज हो रहा है, छोले भटूरे, कैसा पनीर बन रहा है, कहाँ से पनीर बन रहा है, उस पनीर में एक्चुअली कितना प्रोटीन है, कितना फैट जा रहा है, क्या क्वालिटी प्रोटीन है। हर कोई मोमोज खाएगा, मतलब हर कोई सब कुछ खा लेगा, लेकिन जहां पर आपकी प्रोटीन की बात होगी और एक छोटा सा डब्बा दिखाया जाएगा कि ये प्रोटीन है और इसको खाना है, देन एवरीबॉडी वुड बी लाइक, ओ माय गॉड, मेरी हेल्थ को तो नहीं कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा इसको खाने से। अरे आप मुझे ऐसा लगता है कि ये रोड साइड खाना और रोड साइड स्टॉल से खाकर हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी हाई है कि ये नॉर्मल है, प्रोटीन खाने से आप इतना घबरा रहे हैं, एंड इट इज अ सप्लीमेंट।
0: ठीक है, चलिए आप शुरू से इस बात की हिमायती रही है। मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं। शिखा जी, इसका जवाब आपको देना है, डॉक्टर साहब आपको भी देना है और कनिका आपको भी, लेकिन मीनल मैं आपसे पूछती हूं, अगर कोई इंसान वर्कआउट नहीं कर रहा है, पहली बात उसके लिए ये प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी है कि नहीं?
1: आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप खुद बताओ नवजोत, आपको ऐसा लगता है कि आपको बाल नहीं चाहिए या आपको स्किन नहीं चाहिए या आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए?
0: लेकिन जब हम

0: खाना खा रहा है, हु इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कितना कैसे उसकी डाइट में प्रोटीन जा रहा है, दे आर हार्डली कंज्यूमिंग 20 to 25 grams ऑफ प्रोटीन इन द होल डे. तो वही मैं बोल रही हूँ कि उस चीज को अगर आप सप्लीमेंट कर दें
1: ठीक है,
0: तो फिर आपको ये डॉक्टर्स और डाइटिशियंस की जरूरत नहीं रहेगी ना. आप वर्कआउट करेंगे, आपकी बॉडी में मसल ताकत रहेगी, आप अच्छा खाएंगे, तो आप द
1: लेकिन
0: होल
1: हमें
0: आइडिया
1: कौन सा सप्लीमेंट लेना है इसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, वो डॉक्टरी सलाह तो जरूरी है।
0: आप खुद स्टडी कर सकते हैं. और सबसे अच्छा वे है, आप कोई भी प्रोटीन जो उठा रहे हैं ना, उस प्रोटीन का आप इंडिपेंडेंट खुद एक लैब टेस्ट करवाइए. आपको ऐसा लगता है कि वो जो लोग मार्केट कर रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो चाहे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इंडिया में इतनी हजारों इंडिपेंडेंट लैब्स हैं. आप अपना प्रोटीन उसको खाने से पहले एक इंडिपेंडेंट टेस्ट करवा लीजिए, वो इतने से प्रोटीन से टेस्ट करके बता देंगे कि इसमें कितना प्रोटीन है. इट इज द बेस्ट थिंग जिसमें आप अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी नेचुरल डाइट के साथ खा सकते हैं. इट
1: ठीक है,
0: इज
1: कनिका,
0: ऑल
1: कनिका खन्ना।
2: मेरे अकॉर्डिंगली मैं प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज आई कंप्लीटली रिलाई ऑन फूड. डेफिनेटली मीनल जी ने जैसा कहा कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट आजकल एडल्ट्रेशन है पनीर में, इन चीजों में. बट वॉट वी डू इज, हम लोग घर के प्रोटीन नेचुरल कैसे बनाना है वो प्रेफर करना बताते हैं. इनफैक्ट आजकल बहुत सारे प्लांट प्रोटीन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, न्यूट्रिशनल ईस्ट जिसमें कोई मिलावट नहीं है, स्पाइरुलिना, मोरिंगा, ये सब में भी थोड़े थोड़े प्रोटीन है. और व्हेन वी आर कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, तो हमारे जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं प्रोटीन पाउडर की बात करूं, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दे टुक प्रोटीन पाउडर, उसके साथ साथ वो एग भी खा रहे होते हैं, चिकन भी खा रहे होते हैं, एंड फिर कभी कभी वो 1 स्कूप की जगह वो 1.5 स्कूप ले रहे होते हैं. तो देखा क्या गया है, रादर देन हैविंग, अगर उनकी रिक्वायरमेंट 80 ग्राम्स की है, दे आर कंज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन. उससे व्हेन वी चेक देयर किडनी रिपोर्ट्स तो पता चलता है किडनी में जो पैरामीटर्स है सब हेवायर है, क्रिएटिनिन इज अप, यूरिया इज अप, जीएफआर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो नीचे जा रहा है. तो बेसिकली कभी कभी ऐसा भी हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली हमें प्रोटीन पाउडर्स नहीं लेने चाहिए. जब अगर नीड है कि यू डोंट हैव टाइम टू मेक पनीर एट होम, यू डोंट हैव टाइम फॉर सो मेनी थिंग्स, तो आप छोटे पीरियड के लिए यू कैन टेक दोस प्रोटीन पाउडर, बट नॉट फॉर अ.
1: अब उसको लेना कैसे चाहिए जल्दी से, डॉक्टर शिखा आपके पास, एक तो मीनल की बात का जवाब रखिएगा और दूसरा ये मेरा सवाल अभी भी अधूरा है, महिला और पुरुषों दोनों में प्रोटीन रेशो कितना और कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, जैसे कि बहुत ही सिंपल जो फॉर्मूला होता है कि 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, तो अगर कोई जेंट्स है तो उनका 80 किलो है तो ऑटोमेटिकली उनका चेंज हो जाता है, कोई महिला है उनके 50 किलो का वेट है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो
1: जाता
3: है.
1: और उसमें एज मैटर करता है या नहीं?
3: जी, सर्टेन सिचुएशंस में, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उस समय प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ग्रोइंग टीनेजर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और फिर एज के साथ आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है. सो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन हैविंग अ मोर बैलेंस्ड रेंज ऑफ प्रोटीन, क्योंकि आपकी जो अब्जॉर्प्शन है एज के साथ और गट इश्यूज के साथ उसमें प्रॉब्लम आती है. हैविंग सेड दैट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि दो चीजें सिर्फ, पहली बात कि जब ये प्रोटीन इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई थी क्या हम सब बीमार थे, क्या लोगों की बॉडी मसल बिल्डिंग नहीं होती थी, क्या लोग पहलवानी नहीं करते थे, क्या मसल स्ट्रेंथ नहीं थी? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक मिरेकल, दिस इज नॉट अ मिरेकल विच हैज कम, कि ये इस मिरेकल के बिना काम नहीं होगा. सेकेंड थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑल्सो कि जब अमेरिका में वेट लॉस इंडस्ट्री नहीं थी तब वहां पे ओबेसिटी सिर्फ 25% थी. जब वेट लॉस इंडस्ट्री आई और लो शुगर फूड्स आए और शुगर अल्टरनेटिव्स आए, तो उन्होंने बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के बजाय एक्चुअली उन्होंने केमिकल बेस्ड फूड्स की तरफ जाना शुरू किया, और आज की डेट में अमेरिका में 60% ओबेसिटी हो गई है. तो क्या हम इसका क्या समझे? समझने का ये तरीका है कि आप सिर्फ फूड को देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे बॉडी का अब्सॉर्प्शन क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी एज के साथ क्या क्या चाहती है, और उसके साथ साथ विटामिंस, मिनरल्स, फाइबर, इतनी सारी चीजें होती हैं, सिर्फ एक चीज से बॉडी नहीं बनती है. तो अगर हम अपने पेशेंट्स को या अपने जो सिटीजन्स हैं उनको गुड फूड चॉइसेस सिखाएं वो बेटर है, रादर देन कि हम उनको एक एक मैजिक सिखा दें कि भाई आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ सिर्फ है कि आप प्रोटीन खाइए. मुझे सिर्फ इससे प्रॉब्लम है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो अगर हम करेक्ट एजुकेशन एंड उस तरह से जाएंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अदरवाइज जैसे अमेरिका की इंडस्ट्री ने किया है कि उन्होंने जो 20 जो 20 to 24% ओबेसिटी थी जब

0: वेट लॉस इंडस्ट्री शुरू हुई और आज इंडस्ट्री ने उसको 60% पहुंचा दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग केमिकल्स इन द फूड चेन एंड ऑल्टरनेटिव, जैसे इतने सारे जो आप सो कॉल्ड लो शुगर लो फैट लो कार्ब ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, तो दे आर मोर हार्मफुल देन गुड बिकॉज ऑफ देयर अब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम्स.
1: बिल्कुल. लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह भी आता है कि प्रोटीन इनटेक जो हम ले रहे हैं वो कितना कब किस फॉर्म में होना चाहिए. डॉक्टर जयंत कुमार अगर थोड़ा सा आप बता पाए. और एक सवाल इसी से रिलेटेड और है, जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं क्या सप्लीमेंट्स हमारी किडनी लिवर को डैमेज करते हैं अगर हम रेगुलरली उसको एक साल दो साल लगातार लेते रहे, और क्या ये ऑप्शन हो सकता है कि हम दो महीने तीन महीने लें फिर उसके बाद दो महीने हम ब्रेक ले लें और उसके बाद वापस से शुरू करें.
2: हाँ, ले देखिए, मतलब बेसिक बॉटम लाइन तो ये है कि जितना भी प्रोसेस्ड फूड है या जितने भी रेडीमेड प्रोटीन पाउडर्स हैं, जितना कम कंज्यूम किया जाए, जितना कम लिया जाए बेटर है. जितना हम नेचुरल तरीके से हमारे जो भी यू नो रिप्लेसमेंट्स हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उसको हम अगर उसको फुलफिल करें बाय यू नो नेचुरल वेज, तो जैसे रफली 1 gram per kilo इज द रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक एक्सेप्ट इन चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जैसे मैम ने बताया. तो उसको जितना हो सके हम नेचुरल तरीके से करना चाहिए. रफली 100 ग्राम दाल विल बी कंटेनिंग अराउंड 20-25 ग्राम ऑफ प्रोटीन. सोया में थोड़ा ज़्यादा रहता है, अराउंड 35-40 ग्राम ऑफ प्रोटीन. रफली आप अंदाजन अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, 50-55-60 किलो के हैं तो आपको रफली 60 ग्राम चाहिए. आप 100 ग्राम चिकन लेते हैं तो उसमें भी अराउंड 25-35 ग्राम तक होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना फैट है उसमें और नहीं है. एग में, एक एग वाइट में अराउंड 5 gram प्रोटीन होता है. तो रफली आप यू कैन मेक आउट. एंड देखा ये क्या है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर लिटिल बेटर देन द एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स. एंड सी फूड, इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग नॉन वेज, देन सी फूड एंड फूड रिच इन फिश विल बी बेटर बिकॉज दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड. और उसको डिफरेंट आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके अपने टेस्ट और आपके जो भी प्रेफरेंसेस है फूड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. डॉक्टर शिखा, बच्चों के लिए प्रोटीन डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
0: बच्चों के लिए देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि उनकी बॉडी में मसल स्ट्रेंथ हो, उनकी बोन स्ट्रेंथ हो, सिर्फ प्रोटीन खिलाने से नहीं आएगा, उनको खूब एक्सरसाइज करानी चाहिए, उनको उनको दौड़ना भागना चाहिए. बिकॉज जब आपकी बॉडी में आप दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं तब हंगर क्रिएट होता है फॉर अब्सॉर्बिंग प्रोटीन. अगर आप सिर्फ बैठ बैठ के प्रोटीन खा रहे हैं इट विल नॉट हेल्प इन मसल बिल्डिंग और टिश्यू बिल्डिंग, नंबर वन. नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा पैकेट खोल के चीजें खाते हैं तो उनका जो गट बायोम है बहुत ज्यादा डिरेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा. और आप ये देखिए कि उनकी डायबिटीज, यंग डायबिटीज हो रही है, इन्फ्लेमेशन, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? बिकॉज वो पैकेट खोल के खाते हैं. सो मच सो कि जो सो कॉल्ड हम दूध में ये पाउडर मिला लो तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी, उसमें चीनी है. तो हमें मदर्स को जो है समझाने के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी प्रोटीन देना चाहती हैं तो आपको रेसिपीज में, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर आप वेजिटेरियन है तो आप डेयरी की रेसिपीज आप उसमें से आप जैसे पनीर घर में बना रही हैं वो आप बना सकती हैं, जैसे हरी मटर है जिसका पी प्रोटीन बनता है वो आप ऐड करें. अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको मूंगफली आप दे सकते हैं. इसी तरीके से सोया मिल्क है, या अगर आप टोफू बना रहे हैं, या अगर आप सोया के आजकल ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, तो इस तरह की जो डिशेज हैं जैसे आप राजमा है, लोभिया है, इसके सैलड्स बना सकते हैं, इसके अलग अलग वेरियस फॉर्मेट बना सकते हैं. बच्चों को इंटरेस्टिंग फूड चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं है कि आप उनको किस तरीके से मतलब उसका जो सोर्स है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उन्हें बस इंटरेस्टिंग फूड चाहिए होता है. और तभी बच्चे दाल रोटी से भागते हैं बिकॉज वो बोर हो जाते हैं उस चीज को खा के. तो थोड़ा सा वैरायटी अगर लाएंगी, रेसिपीज में चेंज लाएंगी तो उससे बहुत फायदा होता है. अगेन आई वुड से जैसे पुराने समय में आई वुड से कि बच्चों को एक स्नैक क्या दिया जाता था कि जैसे वो खेल के आ रहे हैं उसमें चना होता था, मुरमुरा होता था, मूंगफली होती थी. आई एम नॉट सेइंग आज के बच्चे खाएंगे, बट लेट्स क्रिएट अ हेल्दियर एंड टेस्टियर ऑप्शन जो कि आज के बच्चों को अच्छा लगे एंड दे डोंट हैव टू गो टू अ स्नैक कबर्ड एंड ओपन अ प्लास्टिक एंड देन ईट फ्रॉम दैट प्लास्टिक बैग.
1: पैकेज्ड फूड सबसे ज्यादा हानिकारक है. बिल्कुल. एक बार कनिका जी आपके पास आना चाहूंगी. जो लोग सिटिंग जॉब में है, ज्यादा उनका फिजिकल वर्कआउट नहीं होता, उनके लिए प्रोटीन डाइट कैसी होनी चाहिए?
3: डेफिनेटली बिकॉज देर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत हाई प्रोटीन तो नहीं लेना है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है जो कि अकॉर्डिंग टू NIN सजेस्टेड है 0.8 gram to 1 gram per kg एडल्ट बॉडी वेट. मॉर्निंग से उनका जो प्रोटीन का रूटीन है वो स्टार्ट कर सकते हैं स्प्राउट्स और जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं, एंड अपना थोड़ा सा हर मील में प्रोटीन ऐड कर ले, सो दैट उनको ओवरलोड नहीं हो एक ही बार में प्रोटीन खाने का. सो वो भी अफेक्ट करता है किडनी पे, तो उस प्रोटीन को वो बाइफर्केट कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऐड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स, थोड़ा सा टोफू ऐड कर लिया, मिड मील में जो स्नैकिंग है उसमें एडमामी बीन्स आजकल वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन रोस्टेड फॉर्म में आ रहे हैं वो ऐड कर लिए, लंच में दाल के फॉर्म में हम करी रहे हैं, डिनर में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ वाटरमेलन सीड्स पनीर, नॉर्मल जो घर पे पनीर बना रहे हैं काउ का, या अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले लिया, और बिल्कुल वेजिटेरियन है तो पीस में जो प्रोटीन होता है वो भी अच्छा होता है 5 ग्राम, सिमिलरली ब्रोकली में भी 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो वो सारी वेजिटेबल्स को कंबाइन करके और साथ में थोड़ा सा टोफू पनीर वाटरमेलन सीड्स पनीर और न्यूट्रिशनल ईस्ट ये सब ऐड कर सकते हैं, बस उसको बाइफर्केट करके.
1: बिल्कुल मीनल, मसल मास मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की क्या भूमिका है?
4: सो यहाँ इट्स एक्चुअली टू वे फैक्टर विच वर्क्स, वन इज योर वर्कआउट. सो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स में स्लाइट रिपेयर एंड यू नो उसकी पोजीशन क्रिएट होती है, थोड़ा वियर एंड टियर होता है. जब आप उसके बाद एक अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो वो मसल प्रोग्रेसिव ओवरलोड के कारण अच्छा और बड़े साइज में बड़ा बनता है. So that's the whole process of workout muscle, workout muscle. ठीक है, अब वो लोग जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या सिंपल उनकी यू नो लाइफ स्टाइल ऐसा है कि पूरे दिन में कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली अगर आप 60 किलो के हैं तो आपकी बॉडी को एक नॉर्मल नॉर्मल ग्रोथ हॉर्मोन्स के लिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, आपके जनरल वियर एंड टियर के लिए भी 60 kg बॉडी के लिए 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए. और ऑब्वियसली अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट में नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह उठ के अपने घर वाला पनीर भी बनाए, अपने घर में ये जो सब कुछ बोला गया वो सब बनाए, तो प्लीज सप्लीमेंट योर डाइट विद द राइट सोर्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन विच यू वॉन्ट टू टेक. एंड आई बिलीव लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि प्रोटीन पाउडर्स, बट प्लांट प्रोटीन पाउडर्स, तो जो प्लांट प्रोटीन एक प्रोफाइल है पाउडर का, वो इन इटसेल्फ कंप्लीट नहीं है. प्लांट प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट ए कंप्लीट प्रोटीन पाउडर, तो आप वो मत लीजिए, क्योंकि एक प्रोटीन पाउडर तो आप ले भी रहे हैं ये सोच के कि वो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा, ऊपर से वो इटसेल्फ कंप्लीट प्रोफाइल है ही नहीं. तो इससे तो बहुत अच्छा है आप अपने नॉर्मल सोर्सेज से प्रोटीन खत्म पूरा कीजिए, 4-5 चीजों को ऐड करके कीजिए. आई एम नॉट अगेंस्ट कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है या आपको नेचुरल प्रोटीन नहीं खाना, बट आई एम ट्राइंग टू पास ऑन इज कि अगर आप इतना प्रेप मील प्रेप करके हर दिन इतने अपनी पूरी जॉब के साथ अपना प्रोटीन प्रोफाइल नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो एक स्कूप प्रोटीन खाने से कोई हार्म नहीं होने वाला. इट इज रेदर जस्ट अ सप्लीमेंट टू योर वट एवर यू आर एबल टू ऐड टू योर नॉर्मल डाइट. तो ऑब्वियसली आपके मसल वियर एंड टियर के लिए प्रोटीन एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है, लेकिन आई वुड से कि उसके साथ आपका वर्कआउट भी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन खा.
1: चलते चलते जल्दी से एक सजेशन डॉक्टर शिखा, पहले आपसे शुरू करूंगी. डाइट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जो चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्या मानती है एक्सपर्ट ओपिनियन कितना जरूरी रहता है इसमें?
0: आई वुड से एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि एज डॉक्टर्स हम मल्टीविटामिन्स या आयरन कंटिन्यूसली किसी पेशेंट को नहीं देते, उसी तरीके से कंटिन्यूस सप्लीमेंट इंडिकेशन इज नॉट गुड. आप गैप्स जरूर दें, और जो भी सप्लीमेंट लेना है एक बार अब आप किसी प्रोफेशनल से बात करें, पे दैट फीस, इट विल रियली हेल्प यू. एक बार आप कंसल्ट करके बनवाएं अपना जो भी आप बनवाना चाह रहे हैं, एंड देन चूज योर सप्लीमेंट.
1: डॉक्टर जयंत, इस पर आप क्या कहेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन कितना जरूरी है?
2: देखिए, एक्सपर्ट ओपिनियन तो बहुत ज्यादा जरूरी है. टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग डील करते हैं सिर्फ पेशेंट्स से, और इनफैक्ट मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं दे आर मोस्टली एडवांस क्रोनिक किडनी डिजीज, तो उसमें तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन की जरूरत पड़ती है. तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन हम तभी करते हैं जब पेशेंट एकदम ही हाइपो एल्ब्यूमिनिक है, एकदम एल्ब्यूमिन कम हो जाता है शरीर में, स्वेलिंग चालू हो जाती है, उस समय हम प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देते हैं मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इधर सम पाउडर और समथिंग. पर जब तक ओरली समबडी इज टेकिंग ओरली, मैं तो सबको यही एनकरेज करता हूँ कि ओरली लें, एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन के जो भी मोस्टली जितने भी स्टडीज हुई हैं सबका ये कहना है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज बेटर देन एनिमल बेस्ड प्रोटीन. ऑब्वियसली मैम का जैसे कहना था कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें, प्लांट्स में थोड़े से एनिमल में वो ज्यादा एनिमल प्रोटीन में ज्यादा पाए जाते हैं, पर देर आर लॉट ऑफ स्टडीज इन विच दे से कि नो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज ऑल्सो गुड इनफ. तो मेरे हिसाब से जितना नेचुरल, जितना हम होममेड और जितना वो सब रखें उतना बेटर है। एंड एक चीज और मैं कहूंगा एज अ किडनी स्पेशलिस्ट की प्रोटीन के साथ साथ हमेशा हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी अच्छे से पिए क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली नहीं तो किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है, क्योंकि जैसे प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड ये तो बढ़ना ही है क्योंकि दे आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम लोग बोलते हैं। तो एक बार वो एक्यूमुलेट हो जाए तो थोड़ा डाइल्यूट हो जाते हैं अगर आप अच्छे से पानी पीते हो, एंड देन दैट कैन बी इजीली फिल्टर बाय द किडनी।
1: बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का यहाँ पर आने के लिए और अपनी अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमरनाथ यात्रा के साथ अब बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 16 अगस्त को इस यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा इंतजाम किया है। पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है।

0: भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है घाटियां। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू पवित्र गुफा की यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, भक्तों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा में जुलाई और अगस्त के महीने में मौसम एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। खराब मौसम की वजह से कई बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन मौसम ठीक होते ही ये यात्रा फिर शुरू हो जाती है और भक्तों का जोश बरकरार रहता है। अमरनाथ यात्रा के उत्साह के साथ ही अब बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। इस महीने की 16 तारीख को बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा। इस यात्रा के लिए रजौरी और पुंछ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
1: बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, वो अगर देखें जो हमारा जो दो डिस्ट्रिक्ट है रजौरी पुंछ, ये सुंदरबनी से शुरू होके तो बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा जो है वो मंडी में ख़त्म होती है। तो पूरे रूट में हमारी डिप्लॉयमेंट रहती है, जो हाई जो रिजेज हैं वहाँ पे डोमिनेशन प्रॉपर होती है, जहाँ पे लंगर लगते हैं, जहाँ पे लॉजमेंट सेंटर्स हैं, तो हर जगह पे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है, सीआरपी की रहती है, आर्मी की रहती है, तो सभी फोर्सेज जो हैं मिलजुल के कोऑर्डिनेशन में रह के पूरी अच्छे ढंग से जो सिक्योरिटी है वो हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनको देते हैं।
0: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। यात्रा मार्ग पर एसओजी और सेना के जवानों की भी तैनाती होगी। संवेदनशील इलाकों में व्यापक स्तर पर नाकेबंदी रहेगी। यात्रा रूट पर गश्त और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ प्राचीर शिव मंदिर में दर्शन को अमरनाथ यात्रा जितना ही पवित्र माना जाता है, ऐसे भी मान्यता है कि बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के साथ ही अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होती है। हर साल की तरह इस साल भी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि जिस तरह से सुरक्षित वातावरण में अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसी तरह बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी शांतिपूर्ण माहौल में पूरी सहूलियत के साथ पूरी हो। जम्मू से राही कपूर, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज चाय पर चर्चा में बात उस जीत की करेंगे जिसमें महिलाओं का पंच है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार एक नहीं बल्कि 5 भारतीय महिला बॉक्सर्स ने कैसे वो गोल्डन गर्ल्स बनी हैं, खुद उन्हीं की जबानी आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ बॉक्सिंग की नर्सरी कहे जाने वाले करनाल भी आपको लिए चलेंगे।
5: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आपको आज हम लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के डोमनगंज रेलवे स्टेशन भी, कैसे ये स्टेशन महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और साथ ही उत्तराखंड के एक छोटे से ट्राइबल गांव से कैसे एक बच्चा अब नॉर्थ पोल का सफर तय करेगा, इसकी भी पूरी कहानी दिखाएंगे।
6: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। तस्वीर बाढ़ बारिश से पैदा हो रही परेशानी और उससे राहत दिलाने वाले अभियानों की भी करेंगे, साथ ही एक ऐसे टीचर का कमाल भी दिखाएंगे जिन्होंने महज 9.15 सेकंड्स में ए टू जेड तक के सभी बड़े अक्षर लिखकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है और वो बन गए हैं दुनिया के सबसे तेज इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखने वाले शख्स। इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा। मुंगेर में 54 किलो चांदी से सजी 54 फीट की कांवड़ बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहा शिव भक्तों का जत्था। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास, ट्रस्ट ने शुरू की नई व्यवस्था। मंगला श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले, शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। पश्चिम बंगाल से सामने आया भावुक कर देने वाला वीडियो। पश्चिम वर्धमान जिले के स्कूल टीचर की ट्रांसफर की खबर सुनते ही फूट फूट कर रो पड़े बच्चे, शिक्षक की विदाई का वीडियो वायरल। वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर बड़ा ऐलान, अगले साल 21 फरवरी से 23 मार्च तक खेला जाएगा क्वालिफायर, अभी मेजबानी पर नहीं हुआ फैसला। फूलों की सीढ़ीनुमा वादियों में गूंजा चीनी संगीत, गुइझोऊ में फूलों के खेतों को प्राकृतिक मंच में बदला गया, संगीत और प्रकृति का अनूठा संगम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
5: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात हमारी छोरियों से। हालांकि हम बहुत पहले से बोलते आए हैं और आमिर खान भी बोल गए हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, तो दरअसल खबर भी वही आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार भारत ने एक ही स्पोर्टिंग इवेंट यानी कि बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रच दिया और इस ऐतिहासिक कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत बनी हमारी महिला बॉक्सर्स। मतलब कमाल की बात
1: मुझे
5: है।
1: मुझे आपने पंच वाली लाइन पढ़ी ना जब महिला बॉक्सर्स, तो मुझे वो लाइन याद आ गई, ऐसी धाकड़ है।
6: हाँ। लेकिन उस मूवी से हो ना हो बॉक्सर्स के लिए ना जो महिला बॉक्सर्स हैं उनकी छवि भी ना और ज्यादा वो हो गई। और जब महिलाएं
5: हालांकि उसमें रेसलिंग रेसलिंग दिखाया गया करते हैं, उसमें रेसलिंग था, इस बार जो है बॉक्सिंग में हमारी लड़कियों ने महिला आगे बढ़ी है
6: बिल्कुल।
1: लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए भाई, जब वो डायलॉग छोरी छोरों से कम है के वो हरियाणा का है और इस बार हरियाणा ने ही कमाल कर दिया है।
6: हरियाणा बारी कमाल करता है
1: हर बार। इसको तो मतलब चर्चा भी हो रही थी ना कि एक स्पोर्ट्स स्टेट के तौर पर इसको डिक्लेयर ही
5: कर दिया जाए। और बाकी वो लड़कियां जिस तरह से कर रही हैं, दिन रात वहां पर मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है अखाड़े में, वो कम बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था हरियाणा में ही कि सिर्फ लड़के ही आपको दिखते थे, नहीं अगर वहां से स्टोरीज आती थी तो।
1: लेकिन ये बहुत पुरानी मुझे लग रहा है बात हो गई है, रेशो अनुपात कम था। लेकिन फिर उसके बाद समय बदला। मुझे याद है कि मैं लोकल गेम्स कवर करने के लिए गई थी लास्ट ईयर, हम लोगों ने यहाँ दिखाया भी थे किला रायपुर गेम्स, वहां जितने हरियाणा पंजाब के जो लोकल एथलीट्स होते हैं ना वो आते हैं। और आप यकीन मानिए ऐसा नहीं कि कॉमन किसी अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, वो टेंथ करती हैं उसके बाद उनके पेरेंट्स उनको एकेडमीज में डाल देते हैं और वो बच्चियां 1 महीने 2 महीने बाद आती हैं और वो बच्चियां दिन रात उनकी ट्रेनिंग वहां पर चलती रहती है। और आप मानेंगे नहीं सुबह उनकी डाइट क्या होती है, उनको हर दिन सुबह एक डाइट मिलती है, बॉयल्ड चने मिलते हैं और साथ में उनको दलिया मिलता है और हर दिन उनको वही खाना होता है।
6: मतलब देसी खाना ही,
1: बिल्कुल शुद्ध देसी खाना, जो हमने एक्चुअली देखा था ना कि आमिर खान कहते हैं कि गोलगप्पे जितने खाने खा लो उसके बाद नहीं मिलेंगे, वो सही में मैंने उनकी डाइट पूछी और वो क्या कमाल का खेलती है, सब हरियाणा की लड़कियां थी।
5: बिल्कुल, तो आपको हम बता दें कि इतना आसान नहीं होता इस मुकाम तक पहुंचना, तो हमारी बेटियां वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं और इन्होंने इसीलिए आज दुनिया में भारत का परचम जो है वो लहराया है।
6: बिल्कुल, देखिए भारतीय महिला मुक्केबाजों ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मेडल अपने नाम किए हैं जिनमें से 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं। जीत के बाद भारत की इन गोल्डन गर्ल्स ने GNT से खास बातचीत की, हमसे अपनी मेहनत संघर्ष और इस यादगार जीत के पीछे की कहानी साझा की।
8: फॉर इंडिया इन CWG 2026 इन ग्लासगो in boxing, not easy, we've often heard it from men getting us boxing medals, 5 young women. Sakshi, main aapse sabse pehle shuru karti hu, aapke liye isliye easy nahi tha kyunki jab main research kar rahi thi mujhe pata chala aapko kitna manage karna padta hai jab in terms of your own weight aur jab dusron se bhi competition karna padta hai, sabse pehle confidence kaise rehta hai ek young ladki mein jo kehti hai boxing bhi karni hai, dusron ko defeat bhi karna hai aur apna confidence high rakhna hai?
9: जी, मैंने पहले मैं 54 kg खेलती थी, तो भी मैंने कट करके 51 में खेल रही हूँ मैं, तो एक यही स्ट्रगल है कि वेट को मेंटेन करके रखना, भूखे प्यासे, मतलब अगले दिन फाइट होती है तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, उससे पहले वाली जो दिन होता है, फिर पूरी रात प्यासा रहना पड़ता है और फिर मॉर्निंग में बाउट हम खेलते हैं और उसके बाद फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रेशर था, एक जो हम खेलने जाते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग होता है।
8: जैस्मिन का बहुत इंटरेस्टिंग है, जैस्मिन 40 डेज पहले आई थिंक जो बाउट के आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो क्या आपको एक पॉइंट पे लगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो गया हाथ से?
9: मैम मेरी तबीयत मतलब 20-25 दिन तक ऐसे खराब कंटिन्यू चल रही,
8: बट क्या हुआ था मतलब कि
9: स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल रहा था, डेली फीवर आ रहा है 102-103 और टेबलेट ले रहे हैं, टेबलेट लेके ठीक हो जा रहा है, फिर 2-3 घंटे असर है जो टेबलेट का ठीक है, वापस फिर से ऐसे ही आ जा रहा है, तो 1 वीक तो हमने उसी में निकाल दिया कि चलो ठीक है ठीक है। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है, फिर मतलब हम ये कोशिश कर रहे थे सभी डॉक्टर्स की हो क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली है क्या,
8: फिर कैसे कैसे टीम ने
9: हमने मतलब इसी में 20-25 दिन ऐसे ही निकल गए ऐसे ऐसे, फिर हमने हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया अच्छे से और फिर वहां पे एक टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
8: प्रिया, आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया और कैसे अपने आप को कॉन्स्टेंटली आप बूस्ट करते रहे कि जहां लेजेंड्स हैं हमारे, मुझे अपना भी नाम उसमें दर्ज करना है? कौन सी एज में स्टार्ट किया आपने प्रिया, और कब आपको लगा कि अब मुझे भी लेजेंड्स में अपना जो है नाम दर्ज करना है?
10: मैंने 10 साल की एज में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, तो उस समय मैं बहुत शरारती थी, तो ऐसे होता था कि कोई गेम कर ले, मेरे घर को मुझे गेम्स में डाल दिया, शरारती है।
8: तो गेम्स तो बहुत थी, बॉक्सिंग में कहाँ से आ गई?
10: तो लड़ाई तो बॉक्सिंग में होती है।
8: हाँ, उसका जोश था,
10: उसका जोश था। फिर बाद में ऐसे ही विजेंदर बॉक्सर हैं, उनका नाम सुनने में आया कि वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि हमें विदेश के लिए मेडल लेकर आना।
8: वेल डन अरुंधति, आप तो कोटा से आ रहे हो, यू शुड हैव बीन डूइंग एन आईआईटी और सम इंजीनियरिंग कोर्स और समथिंग एल्स, या कोचिंग सेंटर में स्क्रू आप लगे हुए होते। व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे हटना है बाबा मम्मी, मुझे कुछ और करना है? और प्रॉब्लम हुई क्या उसमें?
11: नहीं, सेम था कि स्कूल में जैसे बॉयज को साथ लड़ाई करना, पीट के आना, और फिर प्रिंसिपल का घर पे फोन आना कि वी आर सस्पेंडेड फॉर वन वीक बिकॉज ये बहुत मस्ती करती है। तो पापा तो चाहते ही थे कि हाँ आईआईटी करूँ, लेकिन फिर मेरा जो नेचर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है, चूज अ सोलो गेम वे यू कैन परफॉर्म बाय योरसेल्फ। तो फिर उन्होंने गेम बताया दो तीन, जिसमें मुझे बॉक्सिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा सिर्फ सुनने में, और उसी की वजह से।
8: प्रीति, ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस आप पांचों में मैं देख रही हूँ, 2024 में आपकी भी तबियत बहुत खराब हुई थी, कुछ इवेंट्स भी आपने मिस किए थे, तो जब दूसरे प्लेयर्स को आप देखते हो वो इवेंट्स मिस हो, वो जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, कैसे अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन कहता है कि नहीं मैं बाउंस बैक करूंगी?
12: इट्स डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग रहता है, कोई भी फेज, वो इंजरी फेज है या हम बीमार हैं, जस्ट बिफोर कॉम्पिटिशन और इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जाने से पहले अगर हम अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है। बट आई थिंक मेंटली हमें उस चीज को ज्यादा कवर अप करना चाहिए उस टाइम पे। अगर हम उन चीजों को मेंटली ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को और भी ज्यादा स्ट्रोंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लेते हैं फिजिकली एट द एंड। और ओलंपिक में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं थोड़ा बीमार थी, बट मेंटली मैं अपना पूरा ट्रेनिंग कर रही थी।
8: गए थे?
12: यस, डेफिनेटली।
8: क्या वो मोमेंट जो होता है जब आपको पता है मैं जीत गई हूँ, ये गोल्ड मिल गया मुझे, वो मोमेंट कैसा था? वो क्या आप उसमें मतलब खुद कूदते हो या आपको रिस्ट्रेन करना होता है कि नहीं कीप योरसेल्फ काम, अनाउंस होने दो?
11: रैंडम इमोशंस निकलता है, मतलब खुद भी नहीं पता होता है कि अभी कैसा इमोशन निकलने वाला है, अपने आप आ जाता है।
8: तो उसी इमोशन के साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है अब, ठीक है? अब मैं भी क्योंकि लोगों को बोलूं, आई मेट द गोल्डन बॉक्सर गर्ल्स, कोई मुझे अपना फेवरेट पंच थोड़ा टीच करेगा, कौन करेगा? अरुंधति, आप? अरुंधति कम, लेट्स, जो भी आपका फेवरेट पंच हो वो मुझे आप बताओ। एम आई होल्डिंग इट राइट?
11: ठीक है, लेफ्ट हुक,
8: लेफ्ट हुक
11: ऑन द जो।
8: तो अगर मुझे सेल्फ डिफेंस करना है, लड़कियां देख रही हैं कोई लड़का ज्यादा स्मार्ट बन रहा है मेरे साथ, तो मुझे उसको
11: ऐसे टच करेगा, हाँ, के लेफ्ट हुक मारो,
8: तो लेफ्ट हुक ऐसे
11: ऐसे
8: ऐसे,
11: हाँ,
8: ओके,
11: पूरा हिल जाएगा वो,
8: पूरा हिल जाएगा। और कहीं, और कहीं मारने, स्टमक
11: मार सकते हो, अपर कट
8: ऐसे,
11: हाँ,
8: लाइक दिस
11: ऊपर उठाते हुए
8: रिब केज पे, ओके। एंड जो आप ये सब, ये तो लेग्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, ओनली अपर बॉडी, सो दिस इज ये पार्ट है। एंड नोज, अगर नोज तोड़नी है तो
11: नोज तोड़नी है, स्ट्रेट आप मारो,
8: स्ट्रेट, कैन यू जस्ट शो इट टू मी विदाउट हिटिंग मी?
11: यस, ओके, हुक और दिस।
8: सो इज इट द राइट हैंड और द लेफ्ट हैंड, कौन सा पंच? इट्स माय चॉइस। थैंक यू वेरी मच गोल्डन गर्ल्स, एंड दे हैव शोन अस गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
1: तो कमाल कर दिया वैसे हमारी छोरियों ने। तो बॉक्सिंग की दुनिया में अगर कोई शहर मुक्केबाजों का सबसे बड़ा सपना माना जाता है तो वो है लास वेगास, जहां हर चैंपियन अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन हर बड़ा चैंपियन किसी बड़ी रिंग से नहीं बल्कि एक छोटी सी बॉक्सिंग एकेडमी से निकलता है, जहां पर जीत का पहला पंच सीखा जाता है। और ऐसी ही एक बॉक्सिंग नर्सरी है करनाल।
13: बिल्कुल, आपको बता दें आज गुड न्यूज टुडे पर हम आपको करनाल की उसी बॉक्सिंग नर्सरी की सैर कराएंगे जहां पसीना बहाकर तैयार हो रहे हैं आने वाले सितारे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बॉक्सिंग की नर्सरी कहे जाने वाले करनाल।
14: बॉक्सिंग की दुनिया में लास वेगास को चैंपियंस की धरती कहा जाता है, हर मुक्केबाज के सबसे बड़े सपने की मंजिल माना जाता है, जहां दुनिया के महानतम चैंपियन अपनी पहचान बनाते हैं और इतिहास रचते हैं। ये सच है कि हर विश्व विजेता की शुरुआत किसी छोटे से बॉक्सिंग रिंग से होती है। करनाल की ये रिंग भी ऐसे ही बड़े सपनों को आकार दे रही है। पंचिंग बैग पर लगातार पड़ते मुक्के, सबका बैलेंस और आंखों में जीत का चुनौत, ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि भारत के अगले चैंपियनों की तैयारी है। हर मुक्का एक सपना है, हर पसीने की बूंद देश के नाम है। हरियाणा के करनाल में हर सुबह की शुरुआत देश के लिए मेडल लाने के संकल्प के साथ होती है और युवा बॉक्सर हर दिन इसी जज्बे के साथ रिंग में उतरते हैं।
15: अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें देन बॉक्सिंग इजी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बट फिर उसके बाद आपको इजी लगेगी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें।
14: इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा साफ देखने को मिला। सबसे ज्यादा स्वर्णिम सफलता मुक्केबाजों के हिस्से आई। अब इसी जीत की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी जारी है। करनाल की बॉक्सिंग रिंग में रोज पसीना बहाती ये बेटियां आने वाले वर्षों में भारत के लिए नए पदक जीतने का सपना संजोए हुए हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन और बुलंद हौसलों के साथ ये हर दिन खुद को तराश रही है।
15: काफी हद तक अच्छे मतलब प्लेयर्स निकले हैं और सारा कुछ अच्छा रहा और मैं अपना भविष्य यही देखती हूँ कि मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूँगी।
14: करनाल की इस बॉक्सिंग रिंग तक पहुँचने के लिए कई खिलाड़ी रोज कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। कुछ तो सुबह और शाम दोनों वक्त लंबी दूरी तय करके यहाँ अभ्यास के लिए पहुँचते हैं। पढ़ाई और प्रैक्टिस के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता लेकिन इन युवा मुक्केबाजों के हौसले हर चुनौती पर भारी पड़ते हैं।
15: मैं चिड़ाव गांव से आती हूँ, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सुबह और शाम अप डाउन करती हूँ। बॉक्सिंग में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है, बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है।
14: अनुशासन के साथ सबसे जरूरी होती है सही कोचिंग जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वजह है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी बॉक्सिंग में रुझान बढ़ता जा रहा है।
16: लड़कियां भी बहुत ज्यादा आ रही है और करीबन आप मान के चलिए 15 किलोमीटर 20 और 25 किलोमीटर से लड़कियां आ रही है और सुबह शाम पेरेंट्स भी इनके साथ ही आ रहे हैं। सुबह 4-4:30 बजे उठ के 5 बजे ग्राउंड टाइम है आ रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, लेट तक 8-9-10-10 बजे तक घर पहुंच रहे हैं और काफी अच्छा रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
14: कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग रिंग में इस बार हरियाणा की बेटियों का ऐसा दमदार पंच देखने को मिला कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उनकी ये जीत सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं है, ये उस खेल संस्कृति की पहचान है जिसने हरियाणा को देश की सबसे बड़ी खेल नर्सरी बना दिया है। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: देखिए करनाल की खबर तो आपने देख ही ली, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्टेशन मास्टर, टिकट चेकर, गार्ड, अनाउंसमेंट स्टाफ और ट्रैक पर काम करते कर्मचारी की तस्वीर आती होंगे। लेकिन जरा सोचिए अगर इन सभी जिम्मेदारियों को सिर्फ महिलाएं संभाल रही हों तो नजारा कैसा होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल का डोमनगढ़ रेलवे स्टेशन अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं है बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका है।
1: बिल्कुल, और यहाँ स्टेशन मास्टर से लेकर टिकट बुकिंग, कंट्रोल रूम, अनाउंसमेंट ऑपरेशंस और यात्री सेवाओं तक हर मोर्चे की कमान महिलाओं के हाथ में है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ हर सीटी, हर अनाउंसमेंट और हर ऑपरेशन में सुनाई देती है नारी शक्ति की गूंज।

0: ये वो रेलवे स्टेशन है जो लेडीज स्पेशल है, जहां महिलाएं ही अपने हौसलों से आसमान लिख रही हैं। दरअसल यूपी में लखनऊ के बाद गोरखपुर के डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है।
1: यहाँ पूरी महिलाएं वाणिज्य विभाग में, हमारे स्टेशन अधीक्षक विभाग में, और आरपीएफ स्टाफ जो है हमारा, जो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, सारे जो है महिलाएं ही हैं। हमारी सफाई कर्मी भी महिला हैं, हमारी एडीआरएम मैडम भी महिला हैं, जो कि बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत सी परेशानियां जो हम लोग को आई वो सब उन्होंने ही देखा।
0: यहाँ स्टेशन संचालन से लेकर सुरक्षा, टिकट काउंटर से लेकर ऑफिस और सहायक स्टाफ तक, हर जिम्मेदारी सिर्फ महिला कर्मचारियों के हाथों में है। यहाँ काम कर रही हर कर्मचारी दर्शा रही हैं कि उनके इरादों को कभी कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत और हौसलों से हर मंजिल हासिल करना जानती हैं। गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन ऐसी ही मजबूत इरादों वाली महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।
2: कभी हम लोग ऐसे कर नहीं रहे थे ड्यूटी, हमेशा पुरुषों के साथ ही मिलकर हम लोग किए हैं। फर्स्ट चांस है कि हम लोग ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ महिलाएं कर्मचारी हैं। तो पहले लग रहा था कि हम लोग सारी महिलाएं हैं, कैसे किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अधिकारी हम लोग की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस हिसाब से सब कुछ अच्छा है।
0: इस स्टेशन पर कार्यरत महिलाएं 3 शिफ्ट में सेवा दे रही हैं, जिनमें नाइट शिफ्ट भी शामिल है। जाहिर है डोमिनगढ़ क्योंकि आउटर एरिया स्टेशन है, ऐसे में लखनऊ रेलवे मंडल का सेफ्टी से जुड़े तमाम जरूरी पहलुओं पर भी खास फोकस रहा है, ताकि इस मॉडल रेलवे स्टेशन पर महिलाएं भय मुक्त माहौल में काम कर सकें। वैसे ट्रेनों की आवाजाही को भी ये महिलाएं बेहद आराम से कंट्रोल कर रही हैं।
3: यहाँ पे अभी जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, उन सबों को हम लोग खुद से इंडिविजुअली देखना पड़ता है। सारा उसका मेन जो आने जाने का प्रोसेस है, प्रोसीड करना हुआ, लाइन के लेना हुआ, देना हुआ, ब्लॉक पे जो भी काम करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी इंडिविजुअल कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर में करते थे तो पुरुषों के साथ करना होता था, यहाँ सब कुछ हम लोग अकेले कर रहे हैं।
0: इसके साथ ही डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला आरपीएफ की तैनाती न केवल इसको एक आइडियल रेलवे स्टेशन बना रही है, बल्कि यहां काम करने वाली दूसरी महिला कर्मियों के बीच सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ा रही है।
4: कोई डर नहीं है, ड्यूटी तो कहीं भी करनी ही है, ड्यूटी के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां अपना निभाना हर जगह पड़ता है, तो अपना फर्ज है ड्यूटी निभाना। अधिकारियों का सहयोग पूरी तरह से है, हमारे इंस्पेक्टर से लेके कमांडेंट और डीआरएम सबका सहयोग है।
0: ऐसा अक्सर देखा गया है कि रेलवे में जहां महिलाएं अभी तक पुरुषों के साथ काम किया करती थीं, वहीं अब पुरुषों के सपोर्ट के बगैर ये महिलाएं अपने अपने सेक्शंस में बखूबी सेवा भी दे रही हैं। अगर कोई परेशानी आती भी है तो उच्च अधिकारी हमेशा इनके साथ खड़े हैं।
5: जो डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन है उस पे अभी सभी विभागों की महिला कर्मचारी जो है काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, और उससे जो है कामकाज का वातावरण भी अच्छा बना हुआ है, उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्रम में जो है एक स्टेशन पे सभी महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि अच्छा काम कर रही हैं, और मैं इसके लिए लखनऊ मंडल ने जो भी प्रायोगिक जो ये किया है, मैं इसके लिए उन्हें जो है बधाई देता हूँ। और सभी महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग जो है और आगे अच्छा काम करें।
0: बता दें कि भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन है, जहां जुलाई 2017 से टिकट बुकिंग, कमर्शियल ऑपरेशन, सिग्नलिंग और सुरक्षा यानी आरपीएफ वाली जिम्मेदारी जैसे स्टेशन के सभी कामकाज महिला कर्मचारियों के हाथों में है। वहीं मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले इस स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन के ही रूप में जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी बना है। ये देश का पहला नॉन सब अर्बन और मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसे 24 घंटे महिलाएं संचालित करती हैं। और वहीं लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऑल वुमेन स्टेशन है, जहां सिग्नल और कंट्रोल रूम की कमान महिलाओं के पास है। अब महिलाओं के द्वारा संचालित गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन भी दर्शा रहा है कि इन महिलाओं को किसी सहारे की जरूरत नहीं और न ही किसी एहसान की। ये वो सशक्त नारी है जो नए भारत की असली पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: भक्ति, संगीत और आध्यात्म, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो सिर्फ सुर नहीं गूंजते, मन भी झंकृत हो उठता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज में भजन है, शब्दों में आध्यात्म है और कथाओं में जीवन को आसान बनाने का संदेश। हम बात कर रहे हैं देवी चित्रलेखा की, जो अब दिल्ली में एक बेहद खास आध्यात्मिक संगीत संध्या लेकर आ रही है।
7: देखिए, हमने बात की खुद देवी चित्रलेखा से और उनसे जानने की कोशिश की कि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में भक्ति और आध्यात्म की क्या भूमिका है, अनंतनाद की परिकल्पना कैसे बनी और क्यों ये सिर्फ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं बल्कि आत्मा को सुकून देने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव बनने जा रहा है।

0: साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी। बात करें भक्ति की, पॉजिटिविटी की या धर्म की, एक नाम जो हमारे जहन में ज़रूर आता है वो है देवी चित्रलेखा जी का। देवी चित्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: आपने इतनी छोटी उम्र में भगवत कथा का प्रचार शुरू कर दिया। जब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, उस वक्त आपके मन में एक आध्यात्मिक लगान किस प्रकार आया?
1: देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, जीना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही भक्ति भी ज़रूरी है। और जो इसको जितना अपने जीवन के अर्ली स्टेज पर समझ जाए उतना बेहतर है, लेकिन ये अपने किसी कोशिश से संभव नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है। तो आई थिंक वो कृपा भगवान ने मुझ पर करी कि एक बहुत कम आयु पर मुझे समझ आ गया कि भक्ति भी जीवन में ज़रूरी है, धर्म क्यों ज़रूरी है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहे, परिवार का जो संस्कारिक माहौल भक्ति में माहौल रहा वो रहा, जिस जगह जन्म हुआ है वहाँ क्षेत्र का, वृंदावन का बहुत बड़ा असर रहा, और गुरु का बहुत बड़ा सानिध्य रहा, क्योंकि आई गॉट इनिशिएशन व्हेन आई वाज ओनली 4 years old। तो 4 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि उसे गुरु क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, लेकिन उस उम्र में दीक्षा हो गई, तो इसका मतलब गुरु की भी एक बहुत बड़ी कृपा रही।
0: जैसे आपने बोला घर में बड़ा सांसारिक माहौल रहता है, हम भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मेरे घर पर ठाकुर जी की सेवा होती है
1: जी।
0: जैसे बट मन में एक बार प्रश्न आता है कि हम भगवान से प्यार तो बहुत करते हैं, पर इस टाइम पे ना मेरे को लगता है कि भक्ति एक ट्रांजैक्शन बन के रह गई है। अगर मैं भगवान से कुछ मांगूंगी, अगर उन्होंने पूरा कर दिया तो वो अच्छे, और अगर नहीं करा तो वो बुरे हो गए। तो भक्ति कितनी आपको लगता है कि इस बार ट्रांजैक्शन बनती जा रही है?
1: नहीं, ये तो भक्ति है ही नहीं, ये तो डिमांड्स हैं कि आपका कोई इच्छा पूरी करता है तो राधे राधे, नहीं तो फिर दूसरा भगवान ट्राई करो। तो भक्ति का मतलब तो समर्पण होता है। इट डजंट मैटर कि वो आपकी जीवन को इवन टफ भी कर दें, आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा हार्ड कर दें, और भगवान करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति की ओर बढ़ते जाते आपकी परीक्षाएं और टफ होती जाती हैं, लेकिन वो साथ भी देते हैं, ये भी पक्का है। लेकिन भक्ति का मतलब कभी भी ये ना समझें। मुझे लगता है ये एक दुनिया में ही एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि भक्ति करने से भगवान हमारे रोगों को दूर कर देंगे, हमारे परेशानियों को दूर कर देंगे। वो तो ऑलरेडी रहेंगी रहेंगी, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, उसे भगवान नहीं काटेंगे, लेकिन वो इतना आपको मजबूत बना देंगे कि आप उसमें भी खुश रहोगे, उसमें भी प्रसन्न रहोगे कि जीवन है।
0: जैसे ना बीइंग अ जेन ज़ी, आई वुड से, मैंने आपसे पहले भी बोला मेरे कई प्रश्न रहेंगे, और इस टाइम पे जो पहला प्रश्न मैं जेन ज़ी से रिलेटेड ज़रूर आपसे पूछूंगी, अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, हमें भगवान याद आते हैं ताकि भाई वो व्यक्ति हमें मिल जाए, अगर वही व्यक्ति इनकंसिस्टेंसी शो करता है हमें फिर भगवान याद आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वही व्यक्ति हमारा दिल तोड़ दे हमें फिर भगवान याद आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जो बहुत आम प्रश्न हमारे मन में आता है, वो तो सबके मन में आता है कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर मेरे मन में एक और प्रश्न आता है कि अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं था तो भगवान ने भेजा क्यों, कौन सा ऐसा लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या?
1: लिखा तो था, बिना लिखे तो नहीं आएगा, लेकिन उतने ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखा था। क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि भी, देयर टू टाइप्स ऑफ बुद्धि, की एक होती है नॉर्मल, एक होती है जिस बुद्धि में विवेक होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड्स। तो वो बुद्धि आपको आध्यात्मिकता देती है, बुद्धि में विवेक आपको आध्यात्मिकता देती है कि आप निर्णय कर पाओ, आप डिसाइड कर पाओ कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कौन व्यक्ति आपके लिए गलत है, क्या सिचुएशन आपके लिए गलत है। तो अगर भगवान ने कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में दी है तो इट्स 100% गारंटीड है कि वो व्यक्ति हमारे लाइफ में पूर्व के कर्मों से लिखा तो गया था।
0: अच्छा।
1: चाहे वो एक ही दिन के लिए लिखा गया था, बट अब उससे आपको जो लेसन है, भगवान ने अगर कुछ ऐसा किया खैर भगवान भी नहीं करते, मैं तो ये भी नहीं कहूंगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम हमेशा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों
0: होता,
1: उहे ऊपर वाले हमेशा ऊपर उंगली उठाते, जबकि हमें हमेशा उठानी चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि वो मेरे कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट का ही रिजल्ट है जो आज मुझे मिल रहा है। बट इतना जरूर है कि थोड़ा भगवान के निर्णयों पर भरोसा रखना चाहिए।
2: बढ़ते आगे, संसद भवन जहां पर देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इस विशाल परिसर में एक और ऑपरेशन इन दिनों चल रहा है, ऑपरेशन बंदर भगाओ। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां पर बंदरों को भगाने के लिए न कोई घंटा चलता है और ना ही कोई मशीन, बल्कि गूंजती है लंगूर की आवाज। बिल्कुल सही सुना आपने, संसद परिसर में एक ऐसे शख्स की मौजूदगी है जिनका नाम है असलम खान, जिनकी नौकरी ही है बंदरों को संसद से दूर रखना। दावा यह है कि पूरे इलाके में सैकड़ों बंदर हैं जो कभी कैंटीन में खाना झपट लेते हैं, तो कभी पेड़ पौधे और लोगों के लिए परेशानी बन जाते हैं। तो ऐसे में असलम खान अपनी खास आवाज से इन्हें दूर भगाते हैं।
3: सबसे दिलचस्प बात यह है कि असलम खान के साथ कोई असली लंगूर नहीं चलता, बल्कि लंगूर की आवाज ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। असलम बताते हैं कि उन्हें यह काम करते हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं। पहले 30,000 कोट में बंदर भगाते थे, अब संसद परिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असलम कहते हैं कि नियमों के चलते अब असली लंगूर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए वही खुद लंगूर की आवाज निकालते हैं।
4: असलम खान इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। असलम भाई, आप यहाँ बंदरों को भगा रहे हैं, कितने सालों से ये सब काम कर रहे हैं और एक अलग तरीके की आवाज निकालते हैं?
5: सर, मैं लंगूर की आवाज निकालता हूँ बंदर भगाने के लिए, और मेरे को 30-35 साल हो गए बंदर भगाते हुए।
4: जी,
5: पहले लंगूर रखते थे, अब बैन लगा दिया, इसलिए तो आवाज से लंगूर आवाज से ही मतलब बंदरों को भगाते हैं। लंगूर की आवाज से
4: क्या इस पूरे परिसर में संसद भवन के अंदर ऐसे बंदर आ जाते हैं?
5: जी जी जी।
4: अच्छा,
5: आते हैं तभी तो हमें रख रखा सरकार ने।
4: अच्छा अच्छा
5: जी।
4: तो मतलब सरकारी तौर पर आप यहाँ मुलाजिम है?
5: नहीं नहीं, ठेकेदारी में सर।
4: ठेकेदारी, प्राइवेट?
5: प्राइवेट, हाँ।
4: अच्छा अच्छा
5: जी जी।
4: तो ये एक कठिन काम है, मतलब बंदर इतने ज्यादा यहाँ पर है उनको भगाना, और ये रेगुलर आप लोग इसको लेकर के वो कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसको आप करते हैं?
5: सर, हम तो आवाज से ही भगाते हैं सर।
4: एक बार आवाज निकालिए, आप कैसे वो करते हैं? तो ये ऐसे ही करके आप संसद परिसर और यहाँ जितने भी बंदर हैं इस पूरे इसी के अंदर ये सब करते हैं?
5: हाँ जी सर, आवाज से ही बंदर भगाते हैं सर।
4: अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू।
2: देखिए, कहते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और अगर इरादे मजबूत हो तो छोटे से गांव से निकलकर भी पूरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। आज आपको एक ऐसे ही युवा की कहानी दिखाते हैं जिसने सुविधाओं की कमी को कभी अपनी मंजिल के रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। उत्तराखंड के चकराता के एक आदिवासी गांव का ये छात्र अब ऐसी जगह जाने वाला है जहां पहुंचना दुनिया के चुनिंदा छात्रों के हिस्से में ही आता है।
6: आपको बता दें, नाम है लकी रावत। पढ़ाई की लगन, मेहनत और हौसले के दम पर लकी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी अगली मंजिल होगी उत्तरी ध्रुव का बर्फीला इलाका, जहां विज्ञान, पर्यावरण और रोमांच एक साथ दिखाई देते हैं। एक छोटे से गांव से बर्फ की उस अनोखी दुनिया तक का ये सफर हर उस युवा को यकीन दिलाता है कि सपने बड़े हों तो मंजिल भी बड़ी मिलती है।

0: ये है उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र के रहने वाले लकी रावत। एक साधारण परिवार से आने वाले लकी ने अपनी मेहनत के दम पर असाधारण उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड के चकराता जैसे दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियान तक पहुंचने वाले लकी रावत की कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल दूर नहीं रहती। एक छोटे से गांव का छात्र दुनिया के सबसे उत्तरी छोर तक पहुंचने की तैयारी, ये देश के लिए सबसे गर्व का पल है। दरअसल लकी का चयन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और शैक्षिक अभियान आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज के लिए हुआ है। इस अभियान में वो भारत के एकमात्र छात्र प्रतिनिधि हैं। रूस के मुर्मांस के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जहाज 50 लेट पोबेडी पर शुरू हुए इस 10 दिन के अभियान में 22 देशों के 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं। इस यात्रा का सबसे खास पड़ाव है नॉर्थ पोल, यानी पृथ्वी का 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल पर जाने का मौका दुनिया के बहुत कम लोगों को ही मिलता है। अब उन्हीं चुनिंदा लोगों में उत्तराखंड के लकी रावत भी शामिल हो रहे हैं। अभियान के दौरान सभी प्रतिभागी आर्कटिक क्षेत्र को करीब से समझेंगे। उन्हें क्लाइमेट चेंज, पोलर इकोसिस्टम, समुद्री विज्ञान, नई तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, जिससे वैश्विक सहयोग की भावना मजबूत होगी। यकीनन ये उपलब्धि लकी को आसानी से नहीं मिली। इसके लिए उन्हें 3 चरणों वाली कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हर भाग लेने वाले देश से केवल एक छात्र का सिलेक्शन किया गया और भारत की ओर से ये जिम्मेदारी लकी रावत को मिली।
1: Hello everyone, now I am Lucky Rawat from India. I am from a tribal village from Uttarakhand, Chakrata. So I got selected into the program Icebreaker of Knowledge and I am here representing India and I am here as an ambassador of India for this program, this expedition of 2026. This expedition is to the literal top of the world, North Pole. Will be going to 90 degree north and it's a 10 days expedition. It was a competition, we had to participate in that competition. The competition was divided into 3 stages. We had to clear 3 stages and then one student from one country was able to represent their country in this competition here.
0: Lucky Rawat ka North Pole tak pahunchna उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होगा। ये यात्रा उन्हें विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देगी। जाहिर है अपने बेटे की कामयाबी से परिवार बेहद खुश है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है सेकेंड स्कूल विकास नगर, कि उस बच्चे ने ऑनलाइन पेपर दिया और वो पूरे इंडिया से एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो मुझे उसमें बहुत गर्व है।
0: लकी रावत की ये सफलता सिर्फ एक परिवार या उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये कहानी बताती है कि सपनों की उड़ान संसाधनों से नहीं बल्कि मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास से तय होती है। यही हौसला आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाढ़ के बीच कैसे चल रहा है जिंदगी बचाने का मिशन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में, आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कावड़ यात्रा, मुंगेर में 54 किलो चांदी से सजी 54 फीट की कावड़, बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहा शिव भक्तों का जत्था। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। सफलता रामलला की आरती के लिए अब मिलेगा तत्काल पास, प्रश्न शुरू की नई व्यवस्था, मंगला श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले, शयन आरती के लिए उसी दिन बुकिंग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: बारिश किसी के लिए परेशानी लेकर आती है तो किसी के लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप दिखा जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती बूंदों ने सूखी वादियों को फिर से जिंदा कर दिया है, पहाड़ हरे रंग की चादर ओढ़े हुए हैं और महीनों से खामोश पड़े झरने अब पूरे जोश के साथ गूंज रहे हैं। नजारा ऐसा है कि जिसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए ठहर जाना चाहता है।
4: महाराष्ट्र के जालना से लेकर राजस्थान के अलवर तक मानसून ने प्रकृति में नई जान फूंक दी है, कई चट्टानों से दूध की धार की तरह पानी उतर रहा है तो कहीं हरियाली के बीच बहते झरने लोगों को अपनी ओर बुला रहे हैं। कैमरे में कैद ये खूबसूरत तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश सिर्फ खेतों के लिए ही नहीं है बल्कि आंखों और दिलों को भी सुकून देने के लिए मौसम लेकर आती है।
0: ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि मॉनसून की मेहरबानी का है। पहाड़ों से दूध की तरह गिरता पानी, चारों ओर बिछी हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच कुदरती सुंदरता। महाराष्ट्र के जालना जिले का धावड़ा इलाका इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद यहां का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है, लोग इस खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान के अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों से फूटते झरनों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। सिलिसेड और आसपास हुई अच्छी बारिश के बाद मशहूर गरवाजी वाटरफॉल इस सीजन में पहली बार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पानी की तेज धार और हरियाली से घिरी पहाड़ियां लोगों का मन मोह रही हैं। बारिश का ये पानी सिर्फ झरनों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि खेतों में भी नई उम्मीद जगा रहा है। खरीफ की फसल के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मॉनसून एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बारिश मेहरबान होती है तो सूखे पहाड़ भी जिंदा हो उठते हैं। झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और ठंडी हवाएं, यही है मॉनसून का वो जादू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जालना से गौरव विजय और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए बढ़ते हैं आगे। एयरपोर्ट पर आपने वीआईपी लाउंज देखा होगा, सिक्योरिटी ऑफिस भी देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए अगर एयरपोर्ट पर एक ऐसा ऑफिस दिख जाए जिस पर लिखा हो चूहे पकड़ने का ऑफिस और उसका डायरेक्टर कोई अफसर नहीं बल्कि तीन बल्लियां हो,
0: सुनने में बहुत अजीब लगेगा, यकीनन हमें भी अजीब लग रहा है, लेकिन ये है बिल्कुल सच्ची खबर, चीन की खबर है जहां पर एक एयरपोर्ट पर बिल्लियों के लिए बनाया गया अनोखा ऑफिस और इन दिनों यात्रियों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है।
6: ये है चीन के लैंझोउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो कमरा जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है माउस कैचिंग ऑफिस, यानी चूहे पकड़ने का ऑफिस। लेकिन जैसे ही आप अंदर झांकेंगे आपको यहाँ

0: कोई कर्मचारी नहीं दिखेगा, बल्कि आराम फरमाती ये तीन बिल्लियां नजर आएंगी। इन्हें आप आम बिल्लियां समझने की भूल कतई ना कीजिएगा। ये है इस ऑफिस की सबसे खास सदस्य, एक पूरा परिवार। बिल्लियों के इस फैमिली में पिता का नाम सांग बियाओ है। बिल्ली माँ को लोग चुई हुआ के नाम से पुकारते हैं और उनका नन्हा बच्चा शियाओ क्विगो भी यहाँ आपको दिख जाएगा। इनके लिए एयरपोर्ट ने कांच का शानदार घर बनाया है, जिसमें मुलायम बिस्तर है, खेलने के लिए कैट ट्री है, साफ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर है और आराम की हर सुविधा मौजूद है। दरअसल इन तीन बिल्लियों के यहाँ होने की वजह बड़ी दिलचस्प है। पहले ये आवारा बिल्लियों की तरह एयरपोर्ट पर इधर उधर घूमा करती थी और एयरपोर्ट पर चूहों को ठिकाने लगाया करती थी, लेकिन अचानक इनके शिकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया कि एयरपोर्ट प्रशासन ने इन्हें अपना बना लिया। एयरपोर्ट ने इन बिल्लियों को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि यहाँ इनकी नौकरी भी पक्की हो गई। मजेदार अंदाज में इन बिल्लियों को पदवी भी मिल गई। किसी को माउस कैचिंग ऑफिस का डायरेक्टर बना दिया गया तो कोई डिप्टी डायरेक्टर बन गया। अब ये बिल्लियां एयरपोर्ट की छोटी सी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। एयरपोर्ट के गेट D58 के पास बना इनका कांच का घर अब यात्रियों का पसंदीदा फोटो पॉइंट बन गया है। लोग फ्लाइट पकड़ने से पहले यहाँ रुकते हैं, बिल्लियों को देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन तीनों बिल्लियों के नाम से एक खास सेक्शन भी शुरू कर दिया है। वहाँ इनके खाने पीने, खेलने और दिन भर की मस्ती की तस्वीरें और वीडियो नियमित रूप से साझा किए जाते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आपको ले चलते हैं बचपन की उन मीठी यादों में, जब गली मोहल्ले में एक खेल हर बच्चे की पहली पसंद हुआ करता था, रस्सी कूद। कभी दोस्तों के साथ तो कभी अकेले, घंटों तक ये खेल चलता रहता था। लेकिन वक्त बदला, मोबाइल आए और रस्सी कूदने वाला वो खेल कहीं पीछे छूट गया।
2: बिल्कुल, लेकिन अब इसी पुराने खेल को अमेरिका में एक नया ट्विस्ट मिला है। वहां एक प्रोफेसर ने ऐसी कमाल की मशीन बनाई है जिसमें रस्सी खुद ब खुद घूमती रहती है, यानी ना किसी को रस्सी पकड़ने की जरूरत है और ना ही किसी साथी का इंतजार। पहली नजर में ये मशीन भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी सोच और कहानी इसे बेहद खास बना देती है।
3: ये मशीन अपने आप रस्सी घुमाती है और खिलाड़ी बिना किसी मदद के आराम से रस्सी कूद सकता है। इस मशीन का नाम है जंप ड्रीम्स और इसे बनाया है इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा रीड स्मिथ ने। ये कोई साधारण रस्सी कूद नहीं है, इसे डबल डच कहा जाता है। इसमें दो रस्सियां एक साथ उल्टी दिशाओं में घूमती हैं और बीच में खिलाड़ी कूदता है। भारत में भी रस्सी कूद पुरानी पीढ़ी का बेहद पसंदीदा खेल रहा है। स्कूलों, गलियों, मोहल्लों में बच्चे घंटों तक रस्सी कूदा करते थे। तब रस्सी घुमाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन अब ये काम मशीन खुद कर रही है। करीब 40 साल पहले जब ताहिरा तीसरी कक्षा में थी, तब उनकी टीचर ने पूछा था कि वो ऐसा क्या बनाना चाहेंगी जो दुनिया में नहीं है। तब ताहिरा ने कागज पर ये मशीन बनाई थी।
4: And so this was an idea I had as a student here at PS97.
3: जिसे अब उन्होंने हकीकत में बदल दिया है। ताहिरा बताती है कि वो इकलौती थी, घर में उनके साथ रस्सी घुमाने वाला कोई नहीं होता था। यही छोटी सी परेशानी जिंदगी का सबसे बड़ा आइडिया बनकर आई। आज वही सपना जंप ड्रीम्स मशीन के रूप में दुनिया के सामने है। ताहिरा की मशीन उन लोगों को खासी पसंद आ रही है जिन्होंने किसी जमाने में जमकर रस्सी कूद का आनंद लिया था। ताहिरा ने हाल ही में शिकागो में आयोजित 40 प्लस डबल डच क्लब की 10वीं वर्षगांठ समारोह में अपनी मशीन का प्रदर्शन किया, जहां उनकी मशीन काफी पसंद की गई। जंप ड्रीम्स का ये प्रोटोटाइप बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ताहिरा का कहना है कि दुनिया भर से लोग उनके इस आविष्कार में रुचि ले रहे हैं। अब उनका अगला सपना इस मशीन को बड़े पैमाने पर बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और यह वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी की इनसाइड स्टोरी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी का इंतजार अब खत्म हो सकता है। खबर यह है कि रोनाल्डो अपनी मंगेतर जॉर्जिया के साथ इसी शनिवार शादी के बंधन में बंध सकते हैं।
2: और शादी का ये दावा अगर बिल्कुल सही साबित होता है तो फिर ये कपल पुर्तगाल के ऐतिहासिक फुंचाल कैथेड्रल चर्च में शादी कर सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जाहिर है कि दुनिया भर के करोड़ों फैंस की नजरें अब इस शनिवार पर टिकी होंगी।

0: फुटबॉल के मैदान पर गोल की बरसात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी शुरू करने की तैयारी में है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो और उनकी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज इस शनिवार शादी कर रहे हैं। आधिकारिक ऐलान और बयान भले ही न हो, लेकिन इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में है। बताया जा रहा है कि पुर्तगाल के मरीदा द्वीप में मौजूद ऐतिहासिक फुंचाल कैथेड्रल को शादी के लिए बुक किया गया है। खबरों में किया गया दावा अगर सही साबित होता है तो ये ऐतिहासिक चर्च दुनिया के सबसे मशहूर कपल्स में से एक रोनाल्डो जॉर्जिना की शादी का गवाह बन सकता है। मरीदा सिर्फ एक खूबसूरत द्वीप नहीं है, यही रोनाल्डो की जन्मभूमि है। यही उन्होंने अपने बचपन के सपनों को उड़ान दी थी। अब खबर है कि उसी मिट्टी से जहां से उनका सफर शुरू हुआ, वहीं उनकी नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 500 साल पुराने फुंचाल कैथेड्रल में वहां के समय के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 3 बजे शादी की रस्में हो सकती हैं। शादी सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रहेगी। खबर है कि जश्न के लिए पास के 5 सितारा सेवोय पैलेस होटल में भी खास इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के 2 फ्लोर और कई बार एरिया सिर्फ शादी के मेहमानों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। यानी तैयारियां ऐसी जिन्हें देखकर लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। रोनाल्डो और जॉर्जिना की मुलाकात साल 2016 में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों दुनिया के सबसे चर्चित कपल में शामिल हो गए। अगस्त 2025 में दोनों ने सगाई की थी। आज दोनों मिलकर 5 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बाद शादी की चर्चा पहले भी हुई थी, लेकिन तब ये खबर सच नहीं निकली। अब एक बार फिर शादी की अटकलें तेज हैं। हालांकि रोनाल्डो और जॉर्जिना ने अभी तक शादी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिलहाल दुनिया भर के करोड़ों फैंस की नजरें इस शनिवार पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि ये इंतजार सच में खत्म होता है या फिर शादी की खबरें सिर्फ अटकलें साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: क्या आप सोच सकते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स यानी कि ए टू जेड तक सभी 26 बड़े अक्षर लिखने में किसी को सिर्फ 9.15 सेकेंड लगे? यकीनन आपको ये सुनकर भरोसा ना भी हो, लेकिन भोजपुर के आरा में एक शख्स ने इस बात को हकीकत में बदल दिया है।
2: दरअसल आरा शहर के रहने वाले एक टीचर रवि कुमार ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और लगातार प्रैक्टिस के दम पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे अब पूरी दुनिया सलाम कर रही है। उन्होंने महज 9.15 सेकेंड में ए टू जेड तक सब बड़े अक्षर लिखकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है और दुनिया के सबसे तेज इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखने वाले शख्स बन गए हैं।
1: हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी जारी हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: डांसर राघव जोयाल, जो आजकल यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर चेहरा है, आज उनकी किसी परफॉर्मेंस की तो नहीं, लेकिन उनके द्वारा शेयर किए गए एक बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो की हम बात करेंगे, जिसमें दिखाई दे रहा है कि हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, ये वीडियो हाल ही में राघव ने उत्तराखंड के चमोली में स्थित नीति वैली से लिया है। और यहाँ एक जगह है रिमखिम, जहाँ ये रेयर स्नो लेपर्ड है, उन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा और फिर उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो काफी पसंद किया जा रहा है।
6: हिमालयन रीजन के हाई ऑल्टीट्यूड पर रहने वाला स्नो लेपर्ड, क्योंकि बेहद दुर्लभ प्रजाति है ये, इसलिए इसे गोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहते हैं। जाहिर है वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बहुत कम दिखाई देने वाले स्नो लेपर्ड को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना हमेशा से काफी रोमांच से भरा रहा है।
4: और चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, आप रखिए अपना ख्याल, कल होगी मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
3: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा। मुंगेर में 54 किलो चांदी से सजे 54 फीट की कांवड़, बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहा शिव भक्तों का जत्था। महाराष्ट्र के गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशनों पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। मणिपुर में बॉक्सर जदुमणि सिंह का ग्रैंड वेलकम, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल, इम्फाल में फूल मालाओं के साथ जबरदस्त जश्न। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। फूलों की सीढ़ीनुमा वादियों में गूंजा चीनी संगीत, गुइझोऊ में फूलों के खेतों को प्राकृतिक मंच से बदला गया, संगीत और प्रकृति का अनूठा संगम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटीएस स्पेशल। जीएनटीएस स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की हमारे देश में और हमारे दिलों में त्योहारों और उत्सवों का एक विशेष स्थान है। ये पर्व हमारे सांस्कृतिक धरातल को समृद्ध करते हैं। अभी सावन पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भक्ति का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। सावन के बादलों की ओट से जब भादों का महीना निकलेगा तो महादेव के लाड़ले यानी गजानन घर घर पधारेंगे। देखिए, महीना महादेव का है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की भक्ति का सावन जो है वो बरस रहा है। अब से साल 14 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से लगातार चल रही हैं। धुरा कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आ रहे हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। उधर देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें, जहां पर अलग अलग शहरों में बप्पा की मूर्तियां आकार ले रही हैं। श्रद्धा से भरे मूर्तिकार अपने हुनर से तैयार प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था, अब इनमें रंग भरने और इनमें सजाने का काम लगातार जारी है। हर साल मुंबई समेत देश भर में हजारों गणेश पंडाल लगते हैं। इन पंडाल के साथ घरों में भी बप्पा की मूर्तियां भक्त स्थापित करते हैं। चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि अब की बार बप्पा की कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।

0: देवों में वे प्रथम पूज्य। कहलाते गणराज। चरण पड़े लंबोदर के तभी सफल हूँ काज। कहते हैं संसार में किसी कार्य का शुभारंभ हो नहीं सकता जब तक इनके चरण न पड़े। तो फिर यहाँ तो बात स्वयं मंगल मूर्ति के उत्सव के शुभारंभ की है। गणपति उत्सव दस्तक दे रहा है, सो कारीगरों ने शहर शहर बाप्पा की मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। अब की बार ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां बननी हैं, सो हफ्तों पहले से कारीगर मंगल मूर्ति का स्वरूप गढ़ने और सजाने में जुटे हैं। ये तस्वीर है नागपुर की मशहूर चितारोली की। नागपुर के इस कोने में कहीं बाप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है।
1: करीबन पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का कि जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आँख बनाते हैं, देखो आँख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब जो है बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं है बल्कि देश के बाकी हिस्सों और विदेशों तक भी है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं।
2: हमारे यहाँ ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
3: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और कब?
2: ये लोग जून महीने में देते हैं ऑर्डर। जून
3: कब बना के देते
2: हैं? हम लोग तारीख रहते उनके जब जाने की फ्लाइट की रहती ना, जब तारीख दे के जाल चले जाते हम लोगों को, 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: बाप्पा की एक से एक प्रतिमाएं यहाँ तैयार हो रही हैं। कहीं गणपति के माथे पर खाटू के श्याम बाबा की छवि उकेरी गई है तो कहीं गजानन के शीश पर उनके पिता महादेव महाकाल स्वरूप में विराजमान दिख रहे हैं तो कहीं वक्र तुंड की सूंड पर प्यारे से बाल गोपाल विराजे हैं। कलाकार बता रहे हैं कि अब की बार इसी तरह की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। यही वजह है कि डिमांड भी ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु अपनी कल्पना के आधार पर तो कई दो हाथ आगे बढ़कर AI के जरिए बापा की अलग छवि बनवाना चाहते हैं और मूर्तिकार उसी को आधार बनाकर दिन रात भक्तों की कल्पना वाले बापा को साकार रूप देने में जुटे हैं।
4: अभी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रही है और अभी जैसे यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है ये डिमांड मोबाइल के द्वारा, तो जैसे कुछ AI से बना के ला रहे हैं। जैसे अभी श्री कृष्ण जी तो आपने देखे बड़ी मूर्ति में गणपति बाप्पा के इसमें सुन पे छोटे से बाल श्री कृष्ण बैठा लिया है, उसके खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से डिमांड भी आ रही है, कुछ हमारे मन में जो कल्पना है तो वो भी हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं।
0: लेकिन इस बार बाप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच चर्चा महंगाई की भी हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। सो बात सीधी है कि गणेश जी को घर लाना है तो लक्ष्मी जी का मोह कुछ कम करना होगा।
5: देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। हालांकि 14 सितंबर को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बाप्पा सार्वजनिक पंडाल और घरों में विराजमान हो गए, उससे पहले नागपुर में कारागिर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके हैं।
0: खैर महंगाई बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन बाप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी तो बढ़ गई। हर साल की तरह ही इस बार भी भक्तों की ये आस्था अटूट है। अभी से अपनी पसंद की मूर्तियां बुक कराने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
6: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
0: यानी नागपुर वाले पूरी तरह तैयार हैं बाप्पा के स्वागत के लिए, लेकिन तैयारी अमरावती में भी कम नहीं। अमरावती की इस आर्ट वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। मूर्ति स्वयं मंगल मूर्ति की है, विघ्नहर्ता की है, सो विघ्न का सवाल नहीं। मजाल है कि ध्यान भी भटक जाए, सब कुछ भूल कर बस बाप्पा को बनाने और सजाने का काम चल रहा है। हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग, ये काम में जुटे इन कलाकारों का वर्षों का अभ्यास है, हफ्तों की मेहनत है, उम्र भर की साधना है।
7: देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं, वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट में, जहाँ पर की मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी और देश के बाहर भी इन प्रतिमाओं की बहुत बड़ी और ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की प्रतिमाएं जो है वो ऐसा लगता है कि स्वयं गणपति बाप्पा जो है हमारे सामने विराजमान हुए हैं। और इसीलिए ये कार्यशाला जो है वो कई सालों से जो है सुंदर इको फ्रेंडली, सबसे अहम बात है कि इको फ्रेंडली ये प्रतिमाएं हैं।
0: अमरावती के जिराफे आर्ट वर्कशॉप में हर बार की तरह आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गणपति बाप्पा की आस्था के बीच प्रकृति माँ को भुलाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ खास इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खास तौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही हैं।
8: एक तो अभी मट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मट्टी के गणपति बनाते हैं। पीओपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपने यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा को गढ़ने में धरती की गोद से मिली मिट्टी, कुछ प्राकृतिक रंग, ढेर सारी मेहनत और अनंत भावनाएं, यही है बाप्पा की प्रतिमा को सबसे सुंदर और मनमोहक बनाने का फॉर्मूला, जिसे इन कलाकारों ने पूरी तरह साध लिया है। और जब इनके हाथों से गुजरकर बाप्पा इस स्वरूप में भक्तों के घर विराजेंगे, तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचेगा। प्रकृति के संरक्षण वाले इस मिशन ने गणेश उत्सव को श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी बना दिया है। बस अब इंतजार गणेश उत्सव के श्री गणेश का है।
7: हर किसी को अब बाप्पा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ। यही अब हर किसी लाडले बाप्पा के, भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बप्पा की मूर्तियों की, लेकिन इन प्रतिमाओं के अलावा गणपति को सजाने वाली तमाम चीजें भी अब बाजारों में पहुंचने लगी हैं। इनमें सबसे खास है बप्पा का फेटा। फेटा महाराष्ट्र की खास पगड़ी होती है। आखिर क्यों बप्पा को ये पगड़ी पहनाई जाती है, क्या है फेटा का इतिहास और क्यों आज महाराष्ट्र के सैकड़ों के फेटा मेकर बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कर रहे हैं।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, टेढ़ी सूंड विशाल काया और करोड़ों सूर्यों के समान तेज, गजानन की दिव्य काया का बखान कुछ यूं मिलता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये काया कुछ और सजीली, कुछ और दिव्य, कुछ और भव्य हो जाती है गणेश उत्सव के 10 दिनों में। जब देश भर में मंदिर मंदिर, पंडाल पंडाल और घर घर में गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें बेहद प्रेम आस्था और मनुहार के साथ तैयार किया जाता है, और इसी तैयारी का हिस्सा है गणपति बाप्पा की पगड़ी। बाप्पा के मस्तक की ये पगड़ी कुछ और खिल उठती है महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर, जहां इसे मराठी अंदाज में बाप्पा को पहनाया जाता है। इस मराठी पगड़ी को फेटा कहते हैं। जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हुनर रखने वाले कारीगर इस समय बाप्पा की मूर्ति, वस्त्र, गहने और पंडाल का सामान बनाने में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही पुणे के किरण साबले इन दिनों बाप्पा के लिए फेटा यानी मराठी पगड़ी बनाने में जोर शोर से जुटे हैं। पुणे के नारायण गांव में फेटा मेकर किरण साबले अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के लिए फेटा बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव से पहले उनके पास बड़ी संख्या में बाप्पा का फेटा बनाने के ऑर्डर आए हैं।
1: प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे। फेटा बनाने के लिए मेरी पूरी फैमिली इसमें मेरे को मदद करती है और खूब सारे फेटे हम इस साल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कभी साल भर में 1000 फेटे बनाने वाले किरण साबले अब हर साल बाप्पा के लिए 50,000 से ज्यादा फेटे तैयार करवाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उन्हें देश विदेश से ऑर्डर आते हैं।
1: मैं गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ। मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ, और मेरे पहले मैंने जो फेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए, और मैंने 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र का फेटा केवल सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये मराठी अस्मिता, इतिहास और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवंत चिन्ह है। मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्याभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बाप्पा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी महाराष्ट्र में भगवान गणेश को फेटा पहनाना मराठी संस्कृति में उन्हें अपने राजा, अतिथि और परिवार का मुखिया मानने की गहरी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो बापा को अब पोशाक के रंग के हिसाब से अलग अलग रंग का फेटा भी पहनाने का चलन है, लेकिन शुरुआत में बापा को सिर्फ पीला या भगवा रंग का फेटा पहनाया जाता था, जिसका इतिहास महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं से होते हुए छत्रपति शिवाजी के शासन काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने गणेश जी को अपना कुल देवता माना था। पेशवाओं के दरबार में हर कोई पारंपरिक फेटा या पुणेरी पगड़ी पहनता था। जब वे अपने आराध्य बाप्पा की मूर्ति स्थापित करते थे तो उन्हें भी अपनी तरह ही शाही रेशमी फेटा पहनाते थे। यही ऐतिहासिक परंपरा आज भी सार्वजनिक और घरेलू गणेश उत्सव में जारी है। सदियों पुरानी इस गर्व भरी परंपरा को आज भी जिंदा रखे है किरण साबले जैसे हजारों फेटा मेकर, जो हर साल गणपति बाप्पा के लिए फेटा बनाते हैं। इसे पहनकर गजानन जब घरों में पधारते हैं तो माँ गौरी के लाल पर श्रद्धालु अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फेटा की ही तरह बप्पा के आसन की भी डिमांड खूब बढ़ गई है। मुंबई में दुकानों पर गणपति के लिए अलग अलग डिजाइन, थीम और रंगों के आसनों की बाढ़ आ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि घर पर बप्पा को विराजमान करवाने के लिए कौन कौन से आसन और सिंहासन का विकल्प है।

0: माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जरा सोचिए कैलाश पर कैसी शान से रहते होंगे वो गणपति देवा। बस भक्तों को चिंता इसी बात की रहती है कि जब गणपति अपने घर से हमारे घर आए तो उनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए, सजावट में भव्यता भरपूर हो और भोग में मोदक प्रचुर हो। सो बाजार पट गए हैं, बाप्पा के स्वागत के सामान से सज गए हैं। गणपति उत्सव की रौनक अब खूब दिख रही है, दिखनी भी चाहिए। अब गणेश चतुर्थी में दिन ही कितने बचे हैं। इधर शिव जी का प्रिय महीना खत्म होगा और उधर शिव पुत्र के पधारने की घड़ी आ पहुंचेगी। उससे पहले गणपति की प्रतिमा, आसन, पूजा की थाली, झांकी सजाने का सामान, जाने क्या क्या लेना है, सुकाम चालू आ है। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली की, जहां मौजूद सहेली वर्कशॉप में गणेशोत्सव से जुड़ा सामान तैयार हो चुका है।
1: लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बाप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। अब जिनका आसन स्वयं माँ गौरी की गोद हो, उनके लिए आसन चुनना आसान भी तो नहीं। लेकिन गौरी नंदन के विराजने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन के आसन यहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन भी यहाँ तैयार किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वाला आसन, महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भी भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाबा के लिए इसी आसन को चुन रहे हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया है। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: हर साल बाप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बाप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बाप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस वर्कशॉप से लोग रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से अपनी कल्पना के आधार पर बाप्पा के लिए मनपसंद आसन तैयार कर सकते हैं।
1: यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकलिंग है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल आइटम
1: इको फ्रेंडली है, सारे
2: पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर्स चाहिए, कि देखिए वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपकी खुद की आर्ट क्रिएट करना है, तो वो भी हमारे यहाँ रोमोटर मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देख सकते फ्लावर्स में जो है फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यू आइटम्स है जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
1: लाइटिंग्स मिलेंगे,
2: लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: वैसे लोग यहाँ से सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जगमगाती लाइट्स, मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स भी खरीद रहे हैं।
3: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
4: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है, उसमें से अच्छे लगे। मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा, ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
5: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: खास बात ये भी है कि यहाँ मिलने वाला ज्यादातर सामान भी इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी की प्रतिमा की तरह अंत में ये भी मिट्टी या पानी में घुल मिल जाएगा, मतलब पर्यावरण को यहाँ भी कोई नुकसान नहीं। कुछ ही दिनों बाद लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। ऐसे रंग बिरंगे सुंदर आसन पर बापा विराजेंगे और उस भव्य झांकी के चारों ओर बापा के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा। मुंगेर में 54 किलो चांदी से सजी 54 फीट की कांवड़ बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहा शिव भक्तों का जत्था। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशनों पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। मणिपुर में बॉक्सर जदुमणि सिंह का ग्रैंड वेलकम, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर, इम्फाल में फूल मालाओं के साथ जश्न। एक्टर धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं तक पढ़ाई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, राम दरबार दर्शन करने के लिए विशेष पास व्यवस्था खत्म, जबकि रामलला की आरती करने के लिए अब मिलेगा तत्काल पास। मंगला और श्रृंगार आरती के लिए 1 दिन पहले मिलेगा पास, जबकि शयन आरती के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। प्रतिदिन रामलला की आरती करने के लिए 45 और राम परिवार की आरती करने के लिए 15 पास किए निर्धारित। यात्री सुविधा केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से बनवा सकते हैं आरती दर्शन का पास। दर्शन व्यवस्था अधिक सुगम बनाने के लिए श्रद्धालुओं का समय बचाना है मकसद, नई दर्शन व्यवस्था से सरल होंगे दर्शन। चौड़ मास के अलावा भी रोजाना देश दुनिया से दर्शन करने के लिए हजारों लाखों भक्त पहुंचते हैं, सभी के लिए नई दर्शन व्यवस्था एक शानदार पहल। कांवड़ यात्रा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों से भरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुलभ यात्रा करने के लिए प्रशासन अलर्ट, आरपीएफ जीआरपी को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए गए। श्रावण महीने में उत्तर भारत में पूरी आस्था के साथ जारी है कांवड़ यात्रा, अलग स्वरूपों और आकार की कांवड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज के घाट पर हर दिन अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं कांवड़िए, पैर पर घुंघरू बांधे नजर आया था। अपनी कांवड़ को खंडित होने से बचाने के लिए सीटी बजाते और पैरों में घुंघरू बांधकर राह चलते हैं कांवड़िए। है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी एक अनोखा रंग। मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक प्रेमी युगल 111 लीटर गंगाजल पैदल यात्रा करता नजर आया। इस प्रेमी युगल की भोले शंकर से की गई कामना, उनकी शादी के लिए राजी हो जाएं दोनों परिवार। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और योगी की अनोखी कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बड़ी तस्वीरें नजर आई। बुलंदशहर के 6 भक्तों की एक टोली हरिद्वार से लेकर आ रही है मोदी योगी नाम की कांवड़। इस टोली ने गंगा मैया से मांगी है खास मन्नत, योगी के दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कामना। प्यार के मुंगेर की डमरू रूपी कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, लकड़ी और फाइबर से बनाया गया है डमरू। हाथों के पल बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं बंगाल के राजकुमार महतो। पिछले 2 सालों से पूरे भारत की धार्मिक यात्रा पर हैं राजकुमार। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठों में से 21 शक्तिपीठों का कर चुके हैं दर्शन। बागपत में देखिए रिश्तों की अनोखी कांवड़, सास ससुर को गंगा जल से नहलाने 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर बहू।

मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हेल्थ कैंप का शुभारंभ कर दिया। कांवड़ियों की हर सहूलियत का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ कांवड़ यात्रा में लगे पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कांवड़ सेवा का भी पुण्य लिया, अपने हाथों से धोए कांवड़ियों के पैर। मुख्यमंत्री धामी ने शिव भक्तों को अपने हाथों से परोसा भोजन। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से जल ले जा चुके हैं। सावन के मास में उज्जैन में रोजाना भोलेनाथ की विशेष शांति। पवित्र महीने में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़ियों को सफल रेस्क्यू किया गया। पीएससी के आपदा राहत दल के जवान ने दिखाई मुस्तैदी। हरिद्वार में शिव घाट पर स्नान के दौरान दिल्ली के रहने वाले कांवड़िया राजेंद्र कुमार का फिसला पैर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डीआईजी और कमिश्नर ने सड़क पर उतरपुर कांवड़ियों के लिए किए इंतजामों का जायजा लिया। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद की गई 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री। कांवड़ियों के लिए तय नियमों का कराया गया पालन। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की मंदिर में कराई शादी। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। बप्पा की मूर्ति बनाने वालों में महिलाएं भी शामिल। पुणे में नारायण गांव के किरण सावले परिवार के साथ बना रहे गणपति बप्पा का फेटा और पगड़ी। गणपति उत्सव को लेकर बाजार में दिख रही है जबरदस्त रौनक। गणपति उत्सव के लिए जा रही बप्पा की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होगा भव्य दिव्य गणपति उत्सव। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा त्योहार। बप्पा की मूर्ति निर्माण में श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी रखा जा रहा है विशेष ख्याल। कोट से पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण पर जोर। आपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए अभिनेता धनुष का नेक काम। चेन्नई के हजारों स्कूलों के बच्चों के लिए नई बिल्डिंग की सौगात। अभिनेता धनुष ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल का कराया कायाकल्प। स्कूल को अभिनेता धनुष की ओर से दान की गई इमारत का नाम रखा गया धनुष ब्लॉक। धनुष ने इस स्कूल में LKG से 10वीं तक पढ़ाई की थी। स्कूल को दान की गई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में अभिनेता धनुष उनके बैच के स्टूडेंट्स और सिनेमेटोग्राफर शामिल। स्कूल को दान की गई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में धनुष ने अपने शिक्षकों को सम्मान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के गंजम जिले में स्थित मां कुंधनी देवी में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने मां कुंधनी देवी मंदिर में साथ साथ सप्तपानी स्थित नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में शीश नवाजा। हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य की भी झलक देखी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत करने के लिए आई छात्राओं से मुलाकात की और छात्राओं को चॉकलेट्स दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किए। गुजरात के भावनगर से आई राहत वाली गुड न्यूज। ट्रेन के अलर्ट चालक ने बचाई एशियाई शेरों के झुंड की जान। ट्रेन चालक ने शेरों के झुंड को देखते ही रोक दी ट्रेन। समय रहते ट्रेन के रुकने से बच गई जान। महाराष्ट्र के जालना में किसानों की मेहनत का कमाल। भिंडी की ऑर्गेनिक खेती ने बदल दी किस्मत। कई देशों को भेजी जा रही है जालना के पिठोरी सिरस गांव के किसानों की उगाई गई भिंडी। पिठोरी सिरस गांव में किसानों के करीब 30 परिवार कर रहे हैं ऑर्गेनिक भिंडी की खेती। जम्मू कश्मीर सरकार ने राजौरी मेडिकल कॉलेज की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया। राजौरी स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई MBBS की 50 सीट। अब JMC कॉलेज में हर साल 100 की जगह अब 150 छात्र ले सकेंगे दाखिला। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से फिरोजाबाद के कलात्मक कांच उद्योग को मिली नई पहचान। इस उद्योग से जुड़ी महिलाओं को खासतौर पर हो रहा है फायदा। जिले से बाहर काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों का पलायन भी रुका। 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होती है फिरोजाबाद की कांच की विभिन्न वस्तुएं।

0: 26 सितंबर से जोधपुर में गर्जेंगे दुनिया भर से फाइटर जेट। पाकिस्तान बॉर्डर के पास होगी IAF की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ड्रिल तिरंग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस की नेक पहल, गुम हुए 200 मोबाइल लौटाए। गुम मोबाइल वापस मिलने पर मोबाइल मालिकों की चेहरे खिले। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, DA बढ़कर 38%। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील, भारी बारिश से अनुमान के मद्देनजर बरतें सावधानी। गुरुग्राम में भव्य कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। संत शिरोमणि गुरु और रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुग्राम में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा को मिली विकास की सौगात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन और ई पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उद्घाटन किया। राज्य में आपराधिक मामलों की जांच करने में तेजी लाना और अदालती प्रक्रिया को आसान बनाना लक्ष्य। भोपाल में बढ़ते ज्ञान क्षेत्रों पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के दरभंगा और आसपास के हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, दरभंगा हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की मिली इजाजत। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी जानकारी, दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द शुरू हो सकती है रात में उड़ान और लैंडिंग। सड़क सुरक्षा और बीमा नियमों को सख्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश। बिना बीमा चल रही गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट रूप में गाड़ी का बीमा नहीं तो तेल नहीं अभियान चलाने का सुझाव दिया। भारत के लकी रावत समेत दुनिया के मेधावी युवा पहुंचेंगे नॉर्थ पोल। शतरंज के खिलाड़ी और प्रज्ञानंद सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर पहुंचे, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए। प्रज्ञानंद ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में हासिल की बड़ी सफलता, इस प्रदर्शन में साल के अंत तक होने वाले ग्रैंड चेस टूर फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को मिली 9वीं सीट। 21 अगस्त को लुसाने लीग में उतरेंगे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी, आज अफना फ्रेंचाइजी के को ओनर बने जहीर। आगर बनकर बॉक्स ऑफिस पर छाने की तैयारी में श्रद्धा कपूर। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नंबरी रिलीज हुआ, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी फिल्म। जाने तू या जाने ना के साथ फिल्मों में कदम रखने वाले इमरान खान लगभग एक दशक के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं वापस, अधूरे हम अधूरे तुम से। तब्बू ने पर्सनालिटी राइट्स मामले में खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रच दिया इतिहास, सिर्फ 5 दिनों में $1 बिलियन क्रॉस हुई कमाई। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत के आसमान में देखा शानदार नजारा, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज पर आयोजित हुआ भव्य ड्रोन शो। इस ब्रिज पर एक नियमित आकर्षण बन गया है यह ड्रोन लाइट शो। वीकडेज में 300 ड्रोन के जरिए रोशन होता है आसमान, बनाए जाते हैं अलग अलग फॉर्मेशंस। दर्शक पुल के पास बने व्यूइंग प्लेटफॉर्म से इस जबरदस्त नजारे को देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में से एक है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। हांगकांग में जन्मे जॉइंट पांडा जुड़वा बच्चों जियाजिया और डेडी के दूसरे जन्मदिन के मौके पर शहर में मनाया गया जबरदस्त जश्न। शहर के 4 मुख्य इलाकों में चलाई जा रही है ये खास ट्राम के बाहरी हिस्सों में बनी है सभी 6 पांडा की तस्वीरें। इकतीस अगस्त तक चलेगी ये परेड जिसमें गर्मियों की पूरी छुट्टियां शामिल है। चीनी कंपनी BYD ने लॉन्च की अपनी पहली ब्राजील में बनी प्लग इन हाइब्रिड फ्लैक्स फ्यूल कार। जीएल मॉडल सिर्फ बिजली से 60 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि ज्यादा एडवांस जीएस वर्जन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। चीन ने लानजू जोंगशियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माउस चेकिंग ऑफिस नाम का कांच का कमरा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। इस ऑफिस में रहती हैं अभी 3 टैबी बिल्लियां। इस शेल्टर में बिल्लियों के लिए बिस्तर, कैट ट्री, एयर प्यूरिफायर और दूसरी सुविधाएं। इन बिल्लियों के ऑनलाइन वायरल होने के बाद एयरपोर्ट ने उन्हें अपना लिया और उन्हें माउस कैचिंग ऑफिस का डायरेक्टर बना दिया। कजाकिस्तान में उमित नाम का एक मादा अमू टाइगर को इले बल्शक नेचर रिजर्व ने जंगल में ही छोड़ दिया। कैस्पियन टाइगर कभी मध्य एशिया के बड़े इलाके में पाए जाते थे, लेकिन 20वीं सदी में शिकार रहने की जगह खत्म होने की वजह से विलुप्त हो गए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है। लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बारिश किसी के लिए परेशानी लेकर आती है तो किसी के लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप दिखा जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती बूंदों ने सूखी वादियों को फिर से जिंदा कर दिया है। पहाड़ हरे रंग की चादर ओढ़ चुके हैं और महीनों से खामोश पड़े झरने अब पूरे जोश के साथ गूंज रहे हैं। नजारा ऐसा जिसे देखकर हर कोई कुछ पल ठहर जाना चाहता है।
2: ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि मॉनसून की मेहरबानी का है। पहाड़ों से दूध की तरह गिरता पानी, चारों ओर बिछी हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच कुदरती सुंदरता। महाराष्ट्र के जालना जिले का धावड़ा इलाका इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद यहां का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान के अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों से फूटते झरनों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। सिलिसेड और आसपास हुई अच्छी बारिश के बाद मशहूर गरवाजी वाटरफॉल इस सीजन में पहली बार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पानी की तेज धार और हरियाली से घिरी पहाड़ियां लोगों का मन मोह रही हैं। बारिश का ये पानी सिर्फ झरनों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि खेतों में भी नई उम्मीद जगा रहा है। खरीफ की फसल के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मानसून एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बारिश मेहरबान होती है तो सूखे पहाड़ भी जिंदा हो उठते हैं। झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और ठंडी हवाएं, यही है मानसून का वो जादू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जालना से गौरव विजय और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बीजेपी सांसद कंगना रनौत को भीड़ ने क्यों घेरा? जेन ज़ी पर विवादित बयान के बाद कंगना पर हमला। बाढ़ में बिल्डिंग के बहने का सच। सच्चा प्यार उम्र का मोहताज नहीं। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।

0: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
2: किया सेरोस ईवी, सुपीरियर बियॉन्ड बिलीव।
3: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़। केदारनाथ मंदिर से लेकर शिव के आदि योगी रूप की कांवड़ बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। मणिपुर में बॉक्सर जदुमणि सिंह का ग्रैंड वेलकम, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल, इंफाल में फूलमालाओं के साथ जश्न। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की थी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है और कांवड़ यात्रा में तो आस्था के साथ भव्यता का अनोखा संगम भी देखने को मिल रहा है। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या युवा, हर शिव भक्त बोल बम के जय घोष के साथ महादेव की भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। तो इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है और वो है सावन में सड़कों पर कांवड़ियों की बहार। हरिद्वार से लेकर देवघर तक आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। कंधों पर कांवड़, होठों पर शिव का नाम और दिल में अटूट आस्था लिए भोलेनाथ के भक्त आगे बढ़ रहे हैं। यही सावन की सबसे सुंदर पहचान बन गई है।

0: कांवड़, जिसमें स्वयं भोलेनाथ का वास है, कांवड़ जो आस्था, तप और भोलेनाथ की उपस्थिति का प्रतीक है, कांवड़ जिसे श्रद्धालु भगवान शिव का पावन आसन मानकर कंधों पर उठाते हैं, सावन आते ही शिव भक्ति का रंग हर ओर छा जाता है, कहीं पारंपरिक कांवड़ तो कहीं भव्य और आकर्षक झांकियों से सजी अनोखी कांवड़ देखने के लिए मिलती हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या युवा, हर शिव भक्त बोल बम के जय घोष के साथ महादेव की भक्ति में लीन दिखाई देता है।
1: पायल इसलिए पहना कि कांवड़ खंडित ना हो। कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे।
0: हरिद्वार में कांवड़ मेले के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। हर जगह कांवरिया ही कांवरिया दिखाई दे रहे हैं। हाईवे पूरी तरह कांवड़ियों से पटा है और हर की पैड़ी पूरी तरह कांवड़ियों से गुलजार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कांवड़ियों का जन सैलाब ही उमड़ आया हो। हर की पैड़ी पूरी तरह से भगवा हो चुकी है। शिव सेतु समेत सभी जगह कांवड़िया ही दिखाई दे रहे हैं। अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िये गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। सावन के इस महापर्व में आस्था के साथ साथ प्यार का भी अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। कांवड़ मार्ग पर कई प्रेमी युगल भी कांवड़ लेकर चल रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं हरियाणा के रहने वाले दंपत्ति, जो करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात पति का साथ नहीं, बल्कि उसके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही उसकी पत्नी निशु है, जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर सास ससुर को स्नान कराने के लिए पति संग पैदल चल रही है।
2: हाँ, मेरे पति जाते थे पहले अकेले लेके आते थे, लेकिन पिछली बार से मेरा भी मन किया कि मैं भी साथ में चलूं। अब की बार दूसरी कावड़ है हमारी जोड़े से, और हम अपने सास ससुर को नहलाते जाके, बहुत अच्छा लगता है। भगवान उनको सलामत रखे, बस यही बोलने से हमारी अरदास है।
0: बिहार के मुंगेर के असरगंज कच्ची कांवड़िया पथ पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िया पथ पूरी तरह भगवामय हो चुका है। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज रहा है। लाखों शिव भक्त सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देवघर में बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करेंगे।
3: बाबा का डमरू है ये, भगवान गणेश और जो पहली बार पद यात्रा में आया भगवान श्री राम, एक छवि है।
4: क्या चीज से बनाए?
3: ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है।
4: कितना वजन है इनका?
3: ये लगभग ये करीब वजन तो वेट नहीं की, लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ ये 15 केजी से ऊपर है, 18 केजी लमसम है।
0: वहीं पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो हाथों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने ये यात्रा बिच्छू के आकार में दोनों पैरों को ऊपर कर हाथ के बल पूरा करने का संकल्प लिया है। पटना सिटी के विशाल शिवधारी कांवड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था अजगैबी नाथ धाम से 54 फीट लंबी विशाल कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्ति गीतों और नृत्य के बीच श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। इस विशाल कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भव्य बनावट है। 54 फीट लंबी इस कांवड़ में 54 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ माँ दुर्गा और माँ काली की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं चांदी से बाबा बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की आकर्षक कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं, जो श्रद्धालुओं और राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुंगेर से गोविंद कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: महाराष्ट्र में बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब कुछ ही दिनों में बप्पा हर घर और पंडालों में पधारने जा रहे हैं। ऐसे में बप्पा के स्वागत के लिए उनके भक्त पूरे जोश के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, और वो है नागपुर में दिखने लगे गणेशोत्सव के रंग। आपको बता दें कि नागपुर में मूर्तिकार दिन रात एक करके बप्पा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हालांकि इस बार महंगाई का असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पहले जैसी ही अटूट है।

0: गणपति बप्पा मोरया। बस अब कुछ ही दिनों की बात है और हर घर, हर गली और हर मंडप बप्पा के स्वागत में सज जाएगा। नागपुर के मशहूर चितारोली में इन दिनों यही सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं बप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है। हर मूर्ति में कलाकार अपनी मेहनत के साथ श्रद्धा भी जोड़ रहा है। चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश तक है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं महाराष्ट्र के कई शहरों के साथ साथ दूसरे देशों में भी भेजी जाती हैं।
1: ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
2: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और कब?
1: ये लोग जून महीने में देते ऑर्डर। जून
2: कब बना के देते आप?
1: हम लोग तारीख रहते उनके जब जाने के फ्लाइट के रहते ना, तो वो तारीख दे के जाल चले जाते हम लोगों को, एक दो दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: इस बार बप्पा की प्रतिमाओं में खाटू श्याम बाबा और भगवान महाकाल की छवि वाली प्रतिमाएं भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ के मूर्तिकार दिन रात एक करके बप्पा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
3: भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए, तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है, तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं, उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं, इस प्रकार की डिमांड आ रही है।
0: लेकिन इस बार बप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच महंगाई की भी चर्चा है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी।
4: इस बार देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है।
0: महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन बप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा हर साल की तरह ही अटूट है। भक्त अभी से अपने पसंद की मूर्तियां बुक करने पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। 14 सितंबर को गणपति बप्पा पूरे देश में अपने भक्तों के बीच विराजमान होंगे। उससे पहले नागपुर की चितारोली में हर हाथ सिर्फ एक ही काम में जुटा है, अपने लाडले बप्पा के स्वागत को सबसे सुंदर बनाने में। बप्पा के स्वागत की तैयारी बता रही है कि इस बार भी हर ओर गूंजेगा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: भारत की नारी अब हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान कर रही है। कभी खेल के मैदान में अपने दमदार पंच और शानदार किक से विरोधियों को मात दे रही है, तो कभी रेलवे जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारियां पूरी दक्षता के साथ संभाल रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है महिलाओं के हाथ रेलवे स्टेशन की कमान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल ने नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। यहाँ डोमेनगढ़ रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संभाला जा रहा है। इस स्टेशन पर टिकट बुकिंग से लेकर यात्री सहायता, स्टेशन प्रबंधन, सूचना व्यवस्था और दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी तरह से महिलाओं द्वारा की जा रही है।
6: ये गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन है। मुख्य गोरखपुर जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पहली नजर में ये किसी सामान्य रेलवे स्टेशन जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी कार्य प्रणाली को करीब से देखते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। यहाँ स्टेशन संचालन से लेकर यात्रियों की सुरक्षा तक, टिकट काउंटर से लेकर कार्यालय के कामकाज तक और अनाउंसमेंट से लेकर ट्रेन संचालन में सहयोग तक हर काम, हर अहम जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों के हाथ में सौंपी गई है। यानी ये स्टेशन पूरी तरह महिला शक्ति के भरोसे संचालित किया जा रहा है। डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जहां स्टेशन की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में सौंपी गई है।
7: हमारे डीआरएम महोदय ने और डीआरएम महोदया ने डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दिया है, जिसमें स्टेशन मास्टर महिला हैं, पीआरएस में भी महिला हैं और सुरक्षा में भी महिला हैं। अनुभव हो रहा है, कोई डर नहीं है, ड्यूटी तो कहीं भी करनी ही है, ड्यूटी के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां अपना निभाना हर जगह पड़ता है, तो अपना फर्ज है ड्यूटी निभाना।
6: स्टेशन मास्टर हूँ, टिकट बुकिंग क्लर्क, रेलवे सुरक्षा बल की कर्मी हो या सहायक स्टाफ, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ निभा रहा है और पूरे स्टेशन पर केवल महिलाओं की नियुक्ति से स्टाफ में खुशी का माहौल है।
8: सबसे दिक्कत ये लगा ना कि कभी हम लोग ऐसे कर नहीं रहे थे ड्यूटी, हमेशा पुरुषों के साथ ही मिलके हम लोग किए हैं, फर्स्ट चांस है कि हम लोग ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ महिलाएं कर्मचारी हैं, तो पहले लग रहा था कि हम लोग सारी महिलाएं हैं कैसे किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अधिकारी हम लोग की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं।
6: डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिलाएं 3 शिफ्ट में सेवा दे रही हैं, जिनमें नाइट शिफ्ट भी शामिल है। जाहिर है डोमिनगढ़ क्योंकि आउटर एरिया स्टेशन है, ऐसे में लखनऊ रेलवे मंडल का सेफ्टी से जुड़े तमाम जरूरी पहलुओं पर भी खास फोकस है, ताकि रेलवे स्टेशन पर महिलाएं सुरक्षित माहौल में काम कर सकें।
9: शुरू में जब आए थे तब तो परेशानी थोड़ी लग रही थी, क्योंकि पहले बार अचानक इंडिविजुअल ड्यूटी करनी पड़ी थी, लेकिन अभी बहुत सब कुछ सेटल हो गया है हम लोग यहाँ पे करने में काम। यहाँ पे अभी जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं उन सबों को हम लोग खुद से इंडिविजुअली देखना पड़ता है, सारा उसका जो आने जाने का प्रोसेस है, प्रोसीड करना हुआ, लाइन पे लेना हुआ, देना हुआ, ब्लॉक पे जो भी काम करना होता है वो सारी चीजें हम लोग अभी इंडिविजुअल कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर में करते तो पुरुषों के साथ करना होता था, यहाँ सब कुछ हम लोग अकेले कर रहे हैं।
6: देश में रेलवे स्टेशन पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल सबसे पहले मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन ने पेश की थी। ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहां स्टेशन संचालन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली।
10: महिलाएं जो है किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह गई हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर रही हैं। तो उसी क्रम में जो है महिला सशक्तिकरण के क्रम में जो है एक स्टेशन पे सभी महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि अच्छा काम कर रही हैं, और मैं इसके लिए लखनऊ मंडल ने जो भी प्रायोगिक जो ये किया है मैं इसके लिए उन्हें जो है बधाई देता हूँ।
6: नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का ऐसा उदाहरण है जो ये साबित करता है कि जिम्मेदारियों की पटरियों पर महिलाएं भी उतनी ही मजबूती से दौड़ सकती हैं जितनी रफ्तार से यहाँ ट्रेनें गुजरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: लंगूर की हूबहू आवाज निकालने की अनोखी कला कुछ ही लोगों में होती है। उन्हीं में से एक है असलम खान, जो कि आजकल संसद भवन परिसर के आसपास के बंदरों को भगाने में मदद करते हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है संसद परिसर में बंदर भगाने वाला मंकी मैन। जी हाँ, असलम खान संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था का एक खास हिस्सा बन गए हैं, जहां बंदरों की बढ़ती संख्या लोगों और हरियाली के लिए चुनौती बन रही है। वहीं असलम खान बिना किसी हथियार या मशीन के सिर्फ अपनी आवाज से इस चुनौती का समाधान निकालते दिख रहे हैं। इनके मुताबिक संसद भवन और उसके आसपास के इलाके में करीब 500 से 1000 बंदर मौजूद हैं। ये कभी लोगों को परेशान करते हैं तो कभी पेड़ पौधों और परिसर की हरियाली को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में उनकी ये अनोखी आवाज बंदरों को दूर रखने का प्रभावी तरीका साबित होती है, और खास बात है कि उनके पास बंदर भगाने का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो 30,000 कोर्ट में बंदर भगाने का काम करते थे। असलम खान कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करते हैं, जिनके मुताबिक उनको 18,000 रुपए सैलरी मिलती है। ये पूरे संसद परिसर और अगल बगल के इलाकों में ऐसे ही आवाज निकालकर बंदर भगाते रहते हैं। संसद परिसर में कई जगहों पर खाने की कैंटीन भी है, जहां बंदर झपट्टा मारकर खाना छीनते हैं। इस जगह पर लगातार असलम खान ऐसे ही आवाज निकालकर इन बंदरों को भगाते रहते हैं। असलम खान जो आवाज निकालते हैं वो लंगूर की आवाज होती है, जिससे लाल मुंह वाले बंदर डरते हैं।
11: असलम खान इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। असलम भाई, आप यहाँ बंदरों को भगा रहे हैं, कितने सालों से ये सब काम कर रहे हैं और एक अलग तरीके की आवाज निकालते हैं?
12: सर, मैं लंगूर की आवाज निकालता हूँ बंदर भगाने के लिए, और मेरे को 30-35 साल हो गए बंदर भगाते हुए।
11: जी,
12: पहले लंगूर रखते थे, अब बैन लगा दिया, इसलिए तो आवाज से लंगूर भगा, आवाज से ही मतलब बंदरों को भगाते हैं लंगूर की आवाज से।
11: क्या इस पूरे परिसर में संसद भवन के अंदर ऐसे बंदर आ जाते हैं?
12: जी जी जी।
11: अच्छा,
12: आते हैं तभी तो हमें रख रखा सरकार ने।
11: अच्छा अच्छा
12: जी।
11: तो मतलब सरकारी तौर पर आप यहाँ मुलाजिम है?
12: नहीं नहीं, ठेकेदारी में सर।
11: ठेकेदार, प्राइवेट?
12: प्राइवेट।
11: अच्छा अच्छा
12: जी जी।
11: तो ये एक कठिन काम है, मतलब बंदर इतने ज्यादा यहाँ पर हैं उनको भगाना, और ये रेगुलर आप लोग इसको लेकर के वो कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसको आप करते हैं?
12: सर हम तो आवाज से ही भगाते हैं सर।
11: एक बार आवाज निकालिए, आप कैसे वो करते हैं? तो ये ऐसे ही करके आप संसद परिसर और यहाँ जितने भी बंदर हैं इस पूरे इसी के अंदर ये सब करते हैं?
12: हाँ जी सर, आवाज से ही बंदर भगाते हैं सर।
5: बढ़ते आगे, मिथिलांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से नाइट फ्लाइट सेवा की शुरुआत होने वाली है। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़ी सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज है, दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा। जी हाँ, दरभंगा एयरपोर्ट को लंबे समय से जिस पल का इंतजार था वो अब बेहद करीब है। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। इसके लिए जरूरी तकनीकी, कागजी और जमीनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब एयरलाइंस कंपनियों के नए टाइम टेबल के साथ किसी भी दिन रात में उड़ानों का संचालन शुरू हो सकता है। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से सिर्फ दिन के समय में ही विमान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं, लेकिन नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने के बाद यह एयरपोर्ट 24x7 यानी कि 24 घंटे संचालन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा। इससे यात्रियों को ज्यादा उड़ानों का विकल्प मिलेगा और मिथिलांचल की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाइट लैंडिंग से जुड़ी सभी तकनीकी कमियां दूर कर दी गई हैं और आवश्यक कार्य पूरे हो चुके हैं। अब एयरलाइंस कंपनियों का नई समय सारणी जारी होते ही रात में भी उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। जाहिर है, नाइट फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के लिए हवाई संपर्क का और भी मजबूत केंद्र बन जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को सुरक्षित रखने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके अंतर्गत अब सरकार ने राज्य में एनालॉग यानी कि कृत्रिम पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है महाराष्ट्र में कृत्रिम पनीर पर पाबंदी। सरकार के इस फैसले का पालन ना करने या फिर नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक उपभोक्ताओं को असली डेयरी पनीर के नाम पर कृत्रिम उत्पाद बेचकर गुमराह करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

0: महाराष्ट्र में अब एनालॉग यानी कृत्रिम या नॉन डेयरी पनीर पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस पाबंदी का पालन नहीं करने पर दुकानदारों को जुर्माना या जेल या फिर दोनों हो सकती है। सरकार के मुताबिक उपभोक्ताओं को असली डेयरी पनीर के नाम पर कृत्रिम उत्पाद बेचकर गुमराह करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने 30 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA को पूरे राज्य में निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
1: महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है। एनालॉग पनीर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है।
0: दरअसल एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद होता है जिसे पारंपरिक दूध से नहीं तैयार किया जाता है। इसको बनाने में वनस्पति तेल, स्टार्च, प्रोटीन पाउडर और अन्य खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी बनावट और स्वाद सामान्य पनीर जैसा हो सकता है, लेकिन पोषण मूल्य और निर्माण प्रक्रिया डेयरी पनीर से बिल्कुल अलग होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक एनालॉग पनीर को स्पष्ट लेबलिंग के साथ बेचा जाए तो ये अलग श्रेणी का खाद्य उत्पाद है, लेकिन इसे असली पनीर बताकर बेचना उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है।
2: ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल ही पनीर बकवास था। अब जो भी नेचुरल पनीर जो है वो बच्चों के लिए, पेशेंटों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने।
1: आप समर्थन करते हैं इस फैसले का? 6 महीने तक की जेल और 6 लाख रुपए तक का?
2: सर बिल्कुल करते, बिल्कुल करते, हम उनकी हर उनसे सहमत है, बिल्कुल सहमत।
1: आप कौन सा पनीर बेचते हैं?
2: हम मलाई पनीर बेचते हैं।
0: FDA ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी या अन्य प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर बताकर बेचता है तो इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
3: ऐसे अपन जो काटते ना सर आराम से कटना चाहिए, और सर जी इसमें ना तनाव नहीं होना चाहिए। हाँ तो इसे टूटे ना फटाक से फटना चाहिए सर जी, ये दिख रहा है ना, ऐसा होना चाहिए, तनना नहीं चाहिए, कोई इसकी सर पहचान है। आप देखो सर जी खा के देखो थोड़ा, तो ऐसे आप खाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ मीठा सा खा रहे हैं, जैसे कि मिठास थोड़ा होनी चाहिए।
0: सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पनीर बेचने वाले कारोबारियों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी और मिलावटी या भ्रामक तरीके से बेचे जाने वाले उत्पादों पर प्रभावी रोक लग सकेगी। सरकार के इस फैसले का ग्राहक स्वागत कर रहे हैं।
4: ठीक है, ये तो सही डिसीजन है, अगर कहीं नकली मिलता है बट हम यहाँ से हम लेते हैं तो ठीक है, ये तो शुद्ध है एकदम। मैं खाता हूँ हर बार, मैं कम से कम यहाँ से 25-30 साल से ले रहा हूँ। जी जी सही है, एकदम सही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ नुकसान हो रहा है उनका, लोगों का, तो ये तो सही डिसीजन है।
0: अब राज्य में खाद्य सुरक्षा विभाग और FDA की टीमें बाजारों, गोदामों, डेयरियों और होटल रेस्टोरेंट्स में विशेष अभियान चलाकर नियमों के पालन की निगरानी करेंगे और नकली पनीर बेचने वालों पर कार्रवाई करेंगे।
1: शुद्ध पनीर बेचते हैं पहले से ही, उनमें यहाँ पर खुशी का माहौल एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए जाहिर तौर पर खुशी की मांग है। उनका कहना है कि उनकी सेल जो है, उनके पनीर की मांग जो है वो अब बढ़ गई है, लोग उनका पनीर ले रहे हैं, जो होटल व्यावसायिक हैं वो उनका पनीर ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और वो इस निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं।
0: दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
5: कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। बॉक्सिंग में इस बार 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए हैं। ऐसे में इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए हरियाणा के करनाल में बेटियां भविष्य की चैंपियन बनने की तैयारी कर रही है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है तैयार हो रही है बॉक्सर बेटियां। जी हाँ, इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीतना हर बॉक्सर का सपना होता है, लेकिन उस सपने की नींव करनाल जैसी छोटी छोटी बॉक्सिंग अकेडमीज में रखी जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की बेटियों के दमदार प्रदर्शन के बाद अब करनाल की यही रिंग भविष्य के चैंपियन तैयार करने में जुटी है।
6: ये
5: सच है कि हर विश्व विजेता की शुरुआत किसी छोटे से बॉक्सिंग रिंग से होती है। करनाल की ये रिंग भी ऐसे ही बड़े सपनों को आकार दे रही है। पंचिंग बैग पर लगातार पड़ते मुक्के, मजहब का बैलेंस और आंखों में जीत का जुनून, ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि भारत के अगले चैंपियनों की तैयारी है। हर मुक्का एक सपना है, हर पसीने की बूंद देश के नाम है। हरियाणा के करनाल में हर सुबह की शुरुआत देश के लिए मेडल लाने के संकल्प के साथ होती है और युवा बॉक्सर हर दिन इसी जज्बे के साथ रिंग में उतरते हैं।
6: अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें देन बॉक्सिंग इजी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बट फिर उसके बाद आपको इजी लगेगी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें।
5: इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा साफ देखने को मिला। सबसे ज्यादा स्वर्णिम सफलता मुक्केबाजों के हिस्से आई। अब इसी जीत की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी जारी है। करनाल की बॉक्सिंग रिंग में रोज पसीना बहाती ये बेटियां आने वाले वर्षों में भारत के लिए नए पदक जीतने का सपना संजोए हुए हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन और बुलंद हौसलों के साथ ये हर दिन खुद को तराश रही है।
6: काफी हद तक अच्छे मतलब प्लेयर्स निकले हैं और सारा कुछ अच्छा रहा और मैं अपना भविष्य यही देखती हूँ कि मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूँगी।
5: करनाल की इस बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचने के लिए कई खिलाड़ी रोज कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। कुछ तो सुबह और शाम दोनों वक्त लंबी दूरी तय करके यहां अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। पढ़ाई और प्रैक्टिस के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता लेकिन इन युवा मुक्केबाजों के हौसले हर चुनौती पर भारी पड़ते हैं।
6: मैं चिड़ाऊ गांव से आती हूँ, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सुबह शाम अप डाउन करती हूँ। बॉक्सिंग में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है, बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है।
5: अनुशासन के साथ सबसे जरूरी होती है सही कोचिंग जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वजह है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी बॉक्सिंग में रुझान बढ़ता जा रहा है।
7: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की पिटाई के दावे से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि जेनजी को लेकर दिए गए हालिया विवादित बयान के बाद लोगों ने बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की पिटाई कर दी। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और

पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, केदारनाथ मंदिर से लेकर शिव के आदियोगी रूप की कांवड़ बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप। इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड।

मणिपुर में बॉक्सर जदुमणि सिंह का ग्रैंड वेलकम। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल। इम्फाल में फूल मालाओं के साथ जश्न।

0: अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत। चेन्नई में खास कार्यक्रम, इस स्कूल में धनुष ने की 10वीं की कक्षा की पढ़ाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी किसी तस्वीर को नया एंगल देकर पेश किया जाता है। लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग इसे सच मान लेते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां होती है वायरल दावों की सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल, और झूठ के हर फ्रेम को हम तथ्यों की रोशनी में उतारते हैं। सबसे पहले आज जिस खबर की पड़ताल हम करने जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि जेंजी को लेकर दिए गए हालिया विवादित बयान के बाद लोगों ने बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की पिटाई कर दी। क्या है सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के से जुड़ी है, जिसको शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि दोनों वीडियोस असम बाढ़ के हैं। क्या है इन दोनों वीडियोस की सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की पिटाई के दावे से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि जेंजी को लेकर दिए गए हालिया विवादित बयान के बाद लोगों ने बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की पिटाई कर दी। क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
2: कार से निकलती एक महिला पर भीड़ के हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जैसे ही वो कार से उतरती है, वहां मौजूद लोग उसे पीटते हैं और उसके बाल खींचने लगते हैं। इस दौरान कुछ पुलिस वाले मास्क पहने हुए इस महिला को भीड़ से बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो में जिस महिला पर हमला हो रहा है वो अभिनेत्री बीजेपी सांसद कंगना रनौत है।
3: नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक
2: और उन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जेंजी पीढ़ी के बारे में विवादित बयान दिया था,
3: उसको
2: इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल देश के कई हिस्सों में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेंजी के लिए विवादित बयान दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें कार से उतरने के बाद एक महिला पर कई लोग हमला करते नजर आ रहे। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि कंगना के आपत्तिजनक बयान के बाद लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो

इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर जेनजी पर विवादित बयान को लेकर कंगना पर हमला किया गया होता तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में ये खबर बनती, सुर्खियों में होती।

0: दौरान हमें कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर जेनजी पर विवादित बयान को लेकर कंगना पर हमला किया गया होता तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में ये खबर बनती, सुर्खियों में होती। इसके अलावा फैक्ट चेक टीम ने कंगना रनौत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन वहां भी दावे की पुष्टि करती हमें कोई पोस्ट नहीं मिली। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, भीड़ जिस महिला को घेर कर पीट रही है, जब हमने उसके एक फ्रेम को जूम करके देखा तो ये इशारा मिला कि ये कंगना रनौत नहीं, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा ये जो वीडियो है इसमें नजर आ रही महिला की पहचान क्या है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: इन सवालों का जवाब देने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि विवादित बयान के बाद उन पर हमला हुआ है, क्योंकि अगर कंगना पर कोई हमला हुआ होता तो ये अपने आप में बड़ी खबर होती और कहीं ना कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती। इसके बाद हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, इस दौरान हमें वीडियो में एक न्यूज आउटलेट का लोगो दिखाई दिया। सर्च के दौरान हमें इसके फेसबुक पेज पर वायरल वीडियो का साफ और बड़ा वर्जन 30 जुलाई को अपलोड किया गया हुआ मिला। पोस्ट के मुताबिक वीडियो में दिख रही महिला तृणमूल कांग्रेस के नेता कृष्ण दास की बेटी प्रणयिता दास है और ये वीडियो जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने का है। 31 जुलाई को छपी एक रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक प्रणयिता दास बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में 30 जुलाई को कोतवाली थाने में गई थी। उसी वक्त कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता ने उन पर अंडे फेंके और विरोध प्रदर्शन किया। थाने के मुख्य द्वार पर भी उनके साथ धक्का मुक्की की गई थी। एक बांग्ला न्यूज आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रणयिता जलपाईगुड़ी जिला परिषद की शिक्षा अधिकारी हैं। उनके पिता कृष्णदास जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए थे। प्रणयिता और उनके पिता दोनों ही बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मामले में आरोपी हैं। दरअसल चुनाव के नतीजे घोषित होने के अगले दिन 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला किया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये तृणमूल कांग्रेस की नेता प्रणयिता दास के साथ जलपाईगुड़ी में 30 जुलाई को हुई धक्का मुक्की का वीडियो है। कंगना के विवाद बयान के बाद उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: असम की बाढ़ से जोड़ते हुए दो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में एक बिल्डिंग गिरकर पानी में बह जाती है, दूसरे वीडियो में पानी की तेज बहाव में एक व्यक्ति बह जाता है। वायरल हो रहे दोनों वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

असम में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। हजारों घर, खेत और मवेशी बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। इस साल बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अब भी प्रभावित हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर असम की बाढ़ से जोड़ते हुए कई वीडियोस और तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में ये दोनों वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं। पहले वीडियो में एक लंबी बिल्डिंग गिरकर पानी में बह जाती है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 2021 में गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा आज 2026 में असम की डूबती हकीकत पर सबसे बड़ा सवाल है। तारीखें बदल गईं पर असम का दर्द नहीं बदला। आखिर कब तक खोखले वादों की कीमत जनता अपनी जान देकर चुकाएगी? दूसरे वीडियो में पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बहता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ जैकेट पहने कुछ लोग उसे बचा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ का पानी जानलेवा हो गया और प्रकृति ने अपनी असली ताकत दिखाई। बचाव दल तेज बहाव के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। असम की बाढ़ का पता कर ये दोनों वीडियो धड़ल्ले से

0: शेयर किए जा रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग वायरल हो रहे दोनों वीडियोस को असम की बाढ़ से जोड़कर बता रहे हैं। पहले वीडियो में एक लंबी बिल्डिंग को पानी में गिरते हुए और फिर तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। वहीं दूसरे वीडियो में पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बहता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दोनों ही वीडियो धड़ल्ले के साथ शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे दोनों वीडियोस को बारी बारी से देखा। इस दौरान हमें पहले वीडियो में कुछ आवाजें सुनाई दी। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो फिर ये असमिया नहीं लगा, मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। वहीं दूसरे वीडियो के हर फ्रेम को हमने गौर से देखा और इसमें नदी की सीढ़ियां भी देखने को मिली। जब हमने इसे गौर से देखा तो हरिद्वार के घाट जैसा हमें नजर आया। लिहाजा ऐसे में हमें दोनों वीडियोस के दावे पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि अगर वायरल हो रहे दोनों वीडियोस का संबंध असम के बाढ़ से है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर अलग अलग घटना से संबंधित वीडियोस को असम की बाढ़ के साथ जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक की टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए तहकीकात में जुट गई। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। पहले वीडियो का सच जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 21 जुलाई को पब्लिश एक रिपोर्ट में मिला। खबर के मुताबिक वीडियो जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले का है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पानी में बह गया था। सर्च के दौरान कश्मीर के एक लोकल मीडिया आउटलेट पर भी वायरल हो रहे वीडियो जैसा एक वीडियो मिला। वीडियो को 21 जुलाई को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक बडगाम जिले के बीरवाह में बाढ़ के पानी में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया था। फैक्ट चेक की टीम ने दूसरे वीडियो की भी जांच की। लगातार सर्च करने पर हमें वायरल हो रहे वीडियो जैसा ही वीडियो उत्तराखंड पुलिस के एक्स हैंडल पर मिला। इसे 26 जुलाई को शेयर किया गया था। पुलिस के मुताबिक वीडियो हरिद्वार के कांगड़ा घाट का है। इसमें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान गंगा की तेज लहरों में बहते हुए एक व्यक्ति को बचा रहे हैं। इस वीडियो का असम के बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में दोनों वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो झूठा साबित हुआ। पहला वीडियो जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले का है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पानी में बह गया था। वहीं दूसरा वीडियो हरिद्वार का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: बुजुर्ग कपल का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिस सादगी और प्यार से अपनी पत्नी को खाना परोसते नजर आ रहे हैं, उसने हजारों लोगों की आंखों को नम कर दिया है। लोग इस जोड़े को कपल गोल्स बता रहे हैं और इस अटूट साथ की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। ये वीडियो इस बात की याद दिला रहा है कि सच्चा और लंबा रिश्ता किसी बड़े दिखावे से नहीं, बल्कि सालों के धैर्य, समझदारी और एक दूसरे की देखभाल के साथ ही हर दिन एक ही इंसान को चुनने से बनता है। एक पोती ने अपनी दादी के साथ ऐसा प्यारा वीडियो बनाया जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। कुछ ही सेकंड में दोनों का बदला हुआ अंदाज देखकर यूजर्स तारीफ करते नहीं थक रहे। वीडियो की शुरुआत में दादी अपने सामान्य अंदाज में दिखती हैं। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो में शानदार ट्रांजिशन आता है और दादी बिल्कुल एक नए लुक में नजर आती हैं। उन्होंने साड़ी को अलग स्टाइल से कैरी किया होता है, बाल खुले होते हैं और हल्की लिपस्टिक के साथ उनका अंदाज हर किसी का ध्यान खींच लेता है। वीडियो में सबसे खास बात सिर्फ दादी का नया लुक नहीं, बल्कि दादी और पोती के बीच का प्यार और अपनापन भी है। जिस तरह पोती अपनी दादी को नए अंदाज में तैयार करती है और दोनों साथ में मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने नजर आते हैं, वो पल लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें एक शख्स स्पाइडरमैन की पोशाक पहनकर व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को सड़क पार कराता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अमेरिका के जोन्सबरो का है, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। वीडियो को शेयर करते हुए लोग यही कह रहे हैं कि केवल फिल्म और कार्टून दिखने वाले हीरो ही असली हीरो नहीं होते, बल्कि असल जिंदगी में जो अच्छा काम करता है वो ही असल हीरो होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बच्चे को लेकर सड़क पर जा रहा है। मौसम इतना खराब है कि वो बच्चे को यूं ही लेकर नहीं निकल सकता था। ऐसे में पिता ने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए एक अनोखा जुगाड़ निकाल लिया। पिता ने छाता या रेनकोट की बजाय बच्चे को पूरी तरह एक बड़ी सी पॉलिथीन में पैक कर दिया। प्लास्टिक के अंदर बंद बच्चा बिल्कुल सूखा दिख रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा पॉलिथीन में आराम से बैठा हुआ है। वीडियो में आगे आप देख सकते हैं कि पिता ने बच्चे को सावधानी के साथ बैग में उठाया और बैग को झोले की तरह पकड़कर चलने लगा। वहीं बच्चा भी बदमाशी करने की बजाय पूरी तरह शांत नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस नन्ही बच्ची की समझदारी और संवेदनशीलता का ये वीडियो खूब वायरल है। बच्ची के पिता अपने काम में मगन हैं और बच्ची की फ्रॉक पिता की कुर्सी के नीचे फंस जाती है। इतनी छोटी सी बच्ची की संवेदनशीलता तो देखिए, वो अपने पिता के काम के महत्व को जानकर उनको डिस्टर्ब तक नहीं करना चाहती, इसलिए वो छोटी सी बच्ची कुर्सी के पास ही बैठ जाती है और इंतजार करती है कि मीटिंग खत्म होगी तब कुर्सी हटेगी और उसकी फ्रॉक आजाद होगी और उसे भी आजादी ही मिलेगी। क्योंकि पिता के काम में वो तो बेवजह ही फंस गई है ना। लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और बच्ची की संवेदनशीलता और सहनशीलता को खासकर देखकर उस पर प्यार लुटा रहे हैं। हाथी की बुद्धिमानी और इंसान के प्रति उसके स्नेह को दर्शाता ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो किसी चिड़ियाघर का है जहां हाथियों को देखने के लिए बच्चे समेत कई लोग जुटे हैं। इसी दौरान एक बच्चे का खिलौना पानी में गिर जाता है, जिसके बाद एक हाथी वहां पर पहुंचता है और अपनी सूंड की मदद से उस खिलौने को पानी से बाहर निकालकर वापस बच्चे को सौंप देता है। ये मंजर ही लोगों को खुश कर दे रहा है। ये भावुक और सुंदर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें बेजुबान जानवर की प्यास और बच्चों की संवेदनशीलता दर्शाई गई है। वायरल हो रहा ये वीडियो ये सिखाता है कि मूक प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना हमारा कर्तव्य है। वीडियो में इस कुत्ते को प्यास लगी है, उसका इशारा भी उसकी प्यास और लाचारी को बयां कर रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं लेकिन किसी ने भी इस डॉगी की मदद नहीं की। लेकिन तभी वहां स्कूल से लौटती एक लड़की की नजर इस प्यासे कुत्ते पर पड़ी। लड़की उसके इशारे को समझ गई और पानी पीने के लिए नल को चालू कर दिया, जिसके बाद ये कुत्ता आराम से पानी पीने लगा। नदी के पानी में उतरने से पहले अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ का असली राजा यानी मगरमच्छ एक झटके में किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ताजा वीडियो ने डर के सारे पैमाने ही मानो बदल दिए हैं। वीडियो में एक बच्चे का ऐसा बेखौफ अंदाज नजर आया जिसे देख इंटरनेट की जनता की आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा नदी के पानी में एक छोटी सी नाव के पास बने फ्लोटिंग बोट पर मजे से लेटा हुआ था। माहौल एकदम शांत था और बच्चा आराम से चिल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक पानी में हलचल हुई और एक खूंखार मगरमच्छ धीरे धीरे तैरता हुआ सीधे बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। ये सीन ऐसा है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं, लेकिन अगले ही पल जो कुछ भी होता है उसे देखकर नेटिजन सोच में पड़ गए हैं। जैसे ही मगरमच्छ बच्चे के बिल्कुल पास पहुंचा, बच्चा जरा सा भी घबराया नहीं। डरने या भागने की बजाय उसने बड़े ही रौब से मगरमच्छ को पकड़ा और उसे खींचकर अपने बगल में लेटा लिया। हद तो तब हो गई जब उसने मगरमच्छ को ऐसे सहलाया मानो वो कोई खूंखार जीव न होकर उसका अपना छोटा भाई या कोई पालतू जानवर हो। सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो खूब वायरल है, जिसे देख लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो में कोई स्टंट या ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक डॉगी का एक ऐसा अंदाज देखने को मिलता है जिसने लोगों को अजय देवगन की फिल्मों की याद दिला दी। यही वजह है कि वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की भी लाइन लग गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर दूर से दो भैंस आराम से चलती हुई नजर आती हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों भैंस पास आती हैं नजारा पूरी तरह बदल जाता है। दरअसल दोनों भैंसों की पीठ पर एक डॉगी खड़ा होता है। वो अपने दोनों पैर भैंसों की पीठ पर रखकर पूरे बैलेंस के साथ बगैर किसी डर के शान से सवारी करता नजर आता है। उसका अंदाज ऐसा जैसे किसी शहंशाह की तरह सड़क पर वो निकल पड़ा हो। वीडियो में सड़क पर एक दूसरा डॉगी भी घूम रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर भैंसों और उनकी पीठ पर खड़े डॉगी पर पड़ती है, वो भी उनके साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद वीडियो यहीं खत्म भी हो जाती है।

चलती ट्रेन में एक युवक ने फिल्म धड़कन का मशहूर गाना दूल्हे का सेहरा इतनी सुरीली आवाज में गाया कि पूरा डिब्बा उसकी गायकी का दीवाना हो गया। खास बात ये कि युवक अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथी भी तबला और गिटार बजाकर उसका भरपूर साथ दे

तीनों मिलकर ऐसा शानदार माहौल बना देते हैं कि कुछ देर के लिए पूरा डिब्बा मानो एक छोटे से म्यूजिकल कॉन्सर्ट में तब्दील हो जाता है। ट्रेन के शोर और यात्रियों की आवाजाही के बावजूद युवक की आवाज इतनी साफ, मधुर और दिल को छू लेने वाली सुनाई देती है कि आसपास बैठे लोग अपनी बातचीत और दूसरे काम धाम छोड़कर उसकी गायकी का आनंद लेने लगते हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज गुड न्यूज टुडे पर द गोल्डन गर्ल्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल करने वाली भारत की बॉक्सर बेटियों से मिली। बरसने वाली है बप्पा की कृपा, पूजा पंडालों में विराजने के लिए तैयार विघ्नहर्ता। और कहीं आपकी प्लेट में एनालॉग पनीर तो नहीं है, ऐसे में असली और नकली पनीर का फर्क कैसे पता चलेगा, आगे बताएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़। केदारनाथ मंदिर से लेकर शिव के आदि योगी रूप की कांवड़ बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र।

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ। 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे अर्पण केंद्र। जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। मणिपुर में बॉक्सर चंदूमणि सिंह का ग्रैंड वेलकम। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल। इम्फाल में फूल मालाओं के साथ जश्न। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत। चेन्नई में खास कार्यक्रम। इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं की कक्षा की पढ़ाई।

0: अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत बात सबसे पहले कॉमनवेल्थ खेलों के पदक वीरों की करेंगे, जिन्होंने ग्लासगो में 39 मेडल जीतकर न सिर्फ तिरंगे का मान बढ़ाया बल्कि अपने शहर और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। इन 39 मेडल्स में भारतीय एथलीट्स ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। लेकिन इस बार भारतीय बॉक्सिंग टीम ने इतिहास रच दिया, जिन्होंने 10 मेडल अपने नाम किए जिनमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें 5 गोल्ड मेडल महिला बॉक्सर्स ने जीते और इन 5 महिला मुक्केबाजों में 4 हरियाणा की भिवानी की हैं, जिनसे भारतीय बॉक्सिंग का गढ़ माना जाता है, जबकि एक मुक्केबाज राजस्थान के कोटा की है। और इन 5 महिला मुक्केबाजों ने कैसे अपने पंच से इतिहास रचा, खुद सुनिए इन्हीं की जबानी।
1: सो वन बिग अप्लॉज, 5 लड़कियों दमदार जिन्होंने ये मुक्का मार मार कर हम सबको जीत दिलाई है, साक्षी, जैस्मिन, प्रिया, अरुंधति, प्रीति, ईच वन ऑफ देम हैव लिव्ड विद स्ट्रगल, हार्डशिप, हार्ड वर्क बट अ डिटर्मिनेशन। 5 गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया इन CWG 2026 इन ग्लासगो इन बॉक्सिंग। साक्षी, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करती हूँ। आपके लिए इसलिए इजी नहीं था क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता चला आपको कितना मैनेज करना पड़ता है जब इन टर्म्स ऑफ योर ओन वेट और जब दूसरों से भी कंपटीशन करना पड़ता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे रहता है एक यंग लड़की में जो कहती है बॉक्सिंग भी करनी है, दूसरों को डिफीट भी करना है और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है?
2: जी, मैं 54 केजी खेलती थी। हाँ। तो अभी मैंने कट करके 51 में खेल रही हूँ मैं। तो एक यही स्ट्रगल है कि वेट को मेंटेन करके रखना, भूखे प्यासे, मतलब अगले दिन फाइट होती है तो पूरे दिन हम कुछ नहीं खाते, उससे पहले वाली जो दिन होता है, फिर पूरी रात प्यासा रहना पड़ता है और फिर मॉर्निंग में बाउट हम खेलते हैं और उसके बाद फिर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रेशर था, एक जो हम खेलने जाते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अलग होता है।
1: और आपने एग्जिस्टिंग चैंपियंस को डिफीट किया?
2: हाँ जी, तो मतलब जो फर्स्ट वाली बाउट थी तो उसमें तो मुझे बहुत ही ऐसे फील हुआ कि ओ माय गॉड कि मतलब कितना क्राउड है, इतना प्रेशर है, लेकिन फिर बाउट वाइज बाउट अच्छा होता गया। और फिर मेरे ऊपर ये भी प्रेशर था कि मुझे गोल्ड मेडल ही जीतना है क्योंकि मैंने ट्रायल्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, फिर अपनी उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना था।
1: और आपने डोमेस्टिकली भी पहले जीता, वो भी स्टेप?
2: जी, वही मैं बोल रही थी कि ट्रायल्स में अच्छा किया था तो ये प्रेशर था कि वहां भी गोल्ड ही जीतना है,
1: क्योंकि अगर वहां नहीं आता फिर
2: हाँ फिर सभी बोलते कि यहाँ मार के क्या ही फायदा हुआ।
1: हमारे पुराने भी चैंपियंस।
2: जी जी,
1: जैस्मिन का बहुत इंटरेस्टिंग है। जैस्मिन 40 डेज पहले आई थिंक जो बाउट के आपकी तबीयत बहुत खराब थी, तो क्या आपको एक पॉइंट पे लगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स तो गया हाथ से?
3: मैम, मेरी तबीयत मतलब 20-25 दिन तक ऐसे खराब कंटिन्यू ही चल रही थी।
1: क्या हुआ था मतलब कि?
3: स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल रहा था, डेली फीवर आ रहा है 102-103, टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट लेके ठीक हो जा रहा है, फिर 2-3 घंटे असर है जो टैबलेट का ठीक है, वापस फिर से ऐसे ही आ जा रहा है। तो 1 वीक तो हमने उसी में निकाल दिया कि चलो ठीक है। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए, टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर मतलब हम ये कोशिश कर रहे थे सभी डॉक्टर्स की हो क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली है क्या,
1: कैसे
3: तो फिर बाद में हमने मतलब इसी में 20-25 दिन ऐसे ही निकल गए ऐसे। फिर हमने हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया अच्छे से और फिर वहाँ पे एक टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो हाई लेवल पे था, तो उस वजह से वो इतना फीवर।
1: तो कैसे आपने अपने आप को बोला कि मैं मिस तो नहीं होने दूंगी ये इवेंट?
3: मैम, उस टाइम पे तो थॉट्स यही चल रहे थे कि पता नहीं क्या ही होगा, मतलब बिल्कुल कितने दिन बचे हुए थे, 22 मतलब इतना ही 20-25 दिन ही बचे हुए थे कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने में, और मैं ऐसे पीछे मैं मतलब 1 month तक मैंने ट्रेनिंग भी नहीं की है, मैं ऐसी बीमारी चलती आ रही हूँ लगातार कंटिन्यू, और फिर वो एंटीबायोटिक्स भी मेरी 14 days तक चली थी।
1: लेकिन फिर लास्ट मिनट पे आपने खींच लिया?
3: फिर लास्ट मिनट पे, फिर 1 July से ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ाया, पहले थोड़ा वार्म अप फेज में गए 2-3 दिन और फिर हमारा बेलफास्ट कैंप लग गया, वहां पे जाके मैंने अपनी फर्स्ट स्पारिंग की जैसे तैसे, मतलब थोड़ा बहुत कि ठीक है। तो मैं पूरा प्रॉपर फिट तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वही था कि मेरे को भी बोला भी ये गया था कि अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, जो टेक्निकल गेम है जब जरूरत है वहां पे करो,
1: मेंटल,
3: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
1: तो कौन सी एज में स्टार्ट किया आपने प्रिया, और कब आपको लगा कि अब मुझे भी लेजेंड्स में अपना जो है नाम दर्ज करना है?
4: मैंने 10 साल की एज में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, तो उस समय मैं बहुत शरारती थी, तो ऐसे होता था कि कोई गेम कर ले, मेरे घर को ने मुझे गेम्स में डाल दिया, शरारती है
1: तो गेम्स, तो गेम्स कर लेगी। बॉक्सिंग में कहां से आ गई?
4: तो लड़ाई तो बॉक्सिंग में होती है
1: तो उसका जोश था
4: फिर बाद में ऐसे ही विजेंदर बॉक्सर हैं उनका नाम सुनने में आया कि वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, तो उसके बाद ऐसे हुआ कि हमें विदेश के लिए मेडल लेकर आना है।
5: अरुंधति, आप तो कोटा से आ रहे हो, यू शुड हैव बीन डूइंग एन आईआईटी और सम इंजीनियरिंग कोर्स और समथिंग एल्स, या कोचिंग सेंटर में स्क्रू आप लगे हुए होते। व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं मुझे हटना है बाबा मम्मी, मुझे कुछ और करना है, और प्रॉब्लम हुई क्या उसमें?
6: नहीं, सेम था कि स्कूल में जैसे बॉयज को साथ लड़ाई करना, पिट के आना, और फिर प्रिंसिपल का घर पे फोन आना कि वी आर सस्पेंडेड फॉर वन वीक बिकॉज ये बहुत मस्ती करती है। तो पापा तो चाहते ही थे कि हाँ आईआईटी करूँ, लेकिन फिर मेरा जो नेचर है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है, चूज अ सोलो गेम वे यू कैन परफॉर्म बाय योरसेल्फ। तो फिर उन्होंने गेम बताया दो तीन जिसमें मुझे बॉक्सिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा सिर्फ सुनने में, और उसी की वजह से इधर।
5: लड़की को लग रहा है कि मैं बॉक्सिंग भी कर सकती हूँ, यूजुअली नहीं सोच,
6: नेचर ही ऐसा है मैम, मतलब मारने में मजा आता है।
5: प्रीति, ये मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉन्फिडेंस आप पांचों में मैं देख रही हूँ, 2024 में आपकी भी तबीयत बहुत खराब हुई थी, कुछ इवेंट्स भी आपने मिस किए थे, तो जब दूसरे प्लेयर्स को आप देखते हो वो इवेंट्स मिस हो, वो जीत रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ, कैसे अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन कहता है कि नहीं मैं बाउंस बैक करूंगी?
7: इस डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग रहता है कोई भी फेज, वो इंजरी फेज है या हम बीमार हैं, जस्ट बिफोर कॉम्पिटिशन और इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जाने से पहले अगर हम अपना ट्रेनिंग में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज रहता है। बट आई थिंक मेंटली हमें उस चीज़ को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए उस टाइम पे। अगर हम उन चीज़ों को मेंटली ट्रेन करेंगे, अपने माइंड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कवर अप कर लेते हैं फिजिकली एट द एंड। और ओलंपिक में भी मेरे साथ यही हुआ था, मैं थोड़ा बीमार थी बट मेंटली मैं अपना पूरा ट्रेनिंग कर रही थी। Yes, definitely.
8: Their choice as well, they've made us so proud. Thank you very much, Golden Girls. And they've shown us girls can do anything. Thank you very much.
0: अगली खबर गणेश चतुर्थी से जुड़ी है, जिसकी तैयारी देश भर में शुरू हो चुकी है। शहर शहर बप्पा के छोटे बड़े पूजा पंडाल बनने शुरू हो गए हैं और बप्पा की मूर्तियां भी आकार ले रही हैं। लोगों ने अपने घरों और पूजा पंडालों के लिए मूर्तियों के ऑर्डर दे दिए हैं। अब लोगों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब पप्पा धूमधाम से उनके घर पधारेंगे। हर साल की तरह इस साल भी गणेशोत्सव को लेकर सबसे ज्यादा रौनक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में नजर आ रही है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं, कोई छोटी तो कई बड़े आकार की प्रतिमा, कोई आकार ले रही है तो किसी में रंग रोगन कर सजाया जा रहा है और कोई पूरी तरह से घर और पूजा पंडालों में विराजने के लिए तैयार है। ये तैयारी है गणेशोत्सव को लेकर, जिसकी शुरुआत अगले महीने की 14 तारीख से होने जा रही है। यानी गणेश चतुर्थी पर्व का श्री गणेश 14 सितंबर से हो रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विघ्नहर्ता की मूर्तियों का निर्माण इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है, जिसकी एक तस्वीर नागपुर से सामने आई है, जहां ऑर्डर के हिसाब से मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है।
1: महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 14 सितंबर को लाडले गणपति बाप्पा का आगमन होगा, गणपति बाप्पा विराजमान होंगे घरों में, पंडालों में। उससे पहले नागपुर की चितारओली में हम मौजूद है। चितारओली यह मध्य भारत का सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है, जहां गणेश मूर्तियां बनाने का काम होता है। जो कारागिर है वो नागपुर के चितारओली में गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके होते हैं। आमतौर पर गणेश उत्सव से लगभग 6 से 7 महीने पहले ही मूर्तियां बनाने का काम जो है वो कारगिर मूर्तिकार जो होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं।
2: आपके पास अभी ऑर्डर आया है, जिस हिसाब से आप बना रहे हैं तो क्या पसंद किया जा रहा है
3: अभी? इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए, तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है, तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं, उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं, इस प्रकार की डिमांड आ रही है।
0: बीते कुछ वर्षों में इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे देखते हुए इस साल भी हर आकार की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इनकी बुकिंग के लिए मूर्तिकारों के पास हर रोज लोग पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ पूजा पंडालों के लिए और कुछ घरों के लिए गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर दे रहे हैं, ताकि उन्हें गणेशोत्सव के वक्त मूर्तियों के लिए ज्यादा भटकना ना पड़े।
4: मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिससे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रिफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
5: तो मैं करीबन पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है। और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का, जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आँख बनाते हैं, देखो आँख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब है, बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
2: और किस तरीके की मूर्ति को पसंद
5: है? नहीं, मैं जब आता हूँ मैं देखता हूँ जब, और कुछ नहीं, ये तो भगवान है, और एक आधी मूर्ति मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, इस साल मुझे यही मेरे घर में, बस मैं ले लेता हूँ।
0: नागपुर की तरह ही महाराष्ट्र के दूसरे शहरों जैसे अमरावती और पुणे में भी गणेश प्रतिमाओं को इन दोनों फाइनल टच दिया जा रहा है। मूर्ति निर्माण के इस काम में कई लोग पीढ़ियों से लगे हैं, जो बताते हैं कि महाराष्ट्र में तैयार होने वाली ये गणेश प्रतिमाएं न सिर्फ देश के दूसरे शहरों में भेजी जाती हैं, बल्कि विदेशों से भी मूर्तियों के ऑर्डर आते हैं।
6: महाराष्ट्र के सबसे प्यारे उत्सव और सबका लाडला उत्सव जो होता है वो गणपति का आगमन, जो इस साल जो है वो 14 सितंबर को होने वाला है। उससे पहले जो है महाराष्ट्र के हर जिले के हर कार्यशाला में, जहां पर आप देख सकते हो कि गणपति बाप्पा की प्रतिमाएं जो है वो अब बनना शुरू हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं, क्योंकि यहाँ की प्रतिमा जो है महज अमरावती नहीं तो महाराष्ट्र नहीं तो समूचे देश में जो है वो अलग अलग हिस्सों में यहाँ की प्रतिमा की डिमांड होती है, और इसीलिए जो बाप्पा की प्रतिमाएं जो है वो महीनों पहले ही बनकर तैयार होती है।
7: अपनी यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर साल महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर जैसी रौनक देखने को मिलती है, वैसी कहीं और देखने को नहीं मिलती। यहाँ महीनों पहले ही गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी शुरू हो जाती है, जिसके तहत मूर्ति निर्माण से लेकर पंडाल निर्माण तक और मूर्ति श्रृंगार के लिए आभूषणों से लेकर पोशाक और पगड़ी बनाने का काम किया जाता है। जैसे जैसे 14 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, महाराष्ट्र के बाजारों में गणेशोत्सव को लेकर रौनक दिखाई देने लगी है।
8: मैं 5 साल से गणपति बप्पा का फेटा बनाता हूँ और मेरे पहले महीने जो पेटे बनाए थे तो गणपति बप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया, तो वो फेटा बनाने के बाद मेरे जो फेटे बनाए वो फेटे मैंने महाराष्ट्र के बाहर देश विदेश में भी मेरा फेटा बना के।
9: आपको ऑर्डर कहाँ से आता है, इस साल आपने कहाँ भेजने का प्लान किया है?
8: हाँ, तो मैंने इस साल जो फेटे बनाए वो देश और विदेश में जाते हैं, और वो फेटा उसकी प्राइस मैंने खाली 120 रुपये रखे।
10: मैं काफ़ी साल से गणपति बिठा रही हूँ घर पे। मैं अभी इस साल 1.5 महीने से पहले ही मैं गणपति को बुक करने के लिए आई हूँ। हर साल क्या होता है कि गणपति इन टाइम पे गणपति नहीं मिलते हैं, बुकिंग नहीं मिलता, तो अभी 1.5 महीना पहले ही मैं गणपति का बुकिंग करने के लिए आई हूँ। अभी ये साल मुझे इको फ्रेंडली वाला गणपति बिठाना था, लेकिन अभी ये साल में भी नहीं मिल रहा है। अगले साल मैं कोशिश करूंगी जितने की पोल्यूशन फ्री वाला जो गणपति आता है, मिट्टी वाला, अपने घर में बनाते हैं वैसा गणपति बिठाने के लिए मैं कोशिश करूंगी।
0: हालांकि मूर्ति निर्माण से जुड़े लोगों का दावा है कि इस साल वैश्विक कारणों के चलते मूर्ति निर्माण में लगने वाले कच्चे माल और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई है। बावजूद इसके बाप्पा के भक्तों में गणेशोत्सव को लेकर जोश और उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं है। लोग अपनी जरूरत और ट्रेंड के हिसाब से इन दिनों मूर्तियों की खरीदारी में जुटे हैं। नागपुर से योगेश पांडे, अमरावती से धनंजय साबले और पुणे से रायचंद शिंदे, गुड न्यूज टुडे।
11: बात करेंगे शुद्ध दूध से बनने वाले पनीर की, जिसका स्वाद शाकाहारी के साथ ज्यादातर नॉनवेज खाने वाले लोगों को भी पसंद आता है। हालांकि डिमांड सप्लाई के बीच आने वाले गैप का फायदा कुछ मिलावटखोर भी उठाने लगे हैं, जिसकी वजह से शुद्ध पनीर की जगह कई होटल्स या रेस्टोरेंट में एनालॉग पनीर परोसा जा रहा है, और वो भी शुद्ध पनीर की कीमत पर, जिसके बाद महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से होटल्स और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले एनालॉग पनीर पर 1 साल का बैन लगा दिया गया है। ऐसे में आप भी असली और नकली पनीर का फर्क जानिए।

0: दूध से बनने वाला पनीर हमारे देश में एक बेहद प्रिय और पसंदीदा डेयरी प्रोडक्ट है। हालांकि कुछ मिलावट खोरों की वजह से उसकी शुद्धता पर संकट मंडराने लगा है। चंद पैसों के लालच में मुनाफा खोर असली पनीर की जगह नकली पनीर यानी एनालॉग पनीर को असली बताकर उसी कीमत पर बेचने के खेल में शामिल हैं, जिसका फायदा कुछ होटल और रेस्टोरेंट मालिक भी उठा रहे हैं। मुंह मांगी कीमत चुकाने के बावजूद कई ग्राहकों को असली पनीर की जगह नकली और मिलावटी पनीर मिल रहा है। बाजार में मिलने वाले नकली और मिलावटी पनीर की वजह से उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा खड़ा हो चुका है। हालांकि शुद्ध दूध से बनने वाला शुद्ध पनीर प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है, पर नकली या मिलावटी पनीर की वजह से लोगों के शरीर में प्रोटीन के बजाय जहर पहुंच रहा है। एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर को लेकर सरकार का रुख सख्त है। उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर के बनाने, बेचने, स्टॉक करने या ट्रांसपोर्ट करने पर बैन लग गया है।
1: एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।
2: ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है।
1: ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है या क्या इसकी ये होती है?
2: इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। इसमें स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है, वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है, इसका शेप बदली नहीं होता है।
0: FDA यानी खाद्य और औषधि प्रशासन का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है तो इसे उपभोक्ता को गुमराह करना और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत अनुचित व्यापारिक गतिविधि माना जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर एनालॉग पनीर के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में भी एनालॉग पनीर काफी चर्चा में है। फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से पनीर के 35% से ज्यादा सैंपल कई तरह के टेस्ट में फेल पाए गए। इतने बड़े पैमाने पर होटलों और रेस्टोरेंट में एनालॉग पनीर परोसे जाने पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आनन फानन में कदम उठाते हुए उस पर बैन लगा दिया। मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। दरअसल कम लागत में तैयार हो जाने की वजह से एनालॉग पनीर वहां भी बाजार में अपनी जगह बना चुका है। भोपाल के भी कई इलाकों में खाद्य सुरक्षा विभाग के लोगों ने छापेमारी की। हालांकि मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बेचना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसे असली पनीर बताकर बेचना ग्राहकों के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
3: शीघ्र ही हम इसमें प्रभावी एक्शन पूरी स्टेट लेवल पर करने वाले हैं।
4: सर क्या क्या नुकसानदायक है?
3: नुकसानदायक तो कोई भी नहीं है। एनालॉग चीज जो है वो वेजिटेबल फैट और अन्य फैटों से मिलकर बना होता है, उसमें दूध की कुछ मात्रा रहती है, और जो पनीर होती है वो टोटल जो दूध का सॉलिड होता है और मिल्क फैट उससे बनता है। लेकिन दोनों की जानकारी आम जनता तक होना आवश्यक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग भाव है, उसी के आधार पर बाजार में बिकना चाहिए लेवलिंग के साथ।
0: भारत में शाकाहारी लोग प्रोटीन के लिए बड़े पैमाने पर पनीर पर ही निर्भर होते हैं, जिसकी वजह से भारत में हर दिन लगभग 5 से 6 लाख किलोग्राम यानी 500 से 600 टन पनीर की खपत होती है।
5: तो पनीर एक आए, दूध गरम करो, गरम करने के बाद में उबालने के बाद में उसको फाड़ देते हैं।
6: क्या रेट बिक रहा है
5: वो? अभी बिक रहा है 320 रुपए के जी।
7: पहचान वाली दुकान से पनीर लेता हूँ, और बाकी अन्य जगह से अगर पनीर लेते हैं अपन तो बहुत मिलावट वाला मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ज्यादा से ज्यादा तो डुप्लीकेट चीजें मिल रही है, कई नामी ग्रामी दुकान है उनपे जो थोड़ा ढंग का माल मिलता है, बाकी अपने वो नाम चला रहा है इसलिए, ये तो बाकी तो क्वालिटी बिल्कुल रद्दी मिल रही है। सारी डेयरी देख लो जो नई नई डेयरी खुली है, उन डेयरियों पे बिल्कुल रद्दी माल मिलेगा, और जैसे ये 320 रुपए किलो बेच रहा है वो माल थोड़ा अच्छा है, बाकी क्या है कि 200 में दे देते हैं, 250 में दे देते हैं, वो पनीर अपने को शादी ब्याह में इनमें उनमें ले जाते, बच्चे उनको सबको अपने को नुकसान होता है उससे।
0: त्योहारों और शादी के सीजन में पनीर की डिमांड और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नकली पनीर या एनालॉग पनीर की बिक्री की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सरकारों की सख्ती और उपभोक्ताओं की जागरूकता दोनों ही जरूरी है। बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को सही गुणवत्ता का पनीर मिल सके। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: क्या सावन के महीने में भी धन प्राप्ति का वरदान मिल सकता है? क्या शिव जी की कृपा से दरिद्रता दूर हो सकती है? क्या सावन के प्रयोग से कर्ज मुक्ति भी हो सकती है? कौन से हैं सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में भगवान शिव की कृपा से आप अपनी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत है, तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम के 6:52 तक, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र रात के 8:13 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने से धन प्राप्त करने का, समृद्धि प्राप्त करने का क्या संबंध है। देखिए, सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, हर तरह की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे आदमी प्रयास भी उतना नहीं करता और उतनी सफलता भी नहीं मिलती, सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। सावन के महीने में ज्यादातर लोगों को धन और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सावन के महीने में धन समृद्धि प्राप्ति के उपाय करना आवश्यक है। सावन के महीने में अपनी एनर्जी बनाए रखें और धन संपत्ति प्राप्त करने के उपाय करते रहें। सावन के महीने के स्वामी अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा उपासना से जीवन में धन की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। यहां तक कि भगवान शिव के विशेष प्रयोग से, भगवान शिव की विशेष पूजा करने से दरिद्र योग को भी नष्ट किया जा सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो आपका भविष्य है, जो आपका प्रारब्ध है, वो केवल भगवान शिव मिटा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। तो भगवान शिव की कृपा से धन कैसे प्राप्त होगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम

मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। दैनिक जीवन में सामान्य रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए, इसके बाद नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, रोज शाम को पूजा के दौरान शिव जी की आरती करिएगा और तामसिक आहार मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। ये प्रयोग आप सावन से शुरू कर लें और लगातार लंबे समय तक ये प्रयोग करते चले जाएं, आपको सामान्य जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी पैसा आता है, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आता, धन आता है नहीं आता है, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा, इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ करने के बाद प्रसाद लोगों में बांटिएगा। ये उपाय सावन में जितने दिन आप करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और सावन में घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा, बेलपत्र का पौधा गमले या जमीन में लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावन में धन प्राप्ति के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,

में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम में रुकावट आ सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार जीवन में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि धन की स्थिति काफी खराब हो जाती है, दरिद्रता आ जाती है, एक एक पैसे को लेकर जीवन में दिक्कतें रहती हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए। संभव हो तो जल अर्पित करने के बाद सफेद चंदन भी लगाइए और इसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका पाठ करिए, एक पाठ या तीन पाठ। रोज रात को शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और इस समय भी कम से कम एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा। और सावन के महीने में एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा धारण कर लीजिएगा और सावन के बाद भी रोज सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, चुकाना चाहते हैं लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। सावन के बाद हर मंगलवार को शिव जी को लाल फूल चढ़ाकर इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता हो सकती है,
शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने करियर में स्थिरता चाहते हैं तो अपनी कुर्सी बार बार मत बदलिए, और अगर ऐसा कर सकें तो अपनी कुर्सी का प्रयोग किसी और को मत करने दीजिए। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को पीले फूल और जल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान शिव से अपनी प्रार्थना करिए। अगर आप दिन की शुरुआत में ऐसा करेंगे तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत गुएझोउ से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसने संगीत और प्रकृति के अनोखे संगम को दुनिया के सामने पेश किया है। यहाँ करीब एक खास 120,000 वर्ग मीटर में फैले सीढ़ीनुमा फूलों के खेतों को एक भव्य ओपन एयर कॉन्सर्ट में बदल दिया गया है, जहां पर हजारों दर्शकों ने प्राकृतिक माहौल के बीच पारंपरिक चीनी संगीत का आनंद लिया। दर्शक सीढ़ीनुमा खेतों पर बैठकर संगीत का आनंद लेते नजर आए, जबकि चारों ओर फैली हरियाली और रंग बिरंगे फूल इस आयोजन को और भी आकर्षक बना रहे थे। ऊंचाई से देखने पर यह पूरा इलाका किसी अनोखी कलाकृति जैसा नजर आता है, और यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर इसे लैंड आर्ट का शानदार उदाहरण बता रहे हैं। ये विशाल शहरी चेहरा स्थानीय प्रशासन की उस सोच का प्रतीक है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य और शहरी विकास को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। संगीत, प्रकृति और संस्कृति के इस अद्भुत संगम ने न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि दूर दूर से आए पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
6: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़। केदारनाथ मंदिर से लेकर शिव के आदियोगी रूप की कांवड़ बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशनों पर बनाया जा रहा है अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। मणिपुर में बॉक्सर जदुमणि सिंह का ग्रैंड वेलकम, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल, इम्फाल में फूलमालाओं के साथ जश्न। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम। इस स्कूल में धनुष ने की थी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा में राजस्थान के अलवर में खेत में पलटे डीजल से भरे टैंकर की भी है, जहां डीजल लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई।
8: यूपी के हाथरस में जलभराव से परेशान स्कूली बच्चों का ये वीडियो चर्चा में है। बच्चे गंदे पानी में खड़े होकर जिस मासूमियत के साथ डीएम से गुहार लगा रहे हैं, वो देखकर लोग न सिर्फ उन पर प्यार लुटा रहे हैं बल्कि सहानुभूति भी जता रहे हैं। तस्वीरें हाथरस के नगला अलगर्जी रोड की है, जहां जलभराव की वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर डीएम से अपनी समस्याओं के समाधान की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं, डीएम साहब हमारी मदद कर दो, हम रोज गंदे पानी से होकर स्कूल जाते हैं। बच्चों की मासूमियत लोगों का दिल छू रही है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहाँ हर की पैड़ी के शिव घाट पर नहाते समय एक कांवड़िया का पैर फिसल गया और वो गंगा जी की तेज धारा में बहकर डूबने लगे। ऐसे में वहाँ मौजूद लोगों ने कांवड़ मेला ड्यूटी पर तैनात 40वीं बटालियन PAC को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर शख्स की जान बचा ली। पानी में डूब रहे शख्स का नाम राजेंद्र कुमार बताया जा रहा है, वो दिल्ली के बुराड़ी के रहने वाले हैं। 40वीं बटालियन PAC के आपदा राहत दल ने जिस तरह से अदम्य साहस, तत्परता और कुशलता का परिचय दिया, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर से आई ये तस्वीर देखिए, किस तरह से लूट मची है। असल में यहाँ खैरथल जिले के तिजारा महराणा के पास डीजल पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर बाजरे के खेत में पलट गया और डीजल खेतों में फैलने लगा। इस बीच लोगों को जैसे ही इसकी खबर लगी, डीजल लूटने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े, जिसको जो मिला वही लेकर चल पड़े। हद तो तब हो गई जब आसपास के इलाकों से भी लोग बर्तन बाल्टियां लेकर बाजरे के खेत में पहुंचे। बाद में सूचना मिलने पर जब तिजारा पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर ये लूट रुक पाई। गुजरात के भावनगर में लोको पायलट की सतर्कता और संवेदनशीलता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रेलवे ट्रैक के पास एशियाई शेरों का एक झुंड नजर आ रहा है और उससे थोड़ी दूरी पर एक ट्रेन रुकी हुई है। संभवतः इंजन में खड़े लोगों ने ये वीडियो बनाया है, इसलिए उसकी हल्की झलक ही मिल पा रही है। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर पहले तो खतरा भांपते हैं और फिर निश्चिंत हो जाने पर धीरे धीरे ट्रैक को पार करते हैं। एशियाई शेरों के ट्रैक पार करने के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है, वो भी निर्धारित गति से। असल में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल प्रशासन द्वारा लोको पायलटों को संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रों में निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए अधिक सतर्कता के साथ ट्रेनों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले की भिंडी सात समंदर पार जर्मनी, जापान और इंग्लैंड के बाजारों में बिक रही है और इसकी वजह है गुट खेती। मतलब बहुत सारे किसान एक साथ एक ही तरह की फसल उगाते हैं और फिर उसे बाजार तक ले जाते हैं। ऐसे में यहां के अंबड़ तहसील के पिठोरी सिरस गांव में करीब 27 से 30 किसान मिलकर ऑर्गेनिक तरीके से भिंडी की खेती कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें बीज और ऑर्गेनिक दवाइयां उपलब्ध कराती हैं थ्री सर्कल एग्रो एक्सपोर्ट कंपनी। यही कंपनी इनकी उगाई भिंडी को खेतों से ही खरीद लेती है और भिंडी को सीधे नासिक के पैकिंग हाउस भेज देती है, जहां क्वालिटी के हिसाब से उसकी छटाई और ग्रेडिंग की जाती है। इसके बाद उसकी पैकिंग होती है और फिर मुंबई एयरपोर्ट से भिंडी की खेप सीधे विदेश रवाना की जाती है। इससे किसानों को बाजार में भिंडी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही कम समय में आमदनी भी हो जाती है।
9: और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर बैन की। अगर आप बाजार से पनीर खरीदकर खाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों की सेहत से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है और राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। छत्तीसगढ़ के बाद इस तरह का कड़ा कदम उठाने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बाजार में बिक रहे नकली और मिलावटी डेयरी उत्पादों पर रोक लगाना है।
10: पनीर लेते हैं अपन तो बहुत मिलावट वाला मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान है।
11: कई जगह मिला है खराब पनीर, लेकिन वो कई जगह अच्छा भी मिला है, कई जगह खराब भी मिला है।
12: बच्चे और बुजुर्ग और जो भी हैं हमारे महाराष्ट्र के लोग, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसलिए उनका जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा लिया है।
13: सही फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो एनालॉग पनीर था वो लोगों के शरीर के लिए हानिकारक था।
14: हम अक्सर नकली पनीर के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आजकल एक खास तरह का पनीर चर्चा में है जिसे एनालॉग पनीर कहा जाता है। हैरानी की बात ये है कि इसे बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये देखने में पनीर जैसा ही होता है और बाजार में इसे पनीर के नाम पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ये टेस्ट में भी काफी हद तक असली पनीर जैसा ही होता है, लेकिन इसे वेजिटेबल ऑयल समेत दूसरे फैट्स, सोया वगैरह को मिलाकर एनालॉग पनीर तैयार किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता है। आजकल ज्यादातर जगहों पर इस सस्ते पनीर को पनीर के डिशेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के होटलों और रेस्टोरों में अब और नकली पनीर लोगों को नहीं परोसा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हालांकि महाराष्ट्र में भले ही एनालॉग पनीर के इस्तेमाल की अब तक इजाजत रही हो, लेकिन ग्राहकों को बिना जानकारी दिए इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी था। अगर कोई ब्रांड या रेस्टोरेंट इसका इस्तेमाल करते थे तो उन्हें इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी पड़ती थी, लेकिन जांच में सामने आया कि पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन ही नहीं, बल्कि बड़े ब्रांड भी बिना ग्राहकों को जानकारी दिए असली पनीर की जगह सस्ता मिलने वाला एनालॉग पनीर का इस्तेमाल कर रहे थे।
15: महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है। एनालॉग पनीर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है। हम इस वक्त मुंबई में हैं, जहां पर देख सकते हैं ये एक डेयरी है और हमारे साथ है अजय सिंह जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। अजय जी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को?
16: ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने,
12: क्योंकि वो बिल्कुल ही पनीर बकवास था। अब जो भी नेचुरल पनीर जो है वो बच्चों के लिए, पेशेंटों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने।
15: आप समर्थन करते हैं इस फैसले का, 6 महीने तक की जेल और 6 लाख रुपए तक का?
12: सर बिल्कुल करते, बिल्कुल करते, हम उनकी हर उनसे सहमत हैं, बिल्कुल सहमत।
15: आप कौन सा पनीर बेचते हैं?
12: हम मलाई पनीर बेचते हैं।
9: ऐसे में सवाल है कि असली पनीर और एनालॉग पनीर में क्या फर्क है और इसे कैसे पहचाने। दरअसल असली पनीर प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है और इसे दूध से तैयार किया जाता है, जबकि एनालॉग पनीर एक तरह से तेल का गोला होता है जिसे वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। एनालॉग पनीर बनाने में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता और कई दुकानदार एनालॉग पनीर को भी असली पनीर बताकर बेच देते थे। एनालॉग पनीर पर पाबंदी के बाद अब महाराष्ट्र में कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स या क्लाउड किचन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इस कदम के साथ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।
15: एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। हम इस वक्त मुंबई के सैंडस रोड पे एक होटल है सदगुरु, उस सदगुरु होटल के किचन में है, जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर काम होता है और किस तरीके से पनीर उपयोग होता था। हालांकि ये जो पनीर है ये एनालॉग पनीर नहीं है, ये शुद्ध पनीर है। हमारे साथ हैं इस सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर सिनोई जी। सर, एफडीए ने सबसे पहले तो जिस तरीके से बंदी लाई है एनालॉग पनीर पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उस निर्णय का स्वागत करते हैं?
16: यस यस, ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है या एडल्ट्रेशन नहीं है। मगर एनालॉग पनीर जो है उसको टोटली अनसेफ करके नहीं बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर, उसमें क्या वापरा जाता है, मगर जरूर है कि इससे वो सब स्टैंडर्ड है, ये पक्का है।
15: सर, ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है या क्या इसकी ये होती है?
16: इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। इसमें स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है, वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है, इसका शेप बदली नहीं होता है।
9: हाल ही में एक लैब रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी, जिसमें राज्य में लिए गए पनीर के 35% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए थे, क्योंकि उनमें वेजिटेबल फैट की मिलावट की गई थी। महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 30 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था और बैन का उल्लंघन करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
15: दामों में कितना अंतर है, शुद्ध पनीर कितने का आता है और एनालॉग पनीर कितने का आता है?
12: उसका रेट नहीं मालूम।
15: शुद्ध पनीर कितने का आता है?
12: ये 400-450 तक आराम से बिकता है,
15: किलो। अच्छा। और इसे बनाने में कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस है? या
12: इसका दूध गर्म करके फाड़ के जो बनाते हैं ना, तो उसको गर्म करने को ही कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाता है दूध को, और उसके बाद में दूध को फाड़ा भी जाता है। फाड़ने के बाद में फिर उसको कपड़े में बांध के सेट करना पड़ता है, फ्रीजर में डालना पड़ता है, आइस डाल के फ्रीजर में।
15: उसके बाद खुद ही बनाते हैं?
12: नहीं नहीं, ये हम लोग कोल्हापुर से आता है, बाबू पाटिल करके उनसे पनीर बनवाते हैं, उनका ही दूध है हमारे यहाँ, जो पैकिंग कराते हैं उनसे कराते हैं, पनीर भी दूध भी उनसे।
15: अब एनालॉग पनीर तो बंद हो गया, तो इससे
12: नहीं
15: नहीं इससे डेयरी, हमारे जो डेयरी सेक्टर है उस पर कितना असर?
12: हमारा पनीर की सेल बढ़ी है।
15: अच्छा,
12: पहले से ना होटलों में भी हमारे पनीर की सेल बढ़ी है। हाँ। और जो लेने वाले हैं उनकी भी सेल बढ़ी है।
9: हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसे उठाया गया था। उस दौरान विधायकों ने एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की थी। अब सरकार ने उस दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर में इस पर रोक लगा दी है। सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
14: अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
13: ठीक है, ये तो सही डिसीजन है। अगर कहीं नकली मिलता है बट हम यहाँ से हम लेते हैं तो ठीक है, ये तो शुद्ध है एकदम। मैं खाता हूँ हर बार, मैं कम से कम यहाँ से 25-30 साल से ले रहा हूँ पनीर, मुझे तो यहाँ का सही लगता है।
15: और आप इस फैसले से खुश है? मतलब 6 महीने की जेल, 6 साल, 6 लाख रुपए तक का जुर्माना सरकार द्वारा लगाया गया
13: है। सही है जी, जी सही है, एकदम सही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ नुकसान हो रहा है उनका, लोगों का, तो ये तो सही डिसीजन है।
15: जिस तरीके से देख सकते हैं लोग भी इस डिसीजन से जो है वो सहमत हैं, और जो शुद्ध पनीर बेचते हैं पहले से ही उनमें यहाँ पर खुशी का माहौल एक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए जाहिर तौर पर खुशी की मांग है। उनका कहना है कि उनकी सेल जो है, उनके पनीर की मांग जो है वो अब बढ़ गई है, लोग उनका पनीर ले रहे हैं, जो होटल व्यावसायिक हैं वो उनका पनीर ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और वो इस निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं।
14: महाराष्ट्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फैसले को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: महाराष्ट्र में एनालॉग यानी कि सिंथेटिक पनीर बैन किए जाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
17: ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारी जो बीमारियां हैं वो फूड एडल्ट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है। फूड एडल्ट्रेशन से बीमारियों में क्या होता है कि लिस्टेरिया जैसी बीमारियां है या एक्टिनोमाइकोसिस की जैसी बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस जैसी जो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस हो रहे हैं, और कॉलरा है, हाइजा है, और कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है वो होते हैं बहुत सारे हमारे देश में। हेलमेंटियासिस और भी होते हैं, और जिस तरह से जो बनाने वाले जो इंडस्ट्रीज है वहाँ बहुत ही यानी जो अच्छा उधर का माहौल होना चाहिए वैसा नहीं रहता, और उधर सेफ्टी नहीं रहती।
15: यस
17: बिल्कुल बिल्कुल है, वेलकम करते हैं। इट शुड बी नेचुरल, इट शुडंट बी आर्टिफिशियल। और जिस तरह से वो लोग जो डिटर्जेंट्स और यूज करते हैं वो बहुत ही सबके लिए वो तकलीफ वाली है।
18: हमारे जो भी बच्चे हैं खास करके यंग पीढ़ी, ये सारी चीजें जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो ज्यादातर यही खाते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे और जो फिजिकल हेल्थ है वो पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और ये स्वास्थ्य के लिए जो हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है उस पे बैन लगाया। मैं सरकार के फैसले का सराहना करता हूँ।
19: बिल्कुल वेलकम करते हैं। सर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, जो डेली नीड है ऑल इंडियंस की वो है लगभग 60 लाख मेट्रिक टन की, ये मिल्क प्रोडक्ट्स की, पनीर वगैरह और सभी इंक्लूड, और उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं इंडिया में दूध का हार्डली मतलब 25 से 28 लाख मेट्रिक टन इतना प्रोडक्शन हो रहा है। आप सोचिए ये बाहर का जो दूसरा एक्स्ट्रा जो जा रहा है 35 से 40 लाख मेट्रिक टन ये कहां से आएगा? ये सब अडल्ट्रेटेड है, ये बना हुआ मिलावटी है। तो जो अभी तुकाराम मुंडे जी ने पहल की है हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वी आर जनरल प्रैक्टिशनर, हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में यही पेशेंट देखते हैं। हमने ये बोलना बंद कर दिया है पेशेंटों को कि तुम दूध पियो ऐसा, हम यही बोलते हैं कि अभी दूध की जरूरत ही नहीं तुमको, अभी दूध दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल दूध दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दूध 10 में से लगभग 8 से 9 सैंपल अडल्ट्रेटेड मिल रहे हैं, ये फैक्ट है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो सभी को बोलता हूँ कि बिल्कुल रॉ दूध लेना बंद कर दो, जो पैकेज है उसमें भी काफी मतलब सर्टिफिकेशन देख के चेक करके आप उस पर बिलीव कर सकते हो, अदरवाइज दिमाग से दूध ये शब्द निकाल दो।
20: तो ये जो पनीर है ना ये शरीर के लिए भी घातक ही है, ओरिजिनल पनीर तो है नहीं। खुद महीने तक मैं डेली बाहर जाता हूँ, बाकी पनीर खाना मैंने बंद कर दिया। पनीर हजम होने में 12 घंटे लग जाते और ये अच्छा नहीं है, तो सरकार ने जो फैसला लिया सही लिया है।
9: अयोध्या के राम मंदिर में आरती दर्शन के लिए तत्काल पास की सुविधा शुरू हो गई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
8: अयोध्या के राम मंदिर में आरती दर्शन के लिए तत्काल पास की सुविधा शुरू हो गई है। अब श्रद्धालु मंदिर के पास बने काउंटर से पास बनवा सकेंगे। प्रतिदिन रामलला की आरती के लिए 45 और राम दरबार की आरती के लिए 15 पास निर्धारित किए गए हैं। मंगला और श्रृंगार आरती के लिए एक दिन पहले से पास मिल जाएगा, जबकि शयन आरती के लिए उसी दिन पास की बुकिंग करनी होगी। फिलहाल पासों की संख्या सीमित रखी गई है, लेकिन आगे इसे बढ़ाने की तैयारी है। आरती दर्शन के लिए बिरला धर्मशाला के सामने बने यात्री सुविधा केंद्र में अलग काउंटर बनाया गया है, जहां सुबह 9 बजे से पास बनना शुरू होगा और तमाम पास उपलब्ध रहने तक जारी किए जाएंगे। दर्शन व्यवस्था ज्यादा आसान बनाने के साथ श्रद्धालुओं का समय बचाने के मकसद से ये पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना से फिरोजाबाद के कांच उद्योग को वैश्विक पहचान और नई उड़ान मिली है। इस योजना ने स्थानीय कारीगरों को वित्तीय मदद, आसान ऋण और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई है। इससे महिलाओं को रोजगार, स्थानीय स्तर पर काम और 100 से अधिक देशों में कांच के सामान का निर्यात बढ़ा है। इसके तहत पुराने और पारंपरिक भट्टियों को आधुनिक तकनीक, गैस और बिजली से जोड़ा गया है। चीन के उत्पादों को पछाड़कर स्थानीय कारीगरों ने त्योहारों के बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। इसके चलते महिलाओं और गृह उद्योग से जुड़े परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से मजदूरों का दूसरे जिलों में पलायन रुका है। कारीगरों का कौशल विकास होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। फिरोजाबाद की कांच की कलात्मक वस्तुएं और चूड़ियां 100 से अधिक देशों में भेजी जाती हैं। यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में यहां के कांच उत्पादों की भारी मांग है। जम्मू कश्मीर सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन ने राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की 50 और सीटों को मंजूरी दे दी है। इससे कॉलेज की क्षमता 100 से बढ़कर अब 150 हो गई है। इस कदम से राजौरी और पुंछ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जाहिर है इससे राजौरी और पुंछ जिलों के छात्रों और मरीजों को फायदा मिलेगा। यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के पॉपुलर एक्टर धनुष ने चेन्नई के सालीग्रामम स्थित थाई सत्या मैट्रिकुलेशन स्कूल में अपने ही खर्च पर एक नई 3 मंजिला कंक्रीट इमारत का निर्माण कराया है। इस नई इमारत का नाम धनुष ब्लॉक रखा गया है। ये वही स्कूल है जहां धनुष ने LKG से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इस कार्यक्रम में धनुष अपने स्कूल के दिनों के दोस्त और सिनेमाटोग्राफर कुमारन और 1999 बैच के अन्य साथियों के साथ शामिल हुए। समारोह में धनुष ने अपने पुराने शिक्षकों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
9: अब बात सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा के रंग की। सावन का पावन महीना आते ही देशभर में भगवान शिव की भक्ति का उत्साह देखने को मिलता है। जगह जगह कांवड़ यात्रा की रौनक रहती है, जहां लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। वहीं हर साल कांवड़ यात्रा में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हरिद्वार से लेकर देवघर तक शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कंधों पर कांवड़, होठों पर बोलबम और दिलों में आस्था, यही सावन की सबसे सुंदर पहचान बन गई।
8: सावन का पवित्र महीना आते ही शिव भक्ति का रंग और निखर जाता है। कहीं पारंपरिक कांवड़ तो कहीं भव्य और अनोखी कांवड़, और हर शिव भक्त बोलबम के जय घोष के साथ महादेव की भक्ति में लीन दिखाई देता है।
1: पहले इसलिए पहना कि कांवड़ खंडित ना हो। मैंने कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पहल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके।
8: हरिद्वार में हर जगह कांवड़िए ही दिखाई दे रहे हैं। हाईवे कांवड़ियों से पटा है और हर की पैड़ी पूरी तरह से कांवड़ियों से गुलजार है। हर की पैड़ी पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है। शिव सेतु समेत सभी जगह कांवड़िए ही दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। कांधे पर कांवड़, मन में देवाधिदेव भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और जुबान पर बम भोले, ये कांवड़िए झारखंड में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ कूच कर रहे हैं। ये शिव भक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सुल्तानगंज रवाना होने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है। ये कांवड़िए ट्रेन से सुल्तानगंज पहुंचेंगे और वहां से गंगा का पवित्र जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकलेंगे, जहां ये अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करेंगे।
21: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के बैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है, ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
0: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
21: कहां से आए आप?
0: रायबरेली से।
21: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
0: बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहाँ जल भरे हैं जो कि यहाँ पर दर्शन किए हैं अपना। अब यहाँ से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम।
21: तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए, क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
2: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
8: कांवड़ यात्रा के दौरान एक शिवभक्त कांवड़िया गोल्डन बाबा को अपने कंधे पर बैठाकर यात्रा करता हुआ मुजफ्फरनगर पहुंचा और जिसने भी इसे देखा देखता रह गया, क्योंकि इस शिवभक्त ने जहां लाखों रुपए की गोल्ड ज्वेलरी पहनाई हुई थी तो वहीं यह खुद भी सोने के आभूषण धारण किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड 24 कैरेट सोने की आभूषण है जिनकी कीमत लाखों में है।
22: ये मेरी एक गोल्ड की कावड़ी लगाओ आप, क्योंकि इसके ऊपर जो चैने पहनी है बोले ने मैंने पहनी है, ये गोल्ड प्लेटेड होती है 1 ग्राम, इनके ऊपर 24 कैरेट सोने की परत होती है।
23: कितने किलो सोना होगा
22: ये? देखो वैसे तो 3-4 किलो गोल्ड है, पर इसके ऊपर जो गोल्ड हो रखा है वो लगा लो 4-5 तोला हो रखा है।
8: कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी एक अनोखा रंग देखने को मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक प्रेमी जोड़ा 111 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर पैदल चलता नजर आया। इस प्रेमी युगल की एक ही मन्नत है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हंसी खुशी से उनकी शादी हो जाए। यात्रा के दौरान ये दोनों रोजाना करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर ये सफर पूरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके साथ कुछ दोस्त और परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। ये हैं हरियाणा के रहने वाले दंपति जो करीब 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात पति का साथ नहीं बल्कि उसके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही पत्नी निशु है, जो हरिद्वार से गंगा जल ले जाकर सास ससुर को स्नान कराने के लिए पति संग पैदल चल रही है।
24: मन का कुछ नहीं है, बस अपने मम्मी पापा को नहलाना है जाके, उनके मतलब उनको सही सलामत रखे भगवान, बस यही इच्छा है।
25: पति के साथ जा रही हो, कैसे ख्याल आया? और मम्मी पापा का मतलब सास ससुर या कौन?
24: पूरा सास ससुर।
25: थोड़ा सा पूरा बताओ कि आपके पति जाते थे?
24: हाँ, मेरे पति जाते थे, पहले अकेले लेके आते थे, लेकिन पिछली बार से मेरा भी मन किया कि मैं भी साथ में चलूँ। अब की बार दूसरी कावड़ है हमारी जोड़े से और हम अपने सास ससुर को नहलाते हैं जाके, बहुत अच्छा लगता है।
8: मुंगेर के असरगंज कच्ची कांवड़िया पथ पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िया पथ पूरी तरह भगवामय हो चुका है, बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज रहा है। लाखों शिवभक्त सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल का ये कांवड़िया हाथों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकला है। ये बिच्छू के आकार में दोनों पैरों को ऊपर कर हाथ के बल महादेव को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। बता दें ये पिछले 2 वर्षों से पूरे भारत की धार्मिक यात्रा कर रहे हैं।
26: हम पिछले 2 साल से भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 51 शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, खाड़ूश्य बाबा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जैन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिच्छूबम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल 1 महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है।
8: पटना सिटी के विशाल शिवधारी कांवड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था अजगैबीनाथ धाम से 54 फीट लंबी विशाल कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इस विशाल कांवड़ की विशेषता इसकी भव्य बनावट है। 54 फीट लंबे इस कांवड़ में 54 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ माँ दुर्गा और माँ काली की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं चांदी से बाबा बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की आकर्षक कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं, जो श्रद्धालुओं और राहगीरों को आकर्षित कर रही हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, मुंगेर से गोविंद कुमार, प्रयागराज से आनंद राज के साथ चंदौली से उदय गुप्ता, गुड न्यूज टुडे।
9: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
8: बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 152 अंक ऊपर 78,581 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 10 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 24,625 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन उछाल रही। बुधवार को सोना 2,500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,50,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 6,200 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,32,700 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार को रुपया 13 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 15 पैसे हो गई।
9: 1983 में आई सनी देओल की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेताब के 43 साल हुए पूरे। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
3: कहां लिखा है ऐसा रूल कि हम दो लोगों को अलग अलग लाइफ स्टेजेस में प्यार नहीं कर सकते।
8: वेब सीरीज मुसाफिर कैफे का दूसरा सीजन भी जल्दी ही आएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इसका ऐलान किया है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है।
4: सच्चा प्यार हमारे लिए सही हो, ये किसने कहा?
8: ऐसे में पहले पार्ट की कुछ क्लिप्स साझा करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा है, अधूरी मोहब्बत की कहानी को पूरा करने के मुसाफिर वापस लौटेंगे।
5: कभी कभी सबसे बड़ा सफर वो होता है जहां हम किसी नई जगह नहीं बल्कि उस मोहब्बत के पास जाते हैं जिसे हम खो चुके हैं।
8: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज पिछले महीने 24 जुलाई को रिलीज हुई थी। इसमें विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो अहम रोल में हैं। ये एक रोमांटिक लव स्टोरी सीरीज है। अभिनेता सनी देओल ने 1983 में आई फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आज उस फिल्म की रिलीज को 43 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सनी देओल ने सोशल मीडिया पर फिल्म की एक क्लिप शेयर की है और पहली फिल्म से अब तक करीब 4 दशकों तक बेशुमार प्यार देने के लिए लोगों का आभार जताया है। बेताब बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। एक्टर डायरेक्टर और निर्माता अरबाज खान का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनकी पत्नी शुरा खान ने सोशल मीडिया पर उनका एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है और खास अंदाज में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इस वीडियो में कहीं अरबाज अपनी बेटी सिपारा के लिए डांस करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बेड पर लेटे लेटे डांस करते दिख रहे हैं। ऐश्वर्या रॉय का दिल छू लेने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो प्रशंसकों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करती दिखी। खास बात ये रही कि उनके संदाज को उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने भी फॉलो किया और वो भी हाथ जोड़कर प्रशंसकों को नमस्ते करती दिखी। इस दौरान अभिषेक बच्चन उनका इंतजार करते दिखे। वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल रील तेरी गलियों में इन दिनों काफी ट्रेंड कर रही है। इस रील को बॉलीवुड सेलेब्स भी रिक्रिएट कर रहे हैं। फिल्म चक दे इंडिया फेम अभिनेत्री चित्रान चिडावत, सुरभि मेहता और तान्या अबरूल का भी एक रील सामने आया है। इस पर फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं।
9: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी कावड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कावड़। केदारनाथ मंदिर से लेकर शिव के आदियोगी रूप की कावड़ बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाया जा रहे अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। मणिपुर में बॉक्सर जदुमणि सिंह का ग्रैंड वेलकम, कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल, इम्फाल में फूल मालाओं के साथ जश्न। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत चेन्नई में खास कार्यक्रम। इसी स्कूल में धनुष ने की थी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
8: सावन का महीना है, शिवजी का महीना है, ऐसे में चारों ओर हर हर महादेव की गूंज है। इन तस्वीरों में भी नहर के किनारे ये तमाम बच्चे मिलकर यहाँ रेत से बने हुए कई शिवलिंग की आराधना में जुटे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मौज मस्ती के साथ बच्चों की पूजा का ये तरीका सोशल मीडिया पर सबको लुभा रहा है। बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के खतरों के बारे में बताता ये वीडियो अब हर कोई देख रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक नाटक के जरिए इन खतरों को बताया जा रहा है। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ा मोबाइल और उस पर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे छोटे बच्चों को मकर जाल में फंसा लेते हैं और बच्चा फिर वास्तविकता से दूर होकर अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर उसे इन प्लेटफॉर्म से काट दिया जाए तो उसे उसकी वास्तविकता से परिचय कराया जा सकता है। ये वीडियो वायरल है और अब स्कूलों में भी दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे इसके खतरों को समझ सकें। स्टेज पर सामूहिक डांस शो के बीच एक बच्ची स्टेज पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कोई मूवमेंट नहीं करती। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बाकी बच्चियां तो डांस कर रही हैं, लेकिन ये बच्ची पहले तो खड़ी रहती है, फिर ऐसा इशारा करती है मानो उसे भूख लगी है और वो शायद दर्शकों के बीच बैठे अपने पेरेंट्स से कह रही है कि खाना खिला देते तो डांस ठीक से हो जाता। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्ची के हाव भाव देख कर उससे सहानुभूति रख रहे हैं। ये वायरल तस्वीरें भावुक कर रही हैं। ये पुलिस वाला पुलिस अफसर बनने के बाद जब घर गया तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है। दोनों की मुलाकात सबके दिल को छू रही है क्योंकि उस दोस्त को न सिर्फ ये अफसर गले लगाता है बल्कि खर्च के लिए पैसे भी देता है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस अफसर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
9: अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात हरियाणा के करनाल में पनप रही करनाल की बॉक्सिंग नर्सरी की, जहां की बेटियां जी जान से बॉक्सर बनने में जुटी हैं ताकि देश और परिवार का नाम रोशन कर सके। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा से मिले, इसलिए करनाल की रिंग में अब भविष्य की चैंपियन बेटियां तैयार हो रही हैं।

0: बॉक्सिंग की नई खेप तैयार हो रही है। इस बार ग्लासगो में हरियाणा की छोरियों ने इस खेल में जो कमाल कर दिखाया है उसने यहाँ की लड़कियों की उम्मीदों को नया आसमान दे दिया है। माता पिता भी उनकी उम्मीदों के साथ हो लिए हैं और जी जान से उनके सपनों को पूरा करने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है जहाँ सुबह शाम कुछ ऐसा ही मंजर रहता है। इनमें ज्यादातर लड़कियाँ हैं। हरियाणा की छोरियाँ अब सिर्फ कुश्ती में ही नहीं बॉक्सिंग में भी धाक जमाने की तैयारी में जुट गई हैं।
1: छोटी लड़कियाँ भी बहुत ज्यादा आ रही है और करीबन आप मान के चलिए 15 किलोमीटर 20 और 25 किलोमीटर से लड़कियाँ आ रही है और सुबह शाम पेरेंट्स भी इनके साथ ही आ रहे हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के 5 बजे ग्राउंड टाइम है आ रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, लेट तक 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक घर पहुंच रहे हैं और काफी अच्छा रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर करीबन 20 से 25 लड़कियां हैं सर, जिनमें इंटरनेशनल लड़कियां हैं सर, एशियन मेडलिस्ट लड़कियां हैं, मानसी है, तमन्ना है और बहुत सारी लड़कियां नेशनल लेवल की मेडलिस्ट है और आगे भी इनकी संख्या बढ़ेगी सर।
0: हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। हरियाणा ने कुल 11 मेडल जीते हैं, इनमें 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा मेडल बॉक्सिंग में आए हैं और उसमें भी लड़कियों ने कमाल किया है। ग्लासगो में बॉक्सिंग रिंग में हरियाणा की बेटियों ने जो कमाल कर दिखाया उससे पूरा देश गदगद है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मेडल जीतकर लौटी बेटियों को बॉक्सिंग की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया।
2: विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं, ये बड़े गर्व की बात है।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 मेडल जीते जिसमें 5 गोल्ड हैं और इनमें से बॉक्सिंग में 4 गोल्ड हरियाणा की लड़कियों ने जीते हैं। प्रीति पवार 54 किलोग्राम भार वर्ग, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग, साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम भार वर्ग, प्रिया घंघास 60 किलोग्राम भार वर्ग। जाहिर है इस खेल में भारत की बढ़ती ताकत बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहा रही इन लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणा है।
3: बॉक्सिंग में बस मेन टारगेट तो ओलंपिक है, बस सीनियर्स को देख के यही है कि भाई उनकी तरह मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, फैमिली भी मतलब किसी चीज की कमी नहीं रहने देती और फैमिली के साथ कोचिस का भी पूरा सपोर्ट है।
0: निकिता नेशनल खेल चुकी है, इनकी निगाह ओलंपिक पर है, सो सुबह शाम बॉक्सिंग रिंग में पसीना बहा रही है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में मिली बड़ी कामयाबी से हौसले बुलंद हैं। कहती है कि माता पिता का साथ हो तो लड़कियां आसमान छू सकती हैं।
4: लड़कियों के लिए मुश्किल जब है इफ अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं देन बॉक्सिंग ईजी है। मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बट फिर उसके बाद आपको इजी लगेगी अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सुविधाएं सारी अच्छी मिलती है, मतलब सरकार काफी सपोर्ट कर रही है और उम्मीद है आगे भी करती रहेगी। अगर बच्चे निकल रहे मेडल आ रहे तो सरकार भी सपोर्ट करेगी। अभी मेरा टारगेट 2030 कॉमनवेल्थ का है और 2032 का ब्रिस्बेन ओलंपिक है उसका।
0: करनाल के कर्ण स्टेडियम के बॉक्सिंग रिंग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक में भी बॉक्सिंग का दबदबा होगा और उसमें हरियाणा की छोरियों की हिस्सेदारी अहम होगी। कमलदीप करनाल, गुड न्यूज़ टुडे।

0: सुसज्जित होता है, जो इस ब्रिज पर एक नियमित आकर्षण बना हुआ है। यह अद्भुत ड्रोन लाइट शो हर शाम 9 बजे शुरू होता है, जो 15 मिनट तक चलता है। वीकडेज में 300 ड्रोन के जरिए आसमान रोशन होता है, जिसके जरिए अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जबकि वीकेंड पर 1000 ड्रोन शो में हिस्सा लेते हैं। दर्शक पुल के पास बने व्यूइंग प्लेटफॉर्म से इस नजारे को देख सकते हैं। लोगों के लिए ये लाइट एंड साउंड शो मुफ्त है। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में से एक है। बेईपान नदी के ऊपर 625 मीटर की ऊंचाई पर बना ये ब्रिज सितंबर 2025 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था। चीन की ऑटो कंपनी BYD ने अपनी पहली ब्राजील में बनी प्लग इन हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल कार सॉन्ग प्रो सुपर हिब्रिडो फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च की है। इसे बनाने में 2 साल लगे हैं। इसका ये GL मॉडल सिर्फ बिजली से 60 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि ज्यादा एडवांस GS वर्जन 120 किलोमीटर तक चल सकता है। इस प्रोजेक्ट को ब्राजील और चीन की टीमों ने मिलकर खास तौर पर ब्राजील के बाजार के लिए तैयार किया है। चीन के लांगजू जोंगशुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माउस कैचिंग ऑफिस नाम का कांच का कमरा आकर्षण का केंद्र बन गया है। एयरपोर्ट ने आवारा बिल्लियों के लिए ये शेल्टर बनाया है, जिसमें अभी 3 टैबी बिल्लियां रहती हैं। इस शेल्टर में बिल्लियों के लिए बिस्तर, कैट ट्री, एयर प्यूरिफायर और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। इन बिल्लियों के ऑनलाइन वायरल होने के बाद एयरपोर्ट ने इन्हें अपना लिया है और उन्हें माउस कैचिंग ऑफिस का डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। अब एयरपोर्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन बिल्लियों के बारे में रोजाना की जानकारी शेयर करता है। हांगकांग में जन्मे जायंट पांडा जुड़वा बच्चों जिया जिया और डेडे के दूसरे जन्मदिन के मौके पर शहर में खास जश्न मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर 4 ट्राम को इन जुड़वा बच्चों और उनके पांडा परिवार की तस्वीरों से सजाया गया है। ये खास ट्राम शहर के 4 मुख्य इलाकों में चलाई जा रही है। ट्राम के बाहरी हिस्से पर सभी 6 पांडा की 3 डायमेंशनल प्यारी तस्वीरें बनी हैं। इनकी ये परेड 31 अगस्त तक चलेगी। इस पहल के जरिए यहाँ न सिर्फ पांडा के जन्मदिन का जश्न मनाना मकसद है, बल्कि यहाँ के समुदाय के लिए पांडा के महत्व को उजागर करना बड़ा मकसद है। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव के बीच ऑस्ट्रिया के वियना चिड़ियाघर का करीब 1 साल का नन्हा हाथी इन दिनों सबका दिल जीत रहा है। 20 अगस्त को 1 साल का होने जा रहा ये हाथी अपनी माँ और एक बड़ी मादा हाथी के साथ तालाब में उतर कर नहाना सीख रहा है। चिड़ियाघर के रखवालों के मुताबिक ये नन्हा हाथी अपनी पसंदीदा आंटी के पीछे पीछे पानी में जाता है और हर बार ये जानने की कोशिश करता है कि वो कितनी गहराई तक जा सकता है। नहाने के बाद उसका अगला पड़ाव होता है कीचड़ या फिर रेत। दरअसल ये तरीका हाथियों को भीषण गर्मी से राहत देता है और उनकी त्वचा को कीड़ों से भी बचाता है। करीब 400 किलो वजनी ये नन्हा हाथी अभी अपनी सूंड का इस्तेमाल करना भी बड़े हाथियों को देखकर सीख रहा है।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के।
3: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: दौड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
3: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियों को मजबूत करने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कैंप में 4 नेट बॉलर्स को शामिल किया है। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
6: आईसीसी ने मेंस वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। वनडे बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में कप्तान शुभमन गिल समेत 3 भारतीय हैं। शुभमन टॉप पर काबिज हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे नंबर पर हैं। गिल ने पिछले हफ्ते मिचेल से बातचीत छीनी थी। भारत ने आखिरी वनडे 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे जबकि रोहित शर्मा चौथे पायदान पर हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 5वें और पाकिस्तान के बाबर आजम 6ठे पायदान पर हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के बॉलर राशिद खान पहले नंबर पर कायम हैं। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी है। वो जाफना फ्रेंचाइजी के को ऑनर बन गए हैं। जहीर ने एंकर स्पोर्ट्स एबी के साथ टीम को टेक ओवर किया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर एंकर जाफना किंग्स कर दिया गया है। जहीर से पहले राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर जैसे भारतीय दिग्गज भी अलग अलग T20 टीमों में निवेश कर चुके हैं। लंका प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट डायरेक्टर सामंथा डुजनवेला ने जहीर खान के जुड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जहीर जैसे कद के व्यक्ति का टीम से जुड़ना पूरी लीग के लिए एक बड़ा बूस्ट है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियों को मजबूत करने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कैंप में 4 नेट बॉलर्स को शामिल किया है। बोर्ड ने हर्ष दुबे, शिवांक कुमार, तनुष कोटियान और विपराज निगम प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे ताकि उन्हें मैच जैसी परिस्थितियों में तैयारी का मौका मिल सके। ये गेंदबाज श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले तैयारियों में मदद के लिए नेट बॉलर्स के रूप में टीम के साथ जुड़े हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में खेले जा रहे सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट के रैपिड में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 18 संभावित पॉइंट्स में से 12 पॉइंट्स जिताकर एक पॉइंट की बढ़त बनाई। अब खिताब का फैसला 18 ब्लिट्ज मैचों में होगा। इस प्रदर्शन से साल के अंत में होने वाले ग्रैंड चेस टूर फाइनल में जगह बनाने की उनकी उम्मीदें भी मजबूत हुई हैं। रैपिड सेक्शन के 9वें और अंतिम राउंड में प्रज्ञानंदा को नीदरलैंड्स के जूडन वान फोरिस्ट से हार मिली। इसके बावजूद वो 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बने रहे। रैपिड सेक्शन में उन्होंने 4 मैच जीते, 4 ड्रॉ खेले और सिर्फ एक मुकाबला गंवाया।
7: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
8: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में। रफ्तार
2: है तेरी लगती हुई। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। लाखों की तादाद में कांवड़िए शिव भाव से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर हैं, इनमें ऐसे शिव भक्त भी हैं जिन्होंने मन्नत मांगी है, कोई परिवार की खुशहाली चाहता है तो कोई चाहता है कि विवाह में आ रही जो बाधा है वो दूर हो जाए। आज आपको ऐसे 2 प्रेमी भोले से मिलवाएंगे जिनकी मुराद है कि उनका प्रेम विवाह हो जाए। इसके अलावा बाबा के धाम के रास्ते पर बिच्छू बनकर कांवड़ यात्रा कर रहे एक अनोखे भक्त से भी आपको मिलवाएंगे। प्रयागराज में संगम से गंगा जल उठाने पहुंचे नन्हे शिव भक्तों की आस्था भी दिखाएंगे जो पैरों में घुंघरू बांधकर कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। आखिर में आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर, जहां पर शिव भक्तों का जबरदस्त जमघट है। देखिए, सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है, देश भर से कांवड़ यात्रा की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आस्था के अलग अलग रंग दिखा रही हैं। कहीं पर प्रेम मन्नत बनकर कंधों पर सवार है तो कहीं पर कठिन तपस्या श्रद्धा की नई मिसाल बन रही है, तो कहीं पर भव्य और अनोखी कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महादेव के प्रति समर्पण का यही भाव करोड़ों शिव भक्तों को लंबी यात्रा की ताकत दे रहा है।
4: आदि अनंत फिर भी अंगिनत रूप हैं शिव के, वो साधक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं और इसके साथ ही प्रेमी हैं और गृहस्थ भी। सोचिए तो ये बात निराली है कि जो खुद कैलाश पर धुनी रमाए बैठे हैं, वो मनचाहे जीवन साथी और शादी के लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि शादी विवाह में बाधा सावन में शिव की आराधना से दूर हो जाती है और इसी भरोसे इसी उम्मीद पर ये जोड़ा निकल पड़ा है कांवड़ यात्रा पर। कहते हैं कि भोले बस भावना देखते हैं, सच्चे मन से चाहे जो मांग लीजिए मिल जाता है।
5: विनम्र निवेदन है कृपया अपनी कांवड़ इस घर के पास।
4: इस जोड़े की ख्वाहिश बस इतनी है कि इनका विवाह हो जाए। इनका प्रेम सच्चा है, इसका प्रमाण देने के लिए दोनों ने एक साथ कावड़ उठाई, विवाह के लिए मन्नत मांगी और बोल बम का जयकारा लगाते हुए हरिद्वार पहुंच गए।
6: किस तरह की कावड़ है, क्या मन्नत है आपकी कावड़?
7: यही मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए।
6: आप कितने घंटे चल रहे रोजाना एक साथ कावड़ लेके चल रहे, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं?
7: 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल लिए, 15 किलोमीटर चल लिए, ऐसे चल रहे हैं। छोटा वाला भाई आया, दीदी आई है साथ में, ऐसे वो सब लोग पीछे, हम लोग आ गए हैं।
6: आपने जल उठाया था?
7: हमने 28 तारीख को उठाया था।
6: वो जाना कितना चल रहे हो?
7: 15 या 20।
6: तो क्या कहना चाहेंगे भोले बाबा से?
7: यही कहना चाहूंगी बस शादी हो जाए दोनों की।
4: हरिद्वार से गंगा जल उठाने के बाद कावड़ का वजन ज्यादा हो गया तो दोस्तों ने भी कंधा लगा दिया। 111 लीटर गंगा जल के साथ रोज करीब 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए मयंक और दीपिका बुलंदशहर पहुंचने ही वाले हैं। इनका प्रेम गहरा है लेकिन शादी के लिए अभी घर वालों की मंजूरी नहीं मिली है, पर महादेव पर विश्वास है और इसीलिए आस है कि बात बन जाएगी, महादेव की कृपा से सभी की सहमति मिल जाएगी।
8: ये हमारी मन्नत की कावड़ है।
6: किस तरह की मन्नत?
8: जी मन्नत मांगी है कि हाँ हम दोनों की शादी हो जाए।
6: कैसे मुलाकात हुई आपकी, कितने साल पहले मुलाकात हुई?
8: जी 1 साल होने वाली है।
6: हाँ।
8: तो जब ही मुलाकात हुई, कहने का मतलब ये है कि बुलंदशहर में पहली बार गया हूँ शादी में, जब मुलाकात सी होगी जी। कावड़ लाने के तो विचार हमारा पहले से ही है और हमने बाद में विचार बनाया कि डीजे फीजे हर चीज लेके चलेंगे, तो हमारा सारा ग्रुप भी है, बहुत बालक है, आधे कुछ पीछे हैं कुछ आधे हैं, सारे गैल में हैं। तो हमारी मन्नत यही कि दोनों जने हम कावर घर तक अपने मंदिर पर चढ़ा देंगे।
4: एक साथ भारी भरकम कावड़ उठाए इस जोड़े को देखकर लोग भी दंग हैं, पर खुशी भी है क्योंकि ईश्वर से प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। मयंक और दीपिका ने भी अपने प्रेम को भक्ति से जोड़ दिया। दोनों ने कावड़ उठाकर कठिन परीक्षा दी, अब परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है। वैसे तो भोले की कृपा एक लोटा जल से ही मिल जाती है, लेकिन अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भक्त कड़ी तपस्या करते हैं। हाथों के बल कावड़ यात्रा पर निकले राजकुमार ऐसी ही तपस्या की एक मिसाल है। बिच्छू के आकार में दोनों पैर हवा में और हाथ के पंजों से आगे बढ़ते हुए राजकुमार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और नतमस्तक भी होते हैं।
9: हम पिछले 2 साल से भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 51 शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, खाड़ोशी अम्बा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जीन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिच्छूम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल 1 महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है। थोड़ा इस साल पीछे चल रहे, जो कि पिछले साल हमारे भैया चल रहे थे साथ में और इस साल हम अकेले चल रहे, जो कि पीछे में साइकिल है तो साइकिल लेकर हमको चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी हो रहा है। और आप बोले जो कैसे मन में आया, ये तो हम जब बागेश्वर धाम गए थे तो पहले हम बागेश्वर धाम गए तो फिर हमें एक अलग शक्ति मिला हमें, तो फिर लगा जो नहीं हम और जा सकते हैं, और दूर जा सकते हैं, और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लोगों के दर्शन करा सकते हैं, तो बस ऐसे करके चलते रहे। हमें तो ऐसे कोई कठिनाई दिक्कत नहीं लग रहा है क्योंकि हम लगभग चलते रहते, जब राम मंदिर उद्घाटन हुए थे तब भी हम जो है वो टर्निंग से मंदिर तक गए थे, बागेश्वर धाम जो टावर है टावर से बागेश्वर धाम तक गए थे ऐसे हाथ से चल के, तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा जगह जाते रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है।
4: बिच्छू बम बनकर राजकुमार ने जब पिछले साल पहली बार यात्रा की थी तो पूरे 1 महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस साल सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा में उनकी रफ्तार अच्छी है। एक बार में राजकुमार 60 से 70 फीट चलते हैं, थोड़ी देर ठहरते और फिर चलने लगते हैं। पिछले 2 साल में 12 ज्योतिर्लिंगों 4 धाम और 21 शक्ति पीठों का दर्शन कर चुके हैं राजकुमार। इस कावड़ यात्रा के दौरान बिच्छू बम के तौर पर काफी चर्चा में है। चर्चा धनबाद के अजय विश्वकर्मा की भी हो रही है और उसकी वजह है उनकी डमरू के आकार वाली कावड़। जिसे देखने के लिए दूसरे कांवड़िए ठहर जाते हैं। लकड़ी और फाइबर से बना ये विशाल काय कांवड़ भव्य है लेकिन वजनदार है। हाँ, जब लोग इसकी सराहना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोल बम का जयकारा लगाते हैं तो अजय विश्वकर्मा को परम आनंद मिलता है।
10: बाबा का डमरू है ये, भगवान गणेश और जो पहली बार पद यात्रा में आया भगवान श्री राम, ये छवि है।
11: क्या चीज से बनाए?
10: ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है। वजन तो वेट नहीं की लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ, ये 15 kg से ऊपर है, 18 kg लमसम है। ये खुद से बनाया है, इसकी कोई लागत कोई आंख नहीं जा सकता है।
11: आप इसको खुद से?
10: खुद से, और ये हर एक साल कुछ न कुछ यूनिक।
4: शिव भक्तों की जो भीड़ हर दिन बाबा धाम जा रही है उसमें आस्था और भक्ति की अनगिनत चमकीली तस्वीरें हैं। पर चांदी की इस कावड़ की तो बात ही निराली है। पटना सिटी से विशाल शिवधारी कावड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था 54 feet के इस कावड़ को लेकर देवघर के लिए निकला है। खूबी ये है कि कावड़ 54 feet लंबी है और इसमें 54 kg चांदी का प्रयोग किया गया है। साथ ही ज्योतिर्लिंग और माँ दुर्गा काली की प्रतिमाएं भी हैं।
10: इसमें अलग यही है कि चांदी की 54 kg चांदी का है, इसलिए ये सब लोग का श्रद्धा के अनुसार पूरा ये कावड़ गई है। वही श्रद्धा के अनुसार 54 kg चांदी सब लोग के सहयोग से ये प्रणाम हुआ और ये आगे भी विकसित होगा। कुछ सोना के भी लगने वाली है, सोना से और जितना श्रद्धा बनेगा लोग का उतना ही आगे बढ़ते रहेगा कावड़ में। और तरह तरह की चीज इसमें भारी की होती है। हाँ, ज्योतिर्लिंग है, बड़ी माँ है, दुर्गा माँ है, काली माता है, सब लोग है इसमें। हम लोग का ग्रुप 600 को गुद्धा है।
11: कहाँ
10: ये हम लोग 7 बजे सुबह में निकले सुल्तानगंज से।
4: बैद्यनाथ धाम में दोनों मंदिरों के बीच 54 feet की दूरी है और इसीलिए 54 feet की कावड़ और यात्रा भी 54 घंटे में पूरी की जानी है। नंगे पांव केसरिया वस्त्र, सर पर रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए श्रद्धालुओं की टोली कावड़ मार्ग पर शिव भक्ति का दिव्य रंग घोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: कांवड़ यात्रा अब सिर्फ गंगा जल लाने की परंपरा नहीं रही बल्कि संस्कार, सेवा और समर्पण का महापर्व बन चुकी है। कहीं नन्हे शिव भक्त अपनी आस्था से प्रेरित कर रहे हैं, कहीं पर परिवार रिश्तों की नई मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच व्यवस्था और भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। देश भर से सामने आ रहे ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य बता रहे हैं कि महादेव की भक्ति हर उम्र हर रूप में जीवंत है। रिपोर्ट देखिए।
12: ये घुंघरू किसी कलाकार के पैरों की पहचान नहीं है बल्कि शिवभक्ति की आवाज है। छोटे छोटे कदम, पैरों में बंधे घुंघरू, कंधों पर कांवड़ और होठों पर महादेव का नाम। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंची ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बनारस से आए ये छात्र 7वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज से गंगा जल लेकर अपने शहर लौट रहे हैं। इनके पैरों में घुंघरू इसलिए बंधे हैं ताकि चलते समय लगातार आवाज आती रहे और रास्ते में कोई अनजाने ही उनकी कांवड़ से न टकराए। साथ ही उनके साथी भी एक दूसरे की मौजूदगी आसानी से समझ सके। ये बच्चे पिछले 4 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं और इस बार 5वीं बार इस यात्रा पर निकले हैं। उनकी कामना है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, पढ़ाई में सफलता मिले और महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे।
13: Yeah. सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ जो है प्रयागराज के दशा सुमेध घाट पर पहुंच रहे हैं। हर कांवड़ियों के अपने रूप है, रंग है और हर किसी का संकल्प भी अलग है। प्रयागराज का एक ऐसा ही ग्रुप है जो पायल पहनकर पैरों में कांवड़ लेकर चल पड़ा है। उसके पीछे आशा है कि वो जिन रास्तों से गुजरे उनके लोगों के बीच में आने वाले लोग उनके कांवड़ को खंडित न करे, लिहाजा पैर में उन्होंने पायल पहना है। और ये काशी के रहने वाले हैं, ये प्रयागराज का जल भरकर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करेंगे, लिहाजा प्रयागराज में ये ग्रुप पहुंचा है।
14: मेरा नाम है अमन, मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ और कांवड़ उतार रहा हूँ। मैं चार साल मेरा कांवड़ हो गया और मेरा गांव है काशी में।
15: पायल क्यों पहना?
14: पायल इसलिए पहना कि
15: कांवड़
14: ठंडी ना हो।
15: किस क्लास में पढ़ते कांवड़ क्यों उठा रहा?
14: मेरा नाम प्रियांशु सरोज है, मैं काशी से रहने वाला हूँ। मैंने कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे।
16: युवराज कुमार नाम है मेरा, मैं काशी का रहने वाला हूँ। कांवड़ ये मेरा तीसरा साल है।
12: उधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में पहुंच चुकी है। हर की पैड़ी, मालवी द्वीप, शिव सेतु और राष्ट्रीय राजमार्ग, हर ओर सिर्फ भगवा रंग दिखाई दे रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। बोलबम, हर हर महादेव के जय घोष पूरे वातावरण को शिवमय बना रहे हैं। अंदाजा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पंचक समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज और हरिद्वार ही नहीं बल्कि सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रहा एक परिवार अपनी बुजुर्ग माता जी को कांवड़ में बैठा कर यात्रा कर रहा है। करीब 260 किलोमीटर के सफर में कभी बेटा, कभी बहू तो कभी पोता बारी बारी से कांवड़ उठाकर माँ को आगे ले जा रहे हैं।
17: श्रवण कुमार कांवड़ बोलते हैं इसको, और माँ बाप से प्यार था। 4-5 साल से आया नहीं था माँ बाप के मम्मी के कारण। एक्चुअली पापा थोड़ा घर पे कोई है नहीं इसलिए पापा रह गए नहीं, तो दोनों को लाने का मन था, तो माँ बाप का प्यार था इसलिए मैं माँ को लेके आ गया।
18: तो अभी कौन कौन कांवड़ उठा करके ले
17: गया? अभी मैं हूँ, वाइफ है और अपना भतीजा है और भाभी भी है और एक वो अपना भांजा है।
18: कैसा लगा?
17: बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। भोले बाबा की कृपा है, चल रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं।
12: परिवार इस यात्रा को श्रवण कुमार कांवड़ कहता है। कई वर्षों बाद उन्हें कांवड़ लाने का अवसर मिला, इसलिए इस बार उन्होंने अपनी माँ को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा में माता जी भी बेटे बहू के स्नेह से बेहद खुश हैं।
17: जितने भी है आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने देखा है आजकल नेट पे देखता हूँ बहुत गलत गलत हो रहा है, तो माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा करोगे उतने ही जन्नत में जाओगे, बड़ा प्यार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। माँ बाप से प्यार है वो करते रहो।
12: हरियाणा के रवि और उनकी पत्नी नीशु हरिद्वार से करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ का एक सिरा पति के कंधे पर है, दूसरा पत्नी के कंधे पर। दोनों मिलकर गंगा जल अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उससे अपने बुजुर्ग सास ससुर को स्नान करा सके। परिवार की जिम्मेदारी केवल बेटे की नहीं होती, बहू भी उसी प्रेम और सम्मान के साथ उसे निभा सकती है।
19: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार से चंडीगढ़ लेके जाना है, बहुत अच्छा लग
18: रहा है। कैसे
19: विचार आया आपको? ये बस हस्बैंड सोचते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो तो थोड़ा नॉर्मल है, चलता रहता है, पर इतना नहीं है।
18: सासू जी क्या कह रही हैं?
19: सासू जी भी अच्छा बोल रही हैं, ये अच्छी बात है, कह रही है अच्छी बात है, लेके जा रहे हैं।
12: जब तक माता पिता चलने फिरने में सक्षम हैं, तब तक वो हर साल गंगा जल लाकर उनका अभिषेक कराएंगे। राजकुमार का आगे चलकर उन्हें श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराने का भी सपना है। कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से सामाजिक सौहार्द की भी एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और जेलुम का जुलूस एक ही मार्ग के करीब 170 मीटर हिस्से से गुजरना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से विस्तृत तैयारी की है। रास्ते के बीच करीब 10 फीट ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं ताकि दोनों आयोजन अपने अपने मार्ग से शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकें। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।
20: जो शहर में एक 170 मीटर का भाग है हनुमान चौक के बाद, वहां पे कावड़ और चहलुम दोनों एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलने के लिए जितने हमारे स्टेक होल्डर है सबसे बातचीत हो गई है, जितने हमारे फिजिकल अरेंजमेंट हो गए सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट हो गया, और मात्र 170 मीटर का वो मार्ग है जिसपे स्थलीय निरीक्षण डीएम साहब द्वारा, एसएसपी साहब द्वारा, हम सभी द्वारा कर लिया गया है, और सकुशल इन दोनों जुलूसों को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध।
12: कहीं घुंघरुओं की छमछमे शिवभक्ति सुनाई देती है, कहीं बेटे बहू के कंधों पर माँ के प्रति सम्मान दिखाई देता है, कहीं एक बहू रिश्तों की जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा का नया उदाहरण पेश कर रही है। भक्ति और भावना के ये इंद्रधनुषी रंग ही कांवड़ यात्रा को भव्य बनाते हैं। प्रयागराज से आनंद राज, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सावन में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। मंदिर, घाट, सड़क और रेलवे स्टेशन पर हर हर महादेव और बोलभम के जयघोष हैं। लाखों शिव भक्त अपने संकल्प के साथ बाबा के दरबार की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आस्था, अनुशासन और उत्साह की अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर केसरिया समंदर लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
21: कंधे पर कांवड़, दिल में देवाधिदेव भोलेनाथ और जुबान पर हर हर महादेव। शिव भक्तों का ऐसा जमघट शायद ही किसी स्टेशन पर दिखे, और उसकी वजह भी है। जिन कांवड़ियों को यूपी या देश के दूसरे हिस्सों से बिहार के भागलपुर जाना है, उनकी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से मिलती है। रेलवे के मैप पर डीडीयू यूपी और बिहार के दरमियान है, जहां से पूरे सावन कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। हैरत की बात नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है, जिसको नियंत्रित करने और कांवड़ियों को सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संभाल रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हजारों की तादाद में शिवभक्त पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं।
22: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के वैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है। ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
23: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
22: कहां से आए आप?
23: रायबरेली से।
22: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
23: बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहां जल भरे हैं जो है कि यहां पर दर्शन किए हैं अपना। अब यहां से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा वैद्यनाथ धाम।
22: कितनी आस्था है बाबा में?
23: बहुत बड़ी आस्था है जो है। हम लोग सावन आने का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया, वो शुभ घड़ी आई, वो पर्व आया, आज जो है इतना सारा मेला में सम्मिलित होने का उपलक्ष्य मिला, वो मौका मिला, ऐसा तो बहुत सारा आया।
22: देखा जा सकता है कितना उत्साह है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
24: भीम शंकर।
22: क्या कहना है आपका?
24: बहुत बढ़िया,
22: अच्छा लगता है बाबा धाम
24: जाना। बहुत, बहुत।
22: आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप?
23: रायबरेली से।
22: आप भी रायबरेली से हैं, तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
23: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
22: पहली बार जा रहे हैं आप?
23: हाँ भैया।
22: कैसा लग रहा है, कितना उत्साह?
23: बहुत अच्छा लग रहा है।
22: आपका क्या नाम है?
25: सुनील कुमार।
22: आप बताइए आप कब से जा रहे हैं और कितना उत्साह है?
25: पहली बार जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया जा रहे हैं।
22: पैदल चल लेंगे 120 किलोमीटर?
25: हाँ पैदल चल लेंगे, बाबा की इच्छा होगी तो।
21: सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही न सिर्फ डीडीयू बल्कि इसके आगे बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी तादाद ट्रेनों के जरिए भागलपुर पहुंचती है और वहां से गंगा जल लेकर देवघर जाती है। इसीलिए यूपी से बिहार तक की ज्यादातर ट्रेनों में बोल बम का जय घोष है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो जैसे शिवमय हो चुका है।
22: ये तमाम उत्साह से लबरेज श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए कांवरिए हैं। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिए ही कांवरिए दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से भगवामय हो गया है और ये कांवरिए यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठाएंगे और जल उठाने के बाद ये तमाम कांवरिए जो है वो बैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ पैदल कूच करेंगे और वहां जाने के बाद लोग जलाभिषेक करेंगे। एक और श्रद्धालु हैं, कहां से आए हैं आप?
0: शकरडीहा से।
22: ये बताइए, इधर आ जाइएगा कि क्या कहना है आपका, कब से जा रहे हैं आप?
0: हम तो 20 साल से जा रहे हैं।
22: कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है।
22: अब हमें भक्ति है,
0: पूरी भक्ति है, पूरी मनोकामना पूर्ण होती है,
22: पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहना है इन श्रद्धालुओं का। श्रद्धा और भक्ति का लगातार जमावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देखा जा रहा है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
3: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। एक्टर धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही है एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कांवड़ भक्ति के अनोखे रंग। यात्रा मार्ग में गुजर रही कांवड़ियों के जरिए हो रहे हैं भोलेनाथ के अलग अलग रूपों के दर्शन, कांवड़ियों ने अपने अपने तरीके से तैयार की हैं मूर्तियां। कांवड़ में कहीं देखी भगवान भोलेनाथ के आदि स्वरूप वाली झलक, तो कांवड़ यात्रा में कहीं देखी हनुमान जी और राम परिवार की झलक। भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई है कांवड़, कांवड़ियों ने अपनी अपनी कांवड़ को दिया आकर्षक रूप। कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही महाकाल की भव्य स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। बिहार के मुंगेर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर देखिए 54 किलो चांदी से सजी 54 फीट लंबी अनोखी कांवड़। कांवड़ में स्थापित है बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग, बड़ी दुर्गा मां और रामा काली की मूर्तियां। कांवड़ी मेले के मौके पर पटना सिटी से यह दिव्य कांवड़ लेकर बाबा धाम देवघर की ओर बढ़ रहे हैं 600 कांवड़िए। भोलेनाथ के जयकारों के साथ आस्था भक्ति और उत्साह के साथ लगातार जारी है कांवड़िए की यात्रा, भक्तिमय हुआ कांवड़ यात्रा पर पथ। इस कांवड़ संघ के मुताबिक साल 2008 से चल रही है यह परंपरा, श्रद्धालुओं का कहना है कि यह नियमों का पालन करते हुए 54 घंटे में पहुंचते हैं बाबा धाम। कांवड़ यात्रा बैद्यनाथ धाम जाने वाली कांवड़ियों से भरा पड़ा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर हर महादेव के जयकारे। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुलभ यात्रा करने के लिए प्रशासन ने सख्त इंतजाम किया, आरपीएफ और जीआरपी की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सकुशल ट्रेन में सवार की का जिम्मा। श्रावण महीने में उत्तर भारत में पूरी आस्था के साथ लगातार जारी कांवड़ यात्रा, अलग अलग स्वरूपों और आकार में कांवड़ को लेकर यात्रा। प्रयागराज के घाट पर हर दिन अलग का स्वरूप नजर आते हैं कांवड़िए, पैर में घुंघरू बांधे दशाश्वमेध घाट पहुंचे शिव भक्तों का सपना। अपनी कांवड़ को खंडित होने से बचाने के लिए सिटी बजाते और पैरों में घुंघरू बांधकर चलते हैं कांवड़िए। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ साथ प्यार का भी एक अनोखा रंग, मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक प्रेमी युगल 111 लीटर गंगाजल पैदल यात्रा करता है। इस प्रेमी युगल की भोले शंकर से यही प्रार्थना है कि उनकी शादी हो जाए। मुजफ्फरनगर पहुंची मोदी और योगी की कांवड़, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बड़ी तस्वीरें। शहर के 600 भक्तों की एक टोली हरिद्वार से लेकर आ रही है मोदी योगी के नाम की कांवड़, ये टोली पिछले साल भी मोदी योगी की कांवड़ लेकर आई थी। इस टोली ने गंगा मैया से मांगा खास मन्नत, योगी के दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कामना। बिहार के मुंगेर के डमरू रूपी कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, लकड़ी और फाइबर से बनाया गया है डमरू का पूरा ढांचा। हाथों के बल बाबा की यात्रा पर निकलते हैं बाबा पंगाल राजकुमार महतो। पिछले दो सालों से पूरे भारत में धार्मिक यात्रा कर रहे हैं राजकुमार। इस साल 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्तिपीठों में से 21 की हुई पूरी दर्शन। बागपत में देखिए रिश्तों की अनोखी मिसाल, सास ससुर को गंगाजल से नहलाने 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर बहू। एक ही कांवड़ उठाए, करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकली है हरियाणा की ये दंपत्ति। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़ियों का सफल हुआ रेस्क्यू, पीएससी के आपदा राहत दल के जवान ने दिखाई फुर्ती। हरिद्वार में शिव घाट पर स्नान के दौरान दिल्ली के रहने वाले कांवड़िए राजेंद्र कुमार का फैसला पैर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डीआईजी और कमिश्नर ने सड़क पर उतरकर कांवड़ियों के लिए किए इंतजामों का जायजा लिया। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद की गई 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री। उत्तर प्रदेश के संत कबीर में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की मंदिर में करा दी शादी। अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला, राम दरबार दर्शन करने के लिए विशेष पास व्यवस्था खत्म, जबकि रामलला की आरती करने के लिए अब मिलेगा तत्काल पास। मंगला और श्रृंगार आरती करने के लिए एक दिन पहले मिलेगा पास, जबकि शयन आरती करने के लिए उसी दिन होगी बुकिंग। प्रतिदिन रामलला की आरती करने के लिए 45 और राम परिवार की आरती करने के लिए 15 पास किए गए निर्धारित। दर्शन व्यवस्था अधिक सुगम बनाने के लिए श्रद्धालुओं का समय बचाना मकसद है, नई दर्शन व्यवस्था को सरल होंगे दर्शन। श्रावण मास के अलावा भी रोजाना देश दुनिया से दर्शन करने के लिए हजारों लाखों भक्त पहुंचते हैं। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, गणपति बाप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्तिकार। पुणे के नारायण गांव में किरण सावले परिवार के साथ बना रहे हैं गणपति बप्पा के फोटो और पकड़ी। गणपति उत्सव को लेकर बाजारों में दिखने लगी रौनक, गणपति उत्सव के लिए बप्पा की एक से बढ़कर एक मनमोहक मूर्तियां। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होगा भव्य दिव्य गणपति उत्सव, देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा त्यौहार। बप्पा की मूर्ति निर्माण में श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखा जा रहा है, कोर्ट ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण का जोर दिया। आपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए अभिनेता धनुष का नेक काम, चेन्नई के हजारों स्कूली बच्चों को मिली स्कूल की नई बिल्डिंग की सौगात। अभिनेता धनुष ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल को दान की इमारत, धनुष ने थाई सत्य स्कूल के लिए अपने पैसों से बनवाई है 3 मंजिला बिल्डिंग। स्कूल को अभिनेता धनुष की ओर से दान की गई इमारत का नाम रखा गया है धनुष ब्लॉक। स्कूल को दान की गई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में अभिनेता धनुष, उनके बैच के स्टूडेंट्स और सिनेमेटोग्राफर कुमारन पहुंचे। स्कूल को दान की गई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में धनुष ने अपने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। भारत के स्ट्रीट फूड को फिर मिली वैश्विक पहचान, टाइम आउट मैगजीन के साल 2026 की दुनिया की बेस्ट स्ट्रीट फूड वाले शहरों में भारत के 3 शहरों को मिली जगह। दुनिया के बेस्ट स्ट्रीट फूड वाले शहरों की सूची में मुंबई को 10वां, जयपुर को 15वां स्थान। बिहार के कोसी इलाके में लोगों के लिए गुड न्यूज, सुपौल से नई दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, सहरसा बरौनी हाजीपुर बलिया वाराणसी होते हुए पहुंचेगी दिल्ली। एक जिला एक उत्पाद योजना ने बदल दी वाराणसी के बुनकरों की आर्थिक हालत, कारीगरों को अब छोटे मोटे काम करने के लिए भटकना नहीं होगा। योजना लागू होने के बाद साड़ी और सिल्क मटेरियल के काम से उद्यमियों का बढ़ा काम, कारोबारियों की बढ़ी आमदनी, योजना के बाद 5 गुना बढ़ा बनारसी साड़ी का निर्यात। دلی میں آپ پرانے اور استعمال یوگ کے کپڑوں کو دان دے کر ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں گے، لوگ پریاورن کی بھی ہوگی رکشا۔ ارپن یوجنا کے تحت سنگرہ ریاست کال اور اپ سائیکل کیے جائیں گے کپڑے، ٹیکسٹائل ویسٹ کو کم کرنا مقصد۔ پرانے کپڑے دان کرنے کے لیے پہلے چرن میں دلی کے 5 میٹرو اسٹیشن پر کھولے گئے ہیں ارپن کیندر، آنے والے سمے میں 10 اسٹیشنوں پر ارپن کیندر کھولنے کی یوجنا۔ پرانے کپڑے دان کرنے کے لیے کیو آر کوڈ سکین کر کے آسان سا فارم بھرنا ہوگا جس میں اپنا نام، نمبر اور دان دینے والے کپڑے کا وزن دینا ہوگا۔ ارپن کیندر پر صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کپڑے دان کر سکیں گے لوگ، استعمال یوگے کپڑے ضرورت مندوں تک پہنچائے جائیں گے۔ گجرات کے بھاو نگر سے آئی راحت والی گڈ نیوز، ٹرین کے الرٹ چالک نے بچائی ایشیائی شیروں کی جھنڈ کی جان۔ ٹرین چالک نے شیروں کے جھنڈ کو دیکھا کر ٹرین روک دی، سمے رہتے ٹرین کے رکنے سے بچ گئی جان۔ مہاراشٹر جالنا کی کسانوں کی محنت کا کمال، بھنڈی کی آرگینک

पिठोरी सरस गांव में किसानों के करीब 30 परिवार कर रहे हैं ऑर्गेनिक भिंडी की खेती। कंपनी देती है बीज और दवाएं। जम्मू कश्मीर सरकार ने राजौरी मेडिकल कॉलेज की क्षमता बढ़ाने का किया फैसला। राजौरी स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई MBBS की 50 सीट्स। अब GMC कॉलेज में हर साल 100 की जगह 150 छात्र ले सकेंगे दाखिला। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से फिरोजाबाद के कलात्मक कांच उद्योग को मिली नई पहचान। कारोबारियों को कर्ज लेने और व्यवसाय स्थापित करने में मिल रही है मदद। इस उद्योग से जुड़ी महिलाओं को खासतौर पर हो रहा है फायदा। जिले से बाहर काम करने की तलाश में जाने वाले मजदूरों को पलायन भी रुक रहा है। 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होती है फिरोजाबाद के कांच की विभिन्न वस्तुएं। यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में खासी डिमांड। 26 सितंबर से जोधपुर में गरजेंगे दुनिया भर के फाइटर जेट। पाकिस्तान बॉर्डर के पास होगी IAF की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल ड्रिल तरंग शक्ति 2.0। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस की नेक पहल। गुम हुए 200 मोबाइल मालिकों को तक पहुंचाए। गुम हुए मोबाइल वापस मिलने के बाद मालिकों के चेहरे खिले। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, DA बढ़ाकर 38%। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से अपील। भारी बारिश के अनुमान की वजह से सावधानी बरतें।

शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद सेंट लुइस टूर्नामेंट के रैपिड में टॉप पर पहुंचे, 18 में से 12 पॉइंट्स जुटाए। अब 18 ब्लिट्स मैचों से खिताब का फैसला। प्रज्ञानंद ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में हासिल की बड़ी सफलता। इस प्रदर्शन से साल के अंत में होने वाले ग्रैंड चेस टूर फाइनल में जगह बनाने की उनकी उम्मीदें भी मजबूत हुई। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को मिली 9वीं सीड। 17 अगस्त से नई दिल्ली में खोला जाएगा टूर्नामेंट। 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में उतरेंगे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर किया था अपने नाम। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी। जाफना फ्रेंचाइजी के को ओनर बन गए जहीर। नागिन बनकर बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए तैयार है श्रद्धा कपूर। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हुई। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नवंबर ही रिलीज हुआ। 4 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। जाने तू या जाने ना के साथ फिल्मों में कदम रखने वाले इमरान खान लगभग एक दशक के बाद वो बड़े पर्दे पर करेंगे वापसी। कपूर ने पर्सनैलिटी राइट्स मामले में खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। बिना अनुमति अपने नाम फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाई। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रच दिया इतिहास। सिर्फ 5 दिन में $1 बिलियन का आंकड़ा पार किया। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत के आसमान में देखा शानदार नजारा। हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज पर आयोजित हुआ भव्य आयोजन। इस ब्रिज पर एक नियमित आकर्षण बन चुका है ड्रोन लाइट शो। हर शाम 9 बजे से शुरू हो जाता है अद्भुत शो। एक देश में 300 ड्रोन के जरिए रोशन होता है आसमान। बनाए जाते हैं अलग अलग फॉर्मेशंस। दर्शक पुल के पास बने व्यूइंग प्लेटफॉर्म से इस नजारे को करते हैं कैद। लोगों के लिए मुफ्त है ये लाइट एंड

0: Sound Show。दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में से एक माना जाता है हुआनजिंग का ग्रैंड कैनियन ब्रिज। हांगकांग में जन्मे जायंट पांडा जुड़वा बच्चों जियाजिया और डेडी के दूसरे जन्मदिन के मौके पर शहर में मनाया गया जश्न। इस खास मौके पर चार ट्रंप को इन जुड़वा बच्चों और उनके पांडा परिवार के साथ तस्वीरों में सजाया गया। शहर के चार मुख्य इलाकों में चलाई जा रही है खास ट्रंप। अगस्त तक चलेगी ये परेड जिसमें गर्मियों की पूरी छुट्टियां शामिल है। पांडा का जश्न मनाना और समुदाय के लिए उनके महत्व को उजागर करना मकसद। चीनी कंपनी बीवाईडी ने लॉन्च कर दी अपनी पहली ब्राजील में बनी प्लग इन हाइब्रिड फ्लैक्स फ्यूल कार। रियल मॉडल सिर्फ बिजली से 60 किलोमीटर की रेंज देता है जबकि ज्यादा एडवांस जीएस वर्जन 120 किलोमीटर की रेंज देता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: क्या जूते चप्पल के प्रयोग से आप अपने रोजगार में स्थिरता ला सकते हैं? क्या जूते चप्पलों के प्रयोग से आप जीवन के संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या गलत जूते और चप्पल आपको जीवन में अपयश दे सकते हैं? जूते और चप्पल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में स्टेशन मास्टर, टिकट चेकर, गार्ड, अनाउंसमेंट स्टाफ और ट्रैक पर काम करते कर्मचारी की तस्वीर कौंधने लगती होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन सभी जिम्मेदारियों को सिर्फ महिलाएं संभाल रही हो तो नजारा कैसा होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका है।

0: ये वो रेलवे स्टेशन है जो लेडी स्पेशल है, जहां महिलाएं ही अपने हौसलों से आसमान लिख रही हैं। दरअसल यूपी में लखनऊ के बाद गोरखपुर के डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है।
1: यहाँ पूरी महिलाएं वाणिज्य विभाग में, हमारे स्टेशन अधीक्षक विभाग में, और आरपीएफ स्टाफ जो है हमारा, जो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, सारे जो है महिलाएं ही हैं। हमारी सफाई कर्मी भी महिला हैं, हमारी एडीआरएम मैडम भी महिला हैं, जो कि बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत सी परेशानियां जो हम लोग को आई वो सब उन्होंने ही देखा।
0: यहाँ स्टेशन संचालन से लेकर सुरक्षा, टिकट काउंटर से लेकर ऑफिस और सहायक स्टाफ तक, हर जिम्मेदारी सिर्फ महिला कर्मचारियों के हाथों में है। यहाँ काम कर रही हर कर्मचारी दर्शा रही हैं कि उनके इरादों को कभी कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत और हौसलों से हर मंजिल हासिल करना जानती हैं। गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन ऐसी ही मजबूत इरादों वाली महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।
2: कभी हम लोग ऐसे कर नहीं रहे थे ड्यूटी, हमेशा पुरुषों के साथ ही मिलके हम लोग किए हैं। फर्स्ट चांस है कि हम लोग ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ महिलाएं कर्मचारी हैं। तो पहले लग रहा था कि हम लोग सारी महिलाएं हैं, कैसे किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अधिकारी हम लोग की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस हिसाब से सब कुछ अच्छा है।
0: इस स्टेशन पर कार्यरत महिलाएं 3 शिफ्ट में सेवा दे रही हैं, जिनमें नाइट शिफ्ट भी शामिल है। जाहिर है डोमिनगढ़ क्योंकि आउटर एरिया स्टेशन है, ऐसे में लखनऊ रेलवे मंडल का सेफ्टी से जुड़े तमाम जरूरी पहलुओं पर भी खास फोकस रहा है, ताकि इस मॉडल रेलवे स्टेशन पर महिलाएं भय मुक्त माहौल में काम कर सकें। वैसे ट्रेनों की आवाजाही को भी ये महिलाएं बेहद आराम से कंट्रोल कर रही हैं।
3: यहाँ पे अभी जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, उन सबों को हम लोगों को खुद से इंडिविजुअली देखना पड़ता है। सारा उसका मेन जो आने जाने का प्रोसेस है, प्रोसीड करना हुआ, लाइन के लेना हुआ, देना हुआ, ब्लॉक पे जो भी काम करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी इंडिविजुअल कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर में करते तो पुरुषों के साथ करना होता था, यहाँ सब कुछ हम लोग अकेले कर रहे हैं।
0: इसके साथ ही डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला आरपीएफ की तैनाती न केवल इसको एक आइडियल रेलवे स्टेशन बना रही है, बल्कि यहां काम करने वाली दूसरी महिला कर्मियों के बीच सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ा रही है।
4: कोई डर नहीं है, ड्यूटी तो कहीं भी करनी ही है, ड्यूटी के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां अपना निभाना हर जगह पड़ता है, तो अपना फर्ज है ड्यूटी निभाना। अधिकारियों का सहयोग पूरी तरह से है, हमारे इंस्पेक्टर से लेके कमांडेंट और डीआरएम सबका सहयोग है।
0: ऐसा अक्सर देखा गया है कि रेलवे में जहां महिलाएं अभी तक पुरुषों के साथ काम किया करती थीं, वहीं अब पुरुषों के सपोर्ट के बगैर ये महिलाएं अपने अपने सेक्शंस में बखूबी सेवा भी दे रही हैं। अगर कोई परेशानी आती भी है तो उच्च अधिकारी हमेशा इनके साथ खड़े हैं।
5: जो डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन है उस पे अभी सभी विभागों की महिला कर्मचारी जो है काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, और उससे जो है कामकाज का वातावरण भी अच्छा बना हुआ है, उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्रम में जो है एक स्टेशन पे सभी महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि अच्छा काम कर रही हैं, और मैं इसके लिए लखनऊ मंडल ने जो भी प्रायोगिक जो ये किया है, मैं इसके लिए उन्हें जो है बधाई देता हूं। और सभी महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग जो है और आगे अच्छा काम करें।
0: बता दें कि भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन है, जहां जुलाई 2017 से टिकट बुकिंग, कमर्शियल ऑपरेशन, सिग्नलिंग और सुरक्षा यानी आरपीएफ वाली जिम्मेदारी जैसे स्टेशन के सभी कामकाज महिला कर्मचारियों के हाथों में है। वहीं मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले इस स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन के ही रूप में जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी बना है। ये देश का पहला नॉन सब अर्बन और मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसे 24 घंटे महिलाएं संचालित करती हैं। और वहीं लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऑल वुमेन स्टेशन है, जहां सिग्नल और कंट्रोल रूम की कमान महिलाओं के पास है। अब महिलाओं के द्वारा संचालित गोरखपुर का डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन भी दर्शा रहा है कि इन महिलाओं को किसी सहारे की जरूरत नहीं और न ही किसी एहसान की। ये वो सशक्त नारी है जो नए भारत की असली पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, Shaping Future, Creating Leaders।
3: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जूते और चप्पल के बारे में। क्या जूते और चप्पल का हमारे भाग्य के साथ कोई कनेक्शन होता है? क्या हमारे भाग्य का इस पर कोई असर पड़ता है? हमें जूते चप्पल को लेकर किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर रोजगार में, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, अगर रोजगार में हमेशा समस्या रहती हो तो शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काले जूते का या काले या नीले चप्पल का दान करिएगा। साल में एक बार अगर आप ऐसा कर दें तो आपके रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: और आइए जान लेते हैं 6 अगस्त 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 6:52 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र रात के 8:13 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जूते और चप्पलों के बारे में। तो आइए जानते हैं जूते चप्पल का ज्योतिष में आखिर क्या स्थान है जो वो रखते हैं।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके जूते और चप्पलों के बारे में। आपके जूते चप्पल आपके भाग्य से, आपके जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पैरों का संबंध होता है मीन राशि से, सर का संबंध होता है मेष राशि से। इसके अलावा शनि और राहु, इन दोनों का संबंध भी आपके इस स्थान से, जूते चप्पलों से होता है। जैसे ही आप जूते चप्पल का प्रयोग करते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, वैसे ही शनि और राहु सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। गलत तरीके से जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सामान्य लगता होगा कि मैं किसी भी रंग का जूता पहन लूं, मैं कैसे भी जूता चप्पल पहन लूं, मैं मोजे के बिना पहनूंगा, मोजे के साथ पहनूंगा, मैं अलग अलग रंग के जूते पहनूंगा। तो आप अगर बिना सोचे विचारे जूते चप्पलों का प्रयोग करेंगे तो आपको स्वास्थ्य की, यश की और धन की समस्या परेशान करेगी। यानी आपके जूते चप्पल बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन में, और जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जूते चप्पलों के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए।
0: और चलिए अब जानेंगे आज के राशिफल के बारे में। तो जानते हैं पहली तीन राशियों के बारे में, यानी कि मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बारे में।
1: मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे जूतों का रंग कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में।
1: हम जूते जब खरीदते हैं तो बहुत सारी चीजों पर विचार करते हैं, जूता कितना आरामदायक है, जूते की आवाज कैसी है, चलने पे ज्यादा आवाज तो नहीं करता, जूते का रंग कैसा है, बहुत सारी चीजों पर हम विचार करते हैं। जूतों का रंग कितना महत्वपूर्ण है ये जानिए। देखिए, फैशन में, आजकल के फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं। आपको गुलाबी रंग के जूते भी दिख जाएंगे और हरे रंग के जूते भी दिख जाएंगे। अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। और जैसा आपको पहले बताया कि जूते चप्पल वास्तव में शनि और राहु से संबंध रखते हैं, इसीलिए पैरों में काले, भूरे या नीले रंग के जूते पहनना बहुत अच्छा है। सफेद रंग के जूते भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि सफेद कोई रंग नहीं है, सफेद का मतलब है सारे रंगों का परफेक्ट बैलेंस। अगर आप काला, नीला, भूरा इस रंग का जूता नहीं पहनना चाहते, किसी और रंग का जूता पहनना चाहते हैं, तो ये देख लीजिए कि कहीं उस रंग का ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आपकी कुंडली का बुध बड़ा फेवरेबल प्लेनेट है और आपने क्या किया, हरा जूता पहनना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपने बुध को अपने पैरों में पहुंचा दिया, तो बुध भी मौका मिलने पर आपको नीचे पहुंचा देगा। तो आप जिस रंग का जूता ले रहे हैं ध्यान रखिए, नीला, भूरा, काला और सफेद छोड़कर लाल, पीला, हरा, गुलाबी, अगर ये सब जूते ले रहे हैं तो जरा अपने ग्रहों पर भी विचार करिएगा। भूल कर भी पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल मत पहनिएगा। पीला रंग देव गुरु बृहस्पति का रंग है और पैरों में पीला रंग पहनना शुभ नहीं होता। अगर आप पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल पहनते हैं तो इससे अपयश, दरिद्रता और बाधा सब पैदा होगी, इसलिए कृपा करके पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल मत पहनिए।
0: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को।
1: कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम में रुकावट आ सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाबों का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका लेने वाले हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न निमिषा ने हमें लिखा है और निमिषा हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 फरवरी 2002, जन्म का समय सुबह के 8:35, जन्म स्थान है भोपाल। निमिषा कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। निमिषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको MPSC की तैयारी करनी चाहिए और शिक्षा क्षेत्र की सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। MPSC और शिक्षा क्षेत्र

0: मूंगा बनवा के पहन लें, 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उस सवाल का जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और हमें अपने सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न दिलीप कुमार यादव ने हमें लिखा है और दिलीप यादव हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1980, शाम के 3:40, जन्म स्थान है संभल उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं आगरा से। दिलीप जी कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार भी करता हूं और थोड़े समय के लिए नौकरी भी करता हूं, तो क्या मुझे नौकरी पूरी तरह से छोड़ करके व्यापार में आना चाहिए? क्या व्यापार करना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा? दिलीप जी, आपकी कुंडली व्यापार वाली ही है और आप व्यापार में ही रहिए, उसी में सफल होंगे। धीरे धीरे नौकरी से बाहर निकलिए और व्यापार की तरफ चलिए, पूरी तरह से व्यापार में सफलता आपको जून 2027 के बाद मिलेगी, तो आप व्यापार में लगे रहें। सफलता पाने के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये दो काम आप करें, आपका व्यापार और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: तो चलिए जान लेते हैं कि जूते चप्पल का हमें किस तरह से प्रयोग करना चाहिए और किन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब ये जानते हैं कि जूते चप्पल के प्रयोग में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जूते चप्पल आप जब भी पहन रहे हैं, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, जूता पहनने जा रहे हैं, कपड़े से झाड़ लें, ब्रश से झाड़ लें, पॉलिश हो सके तो पॉलिश कर लें, जूते चप्पल जब भी पहने हमेशा झाड़ करके पहने। अगर आप मिट्टी लगा हुआ जूता चप्पल पहन के घर से जाएंगे तो व्यर्थ की दौड़ भाग आपको पूरे दिन भर करनी पड़ेगी। आप ऑफिस से काम से लौट कर आए और जूते चप्पलों को इधर उधर फेंक दिया तो ये उचित नहीं है। जूते चप्पलों को इधर उधर फेंकेंगे तो आप धन की बचत नहीं कर पाएंगे। अगर रोजगार की समस्या है या नौकरी व्यापार में बदलाव चाहते हैं तो साल में एक बार किसी गरीब आदमी को काले जूते, नीले जूते या काले नीले चप्पल का अगर दान करें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, जूते चप्पल इतने महत्वपूर्ण हैं कि जूते चप्पल आपके व्यक्तित्व पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। तो आप किस तरीके के जूते चप्पल पहनते हैं, किस तरीके से उनका रख रखाव करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व के बारे में सूचना देता है।
1: और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता हो सकती है, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जूते चप्पलों को घर से बाहर रखें, तो जूते चप्पल के प्रयोग से कैसे दूर करें दरिद्रता, आइए जानते हैं।
0: देखिए, जूते चप्पल से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब है, अगर दरिद्रता बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, शनिवार को एक पुराना जूता या चप्पल ले लें जो आप अब इस्तेमाल ना करते हो, जो अनुपयोगी हो, इसको रात में पहनकर पैदल अपने घर से निकलकर चौराहे तक जाइएगा और चौराहे पर जूता या चप्पल निकालकर पैरों से वहीं छोड़ दीजिए और इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए और वहां से सीधे मुड़ करके अपने घर वापस आइएगा। पीछे से कोई कितनी भी आवाज दे, कोई कितना भी बुलाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। शनिवार को लेट नाइट में, शनिवार को देर रात में अगर आप ये उपाय कर लें, एक साल में एक बार से ज्यादा ये उपाय नहीं करना है। जैसे ही आप ये उपाय एक बार करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा, आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे।
1: और अब गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानेंगे आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न आरती ने हमें लिखा है और आरती हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जून 1994, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म का स्थान है लखनऊ। आरती कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन परिवार वालों की तरफ से उसमें दिक्कत आ रही है, क्या मेरे परिवार वाले मानेंगे, क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा। आरती, आपकी कुंडली तो कहती ही है कि आप स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगी, कोई माने या ना माने, आप अपनी इच्छा से इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में विवाह करेंगी। हालांकि मुझे लगता है कि परिवार वालों को अगर समझाएं और सारी स्थिति बताएं तो परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो लड़के की कुंडली है वो आपके हिसाब से ठीक ठाक मैच कर जाती है। थोड़ा सा शांति पूर्वक इस मामले का हल निकालिए, मुझे लगता है कि परिवार वालों की सहमति भी मिलेगी और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से भी होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज के आखिरी सवाल के बारे में, तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का आखिरी अंतिम और चौथा प्रश्न, वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न करण कपूर ने हमें लिखा है और करण कपूर हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1979, जन्म का समय रात में 9:10 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। करण कह रहे हैं कि मेरे पिता की एक प्रॉपर्टी थी और उनका देहांत हो जाने के बाद उसमें पारिवारिक लफड़े पैदा हो गए हैं, पारिवारिक झंझट पैदा हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि सुलह समझौते से मामला हल हो जाए, तो क्या मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मुझे मिल सकेगा और क्या ये मामला सुलह समझौते से हल हो पाएगा। करण, आपकी कुंडली के हिसाब से ये मामला आपसी सुलह समझौते से ही हल होगा, इस साल के आखिरी तक हल हो जाएगा और जो आपका पिता की संपत्ति में अधिकार है वो आपको मिलेगा। आप चिंता मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस धैर्य बनाए रखिए। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को गुड़ का या मीठी चीज का दान करिए, बहुत बेहतर होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि हमें जूते चप्पल दान में दे देने चाहिए, तो क्या हम किसी को जूते या चप्पल, अधिकतर जैसे हम लोग गिफ्ट देते हैं, तो क्या हम गिफ्ट कर सकते हैं?
0: जी देखिए, जूते चप्पल भी आप बिल्कुल गिफ्ट में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे घड़ी गिफ्ट में देने पे थोड़ा प्रतिबंध है, थोड़े नियम हैं, वैसा जूते चप्पलों के साथ नहीं है। आप जूते चप्पल किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, काले रंग के जूते चप्पल गिफ्ट में मत दीजिएगा, क्योंकि काले रंग की चीजें उपहार में देना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से संबंध टूटने की या बिखरने की संभावना बन सकती है। आप नीले रंग का दे दें, सफेद रंग का दे दें, ब्राउन कलर का दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने भाई को, अपने परिवार में, अपने मित्र को जूते चप्पल गिफ्ट करने, बिल्कुल करिए, लेकिन कोशिश करिए कि काले रंग के जूते या काले रंग के चप्पल, फुटवेयर जो ब्लैक कलर के हों, ये उपहार में ना दिए जाएं, क्योंकि इनको उपहार में देने से रिश्तों के टूटने का खतरा हो सकता है।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 6 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी आपकी, करियर में बदलाव भी होगा और उत्तम सुधार भी होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। विवाह के मामलों में इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र का उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए। देखिए, मंत्र का एक एक शब्द, अगर लंबा मंत्र है तो शब्द, छोटा मंत्र है तो एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किस तरीके से आप मंत्र पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके उच्चारण का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही शब्द और सही तरीके से जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र परम शक्तिशाली होता है और आपको लाभ पहुंचाता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं 6 अगस्त 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 6 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में। तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मकर। आपको नियमित रूप से सूर्य देव के मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप स्वास्थ्य की समस्या से और तमाम दुर्घटनाओं से बच जाएंगे।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए, आज महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह एक बार जल अर्पित करने के बाद शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करिएगा और सप्ताह में एक दिन हर शनिवार को निर्धनों में खाने की वस्तु बांटिएगा या खाने की वस्तु का दान करिएगा। अगर ऐसा सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करें तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो हमने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करेंगे गणेश चतुर्थी की, जिसकी तैयारियां देश भर में शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बप्पा के छोटे बड़े पूजा पंडाल बनाने की शुरुआत हो चुकी है और बप्पा की मूर्तियां भी आकार ले रही हैं। लोगों ने अपने घरों और पूजा पंडालों के लिए मूर्तियों के ऑर्डर्स दे दिए हैं। अब लोगों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब बप्पा धूमधाम से उनके घर पधारेंगे। हर साल की तरह इस साल भी गणेशोत्सव को लेकर सबसे ज्यादा रौनक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में नजर आने वाली है।

0: एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं, कोई छोटी तो कई बड़े आकार की प्रतिमा, कोई आकार ले रही है तो किसी में रंग रोगन कर सजाया जा रहा है और कोई पूरी तरह से घर और पूजा पंडालों में विराजने के लिए तैयार है। ये तैयारी है गणेशोत्सव को लेकर, जिसकी शुरुआत अगले महीने की 14 तारीख से होने जा रही है, यानी गणेश चतुर्थी पर्व का श्री गणेश 14 सितंबर से हो रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विघ्नहर्ता की मूर्तियों का निर्माण इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है, जिसकी एक तस्वीर नागपुर से सामने आई है, जहां ऑर्डर के हिसाब से मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है।
1: महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 14 सितंबर को लाडले गणपति बाप्पा का आगमन होगा, गणपति बाप्पा विराजमान होंगे घरों में, पंडालों में। उससे पहले नागपुर की चितारओली में हम मौजूद है। चितारओली यह मध्य भारत का सबसे बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है, जहां गणेश मूर्तियां बनाने का काम होता है। जो कारागिर है वो नागपुर के चितारओली में गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके होते हैं। आमतौर पर गणेश उत्सव से लगभग 6 से 7 महीने पहले ही मूर्तियां बनाने का काम जो है वो कारगिर मूर्तिकार जो होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं।
2: आपके पास अभी ऑर्डर आया है, जिस हिसाब से आप बना रहे हैं तो क्या पसंद किया जा रहा है?
3: अभी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए, तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है, तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं, उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं, इस प्रकार की डिमांड आ रही है।
0: बीते कुछ वर्षों में इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसे देखते हुए इस साल भी हर आकार की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इनकी बुकिंग के लिए मूर्तिकारों के पास हर रोज लोग पहुँच रहे हैं। इनमें कुछ पूजा पंडालों के लिए और कुछ घरों के लिए गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर दे रहे हैं, ताकि उन्हें गणेशोत्सव के वक्त मूर्तियों के लिए ज्यादा भटकना ना पड़े।
4: मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
5: करीबन पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है, और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का, जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आँख बनाते हैं, देखो आँख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब जो है बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
2: और किस तरीके की मूर्ति को पसंद?
5: नहीं, मैं जब आता हूँ मैं देखता हूँ जब, और कुछ नहीं, ये तो भगवान है, और एक आधी मूर्ति मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं, इस साल मुझे यही मेरे घर में, बस मैं ले लेता हूँ।
0: नागपुर की तरह ही महाराष्ट्र के दूसरे शहरों जैसे अमरावती और पुणे में भी गणेश

0: होता है वो गणपति का आगमन, जो इस साल जो है वो 14 सितंबर को होने वाला है। उससे पहले जो है महाराष्ट्र के हर जिले के हर कार्यशाला में, जहां पर आप देख सकते हो कि गणपति बाप्पा की प्रतिमाएं जो है वो अब बनना शुरू हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं, क्योंकि यहाँ की प्रतिमा जो है महज अमरावती नहीं, तो महाराष्ट्र नहीं, तो समूचे देश में जो है वो अलग अलग हिस्सों में यहाँ की प्रतिमा की डिमांड होती है। और इसीलिए जो बाप्पा की प्रतिमाएं जो है वो महीनों पहले ही बनकर तैयार होती है।
1: अपनी यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
2: हर साल महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर जैसी रौनक देखने को मिलती है, वैसी कहीं और देखने को नहीं मिलती। यहाँ महीनों पहले ही गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी शुरू हो जाती है, जिसके तहत मूर्ति निर्माण से लेकर पंडाल निर्माण तक और मूर्ति श्रृंगार के लिए आभूषणों से लेकर पोशाक और पगड़ी बनाने का काम किया जाता है। जैसे जैसे 14 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, महाराष्ट्र के बाजारों में गणेशोत्सव को लेकर रौनक दिखाई देने लगी है।
3: मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ, और मेरे पहले मैंने जो पेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए, और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज़ और ज़्यादा फेटा बनाया, तो वो फेटा बनाने के बाद मेरे जो फेटे बनाए वो फेटे मैंने महाराष्ट्र के बाहर देश विदेश में भी मेरा फेटा बना के।
4: आपको ऑर्डर कहाँ कहाँ से आता है, इस साल आपने कहाँ कहाँ भेजने का प्लान किया है?
3: हाँ, तो मैंने इस साल जो फेटे बनाए वो देश और विदेश में जाते हैं, और वो फेटा उसकी प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे।
5: मैं काफ़ी साल से गणपति बिठा रही हूँ घर पे। मैं अभी इस साल 1.5 महीने से पहले ही मैं गणपति को बुक करने के लिए आई हूँ। हर साल क्या होता है कि गणपति इन टाइम पे गणपति नहीं मिलते हैं, बुकिंग नहीं मिलता, तो अभी 1.5 महीना पहले ही मैं गणपति का बुकिंग करने के लिए आई हूँ। अभी ये साल मुझे इको फ्रेंडली वाला गणपति बिठाना था, लेकिन अभी ये साल फिलहाल ये साल में भी नहीं मिल रहा है। अगले साल मैं कोशिश करूंगी जितने की पोल्यूशन फ्री वाला जो गणपति आता है, मिट्टी वाला, अपने घर में बनाते हैं, वैसा गणपति बिठाने के लिए मैं कोशिश करूंगी।
2: हालांकि मूर्ति निर्माण से जुड़े लोगों का दावा है कि इस साल वैश्विक कारणों के चलते मूर्ति निर्माण में लगने वाले कच्चे माल और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई है। बावजूद इसके बाप्पा के भक्तों में गणेशोत्सव को लेकर जोश और उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं है। लोग अपनी जरूरत और ट्रेंड के हिसाब से इन दिनों मूर्तियों की खरीदारी में जुटे हैं। नागपुर से योगेश पांडे, अमरावती से धनंजय साबले और पुणे से रायचंद शिंदे, गुड न्यूज टुडे।
6: बारिश किसी के लिए राहत लेकर आती है, तो कहीं यही बारिश जो है सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसात पानी जिंदगी की रफ्तार थाम रहा है, नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर जैसी दिख रही हैं, और कई इलाकों में बाढ़ ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बीच इंसानियत की तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं।

लगातार हो रही बारिश से देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं और लोगों के सामने मुश्किल हालात बन गए। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। इस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस से लेकर सेना तक जुटी हुई है। इन सब के अलावा जगह जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें लोग अपने स्तर पर भी मदद करते नजर आ रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा की ये तस्वीरें देखिए, जहां नेपाल से लौट रहे 11 श्रद्धालु तमसा नदी में फंस गए।

0: तो वहां कुछ युवा इन श्रद्धालुओं की मदद के लिए पहुंच गए और फिर मानव श्रृंखला बनाकर उन युवाओं ने 3 बच्चों समेत सभी 11 श्रद्धालुओं को एक एक कर सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। अब पंजाब के फजिलका की सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर देखिए, जहां बारिश के पानी से लबालब सड़क से गुजर रहे 2 बाइक सवार गड्ढे में जा गिरे। आसपास के दुकानदारों ने तेजी दिखाते हुए दौड़कर दोनों युवाओं को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सड़क धस जाने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि दुकानदारों की मदद से दोनों बाइक सवारों को बचा लिया गया। बारिश की वजह से इंसान से लेकर बेजुबान तक के सैलाब में फंसने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। राजौरी में मनावर नदी के तेज बहाव में कई पालतू पशु को बहता देख आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाई और पानी के तेज बहाव के बीच से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए।
1: यहाँ पर जो जानवर जो बह रहे थे नदी में, और लोगों ने अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने उन जानवरों को बचाया। लोग नदी नालों से दूर रहे क्योंकि लगातार राजौरी में हो रही बारिश भयंकर रूप अख्तियार कर रही है।
0: इन जगहों के अलावा असम से लेकर केरलम तक के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया, जहां उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई। असम में शिव सागर समेत बाढ़ प्रभावित 7 जिलों में जिंदगी बचाने का अभियान बीते कई दिनों से जारी है।
2: जो हम लोग यहाँ पर मुश्किल वक्त आया है, तो वो सेम सर ने थोड़ा कुछ हम लोग को हेल्प कर देगा।
3: हमारी किताब वगैरह सब खत्म हो चुका है, घर तो है ही नहीं। उनके बारे में बात किया है हमने मतलब, तो उन्होंने बोला है कि हम देंगे, तो उनके ऊपर ही भरोसा है।
4: रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो मैं सीएम सर को यही बोलूंगी कि हम लोग को थोड़ा सा लाइक घर बना दीजिए, थोड़ा वही चाहिए। अब वही तो राशन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन बनाने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है।
0: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुद लगातार हालात पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लगातार हालात का जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं।
5: बीते 2 दिन में शिवसागर सरायदेव जिला में ही है, बांध में जो बाढ़ आया लोगों को काफी क्षतिग्रस्त किया। हम एक बार जायजा भी ले रहा हूँ, कैसे किसको कैसे कुछ हम लोग मदद कर सकता हूँ, साथ में कैसे ये समस्या को हल भी कर सकता हूँ। मैंने खुद देखा और जो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा हम लोग करेगा।
0: उधर केरलम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी राहत और बचाव के काम में टीमें जुटी नजर आई।
6: हेवी रेनफॉल हैज डिक्रीज नाउ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल।
0: बारिश और बाढ़ के बीच जगह जगह राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, ताकि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। बगहा से अभिषेक पांडे और राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: शुद्ध दूध से बनने वाले पनीर की, जिसका स्वाद शाकाहारी के साथ ज्यादातर नॉनवेज खाने वाले लोगों को भी बहुत पसंद आता है। हालांकि डिमांड सप्लाई के बीच आने वाले गैप का फायदा कुछ मिलावटखोर भी उठाने में जुट गए हैं, जिसकी वजह से शुद्ध पनीर की जगह कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स में एनालॉग पनीर परोसा जा रहा है, और वो भी शुद्ध पनीर की कीमत पर। जिसके बाद महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से होटल्स और रेस्टोरेंट्स में परोसे जाने वाले एनालॉग पनीर पर 1 साल का बैन लगा दिया गया है। ऐसे में भी आप असली और नकली पनीर का फर्क जानिए।

0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
2: खबरें, कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल, जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की, हमारे देश में और हमारे दिलों में त्योहारों और उत्सवों का एक विशेष स्थान है, ये पर्व हमारे सांस्कृतिक धरातल को समृद्ध करते हैं। अभी सावन पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भक्ति का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है, सावन के बादलों की ओट से जब भादों का महीना निकलेगा तो महादेव के लाड़ले यानी गजानन घर घर पधारेंगे। देखिए महीना महादेव का है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की भक्ति का सावन जो है वो बरस रहा है। अब से साल 14 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है, इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से लगातार चल रही हैं, धुरा कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आ रहे हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। उधर देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां पर अलग अलग शहरों में बप्पा की मूर्तियां आकार ले रही हैं, श्रद्धा से भरे मूर्तिकार अपने हुनर से तैयार प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था, अब इनमें रंग भरने और इनमें सजाने का काम लगातार जारी है। हर साल मुंबई समेत देश भर में हजारों गणेश पंडाल लगते हैं, इन पंडाल के साथ घरों में भी बप्पा की मूर्तियां भक्त स्थापित करते हैं। चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि अब की बार बप्पा की कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा डिमांड में है।

0: देवों में वे प्रथम पूज्य। कहलाते गणराज। चरण पड़े लंबोदर के तभी सफल हूं काज। कहते हैं संसार में किसी कार्य का शुभारंभ हो नहीं सकता जब तक इनके चरण न पड़े। तो फिर यहाँ तो बात स्वयं मंगल मूर्ति के उत्सव के शुभारंभ की है। गणपति उत्सव दस्तक दे रहा है, सो कारीगरों ने शहर शहर बाप्पा की मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। अब की बार ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां बननी है, सो हफ्तों पहले से कारीगर मंगल मूर्ति का स्वरूप गढ़ने और सजाने में जुटे हैं। ये तस्वीर है नागपुर की मशहूर चितारोली की। नागपुर के इस कोने में कहीं बाप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है।
1: करीबन पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का कि जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आंख बनाते हैं, देखो आंख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं है बल्कि देश के बाकी हिस्सों और विदेशों तक भी है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं।
2: हमारे यहाँ ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
3: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और
2: ये लोग जून महीने में देते ऑर्डर। जून
3: कब बना के देते आप?
2: हम लोग तारीख रहते उनके जब जाने के फ्लाइट के रहते ना, जब तारीख देके जाले चले जाते हम लोगों को, 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: बाप्पा की एक से एक प्रतिमाएं यहाँ तैयार हो रही हैं। कहीं गणपति के माथे पर खाटू के श्याम बाबा की छवि उकेरी गई है तो कहीं गजानन के शीश पर उनके पिता महादेव महाकाल स्वरूप में विराजमान दिख रहे हैं तो कहीं वक्र तुंड की सूंड पर प्यारे से बाल गोपाल विराजे हैं। कलाकार बता रहे हैं कि अब की बार इसी तरह की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। यही वजह है कि डिमांड भी ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु अपनी कल्पना के आधार पर तो कई दो हाथ आगे बढ़कर AI के जरिए बापा की अलग छवि बनवाना चाहते हैं और मूर्तिकार उसी को आधार बनाकर दिन रात भक्तों की कल्पना वाले बापा को साकार रूप देने में जुटे हैं।
4: भी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साई बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रही है और अभी जैसे यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है ये डिमांड मोबाइल के द्वारा, तो जैसे कुछ AI से बना के ला रहे हैं। जैसे अभी श्री कृष्ण जी तो आपने देखे बड़ी मूर्ति में गणपति बाप्पा के, इसमें सूंड पे छोटे से बाल श्री कृष्ण बैठा ले, उसके खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से डिमांड भी आ रही है, कुछ हमारे मन में जो कल्पना है तो वो भी हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं।
0: लेकिन इस बार बाप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच चर्चा महंगाई की भी हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। सो बात सीधी है कि गणेश जी को घर लाना है तो लक्ष्मी जी का मोह कुछ कम करना होगा।
5: देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। हालांकि 14 सितंबर को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बाप्पा सार्वजनिक पंडाल और घरों में विराजमान हो गए, उससे पहले नागपुर में कारागिर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके हैं।
0: महंगाई बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन बाप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी तो बढ़ गई। हर साल की तरह ही इस बार भी भक्तों की ये आस्था अटूट है। अभी से अपनी पसंद की मूर्तियां बुक कराने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
6: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
0: यानी नागपुर वाले पूरी तरह तैयार हैं बाप्पा के स्वागत के लिए, लेकिन तैयारी अमरावती में भी कम नहीं। अमरावती की इस आर्ट वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। मूर्ति स्वयं मंगल मूर्ति की है, विघ्नहर्ता की है, सो विघ्न का सवाल नहीं। मजाल है कि ध्यान भी भटक जाए, सब कुछ भूलकर बस पापा को बनाने और सजाने का काम चल रहा है। हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग, ये काम में जुटे इन कलाकारों का वर्षों का अभ्यास है, हफ्तों की मेहनत है, उम्र भर की साधना है।
7: देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट में, जहाँ पर की मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी और देश के बाहर भी इन प्रतिमाओं की बहुत बड़ी और ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की प्रतिमाएं जो है वो ऐसा लगता है कि स्वयं गणपति बाप्पा जो है हमारे सामने विराजमान हुए हैं। और इसीलिए ये कार्यशाला जो है वो कई सालों से जो है सुंदर इको फ्रेंडली, सबसे अहम बात है कि इको फ्रेंडली ये प्रतिमाएं हैं।
0: अमरावती के जिराफे आर्ट वर्कशॉप में हर बार की तरह आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गणपति बाप्पा की आस्था के बीच प्रकृति माँ को भुलाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ खास इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खास तौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही हैं।
8: एक तो अभी मिट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मिट्टी के गणपति बनाते हैं। पीओपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपने यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा को गढ़ने में धरती की गोद से मिली मिट्टी, कुछ प्राकृतिक रंग, ढेर सारी मेहनत और अनंत भावनाएं, यही है बाप्पा की प्रतिमा को सबसे सुंदर और मनमोहक बनाने का फॉर्मूला, जिसे इन कलाकारों ने पूरी तरह साध लिया है। और जब इनके हाथों से गुजरकर बाप्पा इस स्वरूप में भक्तों के घर विराजेंगे, तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचेगा। प्रकृति के संरक्षण वाले इस मिशन ने गणेश उत्सव को श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी बना दिया है। बस अब इंतजार गणेश उत्सव के श्री गणेश का है।
7: हर किसी को अब बाप्पा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ, यही अब हर किसी लाडले बाप्पा के भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बप्पा की मूर्तियों की, लेकिन इन प्रतिमाओं के अलावा गणपति को सजाने वाली तमाम चीजें भी अब बाजारों में पहुंचने लगी हैं। इनमें सबसे खास है बप्पा का फेटा। फेटा महाराष्ट्र की खास पगड़ी होती है। आखिर क्यों बप्पा को ये पगड़ी पहनाई जाती है, क्या है फेटा का इतिहास और क्यों आज महाराष्ट्र के सैकड़ों के फेटा मेकर बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कर रहे हैं।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, टेढ़ी सूंड विशाल काया और करोड़ों सूर्यों के समान तेज, गजानन की दिव्य काया का बखान कुछ यूं मिलता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये काया कुछ और सजीली, कुछ और दिव्य, कुछ और भव्य हो जाती है गणेश उत्सव के 10 दिनों में। जब देश भर में मंदिर मंदिर, पंडाल पंडाल और घर घर में गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें बेहद प्रेम आस्था और मनुहार के साथ तैयार किया जाता है, और इसी तैयारी का हिस्सा है गणपति बाप्पा की पगड़ी। बाप्पा के मस्तक की ये पगड़ी कुछ और खिल उठती है महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर, जहां इसे मराठी अंदाज में बाप्पा को पहनाया जाता है। इस मराठी पगड़ी को फेटा कहते हैं। जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हुनर रखने वाले कारीगर इस समय बाप्पा की मूर्ति, वस्त्र, गहने और पंडाल का सामान बनाने में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही पुणे के किरण साबले इन दिनों बाप्पा के लिए फेटा यानी मराठी पगड़ी बनाने में जोर शोर से जुटे हैं। पुणे के नारायण गांव में फेटा मेकर किरण साबले अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के लिए फेटा बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव से पहले उनके पास बड़ी संख्या में बाप्पा का फेटा बनाने के ऑर्डर आए हैं।
1: प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे। फेटा बनाने के लिए मेरी पूरी फैमिली इसमें मेरे को मदद करती है और खूब सारे फेटे हम इस साल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कभी साल भर में 1000 फेटे बनाने वाले किरण साबले अब हर साल बाप्पा के लिए 50,000 से ज्यादा फेटे तैयार करवाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उन्हें देश विदेश से ऑर्डर आते हैं।
1: मैं गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ। मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ और मेरे पहले मैंने जो फेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए और मैंने 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र का फेटा केवल सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये मराठी अस्मिता, इतिहास और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवंत चिन्ह है। मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्याभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बाप्पा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी महाराष्ट्र में भगवान गणेश को फेटा पहनाना मराठी संस्कृति में उन्हें अपने राजा, अतिथि और परिवार का मुखिया मानने की गहरी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो बाप्पा को अब पोशाक के रंग के हिसाब से अलग अलग रंग का फेटा भी पहनाने का चलन है, लेकिन शुरुआत में बाप्पा को सिर्फ पीला या भगवा रंग का फेटा पहनाया जाता था, जिसका इतिहास महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं से होते हुए छत्रपति शिवाजी के शासन काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने गणेश जी को अपना कुल देवता माना था। पेशवाओं के दरबार में हर कोई पारंपरिक फेटा या पुणेरी पगड़ी पहनता था। जब वे अपने आराध्य बाप्पा की मूर्ति स्थापित करते थे तो उन्हें भी अपनी तरह ही शाही रेशमी फेटा पहनाते थे। यही ऐतिहासिक परंपरा आज भी सार्वजनिक और घरेलू गणेश उत्सव में जारी है। सदियों पुरानी इस गर्व भरी परंपरा को आज भी जिंदा रखे है किरण साबले जैसे हजारों फेटा मेकर, जो हर साल गणपति बाप्पा के लिए फेटा बनाते हैं। इसे पहनकर गजानन जब घरों में पधारते हैं तो माँ गौरी के लाल पर श्रद्धालु अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फेटा की ही तरह बप्पा के आसन की भी डिमांड खूब बढ़ गई है। मुंबई में दुकानों पर गणपति के लिए अलग अलग डिजाइन, थीम और रंगों के आसनों की बाढ़ आ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि घर पर बप्पा को विराजमान करवाने के लिए कौन कौन से आसन और सिंहासन का विकल्प है।

0: माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जरा सोचिए कैलाश पर कैसी शान से रहते होंगे वो गणपति देवा। बस भक्तों को चिंता इसी बात की रहती है कि जब गणपति अपने घर से हमारे घर आए तो उनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए, सजावट में भव्यता भरपूर हो और भोग में मोदक प्रचुर हो। सो बाजार पट गए हैं, बाप्पा के स्वागत के सामान से सज गए हैं। गणपति उत्सव की रौनक अब खूब दिख रही है, दिखनी भी चाहिए। अब गणेश चतुर्थी में दिन ही कितने बचे हैं। इधर शिवजी का प्रिय महीना खत्म होगा और उधर शिव पुत्र के पधारने की घड़ी आ पहुंचेगी। उससे पहले गणपति की प्रतिमा, आसन, पूजा की थाली, झांकी सजाने का सामान, जाने क्या क्या लेना है, सुकाम चालू आ है। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली की, जहां मौजूद सहेली वर्कशॉप में गणेशोत्सव से जुड़ा सामान तैयार हो चुका है।
1: लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बाप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। अब जिनका आसन स्वयं माँ गौरी की गोद हो, उनके लिए आसन चुनना आसान भी तो नहीं। लेकिन गौरी नंदन के विराजने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन के आसन यहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वॉटरफॉल आसन भी यहाँ तैयार किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वाला आसन, महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भी भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाबा के लिए इसी आसन को चुन रहे हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: हर साल बाप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बाप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बाप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस वर्कशॉप से लोग रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से अपनी कल्पना के आधार पर बाप्पा के लिए मनपसंद आसन तैयार कर सकते हैं।
1: यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है। पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकलेबल आइटम
1: है, इको फ्रेंडली है, सारे
2: इको पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रो मटर चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर चाहिए, कि देख जाओ उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल जाएगा। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट करना है, तो वो भी हमारे यहाँ रो मटर मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देख सकते फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यू आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगी सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: सवाल ये, साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: वैसे लोग यहाँ से सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि पापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जगमगाती लाइट्स, मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स भी खरीद रहे हैं।
3: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
4: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है, उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा, ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
5: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: खास बात ये भी है कि यहाँ मिलने वाला ज्यादातर सामान भी इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी की प्रतिमा की तरह अंत में ये भी मिट्टी या पानी में घुल मिल जाएगा, मतलब पर्यावरण को यहाँ भी कोई नुकसान नहीं। कुछ ही दिनों बाद लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। ऐसे रंग बिरंगे सुंदर आसन पर बापा विराजेंगे और उस भव्य झांकी के चारों ओर बापा के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: किसी के लिए परेशानी लेकर आती है तो किसी के लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप दिखा जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती बूंदों ने सूखी वादियों को फिर से जिंदा कर दिया है। पहाड़ हरे रंग की चादर ओढ़ चुके हैं और महीनों से खामोश पड़े झरने अब पूरे जोश के साथ गूंज रहे हैं। नजारा ऐसा जिसे देखकर हर कोई कुछ पल ठहर जाना चाहता है।
2: ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि मॉनसून की मेहरबानी का है। पहाड़ों से दूध की तरह गिरता पानी, चारों ओर बिछी हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच कुदरती सुंदरता। महाराष्ट्र के जालना जिले का धावड़ा इलाका इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद यहां का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान के अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों से फूटते झरनों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। सिलिसेड और आसपास हुई अच्छी बारिश के बाद मशहूर गरवाजी वाटरफॉल इस सीजन में पहली बार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पानी की तेज धार और हरियाली से घिरी पहाड़ियां लोगों का मन मोह रही हैं। बारिश का ये पानी सिर्फ झरनों की खूबसूरती नहीं बढ़ा रहा बल्कि खेतों में भी नई उम्मीद जगा रहा है। खरीफ की फसल के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मॉनसून एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बारिश मेहरबान होती है तो सूखे पहाड़ भी जिंदा हो उठते हैं। झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और ठंडी हवाएं, यही है मॉनसून का वो जादू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जालना से गौरव विजय और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन्स पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। देखिए सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है, देश भर से कांवड़ यात्रा की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आस्था के अलग अलग रंग दिखा रही हैं। कहीं पर प्रेम मन्नत बनकर कंधों पर सवार है, तो कहीं पर कठिन तपस्या श्रद्धा की नई मिसाल बन रही है, तो कहीं पर भव्य और अनोखी कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महादेव के प्रति समर्पण का यही भाव करोड़ों शिव भक्तों को लंबी यात्रा की ताकत दे रहा है।
2: आदि अनंत फिर भी अंगिनत रूप हैं शिव के, वो साधक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं और इसके साथ ही प्रेमी हैं और गृहस्थ भी। सोचिए तो ये बात निराली है कि जो खुद कैलाश पर धुनी रमाए बैठे हैं, वो मनचाहे जीवन साथी और शादी के लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि शादी विवाह में बाधा सावन में शिव की आराधना से दूर हो जाती है और इसी भरोसे इसी उम्मीद पर ये जोड़ा निकल पड़ा है कांवड़ यात्रा पर। कहते हैं कि भोले बस भावना देखते हैं, सच्चे मन से चाहे जो मांग लीजिए मिल जाता है।
3: विनम्र निवेदन है कृपया अपनी कांवड़ इस बिजली घर के पास।
2: इस जोड़े की ख्वाहिश बस इतनी है कि इनका विवाह हो जाए। इनका प्रेम सच्चा है, इसका प्रमाण देने के लिए दोनों ने एक साथ कांवड़ उठाई, विवाह के लिए मन्नत मांगी और बोल बम का जयकारा लगाते हुए हरिद्वार पहुंच गए।
4: किस तरह की कांवड़ है, क्या मन्नत है आपकी कांवड़?
5: यही मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए।
4: आप कितने घंटे चल रहे रोजाना एक साथ कांवड़ लेके चल रहे, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं?
5: 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल रही है, 15 किलोमीटर चल रही है, ऐसे चल रहे हैं। छोटा वाला भाई आया, दीदी आई है साथ में, ऐसे वो सब लोग पीछे, हम लोग आ गए हैं।
4: आपने जल उठाया था?
5: हमने 28 तारीख को उठाया था।
4: रोजाना कितना चल रहे हो?
5: 15 या 20।
4: तो क्या कहना चाहेंगे भोले बाबा से?
5: यही कहना चाहूंगी बस शादी हो जाए दोनों की।
2: हरिद्वार से गंगा जल उठाने के बाद कांवड़ का वजन ज्यादा हो गया तो दोस्तों ने भी कंधा लगा दिया। 111 लीटर गंगा जल के साथ रोज करीब 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए मयंक और दीपिका बुलंदशहर पहुंचने ही वाले हैं। इनका प्रेम गहरा है लेकिन शादी के लिए अभी घर वालों की मंजूरी नहीं मिली है, पर महादेव पर विश्वास है और इसीलिए आस है कि बात बन जाएगी। महादेव की कृपा से सभी की सहमति मिल जाएगी।
6: ये हमारी मन्नत की कांवड़ है।
4: किस तरह की मन्नत?
6: जी मन्नत मांगी है कि हाँ हम दोनों की शादी हो जाए।
4: कैसे मुलाकात हुई आपकी, कितने साल पहले मुलाकात हुई?
6: जी एक साल होने वाली है।
4: हाँ।
6: तो जब ही मुलाकात हुई, कहने का मतलब ये है कि बुलंदशहर में पहली बार गया हूँ शादी में, जब मुलाकात सी होगी। जी कावल लाने के तो विचार हमारा पहले से ही है, और हमने बाद में विचार बनाया कि डीजे फीजे हर चीज़ लेके चलेंगे। तो हमारा सारा ग्रुप भी है, बहुत बालक है, आधे कुछ पीछे हैं कुछ आधे हैं, सारे गैल में हैं। तो हमारी मन्नत यही कि दोनों जने हम कावर घर तक अपने मंदिर पर चढ़ा देंगे।
2: एक साथ भारी भरकम कावड़ उठाए इस जोड़े को देखकर लोग भी दंग हैं, पर खुशी भी है क्योंकि ईश्वर से प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। मयंक और दीपिका ने भी अपने प्रेम को भक्ति से जोड़ दिया। दोनों ने कावड़ उठाकर कठिन परीक्षा दी, अब परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है। वैसे तो भोले की कृपा एक लोटा जल से ही मिल जाती है, लेकिन अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भक्त कड़ी तपस्या करते हैं। हाथों के बल कावड़ यात्रा पर निकले राजकुमार ऐसी ही तपस्या की एक मिसाल है। बिच्छू के आकार में दोनों पैर हवा में और हाथ के पंजों से आगे बढ़ते हुए राजकुमार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और नतमस्तक भी होते हैं।
7: हम पिछले दो साल से भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि भारत के बारह ज्योतिर्लिंग चार धाम एकावन शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, खाड़ोशी अम्बा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जैन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिछुबम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल एक महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है। थोड़ा इस साल पीछे चल रहे, जो कि पिछले साल हमारे भैया चल रहे थे साथ में, और इस साल हम अकेले चल रहे, जो कि पीछे में साइकिल है तो साइकिल लेकर हमको चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी हो रहा है। और आप बोले जो कैसे मन में आया, ये तो हम जब बागेश्वर धाम गए थे तो पहले हम बागेश्वर धाम गए तो फिर हमें एक अलग शक्ति मिला हमें, तो फिर लगा जो नहीं हम और जा सकते हैं, और दूर जा सकते हैं, और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लोगों के दर्शन करा सकते हैं, तो बस ऐसे करके चलते रहे। हमें तो ऐसे कोई कठिनाई दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लगभग चलते रहते, जब राम मंदिर उद्घाटन हुए थे तब भी हम जो है वो टर्निंग से मंदिर तक गए थे, बागेश्वर धाम जो टावर है टावर से बागेश्वर धाम तक गए थे ऐसे हाथ से चल के, तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा जगह जाते रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है।
2: बिच्छू बम बनकर राजकुमार ने जब पिछले साल पहली बार यात्रा की थी तो पूरे एक महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस साल सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा में उनकी रफ्तार अच्छी है। एक बार में राजकुमार 60 से 70 फीट चलते हैं, थोड़ी देर ठहरते और फिर चलने लगते हैं। पिछले दो साल में 12 ज्योतिर्लिंगों, चार धाम और 21 शक्ति पीठों का दर्शन कर चुके हैं राजकुमार। इस कावड़ यात्रा के दौरान बिच्छू बम के तौर पर काफी चर्चा में है। चर्चा धनबाद के अजय विश्वकर्मा की भी हो रही है, और उसकी वजह है उनकी डमरू के आकार वाली कावड़, जिसे देखने के लिए दूसरे कावड़िये ठहर जाते हैं। लकड़ी और फाइबर से बना ये विशाल काय कावड़ भव्य है, लेकिन वजनदार है। हाँ, जब लोग इसकी सराहना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोल बम का जयकारा लगाते हैं, तो अजय विश्वकर्मा को परम आनंद मिलता है।
8: बाबा का डमरू है ये, भगवान गणेश, और जो पहली बार पद यात्रा में आया भगवान श्री राम, ये छवि है।
4: क्या चीज से बनाए?
8: ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है, और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है। वजन तो वेट नहीं की, लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ, ये 15 kg से ऊपर है, 18 kg लमसम है। ये खुद से बनाया है, इसकी कोई लागत कोई आंक नहीं जा सकता है।
4: आप इसको खुद से?
8: खुद से, और ये हर एक साल कुछ न कुछ यूनिक।
2: शिव भक्तों की जो भीड़ हर दिन बाबा धाम जा रही है, उसमें आस्था और भक्ति की अनगिनत चमकीली तस्वीरें हैं। पर चांदी की इस कावड़ की तो बात ही निराली है। पटना सिटी से विशाल शिवधारी कावड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट के इस कावड़ को लेकर देवघर के लिए निकला है। खूबी ये है कि कावड़ 54 फीट लंबी है और इसमें 54 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। साथ ही ज्योतिर्लिंग और माँ दुर्गा काली की प्रतिमाएं भी हैं।
9: इसमें अलग यही है कि चांदी की 54 किलो चांदी का है, इसलिए यह सब लोग का श्रद्धा के अनुसार पूरा ये कावड़ गई है। वही श्रद्धा के अनुसार 54 किलो चांदी सब लोग के सहयोग से ये प्रणाम हुआ और ये आगे भी विकसित होगा। कुछ सोना के भी लगने वाली है, सोना से और जितना श्रद्धा बनेगा लोग का उतना ही आगे बढ़ते रहेगा कावड़ में। और तरह तरह की चीज इसमें भारी की होती है, हाँ ज्योतिर्लिंग है, बड़ी माँ है, दुर्गा माँ है, काली माता है, सब लोग है इसमें। हम लोग का ग्रुप 600 को गुजरा है।
10: कहाँ
9: ये हम लोग 7 बजे सुबह में निकले सुल्तानगंज से।
2: बैद्यनाथ धाम में दोनों मंदिरों के बीच 54 फीट की दूरी है और इसीलिए 54 फीट की कावड़ और यात्रा भी 54 घंटे में पूरी की जानी है। नंगे पांव केसरिया वस्त्र, सर पर रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए श्रद्धालुओं की टोली कावड़ मार्ग पर शिव भक्ति का दिव्य रंग घोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कांवड़ यात्रा अब सिर्फ गंगाजल लाने की परंपरा नहीं रही बल्कि संस्कार, सेवा और समर्पण का महापर्व बन चुकी है। कहीं नन्हे शिवभक्त अपनी आस्था से प्रेरित कर रहे हैं, कहीं पर परिवार रिश्तों की नई मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच व्यवस्था और भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। देश भर से सामने आ रहे ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य बता रहे हैं कि महादेव की भक्ति हर उम्र हर रूप में जीवंत है। रिपोर्ट देखिए।
11: ये घुंघरू किसी कलाकार के पैरों की पहचान नहीं है बल्कि शिव भक्ति की आवाज है। छोटे छोटे कदम, पैरों में बंधे घुंघरू, कंधों पर कांवड़ और होठों पर महादेव का नाम। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंची ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बनारस से आए ये छात्र 7वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज से गंगा जल लेकर अपने शहर लौट रहे हैं। इनके पैरों में घुंघरू इसलिए बंधे हैं ताकि चलते समय लगातार आवाज आती रहे और रास्ते में कोई अनजाने ही उनकी कांवड़ से न टकराए। साथ ही उनके साथी भी एक दूसरे की मौजूदगी आसानी से समझ सके। ये बच्चे पिछले 4 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं और इस बार 5वीं बार इस यात्रा पर निकले हैं। उनकी कामना है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, पढ़ाई में सफलता मिले और महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे।
12: सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ जो है प्रयागराज के दशा

0: पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे।
1: युवराज कुमार नाम है मेरा, मैं काशी का रहने वाला हूँ, कांवड़ ये मेरा तीसरा साल है।
2: उधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में पहुंच चुकी है। हर की पैड़ी, मालवी द्वीप, शिव सेतु और राष्ट्रीय राजमार्ग हर ओर सिर्फ भगवा रंग दिखाई दे रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। बोलबम, हर हर महादेव के जय घोष पूरे वातावरण को शिवमय बना रहे हैं। अंदाजा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पंचक समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज और हरिद्वार ही नहीं बल्कि सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रहा एक परिवार अपनी बुजुर्ग माताजी को कांवड़ में बैठा कर यात्रा कर रहा है। करीब 260 किलोमीटर के सफर में कभी बेटा, कभी बहू तो कभी पोता बारी बारी से कांवड़ उठाकर माँ को आगे ले जा रहे हैं।
3: श्रवण कुमार कांवड़ बोलते हैं इसको, और माँ बाप से प्यार था, 4-5 साल से आया नहीं था माँ बाप के मम्मी के कारण। एक्चुअली पापा थोड़ा घर पे कोई है नहीं इसलिए पापा रह गए नहीं, तो दोनों को लाने का मन था, तो माँ बाप का प्यार था इसलिए मैं माँ को लेके आ गया।
4: तो अभी कौन कौन कांवड़ी उठा करके ले
3: गया? अभी मैं हूँ, वाइफ है और अपना भतीजा है और भाभी भी है और एक वो अपना भांजा है।
4: कैसा लगा?
3: बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, भोले बाबा की कृपा है, चल रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं।
2: परिवार इस यात्रा को श्रवण कुमार कांवड़ कहता है। कई वर्षों बाद उन्हें कांवड़ लाने का अवसर मिला, इसलिए इस बार उन्होंने अपनी माँ को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा में माताजी भी बेटे बहू के स्नेह से बेहद खुश हैं।
3: जितने भी है आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने देखा है आजकल नेट पे देखता हूँ बहुत गलत हो रहा है, तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करोगे इतने ही जन्नत में जाओगे, बड़ा प्यार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, माँ बाप से प्यार है वो करते रहो।
2: हरियाणा के रवि और उनकी पत्नी निशु हरिद्वार से करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ का एक सिरा पति के कंधे पर है, दूसरा पत्नी के कंधे पर, दोनों मिलकर गंगा जल अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उससे अपने बुजुर्ग सास ससुर को स्नान करा सके। परिवार की जिम्मेदारी केवल बेटे की नहीं होती, बहू भी उसी प्रेम और सम्मान के साथ उसे निभा सकती है।
5: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हरिद्वार से चंडीगढ़ लेके जाना है, बहुत अच्छे लग
4: रहा है। कैसे
5: विचार आया आपको? ये बस हस्बैंड सोचते हैं, हम सोचने लग जाते हैं।
4: आजकल देखा जाता है कि जो बहुएं होती है वो अपने सास को घर से बाहर निकाल देती
5: है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो तो थोड़ा नॉर्मल है, चलता रहता है, पर इतना नहीं है।
4: सासू जी क्या कह रही हैं?
5: सासू जी भी अच्छा बोल रही है, ये अच्छी बात है, कह रही है अच्छी बात है, लेके जा रहे हैं।
2: जब तक माता पिता चलने फिरने में सक्षम हैं, तब तक वो हर साल गंगा जल लाकर उनका अभिषेक कराएंगे। राजकुमार का आगे चलकर उन्हें श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराने का भी सपना है। कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से सामाजिक सौहार्द की भी एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और जेलुम का जुलूस एक ही मार्ग के करीब 170 मीटर हिस्से से गुजरना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से विस्तृत तैयारी की है। रास्ते के बीच करीब 10 फीट ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं ताकि दोनों आयोजन अपने अपने मार्ग से शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकें। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।
6: जो शहर में एक 170 मीटर का भाग है हनुमान चौक के बाद, वहाँ पे कांवड़ और चेहल्लुम दोनों एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलने के लिए जितने हमारे स्टेक होल्डर है सबसे बातचीत हो गई है, जितने हमारे फिजिकल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट हो गया, और मात्र 170 मीटर का वो मार्ग है जिसपे स्थलीय निरीक्षण डीएम साहब द्वारा, एसएसपी साहब द्वारा, हम सभी द्वारा कर लिया गया है, और सकुशल इन दोनों जुलूसों को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है।
2: कहीं घुंघरुओं की छमछम में शिव भक्ति सुनाई देती है, कहीं बेटे बहू के कंधों पर माँ के प्रति सम्मान दिखाई देता है, कहीं एक बहू रिश्तों की जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा का नया उदाहरण पेश कर रही है। भक्ति और भावना के ये इंद्रधनुषी रंग ही कांवड़ यात्रा को भव्य बनाते हैं। प्रयागराज से आनंद राज, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: सावन में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। मंदिर, घाट, सड़क और रेलवे स्टेशन पर हर हर महादेव।

0: और बोलबम के जयघोष हैं। लाखों शिव भक्त अपने संकल्प के साथ बाबा के दरबार की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आस्था, अनुशासन और उत्साह की अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर केसरिया समंदर लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
1: कंधे पर कांवड़, दिल में देवाधिदेव भोलेनाथ और जुबान पर हर हर महादेव। शिव भक्तों का ऐसा जमघट शायद ही किसी स्टेशन पर दिखे, और उसकी वजह भी है। जिन कांवड़ियों को यूपी या देश के दूसरे हिस्सों से बिहार के भागलपुर जाना है, उनकी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से मिलती है। रेलवे के मैप पर डीडीयू यूपी और बिहार के दरमियान है, जहां से पूरे सावन कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। हैरत की बात नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है, जिसको नियंत्रित करने और कांवड़ियों को सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संभाल रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हजारों की तादाद में शिवभक्त पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं।
2: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के बैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है। ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
3: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
2: कहां से आए आप?
3: रायबरेली से।
2: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
3: बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहां जल भरे हैं जो है कि यहां पर दर्शन किए हैं अपना। अब यहां से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम।
2: कितनी आस्था है बाबा में?
3: बहुत बड़ी आस्था है जो है। हम लोग सावन आने का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया, वो शुभ घड़ी आई, वो पर्व आया, आज जो है इतना सारा मेला में सम्मिलित होने का उपलक्ष्य मिला, वो मौका मिला, ऐसा शुभ अवसर आया।
2: देखा जा सकता है कितना उत्साह है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
4: भीम शंकर।
2: क्या कहना है आपका?
4: बहुत बढ़िया,
2: अच्छा लगता है बाबा धाम जाना।
4: बहुत, बहुत।
2: आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप?
4: रायबरेली से।
2: आप भी रायबरेली से हैं, तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
4: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
2: पहली बार जा रहे हैं?
4: हाँ भैया।
2: कैसा लग रहा है, कितना उत्साह?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
2: आपका क्या नाम है?
5: सुनील कुमार।
2: आप बताइए आप कब से जा रहे हैं और कितना उत्साह है?
5: पहली बार जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया जा रहे हैं।
2: पैदल चल लेंगे 120 किलोमीटर?
5: हाँ पैदल चल लेंगे, बाबा की इच्छा होगी तो।
1: सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही न सिर्फ डीडीयू बल्कि इसके आगे बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी तादाद ट्रेनों के जरिए भागलपुर पहुंचती है और वहां से गंगा जल लेकर देवघर जाती है, इसीलिए यूपी से बिहार तक की ज्यादातर ट्रेनों में बोल बम का जयघोष है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो जैसे शिवमय हो चुका है।
2: ये तमाम उत्साह से लबरेज श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए कांवरिए हैं। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिए ही कांवरिए दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से भगवामय हो गया है और ये कांवरिए यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठाएंगे और जल उठाने के बाद ये तमाम कांवरिए जो है वो बैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ पैदल कूच करेंगे और वहां जाने के बाद लोग जलाभिषेक करेंगे। एक और श्रद्धालु हैं, कहां से आए हैं आप?
6: ट्रकलडीहा से।
2: ये बताइए, इधर आ जाइएगा कि क्या कहना है आपका, कब से जा रहे हैं आप?
6: हम तो 20 साल से जा रहे हैं।
2: कैसा लगता है?
6: अच्छा लगता है,
2: बाबा में भक्ति है?
3: पूरी भक्ति है, पूरी मनोकामना पूर्ण होती है।
2: पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहना है इन श्रद्धालुओं का। श्रद्धा और भक्ति का लगातार जमावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देखा जा रहा है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है। लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं, इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है, जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन्स पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर।

देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की हमारे देश में और हमारे दिलों में त्योहारों और उत्सवों का एक विशेष स्थान है। ये पर्व हमारे सांस्कृतिक धरातल को समृद्ध करते हैं। अभी सावन पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भक्ति का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। सावन के बादलों की ओट से जब भादों का महीना निकलेगा तो महादेव के लाडले यानी गजानन घर घर पधारेंगे। देखिए महीना महादेव का है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की भक्ति का सावन जो है वो बरस रहा है। अब से साल 14 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से लगातार चल रही है। धुरा कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आ रहे हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। उधर देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां पर अलग अलग शहरों में बप्पा की मूर्तियां आकार ले रही हैं। श्रद्धा से भरे मूर्तिकार अपने हुनर से तैयार प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था। अब इनमें रंग भरने और इनमें सजाने का काम लगातार जारी है। हर साल मुंबई समेत देश भर में हजारों गणेश पंडाल लगते हैं। इन पंडाल के साथ घरों में भी बप्पा की मूर्तियां भक्त स्थापित करते हैं। चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि अब की बार बप्पा की कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा डिमांड में है।

0: देवों में वे प्रथम पूज्य। कहलाते गणराज्य। चरण पड़े लंबोदर के तभी सफल हूँ काज। कहते हैं संसार में किसी कार्य का शुभारंभ हो नहीं सकता जब तक इनके चरण न पड़े। तो फिर यहाँ तो बात स्वयं मंगल मूर्ति के उत्सव के शुभारंभ की है। गणपति उत्सव दस्तक दे रहा है, सो कारीगरों ने शहर शहर बाप्पा की मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेशोत्सव का शुभारंभ होगा। अब की बार ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां बननी हैं, सो हफ्तों पहले से कारीगर मंगल मूर्ति का स्वरूप गढ़ने और सजाने में जुटे हैं। ये तस्वीर है नागपुर की मशहूर चितारोली की। नागपुर के इस कोने में कहीं बाप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है।
1: करीबन पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का कि जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आँख बनाते हैं, देखो आँख जो है गणपति की उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं है बल्कि देश के बाकी हिस्सों और विदेशों तक भी है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं।
2: हमारे यहाँ ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
3: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और कब?
2: ये लोग जून महीने में देते हैं ऑर्डर। जून
3: कब बना के देते आप?
2: हम लोग तारीख रहते उनके जब जाने की फ्लाइट की रहती ना, जब तारीख देके जाल चले जाते हम लोगों को 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: बाप्पा की एक से एक प्रतिमाएं यहाँ तैयार हो रही हैं। कहीं गणपति के माथे पर खाटू के श्याम बाबा की छवि उकेरी गई है तो कहीं गजानन के शीश पर उनके पिता महादेव महाकाल स्वरूप में विराजमान दिख रहे हैं तो कहीं वक्र तुंड की सूंड पर प्यारे से बाल गोपाल विराजे हैं। कलाकार बता रहे हैं कि अब की बार इसी तरह की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। यही वजह है कि डिमांड भी ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु अपनी कल्पना के आधार पर तो कई दो हाथ आगे बढ़कर AI के जरिए बापा की अलग छवि बनवाना चाहते हैं और मूर्तिकार उसी को आधार बनाकर दिन रात भक्तों की कल्पना वाले बापा को साकार रूप देने में जुटे हैं।
4: अभी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है तो श्याम बाबा की खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रही है और अभी जैसे यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है ये डिमांड मोबाइल के द्वारा, तो जैसे कुछ AI से बना के ला रहे हैं। जैसे अभी श्री कृष्ण जी तो आपने देखे बड़ी मूर्ति में गणपति बाप्पा के इसमें सुन पे छोटे से बाल श्री कृष्ण बैठा लिया, उसके खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से डिमांड भी आ रही है, कुछ हमारे मन में जो कल्पना है तो वो भी हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं।
0: लेकिन इस बार बाप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच चर्चा महंगाई की भी हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। सो बात सीधी है कि गणेश जी को घर लाना है तो लक्ष्मी जी का मोह कुछ कम करना होगा।
5: देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। हालांकि 14 सितंबर को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बाप्पा सार्वजनिक पंडाल और घरों में विराजमान हो गए, उससे पहले नागपुर में कारागिर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके हैं।
0: खैर महंगाई बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन बापा के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी तो बढ़ गई। हर साल की तरह ही इस बार भी भक्तों की ये आस्था अटूट है। अभी से अपनी पसंद की मूर्तियां बुक कराने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
6: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
0: यानी नागपुर वाले पूरी तरह तैयार हैं बापा के स्वागत के लिए, लेकिन तैयारी अमरावती में भी कम नहीं। अमरावती की इस आर्ट वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। मूर्ति स्वयं मंगल मूर्ति की है, विघ्नहर्ता की है, सो विघ्न का सवाल नहीं। मजाल है कि ध्यान भी भटक जाए, सब कुछ भूलकर बस पापा को बनाने और सजाने का काम चल रहा है। हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग, ये काम में जुटे इन कलाकारों का वर्षों का अभ्यास है, हफ्तों की मेहनत है, उम्र भर की साधना है।
7: देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट में, जहाँ पर की मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी और देश के बाहर भी इन प्रतिमाओं की बहुत बड़ी और ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की प्रतिमाएं जो है वो ऐसा लगता है कि स्वयं गणपति बाप्पा जो है हमारे सामने विराजमान हुए हैं। और इसीलिए ये कार्यशाला जो है वो कई सालों से जो है सुंदर इको फ्रेंडली, सबसे अहम बात है कि इको फ्रेंडली ये प्रतिमाएं हैं।
0: अमरावती के जिराफे आर्ट वर्कशॉप में हर बार की तरह आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गणपति बाप्पा की आस्था के बीच प्रकृति माँ को भुलाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ खास इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खास तौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही हैं।
8: एक तो अभी मिट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मिट्टी के गणपति बनाते हैं। पीओपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपने यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा को गढ़ने में धरती की गोद से मिली मिट्टी, कुछ प्राकृतिक रंग, ढेर सारी मेहनत और अनंत भावनाएं, यही है बापा की प्रतिमा को सबसे सुंदर और मनमोहक बनाने का फॉर्मूला, जिसे इन कलाकारों ने पूरी तरह साध लिया है। और जब इनके हाथों से गुजरकर बापा इस स्वरूप में भक्तों के घर विराजेंगे, तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचेगा। प्रकृति के संरक्षण वाले इस मिशन ने गणेश उत्सव को श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी बना दिया है। बस अब इंतजार गणेशोत्सव के श्री गणेश का है।
7: हर किसी को अब बाप्पा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ, यही अब हर किसी लाडले बाप्पा के भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बप्पा की मूर्तियों की, लेकिन इन प्रतिमाओं के अलावा गणपति को सजाने वाली तमाम चीजें भी अब बाजारों में पहुंचने लगी हैं। इनमें सबसे खास है बप्पा का फेटा। फेटा महाराष्ट्र की खास पगड़ी होती है। आखिर क्यों बप्पा को ये पगड़ी पहनाई जाती है, क्या है फेटा का इतिहास और क्यों आज महाराष्ट्र के सैकड़ों के फेटा मेकर बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कर रहे हैं।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ టేఢ़ी सूंड विशाल काया और करोड़ों सूर्यों के समान तेज, गजानन की दिव्य काया का बखान कुछ यूं मिलता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये काया कुछ और सजीली, कुछ और दिव्य, कुछ और भव्य हो जाती है गणेश उत्सव के 10 दिनों में, जब देश भर में मंदिर मंदिर, पंडाल पंडाल और घर घर में गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है। उन्हें बेहद प्रेम, आस्था और मनुहार के साथ तैयार किया जाता है और इसी तैयारी का हिस्सा है गणपति बाप्पा की पगड़ी। बाप्पा के मस्तक की ये पगड़ी कुछ और खिल उठती है महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर, जहां इसे मराठी अंदाज में बाप्पा को पहनाया जाता है। इस मराठी पगड़ी को फेटा कहते हैं। जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हुनर रखने वाले कारीगर इस समय बाप्पा की मूर्ति, वस्त्र, गहने और पंडाल का सामान बनाने में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही पुणे के किरण साबले इन दिनों बाप्पा के लिए फेटा यानी मराठी पगड़ी बनाने में जोर शोर से जुटे हैं। पुणे के नारायण गांव में फेटा मेकर किरण साबले अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के लिए फेटा बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव से पहले उनके पास बड़ी संख्या में बाप्पा का फेटा बनाने के ऑर्डर आए हैं।
1: प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे। फेटा बनाने के लिए मेरी पूरी फैमिली इसमें मेरे को मदद करती है और खूब सारे फेटे हम इस साल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कभी साल भर में 1000 फेटे बनाने वाले किरण साबले अब हर साल बाप्पा के लिए 50,000 से ज्यादा फेटे तैयार करवाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उन्हें देश विदेश से ऑर्डर आते हैं।
1: मैं गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ। मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ और मेरे पहले मैंने जो फेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र का फेटा केवल सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये मराठी अस्मिता, इतिहास और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवंत चिन्ह है। मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्याभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बाप्पा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी महाराष्ट्र में भगवान गणेश को फेटा पहनाना मराठी संस्कृति में उन्हें अपने राजा, अतिथि और परिवार का मुखिया मानने की गहरी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो बाप्पा को अब पोशाक के रंग के हिसाब से अलग अलग रंग का फेटा भी पहनाने का चलन है, लेकिन शुरुआत में बाप्पा को सिर्फ पीला या भगवा रंग का फेटा पहनाया जाता था, जिसका इतिहास महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं से होते हुए छत्रपति शिवाजी के शासन काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने गणेश जी को अपना कुल देवता माना था। पेशवाओं के दरबार में हर कोई पारंपरिक फेटा या पुणेरी पगड़ी पहनता था। जब वे अपने आराध्य बाप्पा की मूर्ति स्थापित करते थे तो उन्हें भी अपनी तरह ही शाही रेशमी फेटा पहनाते थे। यही ऐतिहासिक परंपरा आज भी सार्वजनिक और घरेलू गणेश उत्सव में जारी है। सदियों पुरानी इस गर्व भरी परंपरा को आज भी जिंदा रखे है किरण साबले जैसे हजारों फेटा मेकर, जो हर साल गणपति बाप्पा के लिए फेटा बनाते हैं। इसे पहनकर गजानन जब घरों में पधारते हैं तो माँ गौरी के लाल पर श्रद्धालु अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फेटा की ही तरह बप्पा के आसन की भी डिमांड खूब बढ़ गई है। मुंबई में दुकानों पर गणपति के लिए अलग अलग डिजाइन, थीम और रंगों के आसनों की बाढ़ आ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि घर पर बप्पा को विराजमान करवाने के लिए कौन कौन से आसन और सिंहासन का विकल्प है।

0: माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जरा सोचिए कैलाश पर कैसी शान से रहते होंगे वो गणपति देवा। बस भक्तों को चिंता इसी बात की रहती है कि जब गणपति अपने घर से हमारे घर आए तो उनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए, सजावट में भव्यता भरपूर हो और भोग में मोदक प्रचुर हो। सो बाजार पट गए हैं, बाप्पा के स्वागत के सामान से सज गए हैं। गणपति उत्सव की रौनक अब खूब दिख रही है, दिखनी भी चाहिए। अब गणेश चतुर्थी में दिन ही कितने बचे हैं। इधर शिव जी का प्रिय महीना खत्म होगा और उधर शिव पुत्र के पधारने की घड़ी आ पहुंचेगी। उससे पहले गणपति की प्रतिमा, आसन, पूजा की थाली, झांकी सजाने का सामान, जाने क्या क्या लेना है, सुकाम चालू आ है। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली की, जहां मौजूद सहेली वर्कशॉप में गणेशोत्सव से जुड़ा सामान तैयार हो चुका है।
1: लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बाप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। अब जिनका आसन स्वयं माँ गौरी की गोद हो, उनके लिए आसन चुनना आसान भी तो नहीं। लेकिन गौरी नंदन के विराजने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन के आसन यहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वॉटरफॉल आसन भी यहाँ तैयार किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वाला आसन, महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भी भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाबा के लिए इसी आसन को चुन रहे हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया है। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: हर साल बाप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बाप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बाप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस वर्कशॉप से लोग रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से अपनी कल्पना के आधार पर बाप्पा के लिए मनपसंद आसन तैयार कर सकते हैं।
1: यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है। पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकल नहीं है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल आइटम
1: इको फ्रेंडली है, सारे
2: फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर्स चाहिए, कि देख वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ रोम मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देख सकते फ्लावर्स में जो है फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
3: लाइटिंग्स मिलेंगी,
2: लाइट्स भी मिल जाएंगी सर।
3: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
3: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबा के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: वैसे लोग यहाँ से सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जगमगाती लाइट्स, मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स भी खरीद रहे हैं।
4: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
5: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है, उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा, ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
6: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: खास बात ये भी है कि यहाँ मिलने वाला ज्यादातर सामान भी इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी की प्रतिमा की तरह अंत में ये भी मिट्टी या पानी में घुल मिल जाएगा, मतलब पर्यावरण को यहाँ भी कोई नुकसान नहीं। कुछ ही दिनों बाद लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। ऐसे रंग बिरंगे सुंदर आसन पर बापा विराजेंगे और उस भव्य झांकी के चारों ओर बापा के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: किसी के लिए परेशानी लेकर आती है तो किसी के लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप दिखा जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती बूंदों ने सूखी वादियों को फिर से जिंदा कर दिया है। पहाड़ हरे रंग की चादर ओढ़ चुके हैं और महीनों से खामोश पड़े झरने अब पूरे जोश के साथ गूंज रहे हैं। नजारा ऐसा जिसे देखकर हर कोई कुछ पल ठहर जाना चाहता है।
7: ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि मॉनसून की मेहरबानी का है। पहाड़ों से दूध की तरह गिरता पानी, चारों ओर बिछी हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच कुदरती सुंदरता। महाराष्ट्र के जालना जिले का धावड़ा इलाका इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद यहां का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान के अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों से फूटते झरनों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। सिलिसेड और आसपास हुई अच्छी बारिश के बाद मशहूर गरवाजी वाटरफॉल इस सीजन में पहली बार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पानी की तेज धार और हरियाली से घिरी पहाड़ियां लोगों का मन मोह रही हैं। बारिश का ये पानी सिर्फ झरनों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि खेतों में भी नई उम्मीद जगा रहा है। खरीफ की फसल के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मानसून एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बारिश मेहरबान होती है तो सूखे पहाड़ भी जिंदा हो उठते हैं। झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और ठंडी हवाएं, यही है मानसून का वो जादू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जालना से गौरव विजय और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत चेन्नई में खास कार्यक्रम। इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। देखिए सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है, देश भर से कांवड़ यात्रा की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आस्था के अलग अलग रंग दिखा रही हैं। कहीं पर प्रेम मन्नत बनकर कंधों पर सवार है तो कहीं पर कठिन तपस्या श्रद्धा की नई मिसाल बन रही है, तो कहीं पर भव्य और अनोखी कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महादेव के प्रति समर्पण का यही भाव करोड़ों शिव भक्तों को लंबी यात्रा की ताकत दे रहा है।
8: Oh, my God.
7: आदि अनंत फिर भी अंगिनत रूप हैं शिव के। वो साधक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं और इसके साथ ही प्रेमी हैं और गृहस्थ भी। सोचिए तो ये बात निराली है कि जो खुद कैलाश पर धुनी रमाए बैठे हैं, वो मनचाहे जीवन साथी और शादी के लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि शादी विवाह में बाधा सावन में शिव की आराधना से दूर हो जाती है और इसी भरोसे, इसी उम्मीद पर ये जोड़ा निकल पड़ा है कांवड़ यात्रा पर। कहते हैं कि भोले बस भावना देखते हैं, सच्चे मन से चाहे जो मांग लीजिए मिल जाता है।
4: विनम्र निवेदन है, कृपया अपनी कांवड़ इस बिजली घर के पास हटा दें।
7: इस जोड़े की ख्वाहिश बस इतनी है कि इनका विवाह हो जाए। इनका प्रेम सच्चा है, इसका प्रमाण देने के लिए दोनों ने एक साथ कावड़ उठाई, विवाह के लिए मन्नत मांगी और बोल बम का जयकारा लगाते हुए हरिद्वार पहुंच गए।
8: किस तरह की कावड़ है, क्या मन्नत है आपकी? कावड़
9: यही मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए।
8: आप कितने घंटे चल रहे रोजाना एक साथ कावड़ लेके चल रहे, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं?
9: 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल लिए, 15 किलोमीटर चल लिए, ऐसे चल रहे हैं। छोटा वाला भाई आया, दीदी आई है साथ में, ऐसे वो सब लोग पीछे, हम लोग आ गए हैं।
8: आपने जल उठाया था?
9: हमने 28 तारीख को उठाया था।
8: रोजाना कितना चल रहे हो?
9: 15 या 20।
8: तो क्या कहना चाहेंगे भोले बाबा से?
9: यही कहना चाहूंगी बस शादी हो जाए दोनों की।
7: हरिद्वार से गंगा जल उठाने के बाद कावड़ का वजन ज्यादा हो गया तो दोस्तों ने भी कंधा लगा दिया। 111 लीटर गंगा जल के साथ रोज करीब 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए मयंक और दीपिका बुलंदशहर पहुंचने ही वाले हैं। इनका प्रेम गहरा है लेकिन शादी के लिए अभी घर वालों की मंजूरी नहीं मिली है, पर महादेव पर विश्वास है और इसीलिए आस है कि बात बन जाएगी। महादेव की कृपा से सभी की सहमति मिल जाएगी।
10: ये हमारी मन्नत की कावड़ है।
8: इस तरह की मन्नत?
10: जी, मन्नत मांगे कि हाँ हम दोनों की शादी हो जाए।
8: कैसे मुलाकात हुई आपकी, कितने साल पहले मुलाकात हुई?
10: जी 1 साल होने वाली है।
8: हाँ।
10: तो जब ही मुलाकात हुई, कहने का मतलब ये है कि बुलंदशहर में पहली बार गया और शादी में जब मुलाकात सी होगी जी। कावड़ लाने के तो विचार हमारा पहले से हुआ और हमने बाद में विचार बनाया कि डीजे फीजे हर चीज़ लेके चलेंगे, तो हमारा सारा ग्रुप भी है, बहुत बालक हैं, आधे कुछ पीछे हैं कुछ आधे हैं, सारे गैल में हैं। तो हमारी मन्नत यही कि दोनों जने हम कावर घर तक अपने मंदिर पर चढ़ा दें।
7: एक साथ भारी भरकम कावड़ उठाए इस जोड़े को देखकर लोग भी दंग हैं, पर खुशी भी है क्योंकि ईश्वर से प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। मयंक और दीपिका ने भी अपने प्रेम को भक्ति से जोड़ दिया। दोनों ने कावड़ उठाकर कठिन परीक्षा दी, अब परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है। वैसे तो भोले की कृपा एक लोटा जल से ही मिल जाती है, लेकिन अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भक्त कड़ी तपस्या करते हैं। हाथों के बल कावड़ यात्रा पर निकले राजकुमार ऐसी ही तपस्या की एक मिसाल है। बिच्छू के आकार में दोनों पैर हवा में और हाथ के पंजों से आगे बढ़ते हुए राजकुमार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और नतमस्तक भी होते हैं।
11: हम पिछले 2 साल से भारत यात्रा कर रहे हैं जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम 51 शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, खाड़ोशी अम्बा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जीन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिचुबम यात्रा कर रहे हैं जो कि पिछले साल 1 महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है। थोड़ा इस साल पीछे चल रहे हैं, जो कि पिछले साल हमारे भैया चल रहे थे साथ में, और इस साल हम अकेले चल रहे, जो कि पीछे में साइकिल है तो साइकिल लेकर हमको चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी हो रहा है। और आप बोले जो कैसे मन में आया, ये तो हम जब बागेश्वर धाम गए थे तो पहले हम बागेश्वर धाम गए तो फिर हमें एक अलग शक्ति मिला हमें, तो फिर लगा जो नहीं हम और जा सकते हैं, और दूर जा सकते हैं, और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लोगों के दर्शन करा सकते हैं, तो बस ऐसे करके चलते रहे। हमें तो ऐसे कोई कठिनाई दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लगभग चलते रहते, जब राम मंदिर उद्घाटन हुए थे तब भी हम जो है वो टर्निंग से मंदिर तक गए थे, बागेश्वर धाम जो टावर है टावर से बागेश्वर धाम तक गए थे ऐसे हाथ से चल के, तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा जगह जाते रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है।
12: बिच्छू बम बनकर राजकुमार ने जब पिछले साल पहली बार यात्रा की थी तो पूरे एक महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस साल सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा में उनकी रफ्तार अच्छी है। एक बार में राजकुमार 60 से 70 फीट चलते हैं, थोड़ी देर ठहरते और फिर चलने लगते हैं। पिछले दो साल में 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम और 21 शक्ति पीठों का दर्शन कर चुके हैं राजकुमार। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बिच्छू बम के तौर पर काफी चर्चा में है। चर्चा धनबाद के अजय विश्वकर्मा की भी हो रही है, और उसकी वजह है उनकी डमरू के आकार वाली कावड़, जिसे देखने के लिए दूसरे कावड़िये ठहर जाते हैं। लकड़ी और फाइबर से बना ये विशाल काय कावड़ भव्य है लेकिन वजनदार है। हाँ, जब लोग इसकी सराहना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोल बम का जयकारा लगाते हैं, तो अजय विश्वकर्मा को परम आनंद मिलता है।
13: बाबा का डमरू है ये, भगवान गणेश, और जो पहली बार पद यात्रा में आया भगवान श्री राम, ये छवि है।
14: क्या चीज से बनाए?
13: ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है, और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है। वजन तो वेट नहीं की, लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ, ये 15 kg से ऊपर है, 18 kg लमसम है। ये खुद से बनाया है, इसकी कोई लागत कोई आंक नहीं जा सकता है।
14: आप इसको खुद से
13: और ये हर एक साल कुछ न कुछ यूनिक।
12: शिव भक्तों की जो भीड़ हर दिन बाबा धाम जा रही है, उसमें आस्था और भक्ति की अनगिनत चमकीली तस्वीरें हैं। पर चांदी की इस कावड़ की तो बात ही निराली है। पटना सिटी से विशाल शिवधारी कावड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट के इस कावड़ को लेकर देवघर के लिए निकला है। खूबी ये है कि कावड़ 54 फीट लंबी है और इसमें 54 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है, साथ ही ज्योतिर्लिंग और मां दुर्गा काली की प्रतिमाएं भी हैं।
13: इसमें अलग यही है कि चांदी की 54 किलो चांदी का है, इसलिए यह सब लोग का श्रद्धा के अनुसार पूरा ये कावर गई है, वो श्रद्धा के अनुसार 54 किलो चांदी सब लोग सहयोग से ये प्रारंभ हुआ, और ये आगे भी विकसित होगा, कुछ सोना के भी लगने वाली है, सोना से जितना श्रद्धा बनेगा लोग का उतना ही आगे बढ़ते रहेगा कावर में, और तरह तरह की चीज इसमें गाड़ी की होती है। हाँ, ज्योतिर्लिंग है, बड़ी माँ है, दुर्गा माँ है, काली माता है, सब लोग है इसमें।
12: बैद्यनाथ धाम में दोनों मंदिरों के बीच 54 फीट की दूरी है, और इसीलिए 54 फीट की कावड़, और यात्रा भी 54 घंटे में पूरी की जानी है। नंगे पांव केसरिया वस्त्र, सर पर रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए श्रद्धालुओं की टोली कावड़ मार्ग पर शिव भक्ति का दिव्य रंग घोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: कांवड़ यात्रा अब सिर्फ गंगा जल लाने की परंपरा नहीं रही, बल्कि संस्कार, सेवा और समर्पण का महापर्व बन चुकी है। कहीं नन्हे शिव भक्त अपनी आस्था से प्रेरित कर रहे हैं, कहीं पर परिवार रिश्तों की नई मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच व्यवस्था और भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। देश भर से सामने आ रहे ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य बता रहे हैं कि महादेव की भक्ति हर उम्र हर रूप में जीवंत है। रिपोर्ट देखिए।
15: ये घुंघरू किसी कलाकार के पैरों की पहचान नहीं है, बल्कि शिव भक्ति की आवाज है। छोटे छोटे कदम, पैरों में बंधे घुंघरू, कंधों पर कांवड़ और होठों पर महादेव का नाम। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंची ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बनारस से आए ये छात्र 7वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज से गंगा जल लेकर अपने शहर लौट रहे हैं। इनके पैरों में घुंघरू इसलिए बंधे हैं ताकि चलते समय लगातार आवाज आती रहे और रास्ते में कोई अनजाने ही उनकी कांवड़ से न टकराए। साथ ही उनके साथी भी एक दूसरे की मौजूदगी आसानी से समझ सके। ये बच्चे पिछले 4 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं और इस बार 5वीं बार इस यात्रा पर निकले हैं। उनकी कामना है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, पढ़ाई में सफलता मिले और महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे।
16: सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ जो है प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंच रहे हैं। हर कांवड़ियों के अपने रूप है, रंग है और हर किसी का संकल्प भी अलग है। प्रयागराज का एक ऐसा ही ग्रुप है जो पायल पहनकर पैरों में कांवड़ लेकर चल पड़ा है। उसके पीछे ऐसा है कि वो जिन रास्तों से गुजरे उनके लोगों के बीच में आने वाले लोग उनके कांवड़ को खंडित न करे, लिहाजा पैर में उन्होंने पायल पहना है। और ये काशी के रहने वाले हैं, ये प्रयागराज का जल भरकर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करेंगे, लिहाजा प्रयागराज में ये ग्रुप पहुंचा है।
17: मेरा नाम है अमन, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और कांवड़ उतार रहा हूँ। मैं 4 साल मेरा कांवड़ हो गया और मेरा गाँव है काशी में।
18: पायल क्यों पहना?
17: पायल इसलिए पहना कि कांवड़ खंडित ना हो।
18: किस क्लास में पढ़ते कांवड़ क्यों उठाया?
17: मेरा नाम प्रियांशु सरोज है, मैं काशी से रहने वाला हूँ। मैंने कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे।
19: युवराज कुमार नाम है मेरा, मैं काशी का रहने वाला हूँ। कांवड़ ये मेरा 3रा साल है।
15: उधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में पहुंच चुकी है। हर की पैड़ी, मालवी द्वीप, शिव सेतु,

0: से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पंचक समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज और हरिद्वार ही नहीं बल्कि सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रहा एक परिवार अपनी बुजुर्ग माताजी को कांवड़ में बैठा कर यात्रा कर रहा है। करीब 260 किलोमीटर के सफर में कभी बेटा, कभी बहू तो कभी पोता बारी बारी से कांवड़ उठाकर माँ को आगे ले जा रहे हैं।
1: श्रवण कुमार कांवड़ बोलते हैं इसको, और माँ बाप से प्यार था, 4-5 साल से आया नहीं था माँ बाप के मम्मी के कारण। एक्चुअली पापा थोड़ा घर पे कोई है नहीं इसलिए पापा रह गए नहीं, तो दोनों को लाने का मन था, तो माँ बाप का प्यार था इसलिए मैं माँ को लेके आ गया।
2: तो अभी कौन कौन कांवड़ उठा करके ले
1: गया? अभी मैं हूँ, वाइफ है और अपना भतीजा है और भाभी भी है और एक वो अपना भांजा है।
2: कैसा लग?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, भोले बाबा की कृपा है, चल रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं।
0: परिवार इस यात्रा को श्रवण कुमार कांवड़ कहता है। कई वर्षों बाद उन्हें कांवड़ लाने का अवसर मिला, इसलिए इस बार उन्होंने अपनी माँ को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा में माता जी भी बेटे बहू के स्नेह से बेहद खुश हैं।
1: जितने भी है आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने देखा है आजकल नेट पे देखता हूँ बहुत गलत गलत हो रहा है, तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करोगे इतने ही जन्नत में जाओगे, बड़ा प्यार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, माँ बाप से प्यार है वो करते रहो।
0: हरियाणा के रवि और उनकी पत्नी निशु हरिद्वार से करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ का एक सिरा पति के कंधे पर है, दूसरा पत्नी के कंधे पर, दोनों मिलकर गंगा जल अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उससे अपने बुजुर्ग सास ससुर को स्नान करा सके। परिवार की जिम्मेदारी केवल बेटे की नहीं होती, बहू भी उसी प्रेम और सम्मान के साथ उसे निभा सकती है।
3: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हरिद्वार से चंडीगढ़ लेके जाना है, बहुत अच्छा लग
2: रहा है। कैसे
3: ये बस हस्बैंड सोचते हैं, हम वही हम सोचने लग जाते हैं।
2: आजकल देखा जाता है कि जो बहुएं होती है वो अपने सास को घर से बाहर निकाल देती
3: है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो तो थोड़ा नॉर्मल है, चलता रहता है, पर इतना नहीं है।
2: सासू जी क्या कह रही है?
3: सासू जी भी अच्छा बोल रही है, ये अच्छी बात है, कह रही है अच्छी बात है, लेके जा रहे हैं।
0: जब तक माता पिता चलने फिरने में सक्षम हैं, तब तक वो हर साल गंगा जल लाकर उनका अभिषेक कराएंगे। राजकुमार का आगे चलकर उन्हें श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराने का भी सपना है। कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से सामाजिक सौहार्द की भी एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और जेहलम का जुलूस एक ही मार्ग के करीब 170 मीटर हिस्से से गुजरना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से विस्तृत तैयारी की है। रास्ते के बीच करीब 10 फीट ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं ताकि दोनों आयोजन अपने अपने मार्ग से शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकें। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।
4: जो शहर में एक 170 मीटर का भाग है हनुमान चौक के बाद, वहाँ पे कांवड़ और जेहलम दोनों एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलने के लिए जितने हमारे स्टेक होल्डर है सबसे बातचीत हो गई है, जितने हमारे फिजिकल अरेंजमेंट्स हो गए सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट हो गया, और मात्र 170 मीटर का वो मार्ग है जिसपे स्थलीय निरीक्षण डीएम साहब द्वारा, एसएसपी साहब द्वारा, हम सभी द्वारा कर लिया गया है, और सकुशल इन दोनों जुलूसों को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध।
0: घुंघरुओं के छमछम में शिव भक्ति सुनाई देती है, कहीं बेटे बहू के कंधों पर माँ के प्रति सम्मान दिखाई देता है, कहीं एक बहू रिश्तों की जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा का नया उदाहरण पेश कर रही है। भक्ति और भावना के ये इंद्रधनुषी रंग ही कांवड़ यात्रा को भव्य बनाते हैं। प्रयागराज से आनंद राज, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। मंदिर, घाट, सड़क और रेलवे स्टेशन पर हर हर महादेव और बोलभम के जयघोष हैं। लाखों शिव भक्त अपने संकल्प के साथ बाबा के दरबार की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आस्था, अनुशासन और उत्साह की अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर केसरिया समंदर लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
6: कंधे पर कांवड़, दिल में देवाधिदेव भोलेनाथ और जुबान पर हर हर महादेव।

0: शिव भक्तों का ऐसा जमघट शायद ही किसी स्टेशन पर दिखे, और उसकी वजह भी है, जिन कांवड़ियों को यूपी या देश के दूसरे हिस्सों से बिहार के भागलपुर जाना है उनकी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से मिलती है। रेलवे के मैप पर डीडीयू यूपी और बिहार के दरमियान है, जहां से पूरे सावन कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। हैरत की बात नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है, जिसको नियंत्रित करने और कांवड़ियों को सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संभाल रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हजारों की तादाद में शिवभक्त पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं।
1: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के वैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है, ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
2: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
1: कहां से आए हैं आप?
2: रायबरेली से।
1: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
2: बहुत ज्यादा उत्साह है, हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहाँ जल भरे हैं जो कि यहाँ पर दर्शन किए हैं अपना, अब यहाँ से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा वैद्यनाथ धाम।
1: कितनी आस्था है बाबा में?
2: बहुत बड़ी आस्था है जो है, हम लोग सावन आने का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया, वो शुभ घड़ी आई, वो पर्व आया, आज जो है इतना सारा मेला में सम्मिलित होने का उपलक्ष्य मिला और मौका मिला, ऐसा सब अवसर आया।
1: देखा जा सकता है कितना उत्साह है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
3: भीम शंकर।
1: क्या कहना है आपका?
3: बहुत बढ़िया,
1: अच्छा लगता है बाबा धाम जाना।
3: बहुत, बहुत।
1: आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप?
4: रायबरेली से।
1: आप भी रायबरेली से हैं, तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
4: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
1: पहली बार जा रहे हैं?
4: हाँ भैया।
1: कैसा लग रहा है, कितना उत्साह?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपका क्या नाम है?
5: सुनील कुमार।
1: आप बताइए आप कब से जा रहे हैं और कितना उत्साह है?
5: पहली बार जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया जा रहे हैं।
1: पैदल चल लेंगे 120 किलोमीटर?
5: हाँ पैदल चल लेंगे, बाबा की इच्छा होगी तो।
0: सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही न सिर्फ डीडीयू बल्कि इसके आगे बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी तादाद ट्रेनों के जरिए भागलपुर पहुंचती है और वहां से गंगा जल लेकर देवघर जाती है, इसीलिए यूपी से बिहार तक की ज्यादातर ट्रेनों में बोल बम का जय घोष है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो जैसे शिवमय हो चुका है।
1: ये तमाम उत्साह से लबरेज श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए कांवरिए हैं। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिए ही कांवरिए दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से भगवामय हो गया है और ये कांवरिए यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठाएंगे और जल उठाने के बाद ये तमाम कांवरिए जो है वो वैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ पैदल कूच करेंगे और वहां जाने के बाद लोग जलाभिषेक करेंगे। एक और श्रद्धालु हैं, कहां से आए हैं आप?
6: प्रकल्डिया से।
1: ये बताइए, इधर आ जाइएगा, कि क्या कहना है आपका, कब से जा रहे हैं आप?
6: हम तो 20 साल से जा रहे हैं।
1: कैसा लगता है?
6: अच्छा लगता है,
1: अब हमें भक्ति है,
6: पूरी भक्ति है, पूरी मनोकामना पूर्ण होती है,
1: पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहना है इन श्रद्धालुओं का। श्रद्धा और भक्ति का लगातार जमावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देखा जा रहा है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
7: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है। लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है, जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक मंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
4: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर।

देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की हमारे देश में और हमारे दिलों में त्योहारों और उत्सवों का एक विशेष स्थान है। ये पर्व हमारे सांस्कृतिक धरातल को समृद्ध करते हैं। अभी सावन पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भक्ति का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। सावन के बादलों की ओट से जब भादों का महीना निकलेगा तो महादेव के लाड़ले यानी गजानन घर घर पधारेंगे। देखिए महीना महादेव का है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की भक्ति का सावन जो है वो बरस रहा है। अब से साल 14 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से लगातार चल रही हैं। धुरा कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आ रहे हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। उधर देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां पर अलग अलग शहरों में बप्पा की मूर्तियां आकार ले रही हैं। श्रद्धा से भरे मूर्तिकार अपने हुनर से तैयार प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था, अब इनमें रंग भरने और इनमें सजाने का काम लगातार जारी है। हर साल मुंबई समेत देश भर में हजारों गणेश पंडाल लगते हैं। इन पंडाल के साथ घरों में भी बप्पा की मूर्तियां भक्त स्थापित करते हैं। चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि अब की बार बप्पा की कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।

0: देवों में वे प्रथम पूज्य। कहलाते गणराज्य। चरण पड़े लंबोदर के तभी सफल हूँ काज। कहते हैं संसार में किसी कार्य का शुभारंभ हो नहीं सकता जब तक इनके चरण न पड़े। तो फिर यहाँ तो बात स्वयं मंगल मूर्ति के उत्सव के शुभारंभ की है। गणपति उत्सव दस्तक दे रहा है, सो कारीगरों ने शहर शहर बापा की मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। अब की बार ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां बननी हैं, सो हफ्तों पहले से कारीगर मंगल मूर्ति का स्वरूप गढ़ने और सजाने में जुटे हैं। ये तस्वीर है नागपुर की मशहूर चितारोली की। नागपुर के इस कोने में कहीं बापा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है।
1: करीबन पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का कि जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आंख बनाते हैं, देखो आंख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब जो है बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं है बल्कि देश के बाकी हिस्सों और विदेशों तक भी है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं।
2: हमारे यहाँ ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
3: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और
2: ये लोग जून महीने में देते ऑर्डर। जून
3: कब बना के देते आप?
2: हम लोग तारीख रहते उनके जब जाने की फ्लाइट की रहती ना, जब वो तारीख देके जाले चले जाते हम लोगों को, 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: बापा की एक से एक प्रतिमाएं यहाँ तैयार हो रही हैं। कहीं गणपति के माथे पर खाटू के श्याम बाबा की छवि उकेरी गई है तो कहीं गजानन के शीश पर उनके पिता महादेव महाकाल स्वरूप में विराजमान दिख रहे हैं तो कहीं वक्र तुंड की सूंड पर प्यारे से बाल गोपाल विराजे हैं। कलाकार बता रहे हैं कि अब की बार इसी तरह की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। यही वजह है कि डिमांड भी ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु अपनी कल्पना के आधार पर तो कई दो हाथ आगे बढ़कर AI के जरिए बापा की अलग छवि बनवाना चाहते हैं और मूर्तिकार उसी को आधार बनाकर दिन रात भक्तों की कल्पना वाले बापा को साकार रूप देने में जुटे हैं।
4: अभी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साई बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रही है और अभी जैसे यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है ये डिमांड मोबाइल के द्वारा, तो जैसे कुछ AI से बना के ला रहे हैं। जैसे अभी श्री कृष्ण जी तो आपने देखे बड़ी मूर्ति में गणपति बाप्पा के, इसमें सुन पे छोटे से बाल श्री कृष्ण बैठा लिया है, उसके खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से डिमांड भी आ रही है, कुछ हमारे मन में जो कल्पना है तो वो भी हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं।
0: लेकिन इस बार बाप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच चर्चा महंगाई की भी हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। सो बात सीधी है कि गणेश जी को घर लाना है तो लक्ष्मी जी का मोह कुछ कम करना होगा।
5: देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। हालांकि 14 सितंबर को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बाप्पा सार्वजनिक पंडाल और घरों में विराजमान होंगे, उससे पहले नागपुर में कारागिर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके हैं।
0: खैर महंगाई बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन बाप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी तो बढ़ गई। हर साल की तरह ही इस बार भी भक्तों की ये आस्था अटूट है। अभी से अपनी पसंद की मूर्तियां बुक कराने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
6: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
0: यानी नागपुर वाले पूरी तरह तैयार हैं बाप्पा के स्वागत के लिए, लेकिन तैयारी अमरावती में भी कम नहीं। अमरावती की इस आर्ट वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। मूर्ति स्वयं मंगल मूर्ति की है, विघ्नहर्ता की है, सो विघ्न का सवाल नहीं। मजाल है कि ध्यान भी भटक जाए, सब कुछ भूलकर बस पापा को बनाने और सजाने का काम चल रहा है। हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग, ये काम में जुटे इन कलाकारों का वर्षों का अभ्यास है, हफ्तों की मेहनत है, उम्र भर की साधना है।
7: देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं, वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट में, जहाँ पर की मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी और देश के बाहर भी इन प्रतिमाओं की बहुत बड़ी और ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की प्रतिमाएं जो है वो ऐसा लगता है कि स्वयं गणपति बाप्पा जो है हमारे सामने विराजमान हुए हैं। और इसीलिए ये कार्यशाला जो है वो कई सालों से जो है सुंदर इको फ्रेंडली, सबसे अहम बात है कि इको फ्रेंडली ये प्रतिमाएं हैं।
0: अमरावती के जिराफे आर्ट वर्कशॉप में हर बार की तरह आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गणपति बाप्पा की आस्था के बीच प्रकृति माँ को भुलाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ खास इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खास तौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही हैं।
8: एक तो अभी मट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मट्टी के गणपति बनाते हैं। पीओपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपनी यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा को गढ़ने में धरती की गोद से मिली मिट्टी, कुछ प्राकृतिक रंग, ढेर सारी मेहनत और अनंत भावनाएं, यही है बाप्पा की प्रतिमा को सबसे सुंदर और मनमोहक बनाने का फॉर्मूला, जिसे इन कलाकारों ने पूरी तरह साध लिया है। और जब इनके हाथों से गुजरकर बाप्पा इस स्वरूप में भक्तों के घर विराजेंगे, तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचेगा। प्रकृति के संरक्षण वाले इस मिशन ने गणेश उत्सव को श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी बना दिया है। बस अब इंतजार गणेश उत्सव के श्री गणेश का है।
7: हर किसी को अब बाप्पा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ, यही अब हर किसी लाडले बाप्पा के भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बप्पा की मूर्तियों की, लेकिन इन प्रतिमाओं के अलावा गणपति को सजाने वाली तमाम चीजें भी अब बाजारों में पहुंचने लगी हैं। इनमें सबसे खास है बप्पा का फेटा। फेटा महाराष्ट्र की खास पगड़ी होती है। आखिर क्यों बप्पा को ये पगड़ी पहनाई जाती है, क्या है फेटा का इतिहास और क्यों आज महाराष्ट्र के सैकड़ों के फेटा मेकर बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कर रहे हैं।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ टेढ़ी सूंड विशाल काया और करोड़ों सूर्यों के समान तेज गजानन की दिव्य काया का बखान कुछ यूं मिलता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये काया कुछ और सजीली कुछ और दिव्य कुछ और भव्य हो जाती है गणेश उत्सव के 10 दिनों में। जब देश भर में मंदिर मंदिर पंडाल पंडाल और घर घर में गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें बेहद प्रेम आस्था और मनुहार के साथ तैयार किया जाता है और इसी तैयारी का हिस्सा है गणपति बाप्पा की पगड़ी। बाप्पा के मस्तक की ये पगड़ी कुछ और खिल उठती है महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर, जहां इसे मराठी अंदाज में बाप्पा को पहनाया जाता है। इस मराठी पगड़ी को फेटा कहते हैं। जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हुनर रखने वाले कारीगर इस समय बाप्पा की मूर्ति वस्त्र गहने और पंडाल का सामान बनाने में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही पुणे के किरण साबले इन दिनों बाप्पा के लिए फेटा यानी मराठी पगड़ी बनाने में जोर शोर से जुटे हैं। पुणे के नारायण गांव में फेटा मेकर किरण साबले अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के लिए फेटा बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव से पहले उनके पास बड़ी संख्या में बाप्पा का फेटा बनाने के ऑर्डर आए हैं।
1: प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे। फेटा बनाने के लिए मेरी पूरी फैमिली इसमें मेरे को मदद करती है और खूब सारे फेटे हम इस साल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कभी साल भर में 1000 फेटे बनाने वाले किरण साबले अब हर साल बाप्पा के लिए 50,000 से ज्यादा फेटे तैयार करवाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उन्हें देश विदेश से ऑर्डर आते हैं।
1: मैं गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ। मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ और मेरे पहले मैंने जो फेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है मेरे दोस्त लोग है तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए और मैंने 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र का फेटा केवल सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये मराठी अस्मिता इतिहास और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवंत चिन्ह है। मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्याभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बाप्पा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी महाराष्ट्र में भगवान गणेश को फेटा पहनाना मराठी संस्कृति में उन्हें अपने राजा अतिथि और परिवार का मुखिया मानने की गहरी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो बाप्पा को अब पोशाक के रंग के हिसाब से अलग अलग रंग का फेटा भी पहनाने का चलन है, लेकिन शुरुआत में बाप्पा को सिर्फ पीला या भगवा रंग का फेटा पहनाया जाता था, जिसका इतिहास महाराष्ट्र में सप्तवाहन राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं से होते हुए छत्रपति शिवाजी के शासन काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने गणेश जी को अपना कुल देवता माना था। पेशवाओं के दरबार में हर कोई पारंपरिक फेटा या पुणेरी पगड़ी पहनता था। जब वे अपने आराध्य बाप्पा की मूर्ति स्थापित करते थे तो उन्हें भी अपनी तरह ही शाही रेशमी फेटा पहनाते थे। यही ऐतिहासिक परंपरा आज भी सार्वजनिक और घरेलू गणेश उत्सव में जारी है। सदियों पुरानी इस गर्व भरी परंपरा को आज भी जिंदा रखे है किरण साबले जैसे हजारों फेटा मेकर, जो हर साल गणपति बाप्पा के लिए फेटा बनाते हैं। इसे पहनकर गजानन जब घरों में पधारते हैं तो माँ गौरी के लाल पर श्रद्धालु अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फेटा की ही तरह बप्पा के आसन की भी डिमांड खूब बढ़ गई है। मुंबई में दुकानों पर गणपति के लिए अलग अलग डिजाइन, थीम और रंगों के आसनों की बाढ़ आ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि घर पर बप्पा को विराजमान करवाने के लिए कौन कौन से आसन और सिंहासन का विकल्प है।

0: माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जरा सोचिए कैलाश पर कैसी शान से रहते होंगे वो गणपति देवा। बस भक्तों को चिंता इसी बात की रहती है कि जब गणपति अपने घर से हमारे घर आए तो उनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए, सजावट में भव्यता भरपूर हो और भोग में मोदक प्रचुर हो। सो बाजार पट गए हैं, बाप्पा के स्वागत के सामान से सज गए हैं। गणपति उत्सव की रौनक अब खूब दिख रही है, दिखनी भी चाहिए। अब गणेश चतुर्थी में दिन ही कितने बचे हैं। इधर शिवजी का प्रिय महीना खत्म होगा और उधर शिव पुत्र के पधारने की घड़ी आ पहुंचेगी। उससे पहले गणपति की प्रतिमा, आसन, पूजा की थाली, झांकी सजाने का सामान, जाने क्या क्या लेना है, सुकाम चालू आ है। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली की, जहां मौजूद सहेली वर्कशॉप में गणेशोत्सव से जुड़ा सामान तैयार हो चुका है।
1: लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बाप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। अब जिनका आसन स्वयं माँ गौरी की गोद हो उनके लिए आसन चुनना आसान भी तो नहीं, लेकिन गौरी नंदन के विराजने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन के आसन यहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वॉटरफॉल आसन भी यहाँ तैयार किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वाला आसन, महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भी भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाबा के लिए इसी आसन को चुन रहे हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: हर साल बाप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बाप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बाप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस वर्कशॉप से लोग रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से अपनी कल्पना के आधार पर बाप्पा के लिए मनपसंद आसन तैयार कर सकते हैं।
1: यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप की जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकलेबल आइटम
1: है, इको फ्रेंडली है, सारे
2: इको ये पुट्टा फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रो मटर चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर्स चाहिए, कि देख जाओ उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल जाएगा। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ रो मटर मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देख रहे फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है जो पूरा वेल्स लगाए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
1: लाइटिंग्स
2: मिलेंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबाग के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: वैसे लोग यहाँ से सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे बल्कि पापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जगमगाती लाइट्स, मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स भी खरीद रहे हैं।
3: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
4: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है, उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा, ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
5: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: खास बात ये भी है कि यहाँ मिलने वाला ज्यादातर सामान भी इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी की प्रतिमा की तरह अंत में ये भी मिट्टी या पानी में घुल मिल जाएगा, मतलब पर्यावरण को यहाँ भी कोई नुकसान नहीं। कुछ ही दिनों बाद लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। ऐसे रंग बिरंगे सुंदर आसन पर बापा विराजेंगे और उस भव्य झांकी के चारों ओर बापा के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: किसी के लिए परेशानी लेकर आती है तो किसी के लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप दिखा जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती बूंदों ने सूखी वादियों को फिर से जिंदा कर दिया है। पहाड़ हरे रंग की चादर ओढ़ चुके हैं और महीनों से खामोश पड़े झरने अब पूरे जोश के साथ गूंज रहे हैं। नजारा ऐसा जिसे देखकर हर कोई कुछ पल ठहर जाना चाहता है।
3: ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि मॉनसून की मेहरबानी का है। पहाड़ों से दूध की तरह गिरता पानी, चारों ओर बिछी हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच कुदरती सुंदरता। महाराष्ट्र के जालना जिले का धावड़ा इलाका इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद यहां का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान के अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों से फूटते झरनों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। सिलिसेड और आसपास हुई अच्छी बारिश के बाद मशहूर गरबाजी वाटरफॉल इस सीजन में पहली बार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पानी की तेज धार और हरियाली से घिरी पहाड़ियां लोगों का मन मोह रही हैं। बारिश का ये पानी सिर्फ झरनों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि खेतों में भी नई उम्मीद जगा रहा है। खरीफ की फसल के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मानसून एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बारिश मेहरबान होती है तो सूखे पहाड़ भी जिंदा हो उठते हैं। झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और ठंडी हवाएं, यही है मानसून का वो जादू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जालना से गौरव विजय और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत चेन्नई में खास कार्यक्रम। इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। देखिए सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है, देश भर से कांवड़ यात्रा की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आस्था के अलग अलग रंग दिखा रही हैं। कहीं पर प्रेम मन्नत बनकर कंधों पर सवार है, तो कहीं पर कठिन तपस्या श्रद्धा की नई मिसाल बन रही है, तो कहीं पर भव्य और अनोखी कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महादेव के प्रति समर्पण का यही भाव करोड़ों शिव भक्तों को लंबी यात्रा की ताकत दे रहा है।
3: आदि अनंत फिर भी अनगिनत रूप हैं शिव के। वो साधक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं और इसके साथ ही प्रेमी हैं और गृहस्थ भी। सोचिए तो ये बात निराली है कि जो खुद कैलाश पर धुनी रमाए बैठे हैं, वो मनचाहे जीवन साथी और शादी के लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि शादी विवाह में बाधा सावन में शिव की आराधना से दूर हो जाती है और इसी भरोसे, इसी उम्मीद पर ये जोड़ा निकल पड़ा है कांवड़ यात्रा पर। कहते हैं कि भोले बस भावना देखते हैं, सच्चे मन से चाहे जो मांग लीजिए मिल जाता है।
5: विनम्र निवेदन है, कृपया अपनी कांवड़ इस बिजली घर के पास हटा लें।
3: इस जोड़े की ख्वाहिश बस इतनी है कि इनका विवाह हो जाए। इनका प्रेम सच्चा है, इसका प्रमाण देने के लिए दोनों ने एक साथ कांवड़ उठाई, विवाह के लिए मन्नत मांगी और बोल बम का जयकारा लगाते हुए हरिद्वार पहुंच गए।
6: किस तरह की कांवड़ है, क्या मन्नत है आपकी? कांवड़
7: यही मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए।
6: आप कितने घंटे चल रहे रोजाना एक साथ कांवड़ लेके चल रहे, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं?
7: 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल लिए, 15 किलोमीटर चल लिए, ऐसे चल रहे हैं। छोटे वाला भाई आया, दीदी आई है साथ में, ऐसे वो सब लोग पीछे, हम लोग आ गए हैं।
6: आपने जल उठाया था?
7: हमने 28 तारीख को उठाया था।
6: रोजाना कितना चल रहे हो?
7: 15 या 20।
6: तो क्या कहना चाहेंगे भोले बाबा से?
7: यही कहना चाहूंगी बस शादी हो जाए दोनों की।
3: हरिद्वार से गंगा जल उठाने के बाद कांवड़ का वजन ज्यादा हो गया तो दोस्तों ने भी कंधा लगा दिया। 111 लीटर गंगा जल के साथ रोज करीब 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए मयंक और दीपिका बुलंदशहर पहुंचने ही वाले हैं। इनका प्रेम गहरा है लेकिन शादी के लिए अभी घर वालों की मंजूरी नहीं मिली है, पर महादेव पर विश्वास है और इसीलिए आस है कि बात बन जाएगी। महादेव की कृपा से सभी की सहमति मिल जाएगी।
8: ये हमारी मन्नत की कांवड़ है।
6: किस तरह की मन्नत?
8: जी मन्नत मांगे कि हाँ हम दोनों की शादी हो जाए।
6: कैसे मुलाकात हुई आपकी, कितने साल पहले मुलाकात हुई?
8: जी 1 साल होने वाली है।
6: हाँ।
8: तो जब भी मुलाकात हुई, कहने का मतलब ये है कि बुलंदशहर में पहली बार गया शादी में, जब मुलाकात सी होगी जी। कांवड़ लाने के तो विचार हमारा पहले से हुआ और हमने बाद में विचार बनाया कि डीजे फीजे हर चीज़ लेके चलेंगे, तो हमारा सारा ग्रुप भी है, बहुत बालक हैं, आधे कुछ पीछे हैं, कुछ आधे हैं, सारे गैल में हैं। तो हमारी मन्नत यही कि दोनों जने हम कांवर घर तक अपने मंदिर पर चढ़ा देंगे।
3: एक साथ भारी भरकम कांवड़ उठाए इस जोड़े को देखकर लोग भी दंग हैं, पर खुशी भी है क्योंकि ईश्वर से प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। मयंक और दीपिका ने भी अपने प्रेम को भक्ति से जोड़ दिया। दोनों ने कांवड़ उठाकर कठिन परीक्षा दी, अब परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है। वैसे तो भोले की कृपा एक लोटा जल से ही मिल जाती है, लेकिन अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भक्त कड़ी तपस्या करते हैं। हाथों के बल कांवड़ यात्रा पर निकले राजकुमार ऐसी ही तपस्या की एक मिसाल है। बिच्छू के आकार में, दोनों पैर हवा में और हाथ के पंजों से आगे बढ़ते हुए राजकुमार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और नतमस्तक भी होते हैं।
9: हम पिछले 2 साल से भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, काड़ोशी अम्बा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जैन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिछुबम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल 1 महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है। थोड़ा इस साल पीछे चल रहे हैं, जो कि पिछले साल हमारे भैया चल रहे थे साथ में और इस साल हम अकेले चल रहे, जो कि पीछे में साइकिल है तो साइकिल लेकर हमको चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी हो रहा है। और आप बोले जो कैसे मन में आया, ये तो हम जब बागेश्वर धाम गए थे तो पहले हम बागेश्वर धाम गए तो फिर हमें एक अलग शक्ति मिला हमें, तो फिर लगा जो नहीं हम और जा सकते हैं, और दूर जा सकते हैं, और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लोगों के दर्शन करा सकते हैं, तो बस ऐसे करके चलते रहे। हमें तो ऐसे कोई कठिनाई दिक्कत नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लगभग चलते रहते, जब राम मंदिर उद्घाटन हुए थे तब भी हम जो है वो टर्निंग से मंदिर तक गए थे, बागेश्वर धाम जो टावर है टावर से बागेश्वर धाम तक गए थे ऐसे हाथ से चल के, तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा जगह जाते रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है।
3: बिच्छूबम बनकर राजकुमार ने जब पिछले साल पहली बार यात्रा की थी तो पूरे 1 महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस साल सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा में उनकी रफ्तार अच्छी है। एक बार में राजकुमार 60 से 70 फीट चलते हैं, थोड़ी देर ठहरते और फिर चलने लगते हैं। पिछले 2 साल में 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम और 21 शक्ति पीठों का दर्शन कर चुके हैं राजकुमार। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बिच्छूबम के तौर पर काफी चर्चा में है। चर्चा धनबाद के अजय विश्वकर्मा की भी हो रही है और उसकी वजह है उनकी डमरू के आकार वाली कावड़, जिसे देखने के लिए दूसरे कावड़िये ठहर जाते हैं। लकड़ी और फाइबर से बना ये विशाल काय कावड़ भव्य है लेकिन वजनदार है। हाँ, जब लोग इसकी सराहना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोल बम का जयकारा लगाते हैं तो अजय विश्वकर्मा को परम आनंद मिलता है।
10: बाबा का डमरू है, ये भगवान गणेश और जो पहली बार पद यात्रा में भगवान श्री राम, ये छवि है।
11: क्या चीज से बनाए?
10: ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है।
11: वजन तो वेट नहीं की, लेकिन एक अंदाज बता सकता हूँ, ये 15 केजी से ऊपर है, 18 केजी लमसम है।
10: ये खुद से बनाया है, इसकी कोई लागत कोई आंख नहीं जा सकता है।
11: आप इसको खुद से?
10: खुद से, और ये हर एक साल कुछ न कुछ यूनिक।
3: शिव भक्तों की जो भीड़ हर दिन बाबा धाम जा रही है उसमें आस्था और भक्ति की अनगिनत चमकीली तस्वीरें हैं। पर चांदी की इस कावड़ की तो बात ही निराली है। पटना सिटी से विशाल शिवधारी कावड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट के इस कावड़ को लेकर देवघर के लिए निकला है। खूबी ये है कि कावड़ 54 फीट लंबी है और इसमें 54 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है, साथ ही ज्योतिर्लिंग और मां दुर्गा काली की प्रतिमाएं भी हैं।
12: इसमें अलग यही है कि चांदी की 54 किलो चांदी का है, इसलिए ये सब लोग का श्रद्धा के अनुसार पूरा ये कावर गई है, वो श्रद्धा के अनुसार 54 किलो चांदी सब लोग सहयोग से ये प्रारंभ हुआ और ये आगे भी विकसित होगा। कुछ सोना के भी लगने वाली है, सोना से जितना श्रद्धा बनेगा लोग का उतना ही आगे बढ़ते रहेगा कावर में, और तरह तरह की चीज उसमें गाड़ी की होती है। हाँ, ज्योतिर्लिंग है, बड़ी माँ है, दुर्गा माँ है, काली माता है, सब लोग है उसमें।
3: बैद्यनाथ धाम में दोनों मंदिरों के बीच 54 फीट की दूरी है और इसीलिए 54 फीट की कावड़ और यात्रा भी 54 घंटे में पूरी की जानी है। नंगे पांव केसरिया वस्त्र, सर पर रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए श्रद्धालुओं की टोली कावड़ मार्ग पर शिव भक्ति का दिव्य रंग घोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कांवड़ यात्रा अब सिर्फ गंगाजल लाने की परंपरा नहीं रही बल्कि संस्कार, सेवा और समर्पण का महापर्व बन चुकी है। कहीं नन्हे शिवभक्त अपनी आस्था से प्रेरित कर रहे हैं, कहीं पर परिवार रिश्तों की नई मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच व्यवस्था और भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। देश भर से सामने आ रहे ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य बता रहे हैं कि महादेव की भक्ति हर उम्र हर रूप में जीवंत है। रिपोर्ट देखिए।
13: ये घुंघरू किसी कलाकार के पैरों की पहचान नहीं है बल्कि शिव भक्ति की आवाज है। छोटे छोटे कदम, पैरों में बंधे घुंघरू, कंधों पर कांवड़ और होठों पर महादेव का नाम। प्रयागराज के दशाश्वमेघ घाट पर पहुंची ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बनारस से आए ये छात्र 7वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज से गंगा जल लेकर अपने शहर लौट रहे हैं। इनके पैरों में घुंघरू इसलिए बंधे हैं ताकि चलते समय लगातार आवाज आती रहे और रास्ते में कोई अनजाने ही उनकी कांवड़ से न टकराए। साथ ही उनके साथी भी एक दूसरे की मौजूदगी आसानी से समझ सके। ये बच्चे पिछले 4 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं और इस बार 5वीं बार इस यात्रा पर निकले हैं। उनकी कामना है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, पढ़ाई में सफलता मिले और महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे।
14: सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ जो है प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंच रहे हैं। हर कांवड़ियों के अपने रूप है, रंग है और हर किसी का संकल्प भी अलग है। प्रयागराज का एक ऐसा ही ग्रुप है जो पायल पहनकर पैरों में कांवड़ लेकर चल पड़ा है। उसके पीछे ऐसा है कि वो जिन रास्तों से गुजरे उनके लोगों के बीच में आने वाले लोग उनके कांवड़ को खंडित न करे, लिहाजा पैर में उन्होंने पायल पहना है। और ये काशी के रहने वाले हैं, ये प्रयागराज का जल भरकर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करेंगे, लिहाजा प्रयागराज में ये ग्रुप पहुंचा है।
15: मेरा नाम है अमन, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और कांवड़ उतार रहा हूँ। मैं 4 साल मेरा कांवड़ हो गया और मेरा गाय काशी में।
16: पायल क्यों पहना?
15: पायल इसलिए पहना कि
16: कांवड़
15: खंडित ना हो।
16: किस क्लास में पढ़ते हो, कांवड़ क्यों उठाया?
15: मेरा नाम प्रियांशु सरोज है, मैं काशी से रहने वाला हूँ। मैंने कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे।
17: युवराज कुमार नाम है मेरा, मैं काशी का रहने वाला हूँ। कांवड़ ये मेरा 3रा साल है।
13: उधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में पहुंच चुकी है। हर की पैड़ी, मालवी द्वीप, शिव सेतु और राष्ट्रीय राजमार्ग हर ओर सिर्फ भगवा रंग दिखाई दे रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। बोलबम, हर हर महादेव के जय घोष पूरे वातावरण को शिवमय बना रहे हैं। अंदाजा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक शिवभक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पंचक समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में

0: तो कभी पोता बारी बारी से कांवड़ उठाकर माँ को आगे ले जा रहे हैं।
1: श्रवण कुमार कांवड़ बोलते हैं इसको, और माँ बाप से प्यार था, 4-5 साल से आया नहीं था माँ बाप के मम्मी के कारण। एक्चुअली पापा थोड़ा घर पे कोई है नहीं इसलिए पापा रह गए नहीं, तो दोनों को लाने का मन था, तो माँ बाप का प्यार था इसलिए मैं माँ को लेके आ गया।
2: तो अभी कौन कौन कांवड़ी उठा करके ले
1: गया? अभी मैं हूँ, वाइफ है और अपना भतीजा है और भाभी भी है और एक वो अपना भांजा है।
2: कैसा लग?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, भोले बाबा की कृपा है, चल रहे हैं ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं।
0: परिवार इस यात्रा को श्रवण कुमार कांवड़ कहता है। कई वर्षों बाद उन्हें कांवड़ लाने का अवसर मिला, इसलिए इस बार उन्होंने अपनी माँ को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा में माता जी भी बेटे बहू के स्नेह से बेहद खुश हैं।
1: जितने भी है आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने देखा है आजकल नेट पे देखता हूँ बहुत गलत गलत हो रहा है, तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करोगे इतने ही जन्नत में जाओगे, बड़ा प्यार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, माँ बाप से प्यार है वो करते रहो।
0: हरियाणा के रवि और उनकी पत्नी निशु हरिद्वार से करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ का एक सिरा पति के कंधे पर है, दूसरा पत्नी के कंधे पर, दोनों मिलकर गंगाजल अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उससे अपने बुजुर्ग सास ससुर को स्नान करा सकें। परिवार की जिम्मेदारी केवल बेटे की नहीं होती, बहू भी उसी प्रेम और सम्मान के साथ उसे निभा सकती है।
3: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हरिद्वार से चंडीगढ़ लेके जाना है, बहुत अच्छा लग
2: रहा
3: है। कैसे विचार आया आपको? ये बस हस्बैंड सोचते हैं, हम सोचने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो तो थोड़ा नॉर्मल है, चलता रहता है, पर इतना नहीं है।
2: सासू जी क्या कह रही
3: है? सासू जी भी अच्छा बोल रही है, ये अच्छी बात है, कह रही है अच्छी बात है, लेके जा रहे हैं।
0: जब तक माता पिता चलने फिरने में सक्षम हैं, तब तक वो हर साल गंगा जल लाकर उनका अभिषेक कराएंगे। राजकुमार का आगे चलकर उन्हें श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराने का भी सपना है। कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से सामाजिक सौहार्द की भी एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और जेलुम का जुलूस एक ही मार्ग के करीब 170 मीटर हिस्से से गुजरना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से विस्तृत तैयारी की है। रास्ते के बीच करीब 10 फीट ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं ताकि दोनों आयोजन अपने अपने मार्ग से शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकें। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।
4: जो शहर में एक 170 मीटर का भाग है हनुमान चौक के बाद, वहाँ पे कांवड़ और चेहल्लुम दोनों एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलने के लिए जितने हमारे स्टेक होल्डर है सबसे बातचीत हो गई है, जितने हमारे फिजिकल अरेंजमेंट्स हो गए सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट हो गया, और मात्र 170 मीटर का वो मार्ग है जिसपे स्थलीय निरीक्षण डीएम साहब द्वारा, एसएसपी साहब द्वारा, हम सभी द्वारा कर लिया गया है, और सकुशल इन दोनों जुलूसों को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध।
0: कहीं घुंघरुओं के छमछम में शिवभक्ति सुनाई देती है, कहीं बेटे बहू के कंधों पर माँ के प्रति सम्मान दिखाई देता है, कहीं एक बहू रिश्तों की जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा का नया उदाहरण पेश कर रही है। भक्ति और भावना के ये इंद्रधनुषी रंग ही कांवड़ यात्रा को भव्य बनाते हैं। प्रयागराज से आनंद राज, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। मंदिर, घाट, सड़क और रेलवे स्टेशन पर हर हर महादेव और बोलभम के जयघोष हैं। लाखों शिव भक्त अपने संकल्प के साथ बाबा के दरबार की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आस्था, अनुशासन और उत्साह की अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर केसरिया समंदर लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
6: कंधे पर कांवड़, दिल में देवाधिदेव भोलेनाथ और जुबान पर हर हर महादेव। शिव भक्तों का ऐसा जमघट शायद ही किसी स्टेशन पर दिखे, और उसकी वजह भी है। जिन कांवड़ियों को यूपी या देश के दूसरे हिस्सों से बिहार के भागलपुर जाना है, उनकी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से मिलती है। रेलवे के मैप पर डीडीयू यूपी और बिहार के दरमियान

0: है जहां से पूरे सावन कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। हैरत की बात नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है, जिसको नियंत्रित करने और कांवड़ियों को सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संभाल रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हजारों की तादाद में शिवभक्त पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं।
1: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के वैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है, ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप?
2: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
1: कहां से आए हैं आप?
2: रायबरेली से।
1: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
2: बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहाँ जल भरे हैं जो है कि यहाँ पर दर्शन किए हैं अपना। अब यहाँ से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा वैद्यनाथ धाम।
1: कितनी आस्था है बाबा में?
2: बहुत बड़ी आस्था है जो है। हम लोग सावन आने का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया, वो शुभ घड़ी आई, वो पर्व आया। आज जो है इतना सारा मेला में सम्मिलित होने का उपलक्ष्य मिला, वो मौका मिला, ऐसा सब अवसर आया।
1: देखा जा सकता है कितना उत्साह है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
3: भीम शंकर।
1: क्या कहना है आपका?
3: बहुत बढ़िया,
1: अच्छा लगता है बाबा धाम जाना।
3: बहुत, बहुत।
1: आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप?
3: रायबरेली से।
1: आप भी रायबरेली से हैं, तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
3: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
1: पहली बार जा रहे हैं?
3: हाँ भैया।
1: कैसा लग रहा है, कितना उत्साह?
3: बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपका क्या नाम है?
4: सुनील कुमार।
1: आप बताइए आप कब से जा रहे हैं और कितना उत्साह है?
4: पहली बार जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया जा रहे हैं।
1: पैदल चल लेंगे 120 किलोमीटर?
4: हाँ पैदल चल लेंगे, बाबा की इच्छा होगी तो।
0: सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही न सिर्फ DDU बल्कि इसके आगे बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी तादाद ट्रेनों के जरिए भागलपुर पहुंचती है और वहां से गंगा जल लेकर देवघर जाती है। इसीलिए यूपी से बिहार तक की ज्यादातर ट्रेनों में बोल बम का जय घोष है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो जैसे शिवमय हो चुका है।
1: ये तमाम उत्साह से लबरेज श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए कांवरिए हैं। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिए ही कांवरिए दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से भगवामय हो गया है और ये कांवरिए यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठाएंगे और जल उठाने के बाद ये तमाम कांवरिए जो है वो वैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ पैदल कूच करेंगे और वहां जाने के बाद लोग जलाभिषेक करेंगे। एक और श्रद्धालु हैं, कहां से आए हैं आप?
5: प्रकल्डिया से।
1: ये बताइए, इधर आ जाइएगा कि क्या कहना है आपका, कब से जा रहे हैं आप?
5: हम तो 20 साल से जा रहे हैं।
1: कैसा लगता है?
5: अच्छा लगता है।
1: अब हमें भक्ति है,
5: पूरी भक्ति है, पूरी मनोकामना पूर्ण होती है,
1: पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहना है इन श्रद्धालुओं का। श्रद्धा और भक्ति का लगातार जमावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देखा जा रहा है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है, लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं, इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर।

देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की हमारे देश में और हमारे दिलों में त्योहारों और उत्सवों का एक विशेष स्थान है। ये पर्व हमारे सांस्कृतिक धरातल को समृद्ध करते हैं। अभी सावन पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भक्ति का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। सावन के बादलों की ओट से जब भादों का महीना निकलेगा तो महादेव के लाडले यानी गजानन घर घर पधारेंगे। देखिए महीना महादेव का है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की भक्ति का सावन जो है वो बरस रहा है। अब से साल 14 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से लगातार चल रही हैं। धुरा कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आ रहे हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। उधर देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां पर अलग अलग शहरों में बप्पा की मूर्तियां आकार ले रही हैं। श्रद्धा से भरे मूर्तिकार अपने हुनर से तैयार प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था, अब इनमें रंग भरने और इनमें सजाने का काम लगातार जारी है। हर साल मुंबई समेत देश भर में हजारों गणेश पंडाल लगते हैं। इन पंडाल के साथ घरों में भी बप्पा की मूर्तियां भक्त स्थापित करते हैं। चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि अब की बार बप्पा की कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।

0: देवों में वे प्रथम पूज्य। कहलाते गणराज। चरण पड़े लंबोदर के तभी सफल हूँ काज। कहते हैं संसार में किसी कार्य का शुभारंभ हो नहीं सकता जब तक इनके चरण न पड़े। तो फिर यहाँ तो बात स्वयं मंगल मूर्ति के उत्सव के शुभारंभ की है। गणपति उत्सव दस्तक दे रहा है, सो कारीगरों ने शहर शहर बाप्पा की मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। अब की बार ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां बननी है, सो हफ्तों पहले से कारीगर मंगल मूर्ति का स्वरूप गढ़ने और सजाने में जुटे हैं। ये तस्वीर है नागपुर की मशहूर चितारोली की। नागपुर के इस कोने में कहीं बाप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है।
1: करीबन पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का कि जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आंख बनाते हैं, देखो आंख जो है गणपति की, उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब जो है बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं है बल्कि देश के बाकी हिस्सों और विदेशों तक भी है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं।
2: हमारे यहाँ ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
3: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और कब?
2: ये लोग जून महीने में देते ऑर्डर। जून
3: कब बना के देते आप?
2: हम लोग तारीख रहते उनके, जब जाने के फ्लाइट के रहते ना, जब वो तारीख देके जाले चले जाते हम लोगों को, 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: बाप्पा की एक से एक प्रतिमाएं यहाँ तैयार हो रही हैं। कहीं गणपति के माथे पर खाटू के श्याम बाबा की छवि उकेरी गई है तो कहीं गजानन के शीश पर उनके पिता महादेव महाकाल स्वरूप में विराजमान दिख रहे हैं तो कहीं वक्र तुंड की सूंड पर प्यारे से बाल गोपाल विराजे हैं। कलाकार बता रहे हैं कि अब की बार इसी तरह की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। यही वजह है कि डिमांड भी ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु अपनी कल्पना के आधार पर तो कई दो हाथ आगे बढ़कर AI के जरिए बापा की अलग छवि बनवाना चाहते हैं और मूर्तिकार उसी को आधार बनाकर दिन रात भक्तों की कल्पना वाले बापा को साकार रूप देने में जुटे हैं।
4: अभी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए, तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है, तो श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं, उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रहे हैं और अभी जैसे यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है ये डिमांड मोबाइल के द्वारा, तो जैसे कुछ AI से बना के ला रहे हैं, जैसे अभी श्री कृष्ण जी तो आपने देखे बड़ी मूर्ति में गणपति बाप्पा के, इसमें सुंड पे छोटे से बाल श्री कृष्ण बैठा लिया है, उसके खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से डिमांड भी आ रही है, कुछ हमारे मन में जो कल्पना है तो वो भी हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं।
0: लेकिन इस बार बाप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच चर्चा महंगाई की भी हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। सो बात सीधी है कि गणेश जी को घर लाना है तो लक्ष्मी जी का मोह कुछ कम करना होगा।
5: देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। हालांकि 14 सितंबर को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बाप्पा सार्वजनिक पंडाल और घरों में विराजमान हो गए, उससे पहले नागपुर में कारागिर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके हैं।
0: महंगाई बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन बापा के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी तो बढ़ गई। हर साल की तरह ही इस बार भी भक्तों की आस्था अटूट है। अभी से अपनी पसंद की मूर्तियां बुक कराने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
6: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
0: यानी नागपुर वाले पूरी तरह तैयार हैं बापा के स्वागत के लिए, लेकिन तैयारी अमरावती में भी कम नहीं। अमरावती की इस आर्ट वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। मूर्ति स्वयं मंगल मूर्ति की है, विघ्नहर्ता की है, सो विघ्न का सवाल नहीं। मजाल है कि ध्यान भी भटक जाए, सब कुछ भूलकर बस पापा को बनाने और सजाने का काम चल रहा है। हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग, ये काम में जुटे इन कलाकारों का वर्षों का अभ्यास है, हफ्तों की मेहनत है, उम्र भर की साधना है।
7: देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट में, जहाँ पर की मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी और देश के बाहर भी इन प्रतिमाओं की बहुत बड़ी और ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की प्रतिमाएं जो है वो ऐसा लगता है कि स्वयं गणपति बाप्पा जो है हमारे सामने विराजमान हुए हैं। और इसीलिए ये कार्यशाला जो है वो कई सालों से जो है सुंदर इको फ्रेंडली, सबसे अहम बात है कि इको फ्रेंडली ये प्रतिमाएं हैं।
0: अमरावती के जिराफे आर्ट वर्कशॉप में हर बार की तरह आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गणपति बाप्पा की आस्था के बीच प्रकृति माँ को भुलाया नहीं गया है, इसलिए यहाँ खास इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं। छोटी और आकर्षक ये प्रतिमाएं खास तौर पर घरों में स्थापना के लिए बनाई जा रही हैं।
8: एक तो अभी मिट्टी के गणपति का डिमांड बहुत ज्यादा है, हम लोग मैक्सिमम मिट्टी के गणपति बनाते हैं। पीओपी के हम अभी रखना बंद कर दिए 5 साल से। अपने यहाँ से जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, उधर हैदराबाद, धुले, इतनी जगह तो जाती है।
0: हर प्रतिमा को गढ़ने में धरती की गोद से मिली मिट्टी, कुछ प्राकृतिक रंग, ढेर सारी मेहनत और अनंत भावनाएं, यही है बापा की प्रतिमा को सबसे सुंदर और मनमोहक बनाने का फॉर्मूला, जिसे इन कलाकारों ने पूरी तरह साध लिया है। और जब इनके हाथों से गुजरकर बापा इस स्वरूप में भक्तों के घर विराजेंगे, तो उनके साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी हर घर तक पहुंचेगा। प्रकृति के संरक्षण वाले इस मिशन ने गणेश उत्सव को श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव भी बना दिया है। बस अब इंतजार गणेश उत्सव के श्री गणेश का है।
7: हर किसी को अब बाप्पा को, अपने लाडले को, अपने विघ्नहर्ता को, अपने गजानन को अपने घर कब ले जाओगे, इसकी जो है होड़ यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में हम भी कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, हमारे घर में तुम जल्दी आओ, यही अब हर किसी लाडले बाप्पा के, भक्त के मन में यहाँ पर हलचल चल रही है। धनंजय साबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे।
9: ये तो थी बात बप्पा की मूर्तियों की, लेकिन इन प्रतिमाओं के अलावा गणपति को सजाने वाली तमाम चीजें भी अब बाजारों में पहुंचने लगी हैं। इनमें सबसे खास है बप्पा का फेटा। फेटा महाराष्ट्र की खास पगड़ी होती है। आखिर क्यों बप्पा को ये पगड़ी पहनाई जाती है, क्या है फेटा का इतिहास और क्यों आज महाराष्ट्र के सैकड़ों के फेटा मेकर बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कर रहे हैं।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, टेढ़ी सूंड विशाल काया और करोड़ों सूर्यों के समान तेज, गजानन की दिव्य काया का बखान कुछ यूं मिलता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये काया कुछ और सजीली, कुछ और दिव्य, कुछ और भव्य हो जाती है गणेश उत्सव के 10 दिनों में। जब देश भर में मंदिर मंदिर, पंडाल पंडाल और घर घर में गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें बेहद प्रेम आस्था और मनुहार के साथ तैयार किया जाता है, और इसी तैयारी का हिस्सा है गणपति बाप्पा की पगड़ी। बाप्पा के मस्तक की ये पगड़ी कुछ और खिल उठती है महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर, जहां इसे मराठी अंदाज में बाप्पा को पहनाया जाता है। इस मराठी पगड़ी को फेटा कहते हैं। जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हुनर रखने वाले कारीगर इस समय बाप्पा की मूर्ति, वस्त्र, गहने और पंडाल का सामान बनाने में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही पुणे के किरण साबले इन दिनों बाप्पा के लिए फेटा यानी मराठी पगड़ी बनाने में जोर शोर से जुटे हैं। के नारायण गांव में फेटा मेकर किरण सावले अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के लिए फेटा बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव से पहले उनके पास बड़ी संख्या में बाप्पा का फेटा बनाने के ऑर्डर आए हैं।
1: प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे। फेटा बनाने के लिए मेरी पूरी फैमिली इसमें मेरे को मदद करती है और खूब सारे फेटे हम इस साल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कभी साल भर में 1000 फेटे बनाने वाले किरण साबले अब हर साल बाप्पा के लिए 50,000 से ज्यादा फेटे तैयार करवाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उन्हें देश विदेश से ऑर्डर आते हैं।
1: मैं गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ। मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ और मेरे पहले मैंने जो फेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए और मैंने 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र का फेटा केवल सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये मराठी अस्मिता, इतिहास और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवंत चिन्ह है। मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्याभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बाप्पा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी महाराष्ट्र में भगवान गणेश को फेटा पहनाना मराठी संस्कृति में उन्हें अपने राजा, अतिथि और परिवार का मुखिया मानने की गहरी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो बाप्पा को अब पोशाक के रंग के हिसाब से अलग अलग रंग का फेटा भी पहनाने का चलन है, लेकिन शुरुआत में बाप्पा को सिर्फ पीला या भगवा रंग का फेटा पहनाया जाता था, जिसका इतिहास महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं से होते हुए छत्रपति शिवाजी के शासन काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने गणेश जी को अपना कुल देवता माना था। पेशवाओं के दरबार में हर कोई पारंपरिक फेटा या पुणेरी पगड़ी पहनता था। जब वे अपने आराध्य बाप्पा की मूर्ति स्थापित करते थे तो उन्हें भी अपनी तरह ही शाही रेशमी फेटा पहनाते थे। यही ऐतिहासिक परंपरा आज भी सार्वजनिक और घरेलू गणेश उत्सव में जारी है। सदियों पुरानी इस गर्व भरी परंपरा को आज भी जिंदा रखे है किरण साबले जैसे हजारों फेटा मेकर, जो हर साल गणपति बाप्पा के लिए फेटा बनाते हैं। इसे पहनकर गजानन जब घरों में पधारते हैं तो माँ गौरी के लाल पर श्रद्धालु अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फेटा की ही तरह बप्पा के आसन की भी डिमांड खूब बढ़ गई है। मुंबई में दुकानों पर गणपति के लिए अलग अलग डिजाइन, थीम और रंगों के आसनों की बाढ़ आ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि घर पर बप्पा को विराजमान करवाने के लिए कौन कौन से आसन और सिंहासन का विकल्प है।

0: माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जरा सोचिए कैलाश पर कैसी शान से रहते होंगे वो गणपति देवा। बस भक्तों को चिंता इसी बात की रहती है कि जब गणपति अपने घर से हमारे घर आए तो उनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए, सजावट में भव्यता भरपूर हो और भोग में मोदक प्रचुर हो। सो बाजार पट गए हैं, बाप्पा के स्वागत के सामान से सज गए हैं। गणपति उत्सव की रौनक अब खूब दिख रही है, दिखनी भी चाहिए। अब गणेश चतुर्थी में दिन ही कितने बचे हैं। इधर शिव जी का प्रिय महीना खत्म होगा और उधर शिव पुत्र के पधारने की घड़ी आ पहुंचेगी। उससे पहले गणपति की प्रतिमा, आसन, पूजा की थाली, झांकी सजाने का सामान, जाने क्या क्या लेना है, सुकाम चालू आ है। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली की, जहां मौजूद सहेली वर्कशॉप में गणेशोत्सव से जुड़ा सामान तैयार हो चुका है।
1: लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बाप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। अब जिनका आसन स्वयं माँ गौरी की गोद हो, उनके लिए आसन चुनना आसान भी तो नहीं। लेकिन गौरी नंदन के विराजने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन के आसन यहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन भी यहाँ तैयार किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वाला आसन, महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भी भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साई रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाबा के लिए इसी आसन को चुन रहे हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: हर साल बाप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बाप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बाप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस वर्कशॉप से लोग रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से अपनी कल्पना के आधार पर बाप्पा के लिए मनपसंद आसन तैयार कर सकते हैं।
1: यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप किए जो रिसाइकल नहीं है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकल आइटम
1: इको फ्रेंडली है, सारे
2: फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रोम चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर्स चाहिए, कि देख वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ रोम मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देख सकते फ्लावर्स में जो है फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगा है वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
1: अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबा के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: वैसे लोग यहाँ से सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जगमगाती लाइट्स, मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स भी खरीद रहे हैं।
3: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
4: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है, उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा, ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
5: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: खास बात ये भी है कि यहाँ मिलने वाला ज्यादातर सामान भी इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी की प्रतिमा की तरह अंत में ये भी मिट्टी या पानी में घुल मिल जाएगा, मतलब पर्यावरण को यहाँ भी कोई नुकसान नहीं। कुछ ही दिनों बाद लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। ऐसे रंग बिरंगे सुंदर आसन पर बापा विराजेंगे और उस भव्य झांकी के चारों ओर बापा के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बारिश किसी के लिए परेशानी लेकर आती है तो किसी के लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप देखा जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती बूंदों ने सूखी वादियों को फिर से जिंदा कर दिया है। पहाड़ हरे रंग की चादर ओढ़ चुके हैं और महीनों से खामोश पड़े झरने अब पूरे जोश के साथ गूंज रहे हैं। नजारा ऐसा जिसे देखकर हर कोई कुछ पल ठहर जाना चाहता है।
3: ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि मॉनसून की मेहरबानी का है। पहाड़ों से दूध की तरह गिरता पानी, चारों ओर बिछी हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच कुदरती सुंदरता। महाराष्ट्र के जालना जिले का धावड़ा इलाका इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद यहां का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान के अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों से फूटते झरनों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। सिलिसेड और आसपास हुई अच्छी बारिश के बाद मशहूर गरवाजी वाटरफॉल इस सीजन में पहली बार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पानी की तेज धार और हरियाली से घिरी पहाड़ियां लोगों का मन मोह रही हैं। बारिश का ये पानी सिर्फ झरनों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि खेतों में भी नई उम्मीद जगा रहा है। खरीफ की फसल के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मानसून एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बारिश मेहरबान होती है तो सूखे पहाड़ भी जिंदा हो उठते हैं। झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और ठंडी हवाएं, यही है मानसून का वो जादू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जालना से गौरव विजय और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम। इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। देखिए सावन में शिव भक्ति अपने चरम पर है, देश भर से कांवड़ यात्रा की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आस्था के अलग अलग रंग दिखा रही हैं। कहीं पर प्रेम मन्नत बनकर कंधों पर सवार है, तो कहीं पर कठिन तपस्या श्रद्धा की नई मिसाल बन रही है, तो कहीं पर भव्य और अनोखी कांवड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महादेव के प्रति समर्पण का यही भाव करोड़ों शिव भक्तों को लंबी यात्रा की ताकत दे रहा है।
3: आदि अनंत फिर भी अंगिनत रूप हैं शिव के। वो साधक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं और इसके साथ ही प्रेमी हैं और गृहस्थ भी। सोचिए तो ये बात निराली है कि जो खुद कैलाश पर धुनी रमाए बैठे हैं, वो मन चाहे जीवन साथी और शादी के लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि शादी विवाह में बाधा सावन में शिव की आराधना से दूर हो जाती है और इसी भरोसे, इसी उम्मीद पर ये जोड़ा निकल पड़ा है कांवड़ यात्रा पर। कहते हैं कि भोले बस भावना देखते हैं, सच्चे मन से चाहे जो मांग लीजिए मिल जाता है।
5: विनम्र निवेदन है, कृपया अपनी कांवड़ इस बिजली घर के पास।
3: इस जोड़े की ख्वाहिश बस इतनी है कि इनका विवाह हो जाए। इनका प्रेम सच्चा है, इसका प्रमाण देने के लिए दोनों ने एक साथ कावड़ उठाई, विवाह के लिए मन्नत मांगी और बोल बम का जयकारा लगाते हुए हरिद्वार पहुंच गए।
6: किस तरह की कावड़ है, क्या मन्नत है आपकी? कावड़
7: यही मन्नत है कि हम दोनों की शादी हो जाए।
6: आप कितने घंटे चल रहे रोजाना एक साथ कावड़ लेके चल रहे, कितने घंटे चलते हैं, कैसे चलते हैं?
7: 10-15 मिनट, मतलब 10 किलोमीटर चल रही, 15 किलोमीटर चल रही, ऐसे चल रहे। छोटा वाला भाई आया, दीदी आई है साथ में, ऐसे वो सब लोग पीछे, हम लोग आ गए हैं।
6: आपने जल उठाया था?
7: हमने 28 तारीख को उठाया था।
6: वो जाना कितना चल रहे हो?
7: 15 या 20।
6: तो क्या कहना चाहेंगे भोले बाबा से?
7: यही कहना चाहूंगी बस, शादी हो जाए दोनों की।
3: हरिद्वार से गंगा जल उठाने के बाद कावड़ का वजन ज्यादा हो गया तो दोस्तों ने भी कंधा लगा दिया। 111 लीटर गंगा जल के साथ रोज करीब 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए मयंक और दीपिका बुलंदशहर पहुंचने ही वाले हैं। इनका प्रेम गहरा है लेकिन शादी के लिए अभी घर वालों की मंजूरी नहीं मिली है, पर महादेव पर विश्वास है और इसीलिए आस है कि बात बन जाएगी। महादेव की कृपा से सभी की सहमति मिल जाएगी।
8: ये हमारी मन्नत की कावड़ है।
6: किस तरह की मन्नत?
8: जी मन्नत मांगे कि हाँ हम दोनों की शादी हो जाए।
6: कैसे मुलाकात हुई आपकी, कितने साल पहले मुलाकात हुई?
8: जी 1 साल होने वाली है।
6: हाँ।
8: तो जब ही मुलाकात हुई, कहने का मतलब ये है कि बुलंदशहर में पहली बार गया हूँ शादी में, जब मुलाकात सी होगी। जी कावड़ लाने के तो विचार हमारा पहले से हुआ और हमने बाद में विचार बनाया कि डीजे फीजे हर चीज लेके चलेंगे, तो हमारा सारा ग्रुप भी है, बहुत बालक है, आधे कुछ पीछे हैं, कुछ आधे हैं, सारे गैल में हैं। तो हमारी मन्नत यही कि दोनों जने हम कावर घर तक अपने मंदिर पर चढ़ा देंगे।
3: एक साथ भारी भरकम कावड़ उठाए इस जोड़े को देखकर लोग भी दंग है, पर खुशी भी है क्योंकि ईश्वर से प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। मयंक और दीपिका ने भी अपने प्रेम को भक्ति से जोड़ दिया। दोनों ने कावड़ उठाकर कठिन परीक्षा दी, अब परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है। वैसे तो भोले की कृपा एक लोटा जल से ही मिल जाती है, लेकिन अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भक्त कड़ी तपस्या करते हैं। हाथों के बल कावड़ यात्रा पर निकले राजकुमार ऐसी ही तपस्या की एक मिसाल है। बिच्छू के आकार में दोनों पैर हवा में और हाथ के पंजों से आगे बढ़ते हुए, राजकुमार को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और नतमस्तक भी होते हैं।
9: हम पिछले 2 साल से भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम 51 शक्तिपीठ में 21 शक्तिपीठ यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। मथुरा, वृंदावन, अड़ोसी अम्बा, सलासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी, जैन माता मंदिर, तुंगनाथ बाबा जी जैसे, बागेश्वर धाम, चित्रकूट धाम, अनुसुईया माता मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल से हम सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम बिछुवम यात्रा कर रहे हैं, जो कि पिछले साल 1 महीना लगा था और आज हमें यहाँ तक आने में 12 दिन लग चुका है। थोड़ा इस साल पीछे चल रहे, जो कि पिछले साल हमारे भैया चल रहे थे साथ में और इस साल हम अकेले चल रहे, जो कि पीछे में साइकिल है तो साइकिल लेकर हमको चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दूरी हो रहा है। और आप बोले जो कैसे मन में आया, ये तो हम जब बागेश्वर धाम गए थे तो पहले हम बागेश्वर धाम गए तो फिर हमें एक अलग शक्ति मिला हमें, तो फिर लगा जो नहीं हम और जा सकते हैं, और दूर जा सकते हैं, और मंदिर दर्शन कर सकते हैं, लोगों के दर्शन करा सकते हैं, तो बस ऐसे करके चलते रहे। हमें तो ऐसे कोई कठिनाई दिक्कत नहीं लग रहा है क्योंकि हम लगभग चलते रहते, जब राम मंदिर उद्घाटन हुए थे तब भी हम जो है वो टर्निंग से मंदिर तक गए थे, बागेश्वर धाम जो टावर है टावर से बागेश्वर धाम तक गए थे ऐसे हाथ से चल के, तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा जगह जाते रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है।
3: बिच्छू बम बनकर राजकुमार ने जब पिछले साल पहली बार यात्रा की थी तो पूरे 1 महीने का वक्त लगा था, लेकिन इस साल सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की यात्रा में उनकी रफ्तार अच्छी है। एक बार में राजकुमार 60 से 70 फीट चलते हैं, थोड़ी देर ठहरते और फिर चलने लगते हैं। पिछले 2 साल में 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धाम और 21 शक्तिपीठों का दर्शन कर चुके हैं राजकुमार। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बिच्छू बम के तौर पर काफी चर्चा में है। चर्चा धनबाद के अजय विश्वकर्मा की भी हो रही है और उसकी वजह है उनकी डमरू के आकार वाली कावड़, जिसे देखने के लिए दूसरे कावड़िये ठहर जाते हैं। लकड़ी और फाइबर से बना ये विशाल काय कावड़ भव्य है लेकिन वजनदार है। हाँ, जब लोग इसकी सराहना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोल बम का जयकारा लगाते हैं तो अजय विश्वकर्मा को परम आनंद मिलता है।
10: बाबा का डमरू है, ये भगवान गणेश और जो पहली बार पद यात्रा में आया भगवान श्री राम, ये छवि है।
11: क्या चीज से बनाए?
10: ये एक लोहे की चदरे की बनी हुई है और ये इसमें कुछ फोम का भी आइटम मिला हुआ मिक्स है। वजन तो वेट नहीं की लेकिन एक अंदाज बता सकता हहूँ, ये 15 केजी से ऊपर है, 18 केजी लमसम है। ये खुद से बनाया है, इसकी कोई लागत कोई आंक नहीं जा सकता है।
11: आप इसको खुद से?
10: खुद से, और ये हर एक साल कुछ न कुछ यूनिक।
3: शिव भक्तों की जो भीड़ हर दिन बाबा धाम जा रही है उसमें आस्था और भक्ति की अनगिनत चमकीली तस्वीरें हैं। पर चांदी की इस कावड़ की तो बात ही निराली है। पटना सिटी से विशाल शिवधारी कांवड़िया संघ के 600 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट के इस कावड़ को लेकर देवघर के लिए निकला है। खूबी ये है कि कावड़ 54 फीट लंबी है और इसमें 54 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है, साथ ही ज्योतिर्लिंग और माँ दुर्गा काली की प्रतिमाएं भी हैं।
10: इसमें अलग यही है कि चांदी की 54 किलो चांदी का है, इसलिए यह सब लोग का श्रद्धा के अनुसार पूरा ये कावड़ गई है, वो श्रद्धा के अनुसार 54 किलो चांदी सब लोग सहयोग से ये प्रारंभ हुआ और ये आगे भी विकसित होगा। कुछ सोना के भी लगने वाली है, सोना से और जितना श्रद्धा बनेगा लोग का उतना ही आगे बढ़ते रहेगा कावड़ में, और तरह तरह की चीज इसमें भारी की होती है। हाँ, ज्योतिर्लिंग है, बड़ी माँ है, दुर्गा माँ है, काली माता है, सब लोग है उसमें।
11: अच्छा, ये तो
10: आपको
11: कितनी
10: है? 600 है।
11: कहाँ से निकले हैं?
10: ये हम 7 बजे सुबह में निकले सुल्तानगंज से।
3: बैद्यनाथ धाम में दोनों मंदिरों के बीच 54 फीट की दूरी है और इसीलिए 54 फीट की कावड़ और यात्रा भी 54 घंटे में पूरी की जानी है। नंगे पांव केसरिया वस्त्र, सर पर रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए श्रद्धालुओं की टोली कावड़ मार्ग पर शिव भक्ति का दिव्य रंग घोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कांवड़ यात्रा अब सिर्फ गंगा जल लाने की परंपरा नहीं रही बल्कि संस्कार, सेवा और समर्पण का महापर्व बन चुकी है। कहीं नन्हे शिव भक्त अपनी आस्था से प्रेरित कर रहे हैं, कहीं पर परिवार रिश्तों की नई मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कहीं करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच व्यवस्था और भाईचारे की अनूठी तस्वीर दिखाई दे रही है। देश भर से सामने आ रहे ऐसे ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य बता रहे हैं कि महादेव की भक्ति हर उम्र हर रूप में जीवंत है। रिपोर्ट देखिए।
12: ये घुंघरू किसी कलाकार के पैरों की पहचान नहीं है बल्कि शिव भक्ति की आवाज है। छोटे छोटे कदम, पैरों में बंधे घुंघरू, कंधों पर कांवड़ और होठों पर महादेव का नाम। प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंची ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बनारस से आए ये छात्र 7वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज से गंगा जल लेकर अपने शहर लौट रहे हैं। इनके पैरों में घुंघरू इसलिए बंधे हैं ताकि चलते समय लगातार आवाज आती रहे और रास्ते में कोई अनजाने ही उनकी कांवड़ से न टकराए। साथ ही उनके साथी भी एक दूसरे की मौजूदगी आसानी से समझ सके। ये बच्चे पिछले 4 वर्षों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं और इस बार 5वीं बार इस यात्रा पर निकले हैं। उनकी कामना है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, पढ़ाई में सफलता मिले और महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे।
13: सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ जो है प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पहुंच रहे हैं। हर कांवड़ियों के अपने रूप है, रंग है और हर किसी का संकल्प भी अलग है। प्रयागराज का एक ऐसा ही ग्रुप है जो पायल पहनकर पैरों में कांवड़ लेकर चल पड़ा है। उसके पीछे आशा है कि वो जिन रास्तों से गुजरे उनके लोगों के बीच में आने वाले लोग उनके कांवड़ को खंडित न करे, लिहाजा पैर में उन्होंने पायल पहना है और ये काशी के रहने वाले हैं। ये प्रयागराज का जल भरकर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करेंगे, लिहाजा प्रयागराज में ये ग्रुप पहुंचा है।
14: मेरा नाम है अमन, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और गाँव का रहा हूँ। मैं 4 साल मेरा कांवड़ हो गया और मेरा गाँव है काशी में।
15: पायल क्यों पहना?
14: पायल इसलिए पहना कि कांवड़ ठंडी न हो।
15: किस क्लास में पढ़ते हो, कांवड़ क्यों उठाया?
14: मेरा नाम प्रियांशु सरोज है, मैं काशी से रहने वाला हूँ। मैंने कांवड़ इसलिए उठाया कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, मैं पढ़ने लिखने में सफल रहूं। और पायल तो मैंने इसलिए पहना है कि मैंने मेरे रास्ते में आने वाले लोग बगल हो जाए और खंडित ना हो सके मुझे।
16: युवराज कुमार नाम है मेरा, मैं काशी का रहने वाला हूँ। कांवड़ ये मेरा 3रा साल है।
12: उधर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में पहुंच चुकी है। हर की पैड़ी, मालवी द्वीप, शिव सेतु और राष्ट्रीय राजमार्ग हर ओर सिर्फ भगवा रंग दिखाई दे रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। बोलबम, हर हर महादेव के जय घोष पूरे वातावरण को शिवमय बना रहे हैं। अंदाजा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पंचक समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज और हरिद्वार ही नहीं बल्कि सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हरिद्वार से चंडीगढ़ जा रहा एक परिवार अपनी बुजुर्ग माताजी को कांवड़ में बैठा कर यात्रा कर रहा है। करीब 260 किलोमीटर के सफर में कभी बेटा, कभी बहू तो कभी पोता बारी बारी से कांवड़ उठाकर माँ को आगे ले जा रहे हैं।
17: श्रवण कुमार कांवड़ बोलते हैं इसको, और माँ बाप से प्यार था, 4-5 साल से आया नहीं था माँ बाप के मम्मी के कारण। एक्चुअली पापा थोड़ा घर पे कोई है नहीं इसलिए पापा रह गए नहीं, तो दोनों को लाने का मन था, तो माँ बाप का प्यार था इसलिए मैं माँ को लेके आ गया।
18: तो अभी कौन कौन कांवड़ उठा करके ले
17: गया? अभी मैं हूँ, वाइफ है और अपना भतीजा है और भाभी भी है और एक वो अपना भांजा है।
19: कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, भोले बाबा की कृपा है।

0: भी बेटे बहू के स्नेह से बेहद खुश हैं।
1: जितने भी हैं आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने देखा है आजकल नेट पे देखता हूँ बहुत गलत गलत हो रहा है, तो माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा करोगे उतने ही जन्नत में जाओगे, बड़ा प्यार मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। माँ बाप से प्यार है वो करते रहो।
0: हरियाणा के रवि और उनकी पत्नी निशु हरिद्वार से करीब 230 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ का एक सिरा पति के कंधे पर है, दूसरा पत्नी के कंधे पर। दोनों मिलकर गंगा जल अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उससे अपने बुजुर्ग सास ससुर को स्नान करा सके। परिवार की जिम्मेदारी केवल बेटे की नहीं होती, बहू भी उसी प्रेम और सम्मान के साथ उसे निभा सकती है।
2: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार से चंडीगढ़ लेके जाना है, बहुत अच्छा लग
3: रहा है।
2: कैसे विचार आया आपको? ये बस हस्बैंड सोचते हैं, हम सोचने लग जाते हैं।
3: आजकल देखा जाता है कि जो बहुएं होती है वो अपने सास को घर से बाहर निकाल देती
2: है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस वो तो थोड़ा नॉर्मल है, चलता रहता है, पर इतना नहीं है।
3: सासू जी क्या कह रही है?
2: सासू जी भी अच्छा बोल रही है, मेरी अच्छी बात है, कह रही है अच्छी बात है, लेके जा रहे हैं।
0: जब तक माता पिता चलने फिरने में सक्षम हैं, तब तक वो हर साल गंगा जल लाकर उनका अभिषेक कराएंगे। राजकुमार का आगे चलकर उन्हें श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराने का भी सपना है। कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर से सामाजिक सौहार्द की भी एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और जेलुम का जुलूस एक ही मार्ग के करीब 170 मीटर हिस्से से गुजरना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से विस्तृत तैयारी की है। रास्ते के बीच करीब 10 फीट ऊंचे पर्दे लगाए गए हैं ताकि दोनों आयोजन अपने अपने मार्ग से शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकें। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है।
4: जो शहर में एक 170 मीटर का भाग है हनुमान चौक के बाद, वहाँ पे कांवड़ और चेहल्लुम दोनों एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलने के लिए जितने हमारे स्टेक होल्डर है सबसे बातचीत हो गई है, जितने हमारे फिजिकल अरेंजमेंट्स हो गए सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट था वो डिप्लॉयमेंट हो गया, और मात्र 170 मीटर का वो मार्ग है जिसपे स्थलीय निरीक्षण डीएम साहब द्वारा, एसएसपी साहब द्वारा, हम सभी द्वारा कर लिया गया है, और सकुशल इन दोनों जुलूसों को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है।
0: कहीं घुंघरुओं की छमछम में शिवभक्ति सुनाई देती है, कहीं बेटे बहू के कंधों पर माँ के प्रति सम्मान दिखाई देता है, कहीं एक बहू रिश्तों की जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा का नया उदाहरण पेश कर रही है। भक्ति और भावना के ये इंद्रधनुषी रंग ही कांवड़ यात्रा को भव्य बनाते हैं। प्रयागराज से आनंद राज, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। मंदिर, घाट, सड़क और रेलवे स्टेशन पर हर हर महादेव और बोलभम के जयघोष हैं। लाखों शिव भक्त अपने संकल्प के साथ बाबा के दरबार की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आस्था, अनुशासन और उत्साह की अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म पर केसरिया समंदर लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
6: कंधे पर कांवड़, दिल में देवाधिदेव भोलेनाथ और जुबान पर हर हर महादेव। शिव भक्तों का ऐसा जमघट शायद ही किसी स्टेशन पर दिखे, और उसकी वजह भी है। जिन कांवड़ियों को यूपी या देश के दूसरे हिस्सों से बिहार के भागलपुर जाना है, उनकी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से मिलती है। रेलवे के मैप पर डीडीयू यूपी और बिहार के दरमियान है, जहां से पूरे सावन कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। हैरत की बात नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आस्था और भक्ति का सैलाब दिखाई दे रहा है, जिसको नियंत्रित करने और कांवड़ियों को सकुशल ट्रेन में सवार करने का जिम्मा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने संभाल रखा है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए हजारों की तादाद में शिवभक्त पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद देवघर यानी बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ते हैं।
7: सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर तरफ हर हर महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम के जयकारे लग रहे हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां से जल लेकर के बैद्यनाथ धाम जाएंगे। आप देख सकते हैं पंडित दीन

0: उपाध्याय जंक्शन पर कांवड़ियों की भीड़ है, ट्रेन आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए ही दिखाई देंगे। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आरपीएफ जीआरपी के जवान लगातार यहां पर मौजूद रह रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें और लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप?
1: दिनेश कुमार यादव, रायबरेली से।
0: कहाँ से आए हैं आप?
1: रायबरेली से।
0: कब से आप जा रहे हैं, कितना उत्साह है?
1: बहुत ज्यादा उत्साह है, हम लोग दो दिन पहले से निकले हैं, रायबरेली से आए हैं, यहाँ जल भरे हैं जो है कि यहाँ पर दर्शन किए हैं अपना, अब यहाँ से निकल रहे हैं जो है सुल्तानगंज में कांवरिया उठाएंगे, जल भरेंगे और फिर जाएंगे बाबा बैजनाथ धाम।
0: कितनी आस्था है बाबा में?
1: बहुत बड़ी आस्था है जो है, हम लोग सावन आने का बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया, वो शुभ घड़ी आई, वो पर्व आया, आज जो है इतना सारा मेला में सम्मिलित होने का उपलक्ष्य मिला, वो मौका मिला, ऐसा तो बहुत सारा आया।
0: देखा जा सकता है कितना उत्साह है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
2: भीम शंकर।
0: क्या कहना है आपका?
2: बहुत बढ़िया,
0: अच्छा लगता है बाबा धाम जाना।
2: बहुत, बहुत।
0: आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप?
2: रायबरेली से।
0: आप भी रायबरेली से हैं, तो ये रायबरेली का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये बताइए क्या कहना है इस आस्था और भक्ति को लेकर के?
2: बाबा जी की बहुत आस्था है और उन्हीं की लगन से हम जा रहे हैं, बाकी सब बाबा की कृपा है।
0: पहली बार जा रहे हैं?
2: हाँ भैया।
0: कैसा लग रहा है, कितना उत्साह?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: आपका क्या नाम है?
3: सुनील कुमार।
0: आप बताइए आप कब से जा रहे हैं और कितना उत्साह है?
3: पहली बार जा रहे हैं, बाबा ने बुलाया जा रहे हैं।
0: पैदल चल लेंगे 120 किलोमीटर?
3: हाँ पैदल चल लेंगे, बाबा की इच्छा होगी तो।
4: सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही न सिर्फ DDU बल्कि इसके आगे बिहार के तमाम रेलवे स्टेशन केसरिया रंग में नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की अच्छी खासी तादाद ट्रेनों के जरिए भागलपुर पहुंचती है और वहां से गंगा जल लेकर देवघर जाती है, इसीलिए यूपी से बिहार तक की ज्यादातर ट्रेनों में बोलबम का जयघोष है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो जैसे शिवमय हो चुका है।
0: ये तमाम उत्साह से लबरेज श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए कांवरिए हैं। आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, ट्रेन आ चुकी है और ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कांवरिए ही कांवरिए दिखाई दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से भगवामय हो गया है और ये कांवरिए यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे, वहां से जल उठाएंगे और जल उठाने के बाद ये तमाम कांवरिए जो है वो बैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ पैदल कूच करेंगे और वहां जाने के बाद लोग जलाभिषेक करेंगे। एक और श्रद्धालु हैं, कहां से आए हैं आप?
5: प्रकल्डीहा से।
0: ये बताइए, इधर आ जाइएगा कि क्या कहना है आपका, कब से जा रहे हैं आप?
5: हम तो 20 साल से जा रहे हैं।
0: कैसा लगता है?
5: अच्छा लगता है,
0: अब हमें भक्ति है,
5: पूरी भक्ति है, पूरी मनोकामना पूर्ण होती है,
0: पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहना है इन श्रद्धालुओं का। श्रद्धा और भक्ति का लगातार जमावड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर देखा जा रहा है। उदय गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: 15 अगस्त का जश्न सिर्फ लाल किले तक ही सीमित नहीं होता, राष्ट्रपति भवन में भी होने वाला एट होम समारोह भी इसकी खास पहचान है, लेकिन इस बार चर्चा समारोह से पहले ही शुरू हो चुकी है। वजह बना है राष्ट्रपति भवन का विशेष निमंत्रण पत्र। पहली नजर में ये एक खूबसूरत इनविटेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखते हैं इसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं और कला की रंगीन झलकियां खुलती चली जाती हैं।

0: ये एक खास निमंत्रण पत्र है जिसका हर डिजाइन, हर रंग और हर प्रतीक अपने आप में एक संदेश है। 15 अगस्त के एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ ये खास निमंत्रण पत्र इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। असल में ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि नए भारत की सोच, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस निमंत्रण पत्र की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इसमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला की झलक है तो गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रंग भी हैं। निमंत्रण पत्र का बाहरी कवर कोंकण के तटीय क्षेत्र की पारंपरिक कावी कला से प्रेरित है। इसके मुख्य फ्रेम में भारत की समृद्ध लोक एवं जनजातीय कलाओं की शानदार झलक दिखाई देती है जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की पारंपरिक पिटवा कला के हाथ से बनी आकृतियों को स्थान दिया गया है। तो वहीं फ्रेम में शामिल ढोकरा शिल्प से निर्मित एक विशेष मूर्ति जंगलों और जैव विविधता की सामुदायिक संरक्षण परंपरा का संदेश देती है। मुख्य फ्रेम में गोवा की प्रसिद्ध अजुलेलो टाइल परंपरा को भी खूबसूरती से स्थान दिया गया है। ये कलाकृति गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और समुद्र से उसके गहरे जुड़ाव को बेहद आकर्षक अंदाज में सामने लाती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की पारंपरिक भील चित्रकला को भी इसमें स्थान दिया गया है। छोटे छोटे रंगीन बिंदुओं से उकेरी गई ये अनूठी कला सिर्फ आकर्षक चित्र नहीं बनाती बल्कि भील समुदाय की आस्था, पूर्वजों की स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी अभिव्यक्त करती है। वहीं फ्रेम में महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध वारली कला भी है जो प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मनुष्य के साथ ही पर्यावरण के गहरे संबंध को बेहद सादगी और खूबसूरती से बयां करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। मेहमानों का स्वागत मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई शैली से तैयार रेशम और सूती धागों वाले अंग वस्त्र पहनाकर किया जाएगा। एट होम राष्ट्रपति भवन का पारंपरिक स्वागत समारोह है जिसका आयोजन हर राष्ट्रपति की मेजबानी में किया जाता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां शामिल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सावन के पवित्र महीने में धूमधाम से जा रही है कांवड़ यात्रा, सहारनपुर में दिखी रंग बिरंगी कांवड़, प्रयागराज में कांवड़ लेकर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, पुणे में मूर्तिकार प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप, इको फ्रेंडली मूर्तियों की जबरदस्त डिमांड। दिल्ली में अर्पण योजना का शुभारंभ, 10 मेट्रो स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं अर्पण केंद्र, जरूरतमंद लोगों को डिजिटली दान कर सकेंगे कपड़े। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम, इसी स्कूल में धनुष ने की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वाराणसी में बढ़ रहा है बनारसी साड़ी और सिल्क का कारोबार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम से हो रहा है लाभ, कारोबारियों में खुशी की लहर। देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं गणेशोत्सव की हमारे देश में और हमारे दिलों में त्योहारों और उत्सवों का एक विशेष स्थान है। ये पर्व हमारे सांस्कृतिक धरातल को समृद्ध करते हैं। अभी सावन पावन महीना चल रहा है तो महादेव की भक्ति का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। सावन के बादलों की ओट से जब भादों का महीना निकलेगा तो महादेव के लाड़ले यानी गजानन घर घर पधारेंगे। देखिए महीना महादेव का है लेकिन महाराष्ट्र में गणपति की भक्ति का सावन जो है वो बरस रहा है। अब से साल 14 सितंबर से गणेशोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से लगातार चल रही है। धुरा कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आ रहे हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। उधर देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां पर अलग अलग शहरों में बप्पा की मूर्तियां आकार ले रही हैं। श्रद्धा से भरे मूर्तिकार अपने हुनर से तैयार प्रतिमाओं में आस्था के रंग भर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का निर्माण तो कई हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था, अब इनमें रंग भरने और इनमें सजाने का काम लगातार जारी है। हर साल मुंबई समेत देश भर में हजारों गणेश पंडाल लगते हैं। इन पंडाल के साथ घरों में भी बप्पा की मूर्तियां भक्त स्थापित करते हैं। चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है। चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि अब की बार बप्पा की कौन सी मूर्तियां सबसे ज्यादा डिमांड में हैं।

0: देवों में वे प्रथम पूज्य। कहलाते गणराज्य। चरण पड़े लंबोदर के तभी सफल हूँ काज। कहते हैं संसार में किसी कार्य का शुभारंभ हो नहीं सकता जब तक इनके चरण न पड़े। तो फिर यहाँ तो बात स्वयं मंगल मूर्ति के उत्सव के शुभारंभ की है। गणपति उत्सव दस्तक दे रहा है, सो कारीगरों ने शहर शहर बाप्पा की मूर्तियों को आकार देना शुरू कर दिया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेशोत्सव का शुभारंभ होगा। अब की बार ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां बननी हैं, सो हफ्तों पहले से कारीगर मंगल मूर्ति का स्वरूप गढ़ने और सजाने में जुटे हैं। ये तस्वीर है नागपुर की मशहूर चितारोली की। नागपुर के इस कोने में कहीं बाप्पा को रंगों से सजाया जा रहा है तो कहीं उनकी आंखों में जीवन भरा जा रहा है।
1: करीबन पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूँ। बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है। और मेरा अनुभव ऐसा है यहाँ का कि जो इनकी बनावट है और जो मूर्तियों की आँख बनाते हैं, देखो आँख जो है गणपति की उसके ऊपर मूर्ति का सब दिखावा है, वो सब बहुत ही सुंदर बनाते हैं।
0: चितारोली की पहचान सिर्फ नागपुर तक ही नहीं है बल्कि देश के बाकी हिस्सों और विदेशों तक भी है। यहाँ बनने वाली गणेश प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में भेजी जाती हैं।
2: हमारे यहाँ ओमान और रशिया मूर्ति गई है अभी।
3: अब कब से वो ऑर्डर देते हैं और कब?
2: ये लोग जून महीने में देते हैं ऑर्डर। जून
3: कब बना के देते हैं आप?
2: हम लोग उन तारीख रहते उनके जब जाने की फ्लाइट की रहती ना, जब वो तारीख देके जाल चले जाते हम लोगों को, 1-2 दिन पहले लेके चले जाते हम लोग।
0: बाप्पा की एक से एक प्रतिमाएं यहाँ तैयार हो रही हैं। कहीं गणपति के माथे पर खाटू के श्याम बाबा की छवि उकेरी गई है तो कहीं गजानन के शीश पर उनके पिता महादेव महाकाल स्वरूप में विराजमान दिख रहे हैं तो कहीं वक्र तुंड की सूंड पर प्यारे से बाल गोपाल विराजे हैं। कलाकार बता रहे हैं कि अब की बार इसी तरह की प्रतिमाओं को लेकर खास उत्साह है। यही वजह है कि डिमांड भी ज्यादा है। कुछ श्रद्धालु अपनी कल्पना के आधार पर तो कई दो हाथ आगे बढ़कर AI के जरिए बापा की अलग छवि बनवाना चाहते हैं और मूर्तिकार उसी को आधार बनाकर दिन रात भक्तों की कल्पना वाले बापा को साकार रूप देने में जुटे हैं।
4: अभी इस साल तो भगवान का क्रेज बोलो तो उज्जैन के महाकाल और बाबा खाटू श्याम वहाँ का ज्यादा शुरू हुए तो गणपति के साथ में वो भगवान का किस प्रकार से जोड़ा जाए तो हम कभी उसके डिजाइन कहाँ सेट हो सकती है तो श्याम बाबा की खाटू श्याम बाबा की डिजाइन उसमें सेट कर रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार की डिमांड आ रही है और अभी जैसे यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है ये डिमांड मोबाइल के द्वारा, तो जैसे कुछ AI से बना के ला रहे हैं। जैसे अभी श्री कृष्ण जी तो आपने देखे बड़ी मूर्ति में गणपति बाप्पा के इसमें सुन पे छोटे से बाल श्री कृष्ण बैठा लिया है, उसके खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इस प्रकार से डिमांड भी आ रही है, कुछ हमारे मन में जो कल्पना है तो वो भी हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं।
0: लेकिन इस बार बाप्पा के स्वागत की तैयारियों के बीच चर्चा महंगाई की भी हो रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हुए जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। मिट्टी, रंग, लकड़ी, रस्सी और दूसरे सामान की कीमतें भी बढ़ी। सो बात सीधी है कि गणेश जी को घर लाना है तो लक्ष्मी जी का मोह कुछ कम करना होगा।
5: देखा जाए तो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति पर भी साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि 15% तक गणपति बाप्पा की मूर्तियां इस साल महंगी हुई है। हालांकि 14 सितंबर को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति बाप्पा सार्वजनिक पंडाल और घरों में विराजमान हो गए, उससे पहले नागपुर में कारागिर गणपति बाप्पा की मूर्तियां बनाने में जुट चुके हैं।
0: महंगाई बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन बाप्पा के प्रति भक्तों की श्रद्धा भी तो बढ़ गई। हर साल की तरह ही इस बार भी भक्तों की ये आस्था अटूट है। अभी से अपनी पसंद की मूर्तियां बुक कराने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा मांग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की है, ताकि उत्सव भी पूरे उत्साह से मनाया जाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
6: और मुझे इको फ्रेंडली और जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब इको फ्रेंडली रहते हैं और ये सब लोकल आर्टिजन है जो मेहनत से ये इको फ्रेंडली बनाते हैं।
0: यानी नागपुर वाले पूरी तरह तैयार हैं बापा के स्वागत के लिए, लेकिन तैयारी अमरावती में भी कम नहीं। अमरावती की इस आर्ट वर्कशॉप में गणपति की मूर्तियों को आकार देने की साधना चल रही है। मूर्ति स्वयं मंगल मूर्ति की है, विघ्नहर्ता की है, सो विघ्न का सवाल नहीं। मजाल है कि ध्यान भी भटक जाए, सब कुछ भूलकर बस बापा को बनाने और सजाने का काम चल रहा है। हर प्रतिमा में बारीक नक्काशी और आकर्षक रंग, ये काम में जुटे इन कलाकारों का वर्षों का अभ्यास है, हफ्तों की मेहनत है, उम्र भर की साधना है।
7: देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ गणपति की विघ्नहर्ता की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, तो कुछ पर जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बनाना अब शुरू हुआ है। उन्हें जो है आखिरी रूप उनका देने में कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। हम फिलहाल है अमरावती के जिराफे आर्ट में, जहाँ पर की मूर्तियां जो है, प्रतिमाएं जो है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी और देश के बाहर भी इन प्रतिमाओं की बहुत बड़ी और ज्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की प्रतिमाएं जो है वो ऐसा लगता है कि स्वयं गणपति बाप्पा जो है हमारे सामने विराजमान हुए हैं। और इसीलिए ये कार्यशाला जो है वो कई सालों से जो है सुंदर इको फ्रेंडली, सबसे अहम बात है कि इको फ्रेंडली ये प्रतिमाएं हैं।
0: अमरावती के जिराफे आर्ट वर्कशॉप में हर बार की तरह आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। गणपति बाप्पा की आस्था के बीच प्रकृति माँ को भुलाया नहीं।
8: ये तो थी बात बाप्पा की मूर्तियों की, लेकिन इन प्रतिमाओं के अलावा गणपति को सजाने वाली तमाम चीजें भी अब बाजारों में पहुंचने लगी हैं। इनमें सबसे खास है बाप्पा का फेटा। फेटा महाराष्ट्र की खास पगड़ी होती है। आखिर क्यों बाप्पा को ये पगड़ी पहनाई जाती है, क्या है फेटा का इतिहास और क्यों आज महाराष्ट्र के सैकड़ों के फेटा मेकर बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कर रहे हैं।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, टेढ़ी सूंड विशाल काया और करोड़ों सूर्यों के समान तेज, गजानन की दिव्य काया का बखान कुछ यूं मिलता है हमारे ग्रंथों में। लेकिन ये काया कुछ और सजीली, कुछ और दिव्य, कुछ और भव्य हो जाती है गणेश उत्सव के 10 दिनों में। जब देश भर में मंदिर मंदिर, पंडाल पंडाल और घर घर में गणपति का विशेष श्रृंगार किया जाता है, उन्हें बेहद प्रेम आस्था और मनुहार के साथ तैयार किया जाता है, और इसी तैयारी का हिस्सा है गणपति बाप्पा की पगड़ी। बाप्पा के मस्तक की ये पगड़ी कुछ और खिल उठती है महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर, जहां इसे मराठी अंदाज में बाप्पा को पहनाया जाता है। इस मराठी पगड़ी को फेटा कहते हैं। जैसे पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हुनर रखने वाले कारीगर इस समय बाप्पा की मूर्ति, वस्त्र, गहने और पंडाल का सामान बनाने में व्यस्त हैं, ठीक वैसे ही पुणे के किरण साबले इन दिनों बाप्पा के लिए फेटा यानी मराठी पगड़ी बनाने में जोर शोर से जुटे हैं। कि नारायण गांव में फेटा मेकर किरण साबले अपने पूरे परिवार के साथ गणपति बाप्पा के लिए फेटा बना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गणेशोत्सव से पहले उनके पास बड़ी संख्या में बाप्पा का फेटा बनाने के ऑर्डर आए हैं।
1: प्राइस मैंने खाली 120 रुपए रखे। फेटा बनाने के लिए मेरी पूरी फैमिली इसमें मेरे को मदद करती है और खूब सारे फेटे हम इस साल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: कभी साल भर में 1000 फेटे बनाने वाले किरण साबले अब हर साल बाप्पा के लिए 50,000 से ज्यादा फेटे तैयार करवाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ उन्हें देश विदेश से ऑर्डर आते हैं।
1: मैं गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ। मैं 5 साल से गणपति बाप्पा का फेटा बनाता हूँ और मेरे पहले मैंने जो फेटे बनाए थे तो गणपति बाप्पा के जो मंडल है, मेरे दोस्त लोग है, तो इनको मैंने पहले 20 पीस बनाए और मैंने 20 पीस बनाए और उसके बाद मैंने अगले साल में 100 पीस बनाए। तो ऐसे फेटा बनाने की आइडियाज और ज़्यादा फेटा बनाया।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र का फेटा केवल सिर पर पहना जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि ये मराठी अस्मिता, इतिहास और सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवंत चिन्ह है। मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्याभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बाप्पा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। यानी महाराष्ट्र में भगवान गणेश को फेटा पहनाना मराठी संस्कृति में उन्हें अपने राजा, अतिथि और परिवार का मुखिया मानने की गहरी आस्था का प्रतीक है। वैसे तो बाप्पा को अब पोशाक के रंग के हिसाब से अलग अलग रंग का फेटा भी पहनाने का चलन है, लेकिन शुरुआत में बाप्पा को सिर्फ पीला या भगवा रंग का फेटा पहनाया जाता था, जिसका इतिहास महाराष्ट्र में सप्तवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं से होते हुए छत्रपति शिवाजी के शासन काल तक जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं ने गणेश जी को अपना कुल देवता माना था। पेशवाओं के दरबार में हर कोई पारंपरिक फेटा या पुणेरी पगड़ी पहनता था। जब वे अपने आराध्य बाप्पा की मूर्ति स्थापित करते थे तो उन्हें भी अपनी तरह ही शाही रेशमी फेटा पहनाते थे। यही ऐतिहासिक परंपरा आज भी सार्वजनिक और घरेलू गणेश उत्सव में जारी है। सदियों पुरानी इस गर्व भरी परंपरा को आज भी जिंदा रखे है किरण साबले जैसे हजारों फेटा मेकर, जो हर साल गणपति बाप्पा के लिए फेटा बनाते हैं। इसे पहनकर गजानन जब घरों में पधारते हैं तो माँ गौरी के लाल पर श्रद्धालु अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फेटा की ही तरह बप्पा के आसन की भी डिमांड खूब बढ़ गई है। मुंबई में दुकानों पर गणपति के लिए अलग अलग डिजाइन, थीम और रंगों के आसनों की बाढ़ आ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि घर पर बप्पा को विराजमान करवाने के लिए कौन कौन से आसन और सिंहासन का विकल्प है।

0: माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जरा सोचिए कैलाश पर कैसी शान से रहते होंगे वो गणपति देवा। बस भक्तों को चिंता इसी बात की रहती है कि जब गणपति अपने घर से हमारे घर आए तो उनकी सेवा पूजा में कोई कमी न रह जाए, सजावट में भव्यता भरपूर हो और भोग में मोदक प्रचुर हो। सो बाजार पट गए हैं, बाप्पा के स्वागत के सामान से सज गए हैं। गणपति उत्सव की रौनक अब खूब दिख रही है, दिखनी भी चाहिए। अब गणेश चतुर्थी में दिन ही कितने बचे हैं। इधर शिव जी का प्रिय महीना खत्म होगा और उधर शिव पुत्र के पधारने की घड़ी आ पहुंचेगी। उससे पहले गणपति की प्रतिमा, आसन, पूजा की थाली, झांकी सजाने का सामान, जाने क्या क्या लेना है, सुकाम चालू आ है। ये तस्वीरें हैं लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली की, जहां मौजूद सहेली वर्कशॉप में गणेशोत्सव से जुड़ा सामान तैयार हो चुका है।
1: लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो।
0: लोग यहाँ अपने प्यारे बाप्पा के लिए मनपसंद आसन चुनने पहुँचे हैं। अब जिनका आसन स्वयं माँ गौरी की गोद हो, उनके लिए आसन चुनना आसान भी तो नहीं। लेकिन गौरी नंदन के विराजने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन के आसन यहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन भी यहाँ तैयार किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वाला आसन, महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन भी भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साईं रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बाबा के लिए इसी आसन को चुन रहे हैं।
1: क्या आप देखें, एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहाँ पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
0: हर साल बाप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु जोर शोर से तैयारी करते हैं, चाहे उनकी स्थापना हो या फिर उनकी सेवा। गणपति बाप्पा के लिए भक्तों का प्रेम अपार है। ऐसे में अगर भक्त अपने बाप्पा के लिए आसन खुद बनाना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इस वर्कशॉप से लोग रॉ मटेरियल खरीद कर घर ले जा सकते हैं और अपने हाथों से अपनी कल्पना के आधार पर बाप्पा के लिए मनपसंद आसन तैयार कर सकते हैं।
1: यहीं पे आके लोग सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो अपने घर पे भी जाकर बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास जो जाके बड़े आसानी से आप बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो अच्छी खासी देखिए काम लगा हुआ है, कोई कलाकार ही आर्टिस्ट ही से बना सकता है ना।
2: हमारे यहाँ देखो, समझो अगर आपको चाहिए, अगर पूरा रेडीमेड नहीं चाहिए तो आपको अगर मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल आपको वो भी मिल सकते, जैसे कि आप देख सकते हो कि पीवीसी की जाली है, पीवीसी हम लोग काफी आइटम डेवलप की जो रिसाइकलिंग भी है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ही नहीं हो सकती है। रिसाइकलेबल आइटम
1: इको फ्रेंडली है, सारे
2: फॉर्म इसमें बनाया है, एमडीएफ में बनाया हुआ है। कि जैसे कि आपको चाहिए कि समझो कि रो मटर चाहिए, पिलर चाहिए, खाम चाहिए, कलर चाहिए, कि देख जाओ वो उसके सेक्शन में बाजू में रखे, एक ही रूफ के नीचे आपको पूरा का पूरा आइटम मिल सकता है। अगर नहीं बनाना है आपको खुद पे घर पे जाकर बनाना है, आपके खुद की आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ रो मटर मिल सकते हैं सर।
1: अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा, ये तो चलो सिंहासन की बात हो गई, सिंहासन के अलावा और क्या क्या चीजें बप्पा की साज सज्जा के लिए आप बेच रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं?
2: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगी सर।
1: वैसे अच्छा, खुद आपके लिए कितने साल से हैं इस व्यवसाय में?
2: 25-27 साल से यहाँ लगा रहे हैं।
1: मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार होता होगा।
2: साल भर हम लोग पापा का इंतजार करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं राजा लालबा के राजा का, वैसे हम लोग भी इंतजार करते हैं।
0: वैसे लोग यहाँ से सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जगमगाती लाइट्स, मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स भी खरीद रहे हैं।
3: मूर्ति तो चॉइस हो गया अपना गणपति का, आगे का डेकोरेशन का थोड़ा थीम चल रहा है दिमाग में, वो हिसाब से हम लोग अभी देखने के लिए आए।
4: तो अभी यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, वो बहुत ही अच्छे है, उसमें से मुझे तो मंगल मूर्ति करके एक अच्छा लगा, सुखकर्ता करके अच्छा लगा, एक विठल का है वो अच्छा लगा, ये तीन डिजाइन तो बहुत ही अच्छे लगे।
5: तो यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं ना डेकोरेशन में, बहुत 500 के ऊपर रहते हैं ऑप्शन, मतलब फोल्डिंग में रहता है, फोम में रहता है, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब एक ही शॉप में ना सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब किधर दूसरे शॉप में जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: खास बात ये भी है कि यहाँ मिलने वाला ज्यादातर सामान भी इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी की प्रतिमा की तरह अंत में ये भी मिट्टी या पानी में घुल मिल जाएगा, मतलब पर्यावरण को यहाँ भी कोई नुकसान नहीं। कुछ ही दिनों बाद लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा की मूर्तियों को पंडालों, घरों और दफ्तरों में स्थापित करेंगे। ऐसे रंग बिरंगे सुंदर आसन पर बापा विराजेंगे और उस भव्य झांकी के चारों ओर बापा के आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बारिश किसी के लिए परेशानी लेकर आती है तो किसी के लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप देखा जाती है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में आसमान से बरसती बूंदों ने सूखी वादियों को फिर से जिंदा कर दिया है। पहाड़ हरे रंग की चादर ओढ़ चुके हैं और महीनों से खामोश पड़े झरने अब पूरे जोश के साथ गूंज रहे हैं। नजारा ऐसा जिसे देखकर हर कोई कुछ पल ठहर जाना चाहता है।
3: ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि मॉनसून की मेहरबानी का है। पहाड़ों से दूध की तरह गिरता पानी, चारों ओर बिछी हरियाली और ठंडी हवाओं के बीच कुदरती सुंदरता। महाराष्ट्र के जालना जिले का धाबड़ा इलाका इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद यहाँ का झरना पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड करने पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजस्थान के अलवर में भी देखने को मिल रहा है। अरावली की पहाड़ियों से फूटते झरनों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। सिलिसेड और आसपास हुई अच्छी बारिश के बाद मशहूर गरवाजी वाटरफॉल इस सीजन में पहली बार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पानी की तेज धार और हरियाली से घिरी पहाड़ियां लोगों का मन मोह रही हैं। बारिश का ये पानी सिर्फ झरनों की खूबसूरती ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि खेतों में भी नई उम्मीद जगा रहा है। खरीफ की फसल के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। मानसून एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बारिश मेहरबान होती है तो सूखे पहाड़ भी जिंदा हो उठते हैं। झरनों की गूंज, हरियाली की चादर और ठंडी हवाएं, यही है मानसून का वो जादू जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। जालना से गौरव विजय और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।